मीडियम वेव 396.82 मीटर अर्थात 756 किलोहर्ट्स, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्स और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 के वैशाख मास की 21वीं तिथि, तदनुसार 8 मई सन 2026। प्रातः के 5:56 और 40 सेकेंड्स हुए हैं। हमारी प्रातःकालीन सभा अब आरंभ होती है।

0: आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 6 बजने को हैं समाचार। अब हम आकाश,
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं निखिल कुमार। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि देश का सरकारी अनाज भंडार 604 लाख टन से अधिक हो गया है। यह मात्रा बफर स्टॉक यानी अनिवार्यता के समय की आवश्यक मात्रा से लगभग 3 गुना अधिक है। श्री जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि गेहूं और चावल के सुरक्षित भंडार से देश में कल्याणकारी योजनाओं तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित हो रही है। अधिक खरीद, अच्छी फसल और किसानों की पर्याप्त सहायता से खाद्य सुरक्षा, किसानों के हित तथा सुरक्षित भविष्य के लिए देश की प्रतिबद्धता मजबूत हो रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की खाद्य सुरक्षा लगातार बढ़ रही है। इस बीच सरकार ने कहा है कि 6 मई तक मंडियों से 78,96,000 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई। पिछले साल इसी अवधि में यह आंकड़ा 75,63,000 मीट्रिक टन था। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि कम आवक के बावजूद इस साल गेहूं की खरीद पिछले साल से बेहतर है। मंत्रालय ने यह स्पष्टीकरण उन खबरों के जवाब में दिया है जिनमें दावा किया गया था कि मंडियों में गेहूं की अधिकता जैसी स्थिति है। मंत्रालय ने कहा कि पंजाब में अब तक लगभग 122 लाख मीट्रिक टन गेहूं मंडियों में आया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में वाणिज्य विभाग और उद्योग तथा आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि बैठक में निर्यात और निवेश बढ़ाने, नए निर्यातकों के लिए आवश्यक अवसर तैयार करने और वैश्विक बाजारों में नई संभावनाएं तलाशने पर चर्चा हुई। पश्चिम बंगाल में नई सरकार के गठन की तैयारियों के बीच विधानसभा को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया है। राज्यपाल आरएन रवि ने संविधान के अनुच्छेद 174 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए मौजूदा विधानसभा को भंग करने का आदेश जारी किया। इस बीच गृहमंत्री अमित शाह आज कोलकाता जाएंगे। वे नव निर्वाचित भाजपा विधायकों के साथ बैठक में शामिल होंगे, जिसके बाद पार्टी के विधायक दल के नेता का चयन किया जाएगा। असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार 12 मई को लगातार तीसरी बार शपथ ग्रहण करेगी। समारोह की तैयारियों के लिए गुवाहाटी में एक उच्चस्तरीय बैठक हुई। प्रदेश पार्टी अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि भाजपा विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। उधर तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी तमिलक वेत्री कड़गम पार्टी का सरकार गठन के लिए बहुमत सिद्ध करने के मुद्दे पर गतिरोध बना हुआ है। 234 सदस्यों वाली विधानसभा में बहुमत के लिए 118 विधायकों की आवश्यकता है। विधानसभा चुनाव में अभिनेता विजय की टीवीके पार्टी ने 108 सीटें जीती हैं। इस बीच केरल में कांग्रेस हाईकमान नई दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी पर्यवेक्षकों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के बाद नए मुख्यमंत्री के चयन पर निर्णय की घोषणा करेगी। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम ने कहा है कि बदलती वैश्विक व्यवस्था में भारत और वियतनाम के पास वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का एक बड़ा अवसर है। मुंबई में भारत वियतनाम व्यापार मंच को संबोधित करते हुए श्री लाम ने कहा कि पहले भी दोनों देशों ने आपसी सहयोग में कई चुनौतियों का सामना किया है। उन्होंने भारतीय कंपनियों को वियतनाम में निवेश के लिए आमंत्रित किया। वियतनाम के राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों देशों के संबंध पूर्व वियतनामी राष्ट्रपति हो ची मिन और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू जैसे नेताओं की दूरदृष्टि पर आधारित हैं। सऊदी अरब ने अपने सैन्य ठिकानों और वायु क्षेत्र तक अमरीकी सेना की पहुंच रोक दी है। इससे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हॉर्मुज जल डमरू मध्य में जहाजों पर निगरानी रखने की अपनी योजना छोड़ने पर बाध्य होना पड़ा है। दो अमरीकी अधिकारियों ने इस खबर की पुष्टि की है। सऊदी अरब के इस कदम से खाड़ी देशों को लेकर

0: अमरीकी रणनीति को झटका लगा है। आकाशवाणी की स्थापना की 90वीं वर्षगांठ के उपलक्ष में आज सुबह राजधानी दिल्ली में मैराथन का आयोजन किया गया है। लगभग 3.5 किलोमीटर की यह दौड़ आकाशवाणी भवन से शुरू होकर कृषि भवन, रेल भवन और रिजर्व भवन होते हुए आकाशवाणी भवन में ही संपन्न होगी। आकाशवाणी और दूरदर्शन सहित प्रसार भारती में कार्यरत सभी कर्मचारी और उनके परिवार के सदस्य इस मैराथन में भाग ले सकेंगे। आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स ने कल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 9 रन से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला शाम 7:30 बजे कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। आरंभ करते हैं इस देशगान के साथ।

ईश्वर की उपस्थिति। ईश्वर की उपस्थिति हर कहीं हर स्थान पर रहती है। उन्हें स्मरण करने के लिए आवश्यक नहीं कि हम पूजा स्थल पर ध्यान लगाएं या उनकी प्रतिमा के समक्ष बैठें। आवश्यक ये है कि एकाग्र होकर हम ईश्वर का मनन करें, उनका ध्यान करें, उनकी उपासना करें। यही प्रार्थना सच्ची प्रार्थना है और यही पूजा ईश्वर को स्वीकार्य भी है। सुनते हैं मीराबाई का ये भजन।

0: ये थी आज की वंदना। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 6:20 हुए हैं। प्रस्तुत है आज का चिंतन।
1: स्वाभिमान मात्र एक शब्द नहीं है, यह श्रृंगार है हर उस इंसान का जो अपने स्वाभिमान को सर्वोपरि रखता है। इस शब्द का हमारे व्यक्तित्व और आचरण पर सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है। स्वाभिमान शब्द को जब विभाजित करते हैं तो स्वाभिमान मतलब स्वयं का सम्मान करना होता है। स्वाभिमान शब्द में स्वयं के प्रति विश्वास, विजय और आशावादी भावनाओं का अद्भुत संगम होता है। स्वाभिमान अपनी शक्तियों और सफलताओं का विश्वास हमें दिलाता है। स्वाभिमान स्वयं के प्रति सच्चे होने, स्वयं के लिए खड़े होने, स्वयं के प्रति वफादार होने और ईमानदार होने का एक अनुपम उदाहरण है। जब आप स्वयं को सम्मान देते हैं, तब आप दूसरों के प्रति भी सम्मान कर पाएंगे। जब हमारा कोई अपमान करता है, हमारे गुणों की निरर्थक निंदा करता है, दुर्व्यवहार करता है, नीचा दिखाने का प्रयास करता है, तब हमारा स्वाभिमान हमें बल प्रदान करता है। हमें यकीन दिलाता है कि हम स्वयं के प्रति निराशा के भाव नहीं आने देंगे। स्वयं से प्यार करके, स्वयं को सम्मान करके स्वाभिमान हमें पतन की ओर जाने से बचाता है। ये प्रेरित करता है स्व कल्याण की ओर आगे बढ़ने के लिए। स्वाभिमान को दांव पर लगाकर जीवित रहना दुष्कर है, शर्मनाक है। स्वाभिमान जीवन का अप्रतिम हिस्सा है। इसके बिना इंसान का व्यक्तित्व नगण्य अथवा नकारा हो जाता है। हालांकि स्वाभिमान से जीने के लिए हमें बहुत से संघर्ष और कठिनाइयों का सामना करना होता है, किंतु लगातार संघर्ष और कठिन परिश्रम से ही हमें सफलता प्राप्त हो सकती है। स्वाभिमान किसी भी प्रकार के धन, पद और शक्ति से बहुत बड़ा होता है। स्वाभिमान एक प्रकार से स्वयं के मूल्यांकन की अद्भुत प्रक्रिया है, क्योंकि यह हमें इस पक्ष की ओर सोचने को मजबूर करता है कि हम हमारे भीतर अपने दृष्टिकोण को कितना और कैसे महत्व देते हैं। स्वाभिमान हमारे व्यक्तित्व को परखने, संबंधों और जीवन के प्रति चिंतन एवं दृष्टिकोण को प्रदर्शित करता है। कभी कभी कुछ लोगों को अभिमान और स्वाभिमान में अंतर करने में बहुत दिक्कत होती है। उनके लिए स्वाभिमान और अभिमान एक ही सम्मान लगते हैं, जो कि सरासर अनुचित है। ऐसा अक्सर इसलिए भी होता है क्योंकि स्वाभिमान और अभिमान के बीच बहुत ही महीन रेखा होती है। स्वयं पर अति में और सिर्फ स्वयं पर ही विश्वास और सम्मान का होना अभिमान हो जाता है। अभिमान का दूसरा अभिप्राय है मान या घमंड, मानो जैसे सभी सिर्फ मुझे ही सम्मान दें। यह है अभिमान। अभिमान भी अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे मैं जितना योग्य हूँ उतना ही मुझे सम्मान मिले। दूसरा, योग्यता से अधिक दूसरों से स्वयं का सम्मान पाने की चाह। तीसरा, सबसे ज्यादा नुकसानप्रद कि स्वयं के आगे किसी को भी कुछ न समझना। वहीं स्वाभिमान का शाब्दिक अर्थ है अपनी मर्यादा को ध्यान में रखते हुए अपनी गरिमा को भंग न होने देना, खंडित न होने देना। अतः कोई सम्मान दे या ना दे, किंतु अपमान ना कर सके इसकी सावधानी रखना। वास्तविकता में यदि हम उच्च स्वाभिमान रखते हैं तो किसी के आरोप से, झूठी चुगली से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता।

0: हम एक खुशहाल, संतुष्ट और कामयाब जिंदगी जीते हैं। हमारे मन में दृढ़ता, विश्वास और चुनौतियों को स्वीकार करने की प्रबल इच्छा होती है। इस बारे में जॉर्ज वॉशिंगटन ने बहुत अच्छी बात कही है कि अगर आप खुद के मान सम्मान को महत्व देते हैं तो गुणवान लोगों की संगत में रहें, और खराब संगत में रहने से बेहतर है कि आप अकेले ही रहें। स्वाभिमान अर्थात आत्मसम्मान का अर्थ है कि स्वयं को एक मजबूत भावना, आप जो हैं उस पर गर्व महसूस करना। मानव जीवन में स्वाभिमान का बहुत महत्व है। अगर किसी को अपनी परवाह नहीं है तो उसका जीवन व्यर्थ है। प्रत्येक व्यक्ति को स्वाभिमान का महत्व जानना बहुत आवश्यक होता है। यह उनकी भलाई के लिए है। जब तक वह अपने मूल्यों को नहीं पहचानता तब तक कोई उसका सम्मान नहीं करता। स्वाभिमान उसे दुनिया में खास बनाता है। वह जानता है कि स्वाभिमान सिर उठाने के लिए प्रेरणा देता है, स्वाभिमान सफल बनाता है, स्वाभिमान पहचान देता है, आत्मसम्मान को ऊंचा रखता है। आप कौन हैं इसके बारे में जानना और अच्छा महसूस करने से ही हमें आत्मसम्मान मिलता है। स्वाभिमानी व्यक्ति दूसरों की दासता या कृपा को स्वीकार नहीं करता। यह उसे मेहनती और दृढ़ निश्चयी बनाता है। इससे मिलकर काम करने से लोगों को तरक्की और विश्वास मिलता है।
1: आप सुन रहे थे चिंतन, आलेख और स्वर स्मृति मिश्रा का था। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। अब प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस का गायन।

अपने मन में उपजे मोह की कथा सुनाते हुए काकभुशुंडी भगवान राम के बाल रूप की अद्भुत छवि का वर्णन कर रहे हैं। कैसा है ये मनोहारी रूप, लाल लाल हथेलियां मानो कमल की रक्ताभ पंखुड़ियां हों, भुजाओं पर रत्नजटित आभूषण, सिंह शावक की भांति कंधे, शंख के समान तीन रेखाओं वाली ग्रीवा, लाल अधरों के पीछे ऊपर नीचे दो दो दंतलियां, सुंदर गाल और चंद्र किरणों की भांति शीतलता प्रदान करने वाली मधुर मुस्कान। शिशु रूपधारी श्रीराम आंगन में अपनी परछाई देखकर नर्तन करते हैं। कभी कौवे को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागते हैं और उसके फुदक कर भाग जाने पर ललचाने के लिए उसे पुआ पकवान दिखाते हैं। सच्चिदानंद भगवान की ये लीला देख काकभुशुंडी के मन में सहज ही कौतूहल होता है कि प्रभु ये कैसी लीला कर रहे हैं, और मन में ये शंका आते ही उन पर प्रभु प्रेरित माया आच्छादित हो जाती है।

0: आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस का गायन। स्वर अनुराधा पौडवाल का था, संगीत संयोजक थे सतीश भाटिया। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। अब सुनिए कृषि समय की बेड़ा खाड़ा चोगोट।
1: काश्तकार दादा दीदी मन बीहा काजी आए बल्ले लागे से हरदी, साग काजी आए बल्ले लागे से हरदी, और रोग राई घाव दाव के मरलातो काजी बल्ले लागे से हरदी। असन गुणकारी हरदी के घेनुन आन तो पलटा, रूपुन रलो ने घरे बले काम दे दे, और बिकुन भाती आमी नगद पैसा बले कमाओ सकूं दे। तो आजी जाना ये हरदी चो किसिम आरु रोप तो मंडा तो वाट की। हरदी कमानी कर तो काजे माटी पलट तो नांगर ने नगद दुहार बेड़ा भूई मरान जे थाने तुम्हें हरदी मंडा तो वाट करला सास उनके जो तुम दे तो राय। इचे संगे संगे हमी जसन दिसी नागरा से हुन थाने खर एक अच्छा जोतुन भाती माटी के भुरभुरा बनान देतो राय। गोबर जो नगद सरलू खत के माटी ने मिसाउन कियारी बनातो राय। हरदी मंडा तो काजे नगद छुकछुका आरु ठोसर हरदी मन के बासतो राय। दादा दीदी मन हरदी गठने दुई ठान गाजा फुटलो असन आरु एचो वजन 25 ग्राम होतो रासे। हरदी बिचा मंडा तो पहिल कार्बेंडा जीम नहले ट्राइकोडर्मा नावचो ओखद ने उपचार करून मंडातो राय। हरदी कमातो काजे नगत किसी मन ने कृष्णा सगुन सुदर्शन स्वर्णा आरु सुगंधा नगत रहे से। हरदी मंडातो काजे बूटा ले बूटा चो दूरिया एक ले डेढ़ फीता संगातो राय। हामी हरदी के बीढ़ा मरान बनवाड़ी चो भूई ने अरु पारी मन ने वाले मंडाउकलाय सकू। हरदी भूई ले नगत बलबहू मन के झिकु आए। तो हुनिका जे गोबर खत नहले कंपोस्ट खत 300 किलो बुनतो मंडातो पहिल माटी ने नगद मिसाउन जोतुन देतो राय। असने 130 किलो यूरिया 313 किलो सिंगल सुपर फास्फेट 180 किलो म्यूरेट ऑफ पोटास देतो राय। हरदी कमानी ने बले लाटा बुटा झपके झपाई हुआ है। एके समया दखुन दखुन निजानी करते रहतो राय। दादा दीदी मन जाकलो बूटा मन ने माटी बले चेगाते जातो राय। हरदी खोड़तो काजे बले निको ख्याल करतो गोठा से। तो जसन हरदी के समया ले आगे नी खोड़तो राय। पाना सुखुन मरलो असन होले जानतो राय कि हरदी पाकुन तैयार होली। असन तो हरदी के पाकतो काजे 9 ले 10 महीना चो समया लागे से। खोड़तो वेरा लेख करतो राय कि कांदा के गेंजू नी हो। कांदा गेंजी होलो ने उनचो भाव बले अच्छा नी जाए और कांदा बले सड़े से। काश्तकार भाई बहन मन बीचा चो भंडारण करतो बुता बले मसागत चो बुता होए से। असने हरदी चो बीचा भंडारण काजे खनुन भारी हरदी के नगद छाए ने सुकाउन माटी आरु कांदा ले लटकलो कचरा के साफ सफाई करतो राय। बीचा कांदा के 3 ग्राम बाविस्टिन नहले इमिडा क्लोप्रिड नाचो ओखत के घोल बनाउन उपचार करून फिर छाए सुखाउन भाती संगातो राय। हरदी बीचा संगातो काजे भूए 3 हाथ ओसार 6 हाथ लम आरु 1.5-2 भीता घड़िया खोदरा खोड़तो राय। खोदरानी खाली तल ने 4 ले 5 इंच तक बारू डारून देतो राय आरु नगत ओछालो असन बनान देतो राय। हुंचो उपरे हरदी संगाउन भाती ऊपर ले फिर बारू के पाटून बले देतो राय। खोदरा भरलो ने माटी ले पाटून भाती ऊपर

0: रेके घुबरने सरौनबले देतो राय असन करून सांगालोने तुम्ही हर्दी बिचाके नंगत सगाऊ सकासे। दादा दीदी मन असन उवाटने हर्दी कमानी करलोने तुम्ही अधिक उपजन संगे संगे नंगत लाभ बले धरुकला सकासे।
1: अभी बेड़ा खाड़ा चौगोट का प्रसारण किया जा रहा था।
2: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
3: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
2: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
3: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
2: डायल कीजिए 8700014242।
3: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
1: ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 6:40 हुए हैं। अब सुनिए बस्तर के लोक वाद्य धुन का कार्यक्रम हुलहुली। इसमें आज हम आपको सुनवा रहे हैं पाकलू और साथियों का बजाया डोकरा देव पहाड़।

0: ने का ये जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 6:50 हुए हैं। अब सुनिए हमारे केंद्र से आज रिले और प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। आज सुबह 8:30 पर कार्यक्रम इनसे मिलिए हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे। सुबह 6:05 पर सुबह 7:05 पर नमस्कार जगदलपुर कार्यक्रम में आज के आकर्षण। आज के अतिथि कार्यक्रम में सुनिएगा रुद्र नारायण सिंह पानीग्राही श्री नारायण सिंह बघेल द्वारा ली गई भेंट वार्ता, साथ ही होगी मधुर गीतों की मधुरिमा। सुबह 9:00 होगा प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी एक ही फिल्म से। इस कार्यक्रम में आज सुबह 9:30 पर हम आपको सुनवाएंगे फिल्म मिस्टर इंडिया के गीत। सुबह 10:00 गुलशन में सुनिए कार्यक्रम मेरी पसंद, इसमें आप सुनते हैं उद्घोषक की पसंद के फिल्मी गीत। बस्तर के लोकगीतों का कार्यक्रम गुड़दुम प्रसारित होगा सुबह 10:30 पर। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे बल्लूराम और साथियों के गाए हल्बी गीत, एक ही कलाकार। ये कार्यक्रम आज केंद्रित होगा मशहूर फिल्म अभिनेत्री दीप्ति नवल पर। प्रसारण समय दिन के 11:00। 11:30 पर रूस रूसा में हम आपको सुनवाएंगे लोक गाथा मैना मती रानी का छठा भाग, गायिका होंगी कचराबाई और साथी। दिन के 12:00 होगा कार्यक्रम मोचो माटी। लोक साहित्य पत्रिका के इस कार्यक्रम में दिन के 12:00 आज सुनिए अर्जुन सिंह बघेल का कविता पाठ। गोंडी कहानी प्रस्तुत करेंगे अम्लू सलाम और ठसा का संचालन करेंगे मिनेश कुमार। कार्यक्रम का संपादन बलवीर सिंह कच्छ का होगा। 12:30 पर प्रस्तुत करेंगे ग्रामीण महिलाओं का अपना कार्यक्रम घर द्वार। दिन के 1:05 पर सुनिए कृषि सामयिकी बेड़ा खाड़ा चौगोट का पुनर्प्रसारण। दोपहर 1:10 पर प्रतिदिन हम लेकर आते हैं फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम श्रोता सुमन कला और कलाकार। ये कार्यक्रम आप सुनते हैं रोजाना दोपहर 2:30 पर। शाम 5:00 हमारी सांध्यकालीन सभा आरंभ होती है। इसमें 5:05 पर आज सुनिए समसामयिक विषय पर आधारित कार्यक्रम भारत सरकार आपके द्वार। युवाणी कार्यक्रम का प्रसारण समय होता है शाम 5:10 पर। शाम 6:35 पर प्रसारित करेंगे गोविंद राम और साथियों के गाए गोंडी गीत। बस्तर के स्वर शाम 7:00 और शाम 7:20 पर होगा कार्यक्रम आमचो गांव। वेदवती और साथियों के गाए भत्री गीत हम आपको सुनवाएंगे घलर कार्यक्रम में रात 8:00। 8:30 पर पिलामन काजी गोट कार्यक्रम में लाला लाजपत राय पर जानकारी प्रस्तुत करेंगे सुब्लू राम कश्यप। रात 9:15 पर नंजर कार्यक्रम में होगा मंधर राम नाग से बोहरानी परंपरा पर बलवीर सिंह कच्छ की बातचीत। हल्बी खेल पत्रिका कार्यक्रम में नैना सिंह धाकड़ से भेंट करेंगी पूर्णिमा सरोज। प्रसारण होगा रात 9:30 पर। और रात 10:00 प्रस्तुत करेंगे फरमाइशी लोकगीतों का फोन इन कार्यक्रम लोकरस। प्रस्तुति होगी डमरू राम मंडावी की। कार्यक्रम का संयोजन चंद्र ऋषि ठाकुर का होगा। श्रोताओं हम आपको एक बार फिर याद दिला दें आज सुबह 9:30 पर एक ही फिल्म से कार्यक्रम में आप सुनेंगे फिल्म मिस्टर इंडिया के गीत। दिन के 11:00 एक ही कलाकार कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे मशहूर अभिनेत्री दीप्ति नवल पर कार्यक्रम। ये थी हमारे केंद्र से आज रिले और प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 6:55 होने वाले हैं। समाचार अब हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।
1: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका रचा झा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि देश का सरकारी अनाज भंडार 604 लाख टन से अधिक हो गया है। ये मात्रा बफर स्टॉक यानी अनिवार्यता के समय की आवश्यक मात्रा से लगभग तीन गुना अधिक है। श्री जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि गेहूं और चावल के सुरक्षित भंडार से देश में कल्याणकारी योजनाओं तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित हो रही है। अधिक खरीद, अच्छी फसल और किसानों की पर्याप्त सहायता से खाद्य सुरक्षा, किसानों का हित तथा सुरक्षित भविष्य के लिए देश की प्रतिबद्धता मजबूत हो रही है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के अंतर्गत प्रशिक्षण महानिदेशालय आज कानपुर स्थित राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान में उद्योग परामर्श बैठक आयोजित कर रहा है। इसमें 30 से अधिक उद्योग प्रमुख, मुख्य कार्यकारी अधिकारी और नीति विशेषज्ञ राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना के बारे में विचार विमर्श करेंगे। इंडिया एआई और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने स्वास्थ्य सेवा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को तेजी से अपनाने के लिए नई दिल्ली में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा कि ये साझेदारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जिम्मेदार और व्यापक अनुप्रयोग के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में वाणिज्य विभाग और उद्योग तथा आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि बैठक में निर्यात और निवेश बढ़ाने, नए निर्यातकों के लिए अवसर तैयार करने और वैश्विक बाजारों में नई संभावनाएं तलाशने पर चर्चा हुई। पश्चिम बंगाल में नई सरकार के गठन की तैयारियों के बीच विधानसभा को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया है। राज्यपाल आरएन रवि ने संविधान के अनुच्छेद 174 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए मौजूदा विधानसभा को भंग करने का आदेश जारी किया। इस बीच गृहमंत्री अमित शाह आज कोलकाता जाएंगे। वे नवनिर्वाचित भाजपा विधायकों के साथ बैठक में शामिल होंगे, जिसके बाद पार्टी के विधायक दल के नेता का चयन किया जाएगा। उधर असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार 12 मई को लगातार तीसरी बार शपथ ग्रहण करेगी। समारोह की तैयारियों के लिए गुवाहाटी में एक उच्चस्तरीय बैठक हुई। प्रदेश पार्टी अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि भाजपा विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी तमिलगा वित्री कड़गम पार्टी का सरकार गठन के लिए बहुमत सिद्ध करने के मुद्दे पर गतिरोध बना हुआ है। 234 सदस्यों वाली विधानसभा में बहुमत के लिए 118 विधायकों की आवश्यकता है। विधानसभा चुनाव में अभिनेता विजय की टीवी के पार्टी ने 108 सीटें जीती हैं। केरलम में कांग्रेस हाईकमान नई दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी पर्यवेक्षकों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों पर विचार करने के बाद नए मुख्यमंत्री के चयन पर निर्णय की घोषणा करेगी। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कल अबुधाबी में भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के बीच हुई त्रिपक्षीय बैठक में भाग लिया। बैठक में संयुक्त अरब अमीरात के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग राज्य मंत्री रीम अल हाशमी और फ्रांस के विदेश कार्य महासचिव मार्टिन ब्रायंस शामिल हुए। विदेश मंत्रालय ने बताया कि तीनों देशों ने स्पष्ट समय सीमा में भागीदारी मजबूत करने की कार्य योजना पर सहमति व्यक्त की। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लैम ने कहा है कि बदलती वैश्विक व्यवस्था में भारत और वियतनाम के पास वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का अवसर है। मुंबई में भारत वियतनाम व्यापार मंच को संबोधित करते हुए श्री लैम ने कहा कि पहले भी दोनों देशों ने आपसी सहयोग में कई चुनौतियों का सामना किया है। उन्होंने भारतीय कंपनियों को वियतनाम में निवेश के लिए आमंत्रित किया। सऊदी अरब ने अपने सैन्य ठिकानों और वायु क्षेत्र तक अमरीकी सेना की पहुंच रोक दी है। इससे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हॉर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों पर निगरानी रखने की अपनी योजना छोड़ने को बाध्य होना पड़ा है। दो अमरीकी अधिकारियों ने इस खबर की पुष्टि की है। आकाशवाणी की स्थापना की 90वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आज सुबह राजधानी दिल्ली में मैराथन का आयोजन किया गया है। लगभग 3.5 किलोमीटर की ये दौड़ आकाशवाणी भवन से शुरू होकर कृषि भवन, रेल भवन और रिजर्व बैंक भवन होते हुए आकाशवाणी भवन में संपन्न होगी। आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 9 रन से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। दिल्ली में यह मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 7:05 हुए हैं। पेश है कार्यक्रम नमस्कार जगदलपुर।

भारत की धरती भारत के आकाश का अभिनंदन है, हो जन्म मेरा हर बार यहीं, इसके कण कण को वंदन है। देश की पवित्र धरती को नमन करते हुए आरंभ करते हैं आज के नमस्कार जगदलपुर का। आज इसमें है आज के अतिथि और मधुरिमा, मैं हूं रानू। नमस्कार श्रोताओं।

श्रोताओ, देशभक्ति सर्वोपरि है। देश की मिट्टी माथे के चंदन से भी बढ़कर है, जिसे शिरोधार्य करने पर आनंद युक्त गर्व का आभास होता है। इतिहास गवाह है, इस देश पर मिटने वाले हमारे वीर सपूतों ने अपनी जान पर खेलकर हमें आजाद भारत दिया। बरसों तक अंग्रेजों की गुलामी के बाद भारतीय देशभक्तों के दिलों में स्वतंत्रता की चिंगारी जली और उन्होंने अंग्रेजों का विरोध करना आरंभ कर दिया। इनमें सबसे पहले जिस वीर योद्धा का नाम आता है वो है दिलेर और साहसी मंगल पांडे का। सन 1857 को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के महानायक मंगल पांडे की पुण्यतिथि हर वर्ष 8 अप्रैल को मनाई जाती है। सन 1857 को पश्चिम बंगाल स्थित बैरकपुर में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ बगावत करने और उन पर हमला करने के आरोप में मंगल पांडे को गिरफ्तार किया गया था। सबसे पहले उन्होंने ही चर्बी वाले कारतूस का उपयोग करने से इनकार किया था। ये कारतूस सुअर की चर्बी और गाय के मांस से बनती थी, जिसे मुख से खोलना पड़ता था। यहीं से ब्रिटिश सरकार के खिलाफ मंगल पांडे के मन में क्रोध की चिंगारी जली। उसके बाद तत्कालीन रेजिमेंट अफसर बाग द्वारा जोर जबरदस्ती किए जाने पर मंगल पांडे ने उस अफसर पर हमला कर दिया था। ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ किसी भी भारतीय सैनिक का ये पहला विरोध था। इस घटना के बाद मंगल पांडे पर धार्मिक उन्माद का आरोप लगा और उनकी गिरफ्तारी का आदेश जारी हो गया। लेकिन उन्हें गिरफ्तार करने सभी ने इनकार कर दिया। उनकी गिरफ्तारी के लिए इनकार करने के बाद मंगल पांडे ने हुंकार भरी, मारो फिरंगियों को। उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ पहली बार हथियार उठा लिया और सार्जेंट मेजर ह्यूजन को गोली मार दी। अपनी गिरफ्तारी से पहले ही मंगल पांडे ने खुद को गोली मार ली, लेकिन इससे वे केवल घायल हुए। उन पर कोर्ट मार्शल हुआ और फिर उन्हें फांसी की सजा सुना दी गई। इस निर्णय से ब्रिटिश सरकार को बगावत का डर था, इसलिए उन्हें 10 दिन पहले ही फांसी दे दी गई। स्वतंत्रता संग्राम के इस अग्रणी योद्धा ने जाते जाते समूचे भारतीय देशभक्तों को जगा दिया। यही वो चिंगारी थी जो मशाल बनी और फिर इसी मशाल ने स्वतंत्रता संग्राम की ज्वाला का रूप ले लिया, जिसके फलस्वरूप अंग्रेजी हुकूमत को भारत छोड़कर भागना पड़ा। मंगल पांडे की शहादत पर हम उन्हें कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। यदि उन्होंने अलख नहीं जगाया होता तो शायद आज भी हम गुलाम होते। मंगल पांडे के शौर्य, उनके पराक्रम और उनके बलिदान की गाथा देश युगों तक गाएगा।

जी हाँ, आज मंगल पांडे के शहादत दिवस को भले ही एक महीने पूरे हो चुके हैं, लेकिन ऐसे वीर योद्धाओं को याद करने की जरूरत हर दिन है, ताकि उनके बलिदान को हम भूल न पाएं। मंगल पांडे द राइजिंग फिल्म का गीत आप सुन रहे थे कैलाश खेर के स्वर में। आप सुन रहे हैं नमस्कार जगदलपुर।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: जाए निखार।
1: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
2: जीएसटी काउंसिल ने टैक्स को और भी सरल बना दिया है। सरकार ने सीमेंट पर जीएसटी की दर 28% से घटाकर 18% कर दिया है। टैक्स में कमी से आवासीय और व्यावसायिक प्रोजेक्ट पर लागत का दबाव कम होने की संभावना है। इसी तरह संगमरमर और ट्रावर्टीन ब्लॉकों पर टैक्स की दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है, जबकि ग्रेनाइट ब्लॉकों पर भी पहले के 12% की तुलना में अब केवल 5% जीएसटी लगेगा। इसके साथ ही रेत चूने की ईंटों और पत्थर की जड़ाई के काम पर भी कर की दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है।
3: इन संदेशों के बाद नमस्कार। जगदलपुर में अब बारी है क्रम आज के अतिथि की।

0: आज इसमें सुनी रुद्र नारायण पाणिग्राही से नारायण सिंह बघेल द्वारा ली गई भेंट वार्ता। आइए सुनते हैं ये भेंट वार्ता।
1: आज की अतिथि कार्यक्रम में एक बार फिर हम सभी श्रोताओं का स्वागत कर रहे हैं और हम स्वागत कर रहे हैं हमारे आज के अतिथि श्री रुद्र नारायण पाणिग्राही का। तो रुद्र नारायण जी, आपका स्टूडियो में स्वागत है।
2: नमस्कार।
1: और इसके पश्चात हम बातचीत का सिलसिला आरंभ करें, इससे पहले हम आपका परिचय जानना चाहेंगे। आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ पे हुई और आप किस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, हमारे श्रोताओं को बताएं।
2: मैं तो ऐसे मूलतः बस्तर जिले का ही हूँ और मेरी प्रारंभिक शिक्षा बस्तर जिले के नाम से प्रसिद्ध बस्तर ग्राम में ही शिक्षा हुई है, प्राइमरी और मिडिल स्कूल और हाई स्कूल की शिक्षा। उसके बाद मैं नौकरी के सिलसिले से जब जगदलपुर आया तो यहाँ स्नातक की शिक्षा प्राप्त किया और उसके पश्चात मेरी नौकरी फिर पशु चिकित्सा विभाग में मैंने प्रारंभ की और मैं वर्तमान में सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी के रूप में जगदलपुर में ही पदस्थ हूँ।
1: मतलब आप पूरी तरह से बस्तरिया हैं।
2: जी हाँ।
1: तो चलिए, बहुत अच्छी बात है। बस्तर की बात हम अक्सर इस कार्यक्रम में करते ही हैं। और देखिए, आपका परिचय हुआ, इसके बाद हम जानना चाहेंगे आप पशु चिकित्सा अधिकारी के रूप में हैं
2: जी,
1: और बताएं वहाँ का जो कार्य क्षेत्र है वो किस तरह का है, किस तरह का कार्य करना पड़ता है वहाँ पे।
2: पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारियों की वैसे पोस्टिंग जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में होती है। वहाँ हमें पशु चिकित्सालयों का जो संस्थाएं होती हैं पशु चिकित्सा से संबंधित, उसके हम प्रभारी होते हैं। तो वहाँ जितने भी ग्रामीण क्षेत्रों से पशु लाए जाते हैं उनके उपचार का, उनके टीकाकरण का, उनके स्वास्थ्य की देखरेख की जिम्मेदारी और मूलतः जो मेरी खास रुचि है कृत्रिम गर्भाधान से संबंधित, उस सेक्शन को भी हम लोग संभालते हैं।
1: और यही कारण है कि यहाँ आजकल बस्तर में पहले जो देशी नस्ल की गायें हुआ करती थी,
2: जी हाँ,
1: अब दूसरी जो उन्नत नस्लें हैं
2: जी हाँ
1: वो भी बहुत ज्यादा
2: हैं। इसके लिए विशेष तरह कार्य किए जा रहे हैं कि जो यहाँ उपलब्ध देशी पशुएं हैं उनमें हम कृत्रिम गर्भाधान की जो तकनीक है उससे हम उनके मनचाहे नस्ल हम उनके घर पे उत्पन्न कर सकते हैं, चाहे वो जर्सी हो, रेड डेन हो, साहिवाल हो या भारतीय कोई देशी नस्ल का अगर वो बच्चा लेना चाहते हैं तो वो सारी सुविधाएं उपलब्ध है। हर तरह की नस्ल हम लोगों को दे सकते हैं और नस्ल सुधार पे ही विशेषकर हम कार्य कर रहे हैं।
1: और यही कारण है कि आज हम गांव में भी देख रहे हैं, गांव में दूध की जो खपत है और दूध की जो सप्लाई है वो बढ़ रही है और जो आम जन हैं, जो बस्तर के लोग हैं, उन्हें भी इस काम में वो सिर्फ पहले जो बैल पाला करते थे अब गायें भी पालने लगे हैं और दूध का उत्पादन भी हो रहा है और उन्हें लाभ हो रहा है। तो चलिए, इस बात को हम यहीं छोड़कर और दूसरे विषयों पर आते हैं और आपकी रुचियों पर आते हैं। आपकी रुचियां किन किन क्षेत्रों में हैं, किस किस चीज़ में आपकी रुचि है?
2: मेरी रुचि तो अगर मैं अपने शासकीय सेवा को छोड़ दूं तो दूसरी रुचि जो है मेरी वो रंगमंच को लेकर है। रंगमंच में अभिनय का, निर्देशन का, नाट्य लेखन का और इसके साथ साथ रंगमंच में निर्देशन का जो काम है वो है। बाकी मैं चूंकि मूलतः बस्तर का हूँ इसलिए लोक साहित्य पे भी मेरी रुचि है, तो समय समय पे विभिन्न पत्र पत्रिकाओं पे मैं अपने लोक साहित्य को उकेरता रहता हूँ।
1: तो और देखिए, अगर हम बात करें रंगमंच की तो बहुत सारी विधाएं जुड़कर रंगमंच की में सबके सामने आती हैं। तो हम जानना चाहेंगे, रंगमंच एक पूरा एक विस्तृत क्षेत्र है जहाँ अभिनय भी होता है और इसके अलावा इसके पहले लेखन होता है, अभिनय होता है, निर्देशन होता है, सज्जाएं होती है और बहुत सारी चीज़ें हैं
2: जी।
1: तो इनमें खासकर आप किस क्षेत्र से जुड़े हैं, किस किस क्षेत्र में आपकी सबसे ज़्यादा रुचि है?
2: देखिए, मैं तो जब बचपन से नाटक करता था तो उस समय मुझे अभिनय ज़्यादा रुचिकर लगता था और अब अगर आप मंच के बारे में अगर रुचिकर मामला जब सामने आता है तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुझे अभिनय के बजाय निर्देशन में ज्यादा रुचि है। वो इसलिए कि शायद मैं ये कहना चाहूंगा कि अभिनय जब करता है कोई कलाकार तो वो किसी एक पात्र को जीता है, लेकिन जब निर्देशन की बात आती है तो विषय वस्तु को ध्यान रखते हुए सारे कलाकारों को एक साथ जीता है। तो ये विधा काफी कठिन है, अभिनय की अपेक्षा में मेरा मानना है कि निर्देशन काफी कठिन है, लेकिन मेरी रुचि निर्देशन में है और बहुत सारे नाटकों के मैंने नाटकों का निर्देशन किया है। रंगमंची कार्यक्रमों के अलावा नुक्कड़ नाटकों को लेकर भी मैंने निर्देशन किया है, अभिनय भी किया है, और यही नहीं साथ साथ रंगमंच को जोड़कर अगर देखें तो नाट्य लेखन की भी समय समय पर आवश्यकता पड़ती रही है, क्योंकि जब हम स्थानीय क्षेत्रीय बोली भाषा में नाटक करना चाहते हैं तो उस वक्त लेखकों का मिलना मुश्किल होता है। लोक शैली पे अगर नाटक करें तो उसके लिए क्या करते हैं कि हम या तो खुद नाटकों की रचना करते हैं, खुद नाटक लिखते हैं और खुद ही उसका मंचन करते हैं, निर्देशन करते हैं, जबकि हिंदी रंगमंच के साथ ऐसा नहीं। बहुत सारे राष्ट्रीय स्तर के लेखक हुए हैं, उनके नाटकों को लेकर यदा कदा हम नाटक करते तो उसमें राइटर की आवश्यकता उतनी कमी महसूस नहीं होती, लेकिन क्षेत्रीय बोली
1: क्षेत्रीय स्तर पर जब हम काम करते हैं
2: में लेखकों की कमी तो है, महसूस की जा रही है।
1: निर्देशन की बात की आपने, तो निर्देशन में देखिए आपने कहा कि सभी पात्रों को जीना पड़ता है, न सिर्फ पात्रों को जीना पड़ता है बल्कि उसके अलावा भी जो बैकग्राउंड म्यूजिक है या फिर बहुत सारी चीजें और होती हैं।
2: हम इसको दो तरह से देखते हैं कि जब हम नाटक के बारे में कहते हैं तो मंच पर और मंच पर
1: मंच पर
2: जो मंच में आपको दिखाई देता है वो मंच है, मगर उससे कहीं अधिक मेहनत करनी होती है मंच के परे। तो मंच परे में जिन लोगों ने नाटकों के लिए संगीत दिया है या रूप सज्जा की बात है, वेशभूषा की बात है, ये सारे कलाकार जो मंच के सामने नहीं आते मंच के पीछे करते हैं,
1: प्रॉप्स की बात है
2: मंच उपस्कर की बात है। तो इसमें भी मेरी रुचि रही है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि रंगमंच के सारे विधाओं को मैं आत्मसात करना चाहता हूँ, मैं ऐसे कोई भी क्षेत्र नहीं छोड़ना चाहता कि वो काम ना करें, क्योंकि एक व्यक्ति को पूरा रंगमंच में घुल जाना चाहिए। तो वो सारी विधाओं को मैं करने की कोशिश करता हूँ और मैंने किया भी है कई बार, जैसे खासकर मंच परे की एक विधा है रूप सज्जा की मेकअप की। जगदलपुर या हमारे जिले में एक बात देखने को ये आता है कि निर्देशन के लिए बहुत सारे निर्देशक हैं, कलाकार भी हैं, मगर मंच परे की जो रूप सज्जा की बात आती है तो ऐसे कलाकार हमको नहीं मिलते। वो भी एक कला के क्षेत्र में उसको हम देखते हैं कि वो भी एक कलाकार होता है
1: बहुत महत्वपूर्ण कलाकार होता है, और रूप सज्जा की जहां तक बात है बहुत ये अहम बात है मंच के लिए।
2: जी जी, तो ऐसे समय में रूप सज्जा के लिए हमारे जगदलपुर में गिने चुने दो कलाकार ही हैं जो दूरदर्शन के लिए या मंच के लिए उपलब्ध हैं, और उसमें भी मेरी रुचि रही है।
1: तो रुद्रनारायण पाणिग्राही जी, देखिए रंगमंच की बात हम कर रहे हैं, अभिनय की बात कर रहे हैं, निर्देशन की बात कर रहे हैं, तो हम आपसे जरूर ये जानना चाहेंगे कि आपने कितने नाटकों में आपने अभी तक भाग लिया है।
2: ये प्रश्न तो काफी कठिन है। मुझे याद आ रहा है कि लगभग मैंने जो स्कूली जमाने में जो स्टेज में जो नाटक किया उसको अगर मैं छोड़ दूं तो लगभग 50-55-60 के आसपास मैंने अभी तक नाटकों में अभिनय किया है, और कम से कम 12 या 13 नाटकों में मैंने निर्देशन किया है।
1: इसके अलावा दूरदर्शन और आकाशवाणी से भी जुड़े रहे आप, तो दूरदर्शन में भी काम किया है आपने?
2: दूरदर्शन में भी कई एपिसोड आ चुके हैं, दिल्ली दूरदर्शन से भी, भोपाल दूरदर्शन, रायपुर दूरदर्शन से, और स्थानीय जगदलपुर दूरदर्शन से भी बहुत सारे नाटक।
1: इसके अलावा आकाशवाणी जो एक महत्वपूर्ण बस्तर का जो एक महत्वपूर्ण अंग है बस्तर का प्रसारण के क्षेत्र में, तो उससे भी आप जुड़े रहे, हल्बी नाटकों में और हिंदी नाटकों में।
2: हल्बी के नाटक तो मेरा ख्याल है जहां तक कि मैं 1978 से आपके आकाशवाणी में नाट्य लेखन का कार्य करते आ रहा हूं, और लोक बोली हल्बी में भी मैंने कई व्यंग रचनाएं और नाटक लिखे हैं, और तब से अनवरत अभी तक मैं आकाशवाणी।
1: कुछ याद आ रहा है आपको कोई ऐसा लेखन जो आपको महत्वपूर्ण लगता हो, जो हमारे श्रोताओं के मन में बस गया हो, कोई सीरियल ऐसा?
2: नाटक के जो एपिसोड चलते थे उस समय, जो स्तरीय कार्यक्रम होते थे, धारावाहिक जो चलते
1: धारावाहिक
2: थे, जैसे आपका भकुआ के कुटुंब, भकुआ
1: चुकुटुंब,
2: कोड़ेबांगा, इस तरह के जो सीरियल कई एपिसोड जो चलते थे, तो उसे श्रोता काफी लंबे समय

0: तक इंतजार करते थे कि अब आज आने वाला है, और उसको बड़े ध्यान से सुनते थे। एक समय क्रेज था रेडियो का, और जिसके घर में अगर रेडियो होता है तो उसको गांव वाले ये कहते हैं ये संपन्न व्यक्ति है। इतना क्रेज आज भी है,
1: आज भी हालांकि रेडियो की जहां तक बात है रुद्रनारायण जी, देखिये इसमें अगर हम याद करें पिछले दिनों को और जब शुरुआती दिनों को, आकाशवाणी जगदलपुर जब शुरू हुआ था, तो उन दिनों की अगर बात करें तो हम याद करना चाहेंगे स्वर्गीय श्री गणेश प्रसाद पाणिग्राही को
0: जी,
1: जो आपके पिताश्री रहे हैं
0: जी,
1: और उनका भी बहुत योगदान रहा है आकाशवाणी के लिए, न सिर्फ हल्बी कार्यक्रमों के लिए बल्कि हल्बी नाटकों में भी उन्होंने बहुत अभिनय किया था, तो उनके बारे में थोड़ा सा बताएं हमारे श्रोताओं को।
0: यही कारण है कि मुझे जो विरासत में आज रंगमंच कलाकार के रूप में जो लोग देख रहे हैं, विरासत में मुझे पिताजी से ही मिला है, और आज मैं रंगमंच में
1: जो भी
0: कहूं कि उन्हीं की देन है। जब आमचो गांव शुरू हुआ था तो काफी लोकप्रिय कार्यक्रम हुआ करते थे, ग्रामीण अंचलों के लोग जो है वो शाम होते ही अपने आंगन में रेडियो लेके अधिक संख्या में एक साथ झुंड में बैठ जाते थे आमचो गांव सुनने के लिए। तो उस समय पाकलू दादा के नाम से ये काफी फेमस थे, और स्तरीय कार्यक्रम होता था, बड़े रुचि से लोग सुनते थे। तो पाकलू दादा के नाम से काफी फेमस थे। उसके बाद उन्होंने नाटकों में भी भाग लिया, कई नाटक भी लिखे, और उनके अनुसरण करते करते मैं आज मैं भी उनकी बदौलत जो है एक तो नाटक और रंगमंच पे।
1: बिल्कुल, और न सिर्फ है बल्कि आपका अभिनय भी लोगों को भाता है और सराहते हैं बिल्कुल, और जब लोग आपके अभिनय की तारीफ करते हैं और तब कैसा लगता है आपको, कैसा महसूस करते हैं आप?
0: तब अपने आप को मैं ये महसूस करता हूं कि अगर मेरे अभिनय को अगर किसी ने सराहा है तो बेशक उसको मेरा अभिनय पसंद आया है। और इसमें देखिए एक चीज कि मेरे अकेले अभिनय को कोई सराहे ये बात बेमानी लगती है। जब हम सामूहिक रूप से कोई कर्म करते हैं तो उस व्यक्ति को जरूर वो पूरा नाटक पसंद आया होगा, और जब उन सामूहिक कर्म के बाद किसी एक व्यक्ति विशेष को यदि वो सराहता है तो जरूर उसमें कोई ना कोई वो खासियत देखता होगा, उसको
1: अलग सी बात लगती होगी।
0: जी हाँ।
1: तो आप कोई ऐसी उपलब्धि आपको मिली हो या फिर पूरी टीम को?
0: देखिए नारायण जी, उपलब्धियां तो बहुत है मगर हम उसको गिनाना नहीं चाहते। मगर हमारी खासकर उपलब्धि ये है कि बस्तर जैसे पिछड़े आदिवासी अंचल में जब हम रंगकर्म को लेके गतिविधि बनाए हुए हैं, और स्थानीय रंगमंच की बात तो छोड़िए, जब हम अखिल भारतीय स्तर पर जब हम अपनी काबिलियत को प्रदर्शित करते हैं और तब हमें कई पुरस्कार और अवार्ड से नवाजे जाते हैं, अखिल भारतीय स्तर पर हमें जब पुरस्कृत किया जाता है, तब हम ये समझते हैं कि हमारे जगदलपुर जैसे बस्तर अंचल के कलाकार अखिल भारतीय स्तर पर जब पुरस्कृत किया जाते हैं तो ये हमारे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है। क्योंकि कोई तो बात होगी जब सारे देश के कलाकार वहाँ जुटते हैं और उसमें से बस्तर क्षेत्र के नाटकों को पसंद किया जाता है, तो कोई ना कोई खासियत तो है। ये हमारे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि।
1: बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हम बस्तर क्षेत्र में रहते हैं जिसे लोग, जिनका नाम भी कई लोगों ने सुना नहीं होगा, तो ऐसे क्षेत्र से हम जाकर वहाँ पे प्रदर्शन करते हैं और हम कामयाब होकर लौटते हैं, वहाँ से कई नाम मिलते हैं, कई पुरस्कार मिलते हैं। तो रुद्रनारायण जी, देखिए बातें तो बहुत हैं, रंगमंच की बात करें तो बातें कभी ख़त्म नहीं होंगी, लेकिन यहाँ थोड़ा सा हम ब्रेक लेंगे और मैं जानना चाहूँगा, यहाँ पे हमारी एक परंपरा भी रही है आज के अतिथि कार्यक्रम में कि हम श्रोताओं के गीत सुनाते हैं बीच में, तो आपकी भी पसंद का कोई गीत ऐसा याद आ रहा है जिसे आप हमारे श्रोताओं को सुनवाना चाहेंगे?
0: चलिए, जब आपने श्रोताओं को सुनाने की बात की तो मैं अपना एक मनपसंद गाना फिल्म मेरा नाम जोकर जिसमें राज कपूर ने अभिनय किया है, और मैं राज कपूर जी से काफ़ी प्रभावित हूँ, और चूंकि मैं रंगमंची कलाकार हूँ तो इस गाने में जरूर आपको कहीं ना कहीं मंच के संबंध में आपको
1: बातें सुनने को मिलेंगी।
0: हाँ, तो मन्ना डी जी की गाया हुआ एक गीत है, ए भाई जरा देख के चलो। गीतकार उसके नीरज जी हैं और संगीत शंकर जय किशन जी का है। आप अगर वो गाना सुना दें तो काफी मेहरबानी।
1: बिल्कुल बिल्कुल, आपकी फरमाइश और हमारे श्रोताओं के लिए ये गाना हम बिल्कुल सुना रहे हैं, आइए सुनते हैं।

0: श्रोताओ, आज के अतिथि कार्यक्रम में एक बार फिर हम आपका स्वागत करते हैं और आज के हमारे अतिथि हैं श्री रुद्र नारायण पानीग्रही, जो जिनके रुचि खासकर रंगमंच पे है और रंगमंच में इन्होंने बहुत काम किया है, बहुत समय दिया है। तो समय की जहाँ तक बात है तो रुद्र नारायण पानीग्रही जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, आप शासकीय सेवा में भी हैं और रंगमंच में भी लगातार आप समय देते हैं, तो किस तरह से एडजस्ट करते हैं, किस तरह से समय दे पाते हैं दोनों कामों को?
1: देखिए, जहाँ तक अगर कलाकारी की बात है तो सबसे पहले कलाकार को उसके पेट के लिए संघर्ष करना होता है। तो ये हमारे लिए बहुत सरल हो जाता है जब हम किसी शासकीय सेवा में जो बचा हुआ समय होता है उसको हम यहाँ वहाँ व्यतीत न करते हुए हम उसको रंगमंच के लिए समर्पित करते हैं और इस तरह हम शासकीय सेवा के साथ साथ रंगमंच आयोजनों को भी साकार करते हैं।
0: ज्यादा कठिन नहीं लगता?
1: ज्यादा कठिन नहीं है हमारे लिए, मगर एक व्यक्ति जो बेरोजगार है और अगर कलाकार के रूप में सामने आए तो उसके लिए रोजी रोटी और पेट की
0: दोनों चीजें होती हैं,
1: दोनों चीज से जूझना पड़ता है, तो वो कठिन विधा हो जाती है। मैं तो ये समझता हूँ कि अगर किसी काम में यदि वो व्यक्ति है, चाहे वो व्यवसाय है या शासकीय सेवा, उसके साथ अगर करे तो कोई कठिन नहीं
0: है। दोनों ही चीजें एक साथ पूरी हो जाती हैं, एक तरफ एक जो शौक है वो भी पूरा हो जाता है और हमारा काम भी पूरा होता है। रुद्रनारायण पानीग्रही जी, देखिए, आपने शुरू में जिक्र किया था लोक साहित्य की, तो बस्तर जो पूरा क्षेत्र है हमारा, बोलियों का, यहाँ की परंपराएं, यहाँ की बहुत सारी चीजें हैं, आपने कहा लोक साहित्य से भी आपका जुड़ाव है, तो किस तरह से आप इससे जुड़े हुए हैं?
1: देखिए, बस्तर से बाहर जो लोग हैं बस्तर को एक अजीब दृष्टि से देखते हैं, चाहे उसका कारण कुछ भी हो, लेकिन बस्तर जैसे पिछड़े अंचल को यदि बस्तर का बाहर जो अजनबी होता है वो बस्तर को एक अलग दृष्टिकोण से देखता है, मगर जब बस्तर में एक बार आता है तो यहाँ की लोक कला हो, यहाँ की लोक संस्कृति, यहाँ के पर्व तीज त्यौहार जो पूरे बस्तर ही नहीं पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं, उनको देखने के बाद लोगों का नजरिया बदल जाता है। यहाँ कई तरह के संस्कृति हैं, कई तरह के पूजा पाठ हैं, कई तरह के लोक कलाएं हैं। आज बस्तर में चाहे वुड कार्विंग को देख लीजिए, बेल मेटल को देख लीजिए, या यहाँ के तीज त्यौहार को देख लीजिए, बस्तर का दशहरा है, विश्व प्रसिद्ध दशहरा गुंचा, इसको देखने के लिए बस्तर के बाहर भारत के विभिन्न राज्यों से कई लोग आते हैं, साथ ही विदेशी लोग भी जब आते हैं तो तब महसूस करते हैं कि यहाँ वो जब प्रशंसा करते हैं यहाँ की लोक कला और संस्कृति को। तो अब मैं चूंकि यहाँ लोकल बस्तर का ही हूँ तो कई बार ये अवसर आया कि इन चीज़ों को उजागर करने के लिए विभिन्न पत्रिकाओं में लेखन के रूप में मैंने इस पे काम किया है, उनकी संस्कृतियों को नज़दीक से देखा है, निहारा है, और उसको मैं पत्रिकाओं के माध्यम से उजागर करता रहा हूँ और करता हूँ आज भी।
0: इतनी सारी रुचियाँ हैं, इतनी सारी रुचियों को आप पूरी कर रहे हैं, लेकिन क्या कोई ऐसा भी क्षेत्र आपका बचा है, या रंगमंच की ही अगर बात करें तो आपके मन में कोई ऐसा कैरेक्टर होगा, ऐसा कोई चित्र होगा, या ऐसा कोई बात होगी जो आप लोगों के सामने प्रदर्शित करना चाहते हैं, चाहे वो अभिनय के माध्यम से हो, निर्देशन के माध्यम से हो, क्या कोई ऐसा मन में है?
1: आपने बहुत कठिन प्रश्न किया है। एक्चुअली यहाँ जब रंगकर्म करते हैं तो उपलब्ध नाटक के आधार पर कैरेक्टर के हिसाब से जब निर्देशक चॉइस करता है कि इस करेक्टर पे ये व्यक्ति खरा उतरेगा और उस तरह के रोल दिए जाते हैं तो हमको अभिनय करना पड़ता है। फिर भी मेरी ख्वाहिश है कि चाणक्य का एक करेक्टर मुझे काफ़ी प्रभावित करता है और भविष्य में यदि कभी ऐसा अवसर मिलेगा कि चाणक्य का रोल करना हो तो वो करेक्टर मैं करना चाहूँगा। हालांकि मैं अभी तक किया नहीं हूँ, बहुत चैलेंजिंग रोल हो सकता है, पर मैं इसे करने की कोशिश करूंगा यदि कभी किसी निर्देशक ने चाणक्य से संबंधित कोई स्क्रिप्ट को लेकर अगर काम करते हैं।
0: बिल्कुल, आप करना चाहेंगे और हमारी शुभकामनाएं भी हैं पूरे आकाशवाणी परिवार की तरफ से, पूरे श्रोताओं की तरफ से, कि आपको ये रोल मिले और आपकी जो इच्छा है ये पूरी हो। देखिए, बातें करने के लिए बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी बातें अधूरी हैं, लेकिन यहाँ पे समय हमें ये इजाज़त नहीं देता कि हम और बातें करें। देखिए, आगे कभी मौका मिला तो ज़रूर आपसे और ढेर सारी बातें करेंगे, लेकिन फिलहाल हम आपसे और सभी श्रोताओं से अनुमति लेते हैं। नमस्कार।
1: नमस्कार।
2: आज के अतिथि क्रम में आप सुन रहे थे भेंट वार्ता। इसमें रुद्रनारायण पानीग्रही से बातचीत कर रहे थे नारायण सिंह बघेल। नमस्कार, जगदलपुर के सफर में अब अगला पड़ाव मधुरी माँ का। पहले सुनते हैं कुछ संदेश।
3: किसान भाई बहनों के लिए आकाशवाणी जगदलपुर की नई पहल, अब हर शनिवार को शाम 7:30 बजे से 8 बजे तक सुनिए फोन इन किसान वाणी, जहां कृषि विशेषज्ञ देंगे आपकी खेती से जुड़ी हर समस्या का आसान समाधान। बीज से लेकर बाजार तक हर सवाल का जवाब सीधे आपके लिए। और हाँ, इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी हर मंगलवार दोपहर 3:30 बजे से 4 बजे तक, तो आप भी जुड़िए और अपने सवाल हमें सीधे फोन पर बताइए। हमारा नंबर है 07782222666। फोन इन किसान वाणी, आपकी आवाज़ आपकी कहानी आपके खेतों की जुबानी।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: और अब पेश है मधुरिमा।

0: प्रेम है अगर तो सपने में मिलना ही काफी नहीं, कोशिश होनी चाहिए रूबरू मुलाकात की। आखिर पता तो चले कि पसंद आने वाली शख्सियत है कैसी, और अगर मुलाकात होती है तो दिल की हसरतें बढ़ना तो वाजिब ही है ना।
1: जाने मुझे क्या हुआ रे,
2: क्या हुआ रे?

तेरा ख्याल तेरी तलब और तेरी आरजू, तेरा ख्याल तेरी तलब और तेरी आरजू, एक भीड़ सी लगी है मेरे दिल के शहर में।

दिल मचल रहा है, रंग बदल रहा है। दिल मचल रहा है, रंग बदल रहा है। दिल म...

कोई अपना सा लगने वाला शख्स भी अक्सर बेगाना लगने लगता है। ऐसे में दिल का घबराना लाजिमी है, और जब ऐसा हो तो साथ देने वाले उस हमसफर की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो उसका विश्वास जीते। सच है ना?

मकतबे इश्क का दस्तूर निराला देखा, मकतबे इश्क का दस्तूर निराला देखा, उसको छुट्टी न मिली जिसको सबक याद रहा।

ख्वाब से लेकर मुलाकात और मुलाकात से लेकर पा लेने की चाहत, ऐसे ही कुछ जज्बों से लबरेज ये थी आज की मथुरिमा। इन्हीं गीतों के साथ अब नमस्कार जगदलपुर से मुझे रानू को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: आप सुन रहे थे नमस्कार जगदलपुर, आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। 8 बजने को है समाचार प्रभात। अब हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले कर रहे हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय पर्यवेक्षक अमित शाह आज कोलकाता में विधायक दल का नेता चुनने के लिए पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों से मुलाकात करेंगे। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर गतिरोध जारी। सबसे बड़ी पार्टी को समर्थन देने के मुद्दे पर वीसीके, सीपीआई और सीपीआईएम के विधायकों की आज बैठक। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लैम ने मुंबई में व्यापार फोरम में वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भारत और वियतनाम की भूमिका पर बल दिया। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने वैश्विक कृषि परिदृश्य में भारत की स्थिति मजबूत करने के उपायों की समीक्षा की। सऊदी अरब ने अपने सैन्य ठिकानों और वायु क्षेत्र तक अमरीकी सेना की पहुंच रोकी। और आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स ने डकवर्थ लुइस नियम से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 9 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय पर्यवेक्षक और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज कोलकाता पहुंच रहे हैं। वे भारतीय जनता पार्टी के नव निर्वाचित विधायकों के साथ बैठक करेंगे। बैठक के दौरान पार्टी विधायक दल के नेता का चयन किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
2: पश्चिम बंगाल में पहली बीजेपी सरकार इस शनिवार 25 बैसाख को ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेगी। पार्टी सूत्र के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, जेपी नड्डा सहित कई वरिष्ठ नेता समारोह में शामिल हो सकते हैं। इससे पहले शुक्रवार को न्यू टाउन स्थित विश्व बांग्ला कन्वेंशन सेंटर में नवनिर्वाचित बीजेपी विधायकों का बैठक होगा, जिसमें विधायक दल के नेता का औपचारिक चयन किया जाएगा। अमित शाह केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में बैठक में मौजूद रहेंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए संदीप अंदाज गुप्ता, कोलकाता।
1: उधर तमिलनाडु में नई सरकार के गठन में देरी से राजनीतिक स्थिति अनिश्चित बनी हुई है। सरकार बनाने के लिए आवश्यक 118 के बहुमत तक पहुंचने के लिए बातचीत जारी है। डीएमके और ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी ने कल नवनिर्वाचित विधायकों के साथ बैठक की। ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी के महासचिव ई पलनीसामी को विधायक दल का नेता चुना गया। राज्य की सबसे बड़ी पार्टी तमिलग वित्री कड़गम टीवीके को समर्थन देने के मुद्दे पर विदुथलाई चिरुथाईगल काची, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक आज होगी। हमारी संवाददाता की रिपोर्ट।
3: AIADMK और DMK के विधायक दल की बैठक का नतीजा भी महत्वपूर्ण है। DMK प्रवक्ता TKS एलेंगोवन ने कहा कि सबसे बड़ी पार्टी का यह कर्तव्य है कि वह अपना बहुमत साबित करे, और साथ ही यह भी कहा कि DMK प्रमुख MK स्टालिन कोई संवैधानिक संकट नहीं चाहते। गौरतलब है कि विधायक दल की बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए पुद्दुचेरी AIADMK के सचिव ए अनबाजगन ने कहा कि फैसला लेने का अधिकार पार्टी के महासचिव को दिया गया है। उन्होंने बहुमत के मुद्दे पर राज्यपाल के फैसले की सराहना की और कहा कि मौजूदा राजनीतिक अनिश्चितता में प्रत्याशित फैसले भी हो सकते हैं। उन्होंने मीडिया को यह भी बताया कि उनके नेता स्टालिन के चुनाव में हार से दुखी हैं। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
1: उधर असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार 12 मई को लगातार तीसरी बार शपथ ग्रहण करेगी। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि भाजपा विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। केरलम में कांग्रेस हाईकमान नई दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी पर्यवेक्षकों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों पर विचार करने के बाद नए मुख्यमंत्री के चयन पर निर्णय की घोषणा करेगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल वैश्विक कृषि परिदृश्य में भारत की स्थिति मजबूत करने के लिए विभिन्न उपायों की समीक्षा की है। उन्होंने भारतीय खाद्य और कृषि चैंबर के अध्यक्ष डॉक्टर MJ खान के साथ बैठक की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि बैठक में किसानों के जीवन को बेहतर बनाने, देश की कृषि व्यवस्था को मजबूत करने और अफ्रीकी क्षेत्र के साथ सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि दीर्घकालिक खाद्य सुरक्षा के लिए कृषि सहयोग बढ़ाने के नए उपायों पर भी विचार विमर्श हुआ। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि देश का सरकारी अनाज भंडार 604 लाख टन से अधिक हो गया है। ये मात्रा बफर स्टॉक यानी अनिवार्यता के समय की आवश्यक मात्रा से लगभग तीन गुना अधिक है। श्री जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि गेहूं और चावल के सुरक्षित भंडार से देश में कल्याणकारी योजनाओं तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की गई है। इस बीच सरकार ने कहा है कि 6 मई तक मंडियों से 78,96,000 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई है। पिछले साल इसी अवधि में यह आंकड़ा 75,63,000 मीट्रिक टन था। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के अंतर्गत प्रशिक्षण महानिदेशालय आज कानपुर स्थित राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान में उद्योग परामर्श बैठक आयोजित कर रहा है। 30 से अधिक उद्योग प्रमुख, मुख्य कार्यकारी अधिकारी और नीति विशेषज्ञ राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना के बारे में विचार विमर्श करेंगे। इंडिया एआई और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने स्वास्थ्य सेवा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को तेजी से अपनाने के लिए नई दिल्ली में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा कि यह साझेदारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जिम्मेदार और व्यापक अनुप्रयोग के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
4: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
5: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
4: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभी।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लम ने कहा है कि बदलती वैश्विक व्यवस्था में भारत और वियतनाम के पास वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का महत्वपूर्ण अवसर है। मुंबई में भारत वियतनाम व्यापार मंच को संबोधित करते हुए श्री लम ने कहा कि पहले भी दोनों देशों ने आपसी सहयोग में कई चुनौतियों का सामना किया है। उन्होंने भारतीय कंपनियों को वियतनाम में निवेश के लिए आमंत्रित किया। वियतनाम के राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों देशों के संबंध पूर्व वियतनामी राष्ट्रपति हो ची मिन्ह और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जैसे नेताओं की दूरदृष्टि पर आधारित हैं। वर्ष 2016 के बाद से ये संबंध नई ऊंचाइयों पर पहुंचे हैं। इस अवसर पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि भारत और वियतनाम के प्रौद्योगिकी तथा विनिर्माण क्षेत्र के उद्यमी, निवेशक और पेशेवर एशिया के भविष्य को आकार देंगे।
4: इंडिया एंड वियतनाम ऑफर समथिंग इम्पोर्टेंट।
5: भारत और वियतनाम दुनिया को कुछ महत्वपूर्ण चीजें देते हैं, एक भरोसेमंद साझेदारी, स्थिर शासन, आर्थिक गतिशीलता और दीर्घकालिक रणनीतिक विश्वास। एशिया का भविष्य भारत और वियतनाम जैसे देशों के उद्यमियों, इनोवेटर्स, निवेशकों, टेक्नोलॉजी लीडर्स, निर्माताओं और युवाओं के मिलकर काम करने से बनेगा।
4: इंडिया एंड वियतनाम वर्किंग टूगेदर।
3: सऊदी अरब ने अपने सैन्य ठिकानों और वायु क्षेत्र तक अमरीकी सेना की पहुंच पर रोक लगा दी है। इससे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हॉर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों पर निगरानी रखने की अपनी योजना छोड़ने को बाध्य होना पड़ा है। अमरीकी अधिकारियों ने इस खबर की पुष्टि की है। सऊदी अरब के इस कदम से खाड़ी देशों को लेकर अमरीकी रणनीति को झटका लगा है। राष्ट्रपति ट्रंप ने अब अपना ध्यान राजनयिक माध्यमों पर केंद्रित कर दिया है। उन्होंने ईरान के साथ हाल की बातचीत को संतोषजनक बताते हुए किसी स्थायी समाधान निकलने की आशा व्यक्त की।
6: ईरान अब युद्ध समाप्त करने के लिए अमेरिका द्वारा 14 सूत्री प्रस्ताव की समीक्षा कर रहा है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची ने संवाद और कूटनीति का आह्वान किया है। प्रस्तावित ढांचे के अंतर्गत शत्रुता को विराम दिया जाएगा और अंतिम वार्ता के लिए 30 दिन की अवधि दी जाएगी। हालांकि ईरान के परमाणु कार्यक्रम सहित प्रमुख मुद्दों को बाद की वार्ताओं के लिए छोड़ दिया जाएगा। कूटनीतिक स्थिति अभी भी अनिश्चित बनी हुई है, क्योंकि ईरान ने सार्वजनिक रूप से किसी भी शर्त को स्वीकार करने की पुष्टि नहीं की है और ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बगैर कलिबाफ ने कुछ मीडिया रिपोर्टों को फर्जी बताकर खारिज कर दिया है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
3: अमेरिका की एक संघीय अदालत ने राष्ट्रपति ट्रंप के 10% के नए वैश्विक टैरिफ को गैर कानूनी बताया है। न्यूयॉर्क में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अदालत की 3-सदस्यीय पीठ ने व्यवस्था दी कि राष्ट्रपति ट्रंप ने व्यापार कानून के तहत अमेरिकी संसद से प्रदत्त शक्तियों का उल्लंघन किया। छोटे व्यवसायियों ने राष्ट्रपति ट्रंप के शुल्क संबंधी फैसले को अदालत में चुनौती दी थी। आकाशवाणी की स्थापना की 90वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आज सुबह राजधानी दिल्ली में मैराथन का आयोजन किया गया। लगभग 3.5 किलोमीटर की ये दौड़ आकाशवाणी भवन से शुरू होकर कृषि भवन, रेल भवन और रिजर्व बैंक भवन होते हुए आकाशवाणी भवन में संपन्न हुई।

0: प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी और आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन तथा दूरदर्शन सहित प्रसार भारती में कार्यरत सभी कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों ने इस मैराथन में भाग लिया। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के आदर्श वाक्य के साथ आकाशवाणी की स्थापना वर्ष 1936 में हुई थी। ये देश का सर्वाधिक विश्वसनीय प्रसारण माध्यम है जो विभिन्न भाषाओं में समाचार बुलेटिन के अलावा संगीत, मनोरंजन और जन उपयोगी कार्यक्रमों का प्रसारण करता है। आईपीएल क्रिकेट में कल लखनऊ सुपर जायंट्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 9 रन से हरा दिया। वर्षा से बाधित मैच का फैसला डकवर्थ लुइस नियम के आधार पर हुआ। आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स के शाम 7:30 बजे दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में होगा। और अब मौसम की जानकारी। मौसम विभाग ने आज केरल, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, तटीय कर्नाटक और रायलसीमा में आज गरज के साथ बारिश और तेज हवा चलने की संभावना है। मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा और देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में भी ऐसी ही स्थिति रहने का अनुमान है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं निखिल कुमार।
1: जी विशाल, हाल में संपन्न विधानसभा चुनाव वाले राज्यों में सरकार गठन की प्रक्रिया पर आज के अधिकांश समाचार पत्रों की नजर है। नव भारत टाइम्स की सुर्खी है, तमिलनाडु में विजय के लिए बहुमत का क्लाइमैक्स बाकी। राज्यपाल ने कहा टीवीके के पास पर्याप्त विधायक नहीं। पार्टी प्रमुख विजय ने मांगा लेफ्ट दलों से समर्थन। दैनिक जागरण ने लिखा है राज्यपाल ने भंग की बंगाल विधानसभा। चुनाव में तृणमूल कांग्रेस की करारी हार के बावजूद भी ममता बनर्जी ने नहीं दिया इस्तीफा। अमर उजाला ने लिखा है पश्चिम बंगाल में पहली बार बन रही भाजपा की सरकार, शपथ ग्रहण समारोह कल। पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद हिंसा पर पंजाब केसरी संपादकीय में लिखता है इस हिंसा ने राजनीति के रक्त चरित्र को एक बार फिर उजागर किया है। सत्ता में आने वालों के चेहरे तो बदलते रहे लेकिन खूनी सियासत का चरित्र नहीं बदला। लोकतंत्र में इस तरह की हिंसा के लिए कोई जगह नहीं। राज्य में भाजपा की नई सरकार के सामने राजनीतिक हिंसा, आपराधिक तत्वों और गुंडा संस्कृति पर लगाम लगाने की बड़ी चुनौती होगी। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के 100 जवान मारे, 13 विमान गिराए। ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर भारतीय सशस्त्र सेनाओं का यह बयान दैनिक भास्कर के मुख्य पृष्ठ पर है। देश में सड़क हादसों में रोजाना औसतन 546 लोगों की मौत, राष्ट्रीय क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के हवाले से जनसत्ता लिखता है तेज गति से गाड़ी चलाना है सड़क हादसों का सबसे बड़ा कारण। बड़ा बदलाव शीर्षक से राजस्थान पत्रिका की खबर है, देश में मुफ्त एंटरटेनमेंट पर लगेगी लगाम, बंद होगी फ्री चैनल स्ट्रीमिंग, सरकार की शुल्क लगाने की तैयारी, रजिस्ट्रेशन होगा अनिवार्य। केंद्र सरकार की ओर से 40 वर्ष से अधिक आयु के श्रमिकों के लिए बड़ी सौगात, अमर उजाला में है कामगारों की अब हर साल होगी मुफ्त स्वास्थ्य जांच।
0: धन्यवाद निखिल। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय पर्यवेक्षक अमित शाह आज कोलकाता में विधायक दल का नेता चुनने के लिए पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों से मुलाकात करेंगे। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर गतिरोध जारी, सबसे बड़ी पार्टी को समर्थन देने के मुद्दे पर वीसीके, सीपीआई और सीपीआईएम के विधायकों की आज बैठक। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लैम ने मुंबई में व्यापार फोरम में वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भारत और वियतनाम की भूमिका पर बल दिया। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने वैश्विक कृषि परिदृश्य में भारत की स्थिति मजबूत करने के उपायों की समीक्षा की। और सऊदी अरब ने अपने सैन्य ठिकानों और वायु क्षेत्र तक अमरीकी सेना की पहुंच रोकी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय। द हेडलाइंस। बीजेपी सेंट्रल ऑब्जर्वर फॉर वेस्ट बंगाल अमित शाह टू मीट न्यूली इलेक्टेड पार्टी एमएलएस इन कोलकाता टू इलेक्ट लेजिस्लेटिव लीडर टुडे। Deadlock continues in Tamil Nadu over government formation as MLAs of VCK, CPI and CPIM to meet on lending support. President of Vietnam Tho Lam emphasizes India-Vietnam role in global supply chain at Business Forum in Mumbai. Commerce Minister Piyush Goyal reviews initiatives to strengthen India's position in global agriculture landscape. Saudi Arabia suspends US military access to its bases and airspace. And in IPL cricket, Lucknow Super Giants beat Royal Challengers Bengaluru by 9 runs using DLS method at Ikana Stadium. BJP Central Observer for West Bengal and Union Home Minister Amit Shah will meet newly elected party MLAs in Kolkata to elect legislative leader today. We have more from a correspondent.
3: After its sweeping victory in Bengal, the BJP is seeking to turn the swearing-in ceremony into a political event of national significance. The first BJP government in West Bengal will take oath on Saturday, the Pochishe Boishak, at the Brigade Parade Ground. Preparations for the stage and security arrangements at Brigade began on Wednesday itself. According to BJP sources, Prime Minister Narendra Modi, Union Home Minister Amit Shah, Defence Minister Rajnath Singh, Nitin Gadkari, JP Nadda, BJP President Nitin Naveen and several other central ministers may attend the ceremony. Chief ministers and deputy chief ministers of various BJP and NDA ruled states are also being invited. On Friday, a meeting of the newly elected BJP MLAs will be held at Bishwa Bangla Convention Center in New Town, where the leader of the legislative party will be formally elected. Amit Shah will be present as the central observer. Since the oath-taking ceremony is being held on the occasion of Rabindra Jayanti, special emphasis is also being given to cultural performances. The BJP is planning to showcase Bengali culture through Rabindra Sangeet and other cultural presentations. Shondipan Dashgupta, Akashbani News, Kolkata.
2: In Tamil Nadu, with the formation of the new government getting delayed, talks have been held to reach the magic number of 118 to prove the majority. The DMK and the AIADMK held the legislative party meetings of the newly elected MLAs yesterday. AIADMK General Secretary Edappatti Palaniswamy has been elected as a leader of the legislative party during the meeting at Puducherry. The crucial meeting of the newly elected MLAs of VCK, CPI and CPIM is to take place today on the issue of lending support to the single largest party, TVK. We have more from a correspondent.
4: The situation in the state has taken interesting political outcome with the AIADMK and the DMK Legislative Party meeting held yesterday. Both of the parties have commented on the governor's decision on proving the majority. DMK spokesperson TKS Ilangovan has said that it is the duty of the single largest party to prove its majority and added that DMK chief MK Stalin does not want any constitutional crisis. It is to be noted that Puducherry AIADMK Secretary A. Anbaragan, who met the media after the legislative party meeting, had said that the power to decide has been given to the general secretary of the party. He hailed the decision of the governor on the issue of majority and said that there will be unexpected decisions in the prevailing political uncertainty. He also informed the media that their leader felt sad about Stalin's loss in this election. Joy, Akashwani reporting from Chennai.
2: President of Vietnam Tho Lam has emphasized that India and Vietnam together have a significant opportunity to play a pivotal role in the global supply chain in today's changing world order. Addressing the India-Vietnam Business Forum in Mumbai, Mr. Lam highlighted that the current global scenario is indeed a challenge but also an opportunity to elevate cooperation between India and Vietnam to a new level. Speaking on the occasion, Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis asserted that entrepreneurs, investors and professionals from the technology and manufacturing sectors in countries like India and Vietnam will shape the future of Asia.
5: India and Vietnam offer something important to the world: trusted partnership, stable governance, economic dynamism and long-term strategic confidence. The future of Asia will be built by entrepreneurs, innovators, investors, technology leaders, manufacturers and young people from countries like India and Vietnam working together.
2: After concluding his visit to India, the Vietnamese president arrived in Sri Lanka last night on a two-day state visit aimed at deepening bilateral ties and boosting trade and investment cooperation. The visit, undertaken at the invitation of the Sri Lankan president Anuradha Kumaradesanayake, coincides with the 55th anniversary of diplomatic relations between the two countries and marks the first visit by a Vietnamese president to Sri Lanka in 15 years. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal chaired a meeting with the chairman of the Indian Chamber of Food and Agriculture, Dr. M.J. Khan. Sharing this information in a social media post, Mr. Goyal said they discuss initiatives to further enhance the quality of life of our farmers, strengthen India's position in the global agriculture landscape, deepen collaboration with the African region, and share India's expertise in the sector.

0: श्रोताओं नमस्कार, इनसे मिलिए कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओं, चूंकि ये छत्तीसगढ़ प्रदेश है, यहाँ की प्रमुख बोली छत्तीसगढ़ी है और छत्तीसगढ़ी बोली भाषा के संवर्धन और संरक्षण के लिए कई तरह के कार्य किए जा रहे हैं।
1: श्रोताओं, हमारा छत्तीसगढ़ यूं तो विविधताओं से भरा हुआ है, यहाँ कई तरह की बोली और भाषाएं हैं, लेकिन यहाँ की प्रमुख बोली छत्तीसगढ़ी है। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा 2007 में छत्तीसगढ़ी राजभाषा सर्वसम्मति से पारित किया गया है। यहाँ छत्तीसगढ़ी भाषा को सरकारी कामकाज के रूप में मान्यता दी गई है। छत्तीसगढ़ी का प्राचीन व्याकरण एवं समृद्ध साहित्य है। छत्तीसगढ़ी भाषा के संरक्षण, संवर्धन, प्रचार, प्रसार, शोध और अनुवाद का लक्ष्य सुनिश्चित कर 2008 को छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग का गठन किया गया।
0: इसी कार्य से जुड़े हुए हमारे साथ आज इनसे मिले कार्यक्रम में उपस्थित है प्रभात मिश्रा जी, जो छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग के अध्यक्ष हैं, और इनसे आज हम जानेंगे इनके बारे में और जानेंगे छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग के बारे में। साथ ही छत्तीसगढ़ में इनके कई और भी कार्य हैं, तो इनसे आज हम जानेंगे इस बारे में। प्रभात जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद रमाशंकर जी, स्टूडियो में बुलाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: सबसे पहले तो हम आपके बारे में जानना चाहेंगे।
2: ऐसे है, पहले सभी श्रोता साथी मंडला में जोहार करता हूँ और आकाशवाणी रायपुर के भी मैं हृदय ले आभार प्रकट करता हूँ। और साथ ही साथ जो आज विषय पे हमारे मन के गोड बात होने हैं, वो माँ विशेष रूप से जो चीज ला आप अभी पूछे हो मोर से, तो कहा है कि छुरिया राजनांदगांव मोर जन्म है और वहाँ के संस्कार धानी में जो हमन संस्कार पाए हैं ओला पा के हमन हाँ अपन ये आज के ये जो हमारे दायित्व तो है जो आयोग के मिले है, तो वो ओला आगे और जो उद्देश्य है ओला हमन आगू बढ़ात हन। और साथ ही साथ हमार मन के जो प्राथमिक शिक्षा है सब हमार रायपुर में हो है और ओकर आगू की जो शिक्षा है महाविद्यालय शिक्षा वो दुर्गा महाविद्यालय से हो है, और जो मैं परा स्नातक जो करे हूँ वो है रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय अध्ययनशाला रायपुर से करे हूँ। तो ये मेरा एक संक्षिप्त जो शैक्षणिक जो परिचय है वो इस प्रकार से है कि हम चूंकि अपने छत्तीसगढ़ महतारी के जो कर मन हाँ ओकर द्वारा जो प्रदत्त हमारे जो संस्कार है ना ओकर छाँव में जो हमन पले बढ़े हैं, तो वही भाखाला हमन हाँ यहाँ विस्तार दे के प्रयास करत हन पूरा प्रदेश में। तो इस विषय को लेकर के बस इतना ही यहाँ पे अपने श्रोता साथियों को बताना चाहूँगा कि जो हमारा जो राजभाषा जो हमारी जो छत्तीसगढ़ी है ये विधानसभा में एक अधिनियम पारित हुआ था, उसको उसका भी उल्लेख मैं यहाँ पे करना चाहूँगा। और वो है 2007 में वो पारित हुआ था और वो जो अधिनियम है वो छत्तीसगढ़ राजभाषा संशोधन अधिनियम 2007 के सर्वसम्मति से छत्तीसगढ़ ही को हमने राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था और विधानसभा में पारित होने के फलस्वरूप यह जो है राजभाषा के रूप में और राजभाषा के स्वरूप के साथ आज पर्यंत तक और आगे भी इस पे हम लोग काम करते आ रहे हैं और काम करते रहेंगे। इसमें मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ी भाषा को राज्य के राजकीय प्रयोजनों के लिए राजकीय जो प्रयोजन होते हैं उसके लिए प्रयुक्त की जाने वाली भाषा के रूप में हिंदी के अतिरिक्त इसे अंगीकृत करने के लिए उपबंध किया गया है। तो मतलब आयोग जो है उनका जो मुख्य उद्देश्य है वही कि हमारी जो भाषाई जो समृद्धि है, भाषाई जो हमारी विरासत है उसको समृद्ध करना, संरक्षण देना और संवर्धन देना, जिसमें सरगुजा से लेकर के हमारा जो नीचे जो दंडकारण्य का जो क्षेत्र है वहाँ पे बोली जाने वाली जो भाषाएं हैं, बोलियां हैं, आदिम बोलियां जो हैं, उनका संरक्षण संवर्धन हमारा आयोग का मुख्य हेतु है।
0: छत्तीसगढ़ी भाषा को संरक्षित और संगठित करने में आपका क्या योगदान रहेगा?
2: देखिए, इसमें हमारी आयोग की जो महती भूमिका है वो जिसमें भाषाई जो विरासत है उसका दस्तावेजीकरण करना, उसको समृद्ध करना और प्रकाशन की जो स्थिति है उसको यहाँ हमारे जो लेखक हैं, हमारे जो साहित्य जो समूह है, उनके द्वारा लिखी जाने वाली छत्तीसगढ़ी में पुस्तकें जो हैं उसका प्रकाशन करना, ये आयोग का महती उद्देश्य है और आयोग इस कार्य में सतत लगा हुआ है। प्रकाशन के द्वारा लेखकों को छत्तीसगढ़ी भाषा में वो जो लिख करके जो अपना साहित्य चाहते हैं कि वो जनमानस में वो जाए आयोग के माध्यम से, तो इसके लिए आयोग जो है छत्तीसगढ़ी भाषा में ओकरमन के प्रकाशन करत है साहित्य के, और ओला पाठक तक कैसे पहुँचाए, पढ़िया मन तक कैसे पहुँचाए, और हमारे जो अध्ययन करने वाला छात्र छात्रा मन है, और हमारे बहुत सारा हमारे आम जनता तक वह कैसे सर सुलभ हो गए, एक लिए भी हम चिंता करत हन। और आयोग है छत्तीसगढ़ संवाद के माध्यम से लेखक बन के जो कृति है वह प्रकाशित करके वह सुलभ और उपलब्ध कराते, ये वहाँ आयोग है सतत लगे हुए है। साथ ही साथ जो एक जो बहुत मुख्य जो औ एक वो है कि राजकीय कार्यों में कैसे हम और अच्छे से छत्तीसगढ़ी भाषा के हम कैसे उपयोग करें, ओकर लिए आयोग है समय समय पे शासकीय और अर्ध शासकीय कार्यालय में जो मन पदस्थ है अधिकारी मन है कर्मचारी मन है वो मन ला भी प्रशासनिक कार्य व्यवहार में छत्तीसगढ़ी के लिए जो प्रशिक्षण है वो है आयोग देते।
0: तो प्रभात जी अभी आपने बहुत अच्छी बात बताई है, तो क्यों ना प्रभात जी हम कार्यक्रम में एक छोटा सा विराम ले और आपकी पसंद का एक गीत सुने।
2: मेरी पसंद का एक गीत जो मुझे अभी याद आ रहा है और सर्वाधिक पसंदीदा गीतों में से एक है किशोर कुमार का फिल्म नमकीन राह पे रहते हैं, वो हमारे श्रोता साथियों को आप सुनाइए।
0: जी जी बहुत अच्छा गीत है, तो आइए श्रोताओं प्रभात मिश्रा जी की पसंद का ये गीत सुनते हैं।

0: श्रोता इनसे मिलिए कार्यक्रम में फिर से एक बार स्वागत है। और आज हम इनसे मिलिए कार्यक्रम में बात कर रहे हैं प्रभात मिश्रा जी से, जो छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग के अध्यक्ष हैं, कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय में एग्जीक्यूटिव काउंसिल मेंबर हैं और वेटलैंड संरक्षण से भी जुड़े हुए हैं। तो प्रभात जी, कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो जैसा आपने बताया कि छत्तीसगढ़ जो राजभाषा आयोग में छत्तीसगढ़ी को संरक्षण करने का जो एक बहुत अच्छा कार्य किया जा रहा है, तो इसके साथ ही आप कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय में भी एग्जीक्यूटिव काउंसिल मेंबर हैं। तो जब हम पत्रकारिता की बात करते हैं तो पत्रकारिता में निष्पक्षता को आप कैसे देखते हैं?
1: पत्रकारिता में निष्पक्षता की जो बात आपने पूछा है, ये सबसे बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। निष्पक्षता जो है पत्रकारिता की एक अनिवार्य शर्त है। हमको इस बात के लिए कृत संकल्पित रहना चाहिए कि पत्रकारिता का जो मुख्य उद्देश्य है वो पाठकों तक और उस विषय को यथा स्थिति स्वरूप में तथ्य के साथ उसे प्रस्तुत करना, और उसमें जो भी हमारा जो दृष्टिकोण है और उस विधा में इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान हमें रखना चाहिए या ध्यान रखा जाना चाहिए कि जब हम पत्रकारिता हम जब कर रहे हों और पत्रकारिता में जिस प्रकार की हम निष्पक्ष पत्रकारिता की जब हम बात कर रहे हों तो उस विषय के साथ और उस रिपोर्टिंग के साथ हमारा वो भाव दिखना चाहिए हमारी भाषा में, हमारी प्रस्तुति में, हमारी उसमें शब्दों में, कि वह विषय वस्तु के साथ न्याय करते हुए वो दिखाई दे। न्याय की जिम्मेदारी तो खैर हम एक तरह से समझ लीजिए कि हम अपनी जनता जनार्दन पे छोड़ते हैं, क्योंकि वो पाठक वो तय करेगा, लेकिन एक पत्रकार को ये हम कहना चाहिए उसका वो दायित्व तो है कि वो विषयों को यथा स्थिति यथा स्वरूप में वैसा का ही वैसा प्रस्तुत करे। शेष जो है उसका निर्णय क्या होना है क्या नहीं होना है वो पाठक पर निर्भर करता है।
0: तो प्रभात जी, पत्रकारिता की जब हम बात करते हैं तो इसके कई आयाम हो सकते हैं, तो आप इसे किस तरह देखते हैं कि पत्रकारिता के कौन कौन से प्रमुख आयाम हो सकते हैं?
1: देखिए, पत्रकारिता के जहाँ तक आयाम की हम बात करते हैं तो पत्रकारिता का एक बहुत ही व्यापक एक संसार है, और उस व्यापक संसार में पत्रकारिता की जो हम बात करते हैं तो वो मूल्यों की पत्रकारिता की हम बात करते हैं, जिसमें कहना चाहिए वैल्यू बेस्ड वैल्यू की हम बात करते हैं, वैल्यू सिस्टम की बात करते हैं। और हम एक तरह से पत्रकारिता को एक प्रकाश स्तंभ की तरह लेते हैं, एक मशाल की तरह लेते हैं कि जिसके प्रकाश में हम सब जो है एक जो हमारा समाज का जो हमारा एक आदर्श जो मार्ग है समाज को पुष्पित पल्लवित करने का, जिसमें समाज जीवन के सारे रंग सारे आयाम बहुत व्यवस्थित ढंग से हों, उसमें व्यवस्था बनी रहे और उस व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए उसमें यदि हम देखें तो पत्रकारिता जो है अपना एक अहम योगदान देते हुए दिखाई देती है। और पत्रकारिता ने ऐसा बहुत कुछ किया भी है कि आज समाज में समाज को एक अच्छा स्वरूप देने के लिए, एक अच्छा अच्छी रचना करने के लिए, इस हेतु समाज में जिस प्रकार की पत्रकारिता हमारे अभी हमारे समाज में हमारे देश में हमारे प्रदेश में हुई है, उससे मुझे ऐसा लगता है कि बहुत कुछ कहना चाहिए सार्थक लाभ जो है समाज के अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक जो व्यक्ति खड़ा है उस तक जो है पत्रकारिता का जो संदेश है, मूल्य आधारित पत्रकारिता की मैं बात कर रहा हूँ, उसका संदेश जो है बहुत अच्छा गया है और उन कार्यों की परिणति जो है समाज हित में भली भांति दिखाई देती है। क्योंकि हम यदि हम बात करते हैं अपने व्यवस्था के सुचारू रूप से संचालन के लिए तो कार्यपालिका है, व्यवस्थापिका है और न्यायपालिका है, और उसी परिप्रेक्ष्य में पत्रकारिता को मतलब एक चौथा स्तंभ माना जाता है लोकतंत्र का।
0: जी जी जी जी प्रभात जी, तो प्रभात जी हम आप चलते हैं फिर से एक बार राजभाषा हमारे छत्तीसगढ़ी बोली भाषा की तरफ। तो पारंपरिक विविधताएं हमारे छत्तीसगढ़ में काफी हैं, तो इन विविधताओं के अंतर्गत छत्तीसगढ़ी बोली और भाषा को स्थान दिलाना कितना आवश्यक है?
1: बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि हम जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP की बात करते हैं 2020 की, तो उसमें भी इस बात का आग्रह किया गया है कि जो बच्चे हैं जो स्कूल में पढ़ने वाले उनको भी जो है कहना चाहिए कि उनको उनकी मातृभाषा में उनको दिया जाए। तो इसका आशय क्या है कि मातृभाषा में जब बच्चा पढ़ेगा तो वो उन चीज़ों को अच्छे से समझेगा, और अच्छे से समझेगा तो उन चीज़ों को अच्छे से वो अभिव्यक्ति दे पाएगा, और अभिव्यक्ति देगा तो वो कहना चाहिए अपनी जो सांस्कृतिक जो समझ है, अपने प्रदेश की जो सांस्कृतिक जो विरासत है हमारी, जो और भी जो हमारी पहचान है, अपनी अस्मिता है, उससे वो सीधे कनेक्ट हो पाएगा, सीधे संबंधित हो पाएगा। तो हम ये मानते हैं कि जो भी हमारी जो मातृभाषा है उसमें उसको जो है उसकी प्रारंभिक शिक्षा जो है उसको मातृभाषा में दिया जाना चाहिए। विशेषकर जब हम प्राथमिक स्तर पर बच्चों को हम ये देते हैं मातृभाषा में, तो बच्चा जो होता है वो बेहतर, वो आत्मविश्वास के साथ अपने स्वयं को समझता है, और जिस शिक्षा को वो ग्रहण करने जा रहा है उसको भी अच्छे से समझ पाता है, और संस्कृति से भी वो अच्छे से जुड़ पाता है।
0: तो प्रभात जी, जब हम बात करते हैं राजभाषा की, तो वो किसी प्रादेशिक स्थान होते ही उसकी जो प्रमुख होती है, तो हमारे छत्तीसगढ़ की जो प्रादेशिक भाषा है वो छत्तीसगढ़ी है। तो हम जब छत्तीसगढ़ प्रदेश की बात करते हैं तो यहाँ अगर हम राजभाषा को महत्व देते हैं, इसमें कहीं हम हिंदी को ना खो दे, ऐसा आपको क्या लगता है?
1: नहीं, इसमें कहीं भी ऐसा कुछ भी विषय कहीं कुछ भी नहीं है खोने का। देखिए, होता यह है कि हमारा जो भाषाई जो संसार है वो बहुत समृद्ध है
0: जी।
1: और आप देखते भी होंगे कि हमारा जो देश है, हमारा जो राष्ट्र है भारत, वो बहुभाषी कहना चाहिए राष्ट्र है
0: जी।
1: बहुत सारी भाषाएं हमारे यहाँ बोली जाती हैं, और भाषाओं के साथ साथ बोलियां भी बहुत सारी यहाँ पे बोली जाती हैं। तो हमारे यहाँ भाषाओं का जो स्वरूप है और भाषाई जो रचनात्मकता है वो समन्वयकारी है, और समन्वय के साथ साथ समरसता लिए हुए है। इसका आशय इस ढंग से मैं आपको समझाना चाहूंगा कि भाषाई जो संसार है वो अस्तित्व और सह अस्तित्व के आधार पर हमारे यहाँ चलता है, हमारे यहाँ समन्वय है भाषाओं को लेकर के, और इसी समन्वय के मार्ग को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। इसको हमको समझना होगा, और इसको समझते हुए आगे अच्छे से बढ़ रहे हैं, समाधान की ओर बढ़ रहे हैं, और भाषाई जो समृद्धि है, जो हमारी भाषाई विरासत है, उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। और हिंदी हो, हमारी अन्य जो भाषाएं हैं, छत्तीसगढ़ी है, हिंदी है, इन सब में एक जैसे बड़ी बहन और छोटी बहन का एक परिवार जो होता है उस प्रकार का संबंध लिए हुए है, और जो कहना चाहिए परिवार में जो एक भाव होता है

0: एहसास करा रहे हैं कि गर्मी कितने चरम पे है और उसका सीधा प्रभाव हम जलचर थलचर और नभचर जो हमारा जैव मंडल है बायोस्फीयर है उस पर इसका सीधा प्रभाव पड़ता है। तो हम जब बात कर रहे हैं वेटलैंड की, तो वेटलैंड का आशय जो है हिंदी में वो ये है कि हम उसे नम भूमि बोलते हैं, जलोद भूमि भी बोलते हैं, दलदली भूमि भी बोलते हैं। और किसी भी कहना चाहिए क्षेत्र में किसी भी पर्यावरणीय संतुलन के लिए वेटलैंड का जलोद भूमि नम भूमि का होना बहुत आवश्यक है, अनिवार्य है। क्योंकि प्राकृतिक रूप से जितने भी हमारे वेटलैंड हैं वो जब अपने प्राकृतिक स्वरूप में होते हैं तो उससे एक प्रकार की जैव विविधता बनी रहती है। वो कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित भी करते हैं, जो हमारा भूगर्भ जो जल का जो स्तर है उसको भी वो बना के रखते हैं, साथ ही साथ वो बाढ़ को भी रोकने का काम करते हैं जब बाढ़ आती है तो। और इसके अतिरिक्त हमारे वातावरण को वो इतना कहना चाहिए वो अच्छा बना के रखने का प्रयास करते हैं जिसमें ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन का जो लेवल है वो परिशुद्ध भी करते हैं
1: जी जी।
0: तो वेटलैंड जो है एक साथ अपनी कई भूमिकाओं में हमारे आसपास के जनजीवन को सकारात्मक रूप से हमें प्रभावित करता है, सकारात्मक रूप से हमें संजीवनी प्रदान करता है और साथ ही साथ हम लोगों को एक आजीविका भी उपलब्ध कराता है। तो वेटलैंड जो है उसकी जो भूमिका है वो अपने आप में बहुत विस्तार लिए हुए है। ये अलग बात है कि हम वेटलैंड के महत्व को जितना जल्दी हम समझ जाएं उतना ज्यादा हम मानवीय दृष्टिकोण से और मानव समाज के लिए हितकारी होगा। इस बात को और मैं रेखांकित करना चाहूंगा कि एक वेटलैंड जो है दो प्रकार के होते हैं, एक है नेचुरल वेटलैंड और एक होता है मैन मेड वेटलैंड यानी मानव निर्मित वेटलैंड और एक प्राकृतिक रूप से वेटलैंड होते हैं। तो मानव निर्मित वेटलैंड कौन से होते हैं? मानव निर्मित वेटलैंड जो हैं वो तालाब होते हैं जिन्हें हम बनाते हैं और बना करके हमारे पूर्वजों ने हमारे छत्तीसगढ़ में, ये बड़े गर्व का विषय है हमारे लिए कि हमारे छत्तीसगढ़ में तालाबों की संस्कृति रही है। तालाब हमारे यहाँ आप भी देखते होंगे, मैं भी देखता हूँ कि हमारे नगरों में तालाब जो हैं अपने उस वैभव के साथ हैं और उस वैभव का कहना चाहिए जब हमारे पूर्वजों ने इन तालाबों का निर्माण किया था तो उसका जो है आज भी हमें लाभ मिल रहा है। आज देखिए तालाब जहाँ जहाँ हैं वहाँ प्राकृतिक रूप से जो उसके जल स्रोत हैं वो बने हुए हैं और उन तालाबों को मैं जहाँ तक समझता हूँ कि हम यदि इतिहास में हम यदि जाएं तो एक इकाई होती थी तालाब बनाने वालों की और एक तालाब बनवाने वालों की
1: जी।
0: तो ये दो इकाइयां मिलकर के तालाब बनाती थी और बनवाती थी। कोई अपने माता पिता की स्मृति में भी बनाता था, कोई परोपकार के भाव से तालाब खुदवाता था, कहीं पे राजा जो है तालाब खुदवाते थे, कहीं पे रंक भी जो होते थे वो तालाब खुदवाते थे। और पुण्य का काम यदि कोई माना जाता था हमारे भारतीय संस्कृति में तो वो तालाब खुदवाना माना जाता था
1: जी जी।
0: उनको ये मालूम था कि ये जो वेटलैंड है ये न केवल हमको जीते जी हमको बचा के रखेंगे संभाल के रखेंगे अपितु आने वाली पीढ़ी को भी ये संरक्षित करेंगे, संवर्धित करेंगे और उनका जो जीवन है इससे कहीं ना कहीं उनका जीवन यापन भी होगा।
1: प्रभात मिश्रा जी, कार्यक्रम में हमारे श्रोताओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: मैं तो यही संदेश देना चाहूंगा कि समाज, परिवार और प्रकृति इन तीनों का जो समन्वय है जिसकी आधारशिला हमारे यहाँ प्रारंभ से ही रखी गई है हमारी संस्कृति में और उस संस्कृति में इस बात का हमेशा से ध्यान रखा गया कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संतु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। तो ये पूरी वसुंधरा और पूरे सभी लोगों को सुख और शांति देने का जो भाव हमारी भारतीय संस्कृति में निहित है उसी भाव के अनुरूप हम अपने समाज को, अपने परिवार को और प्रकृति को जितना ज्यादा हो सके संरक्षित करें, संवर्धित करें ताकि ये वसुंधरा जो है बहुत अपनी उस स्वाभाविकता में उसी स्वरूप में रहे जिस स्वरूप में वो हमें प्राप्त हुई है।

0: जिस स्वरूप में हम उसमें जीवन जी रहे हैं, क्योंकि और कोई दूसरी वसुंधरा हमारे पास नहीं है। हमारे पास एक ही वसुंधरा है, एक ही वसुधा है, एक ही पृथ्वी है। उसे यदि हम जितना हो सके हम बचा के रखें, संरक्षित करके रखें, तो हमारा मानव जीवन जो है सुरक्षित रहेगा, संरक्षित रहेगा। श्रोता साथियों, मेरा आप सभी से ये अनुरोध रहेगा, जब हम गर्मी की तपिश को हम एक तरह से झेल रहे हैं और वो हमें बहुत ही प्रभावित कर रही है, आप जहाँ जहाँ पे वेटलैंड देखते हैं वहाँ वहाँ आप उन चीज़ों को लेकर के हमारे वेटलैंड को संरक्षित करें, उसको संवर्धित करें, क्योंकि यही वेटलैंड जो है हमको बचाएंगे, और क्योंकि यदि ये बचेंगे तब वो हमको बचाएंगे। तो वेटलैंड को आप जहाँ भी देखें उसको संरक्षित करें, और इसके लिए जो भी प्रयास हो, शासकीय स्तर पे हो चाहे वो नागरिक स्तर पे हो, आप अपनी तरफ से ऐसा प्रयास कीजिए कि वेटलैंड को कोई नष्ट ना करे, वेटलैंड को लोग एक ऐसा जो हमारे लिए वो जीवन दायिनी है ना, वो हमारे लिए जीवन प्रदाता है, वो हमको जीवन हमें देता है। तो आप जहाँ भी रहें वेटलैंड को बचाने के लिए सक्रिय रहें, अपने नज़दीक के किसी भी ऐसे अथॉरिटी के पास जाएं, चाहे वो नगर निगम हो, चाहे कलेक्टर हो, चाहे और कोई ऐसी व्यवस्था हो, वहाँ जा करके आप वेटलैंड को बचाने के सारे उपाय करें। मैं जहाँ तक समझता हूँ कि मैं आज जहाँ भी मैंने वेटलैंड पे मैंने काम किया है, उसके लिए जो भी हमारे लोकतांत्रिक हमारे अधिकार हैं, साथ ही साथ हमारे जो कर्तव्य हैं, उसके अंतर्गत वेटलैंड को बचाने का जो हमने प्रयास, उसके बहुत अच्छे परिणाम आए। शासन स्तर पर भी हमें बहुत अच्छा सहयोग मिला, शासन के साथ प्रशासन में भी इस बात को बहुत गंभीरता से लिया गया। बस आवश्यकता इस बात की है कि आप एक पहल करें, और उस पहल में आपका जो दृष्टिकोण है वो बहुत स्पष्ट होना चाहिए कि केवल हमारा उद्देश्य है वेटलैंड संरक्षित हो।
1: प्रभात जी, कार्यक्रम में आप आए और हमारे श्रोताओं से इतनी अच्छी जानकारी साझा की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद
0: जी। नमस्कार,
1: इनसे मिलिए कार्यक्रम से आज हमें यही अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: इनसे मिलिए। इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग के अध्यक्ष श्री प्रभात मिश्रा से ली गई भेंटवार्ता। भेंटकर्ता थे रमा शंकर।
1: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है।
2: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
3: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
2: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
3: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
2: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
3: 8700001-4242।
1: अब प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम NCERT।

0: सब दंग।
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को मेरा यानी विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार। आइए करते हैं शुरुआत एक सुंदर विचार के साथ, जिसे हमें भेजा है गुजरात गांधीग्राम राजकोट से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी जी ने।
2: लिखते हैं, खुशी दुनिया में उपलब्ध सब दवाओं में सर्वोत्तम दवा है, इसलिए खुश रहो और खुशियां बांटो।
1: बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर संदेश के लिए। और आइए अब सुनते हैं हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश

0: हमें मिला है ग्राम जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना भावना बिंदु गोलू और कुसुमबाई नागनपुरे।
1: अयोध्या धाम से राजा बाबू शर्मा, राम बाबू शर्मा, राजबाबू शर्मा, सचिन शर्मा, शैलेन्द्र शर्मा, सौरभ शर्मा, सोनल शर्मा, साक्षी शर्मा, सिमरन शर्मा और सोनाली शर्मा।
0: और पोटिया कला दुर्ग से संजय कुमार साहू,
1: सिटी गोनियाना मंडी से गुरप्रीत सिंह जस्सल
0: और गांव फरांसी जिला हिसार से राजकुमार डूडी।
1: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए।
0: अरे वह फिर से आप सबका स्वागत है ये भी जानिए श्रृंखला में। श्रोताओं, इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं समुद्र की,
1: इसके रहस्यों की और मानवता को दिए जाने वाले इसके अमूल्य योगदान की। आइए सबसे पहले जानते हैं कि भारतीय शास्त्रों में इसे किन किन नामों से पुकारा गया है। इन नामों से भी समुद्र की विशेषताओं का पता चलता है। अजीत जी, अब आपकी बारी है।
0: जी विमलेश जी, तो साथियों, समुद्र का सबसे प्रचलित नाम है सागर
1: जी,
0: लेकिन इसे जलधि भी कहा जाता है, यानी जल को धारण करने वाला। अब आपकी बारी।
1: दूसरा प्रचलित नाम है रत्नाकर, यानी बहुमूल्य रत्नों का भंडार। विष्णु पुराण और भागवत पुराण में समुद्र मंथन का उल्लेख है। इस प्रक्रिया में बहुत से अलग अलग प्रवृत्ति वाले रत्न निकले थे।
0: श्रोताओं, समुद्र को अर्णव भी कहा गया है, यानी विशाल और गर्जन करने वाला। इसे सिंधु भी कहते हैं
1: जी,
0: यानी जल का विशाल बहता भंडार। तो श्रोताओं, ये हैं समुद्र के विभिन्न नाम जो हम अपने शास्त्रों में पाते हैं। आज हम विशेषकर बात करेंगे समुद्र की गहराई और इसके एक खास रहस्य के बारे में।
1: वैसे तो समुद्र अपनी गहराई के लिए जाने जाते हैं, लेकिन आज हम जानेंगे कि दुनिया का सबसे गहरा समुद्र स्थल कहाँ है। जी, चर्चा को आगे बढ़ाएं।
0: जी श्रोताओं, मरियाना ट्रेंच दुनिया का सबसे गहरा समुद्री क्षेत्र है, जो फिलीपींस के पास प्रशांत महासागर में है, और सबसे गहरे स्थान का नाम है चैलेंजर डीप।
1: यहाँ समुद्र 10,984 मीटर से भी अधिक गहरा है, यानी करीब 11 किलोमीटर गहरा।
0: विमलेश जी, इस तथ्य को और रोचक बनाते हैं एक प्रश्न से। क्या चैलेंजर डीप की गहराई माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई से अधिक है?
1: जी बिल्कुल, इस बात को एक तुलना से समझते हैं। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊपर है, जबकि समुद्र तल से नीचे चैलेंजर डीप की गहराई 10,984 मीटर है, यानी अंतर करीब 2 किलोमीटर का है।
0: 2 किलोमीटर का अंतर, अद्भुत सच में। यानी यदि माउंट एवरेस्ट को मरियाना ट्रेंच के चैलेंजर डीप में डाल दिया जाए तो यह पूरी तरह से डूब जाएगा
1: जी,
0: और ऊपर 2 किलोमीटर गहराई का पानी बचा रहेगा
1: जी।
0: अच्छा, चलिए वार्ता को कुछ और रोचक बनाते हैं। अभी हमने बात की माउंट एवरेस्ट की। सुना है कि समुद्र के अंदर भी पर्वत होते हैं।
1: जी बिल्कुल सही सुना है आपने। समुद्र के अंदर हमारी भूमि से अधिक पर्वत श्रृंखलाएं हैं, वहाँ बड़े बड़े ज्वालामुखी भी होते हैं। श्रोताओं को एक और रोचक बात बताऊं, समुद्र में भी एक ऐसा पर्वत है जिसकी ऊंचाई माउंट एवरेस्ट से भी अधिक मानी जाती है। नाम है माउना केया।
0: जी श्रोताओं, है ना रोचक बात। यदि पूरी पृथ्वी की बात करें तो इसमें समुद्र भी शामिल है
1: जी,
0: तो ये दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है, ये यानी माउना केया
1: जी,
0: और ये पर्वत प्रशांत महासागर में स्थित है
1: जी।
0: समुद्र के ऊपर दिखाई देने वाली ऊंचाई लगभग 4,000 मीटर है, लेकिन बाकी हिस्सा समुद्र के अंदर है। माउना केया की ऊंचाई आधार से लगभग 10,200 मीटर है, यानी जबकि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई लगभग 8,848 मीटर है।
1: ये एक ज्वालामुखी द्वारा निर्मित पर्वत है जो लाखों वर्षों में लावा जमा होते रहने से धीरे धीरे बना और परत दर परत जमा होकर इतना विशाल हो गया, आज ये एक आकर्षक पर्यटन स्थल और अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए जाना जाता है।
0: तो विमलेश जी, अब समाप्त करने से पहले श्रोताओं को समुद्र के बारे में कुछ और रोचक जानकारी दे दें
1: जी।
0: तो सबसे पहली जानकारी है, पूर्ण विकसित ब्लू व्हेल समुद्र का सबसे बड़ा जीव है। और मालूम है, इसका दिल एक सामान्य कार के आकार से भी बड़ा होता है
1: जी। समुद्र की गहराई के 3 भाग हैं। सतही क्षेत्र, ये वो भाग हैं जहां अधिकतर जीव पाए जाते हैं, यहां सूर्य का प्रकाश पहुंच पाता है।
0: और दूसरा क्षेत्र है मध्य क्षेत्र, यहां समुद्र का प्रकाश बहुत कम पहुंचता है, इसलिए कई ऐसे जीव यहां पाए जाते हैं जो खुद चमकते हैं।
1: और तीसरा क्षेत्र है बहुत ही गहरा क्षेत्र, यहाँ पूरी तरह से अंधेरा रहता है और जल का दबाव लाखों टन से भी अधिक होता है। सामान्य स्थिति में हम वहाँ कुचल जाएंगे, लेकिन फिर भी इस क्षेत्र में बहुत से जीव पाए जाते हैं। ये प्रकृति का चमत्कार नहीं तो और क्या है।
0: सच में ये प्रकृति का अद्भुत चमत्कार है। तो श्रोताओं, अब करते हैं समाप्त आज की चर्चा और अब सुनिए आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, समुद्र के सबसे गहरे स्थान का नाम बताइए। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: समुद्र के सबसे गहरे स्थान का नाम बताइए।
0: 8800440559 यानी हमारे IBRS नंबर पर और audio@cieet.nic.in पर आप अपना संदेश भेज सकते हैं।
1: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो करना मत भूलिएगा।
0: और अब सुनते हैं आज का विशेष शैक्षिक कार्यक्रम। शीर्षक है रविन्द्रनाथ टैगोर।
1: इस कार्यक्रम के द्वारा कविवर गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के जीवन, उनकी साहित्यिक रचनाओं और कविताओं के बारे में जानकारी दी गई है। उनके जीवन की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं को भी शामिल किया गया है और बताया गया है कि उनका व्यक्तित्व कितना बहुआयामी और विलक्षण था। रविन्द्र संगीत के बारे में भी इसमें चर्चा की गई है।
0: विश्व शिक्षक रविन्द्रनाथ टैगोर।

0: रविन्द्रनाथ ठाकुर के इस गीत में है निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा, चाहे कोई साथ दे या ना दे। आज भी रविन्द्र संगीत में वही ऊर्जा, वही शक्ति और वही प्रेरणा है। रविन्द्र संगीत हमारे दिलो दिमाग पर छा गया है, हमारी संस्कृति में रच बस गया है। बंगाल की माटी के कवि रविन्द्रनाथ ठाकुर की गीतांजलि काव्य कृति को 10 दिसंबर सन 1913 में एशिया में प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये संसार का सर्वोत्कृष्ट और दुर्लभ पुरस्कार है।
1: इस अवसर पर स्वीडिश अकादमी की नोबेल कमेटी के चेयरमैन हेरल्ड हर्जन ने कहा था, भारतीय कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने श्रेष्ठ आध्यात्मिक कविताओं की रचना की है। गीतांजलि ने बहुत से आलोचकों का ध्यान अपनी तरफ मोड़ा है और अब ये अंग्रेजी साहित्य में ही नहीं, अमेरिका और समस्त पश्चिमी दुनिया के साहित्य में भी उपलब्ध होगी। इसकी विशेषताएं हैं, कवि के विचारों में संपूर्णता, कविताओं में लयात्मक संतुलन, शब्दों का चयन, और किसी अन्य भाषा में इसका अनुवाद करना मुश्किल होगा।

0: गीतांजलि के गीतों में भारत के प्रति अगाध प्रेम और श्रद्धा है।
1: हेमोर चित्त पुण्य तीर्थ जागरे धीरे এই ভারতের মহামানবীর সাগর তীরে।
2: इस गीत में कवि ऐसी भारत की कामना करता है जहां हमारा मन निर्भय और मस्तक ऊंचा हो।
0: वे मनुष्य के कर्म को अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। भजन, कीर्तन, कंठी माला सब बेकार। किसे पूछते हो अंधियारे मंदिर में तुम बंद किए सब द्वार। कृषक जहां खेती करते हैं ईश वहां है।
2: गीतांजलि में प्रतीक्षा का भाव अनेक रचनाओं में है, चाहे वो ईश्वर की हो या ऋतुओं की। इसमें कुछ गीत भावात्मक हैं, कुछ सोनेट शैली में लिखे गए हैं। सोनेट 14 पंक्तियों के प्रगीतों को कहते हैं जो मुक्त छंद में लिखे होते हैं। कवि रविंद्रनाथ ने इन्हीं दिनों हमारे देश का राष्ट्रगान जन गण मन लिखा और स्वयं उसे गाया भी।
3: जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ युष्कल भंगा विंध्य हिमाचल जमुना गंगा उत्थल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मागे गाहे तब जय गाथा। जनगण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे।
2: बंगाल ही नहीं, उनके गीत देश विदेश गांव शहर हर जगह गाए और सराहे जाते हैं। भारत के सुप्रसिद्ध जाने माने साहित्यकार रविंद्रनाथ ठाकुर एक सशक्त गीतकार और संगीतकार ही नहीं, साहित्य की अनेक विधाओं में उन्हें महारत हासिल है। वे एक सुविख्यात कवि, नाटककार, उपन्यासकार, कथाकार, गद्यकार, निबंधकार, व्याख्याता, कुशल गायक, चित्रकार और नाट्य अभिनेता होने के साथ साथ विश्व के एक महान शिक्षक हैं।
0: देश ने मनाई रविंद्रनाथ ठाकुर की 150वीं जयंती। इस अवसर पर तेलुगु के प्रसिद्ध कवि समालोचक एन गोपी ने ठाकुर बाड़ी कविता लिखी। प्रस्तुत अंश उसी कविता का है। जोड़ा सांकों की एक पतली गली में है ठाकुर बाड़ी। उस गली ने खोल दिए हैं विशाल विश्व के प्रवेश द्वार। द्वार छोटे भले ही क्यों ना हो पर विहरण है दिगंतों तक। सात मई सन 1861 को इसी ठाकुरबाड़ी में पिता देवेंद्रनाथ की 14वीं संतान रविंद्रनाथ ठाकुर का जन्म हुआ। ये जगह उत्तरी कलकत्ता में है। कलकत्ता जो अब कोलकाता के नाम से जाना जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी के राज में इसे बनाया गया था। बचपन में रविंद्रनाथ ने बहुत से स्कूल बदले। स्कूल के बंधन उन्हें कारागार जैसे लगते। घर पर ही उन्होंने बांग्ला, संस्कृत, अंग्रेजी, इतिहास, भूगोल, विज्ञान, संगीत, चित्रकला आदि विषयों का अध्ययन किया। मगर घर में नौकरों का शासन भी था, जिसे रवि ने सेवकशाही तंत्र का नाम दिया। ये नौकर बच्चों को रामायण महाभारत की कथाएं सुनाते, उन्हें घेरे रहते और दंड भी देते।
2: रविंद्रनाथ ने लगभग 7-8 वर्ष की उम्र से लिखना शुरू किया। उन्हें नए शब्दों को गढ़ने में बहुत आनंद मिलने लगा और फिर नीले कागजों की बही पर गढ़ी जाने लगी कविता। उनकी प्रारंभिक रचनाओं में बनफूल तथा कवि काहिनी विशेष महत्वपूर्ण है।

0: और फिर वो दिन भी आया जब पिता 12 वर्ष के रविंद्रनाथ को अपने साथ हिमालय यात्रा पर ले गए। प्रकृति के प्रति लगाव को देखते हुए पिता ने उन्हें वहां घूमने और अपने विचारों को व्यक्त करने की आजादी दी। यहीं रविंद्र ने प्रकृति को जाना पहचाना और उसे महसूस किया।
1: कवींद्र रविंद्र को नदी का कवि भी कहा जाता है।
0: यही प्रकृति आगे चलकर उनके काव्य सृजन का सशक्त आधार बनी। 12 वर्ष की उम्र में ही रविंद्रनाथ ठाकुर की पहली कविता अभिलाष सन 1874 में तत्व बोधिनी पत्रिका के नवंबर दिसंबर अंक में छपी। फिर दूसरी रचना भारत उस समय की अमृत बाजार पत्रिका में प्रकाशित हुई। उनका मन संगीत में रचा बसा था। उन्होंने भक्ति, प्रकृति, देश प्रेम, ऋतुओं, उत्सवों सभी के गीत गाए। उन्होंने बंगला में गीतों की स्वरलिपि साधने में कठिन साधना की थी। सांध्य संगीत और प्रभात संगीत संग्रह उनके गीतों के दो महत्वपूर्ण काव्य संग्रह हैं। प्रभात संगीत संग्रह की एक चर्चित कविता है निर्झरेर स्वप्न भंग, जिसमें सूर्य किरण के स्वागत में झरना फूट पड़ता है, जो जिंदगी के उल्लास और आनंद का प्रतीक है।
1: बच्चों के लिए रविंद्रनाथ की पहली कविता है बृष्टि पड़े टापुर टुपुर। इसकी धुन लोकगीत जैसी है।

0: शिशु भोलानाथ आदि काव्य संग्रहों में रविंद्रनाथ द्वारा रचित बाल कविताएं हैं। बच्चों के लिए लिखी एक कविता दोपहर बड़ी मार्मिक है। इसका अनुवाद सिने जगत के प्रसिद्ध गीतकार गुलजार ने किया। ओ मां, अब मेरी छुट्टी करो ना, सुबह से पढ़ रहा हूं मैं, तुम्हारे कमरे में जाकर मैं पढ़ना खेलूंगा। अभी दोपहर है बस, कह दिया तुमने। उन्होंने बच्चों के लिए नाटक और कथाएं भी लिखी।
1: सन 1877 के आसपास इन्होंने लघु कथा कहानी की एक नई विधा को जन्म दिया। इस समय की कहानियां गल्पगुच्छ के नाम से प्रसिद्ध थीं। उनकी पहली कहानी है भिखारिणी, जो रविंद्रनाथ ठाकुर की साधना पत्रिका में प्रकाशित हुई। इनमें उन दिनों के अनुभवों पर आधारित कहानियां हैं, जब रविंद्रनाथ ठाकुर जमींदारी की देखभाल के लिए शजातपुर सियालदेह गांव का दौरा कर रहे थे।

0: यहीं वे नदी के किनारे नौकाओं पर रहते और लोगों की समस्याएं सुनते। इनसे मिलने के लिए किसानों, मल्लाहों, केवटों, चरवाहों, कुम्हारों, यात्रियों, गायकों, बालकों, शिक्षकों, सभी का मेला लगा रहता। वे अपने स्नेहयुक्त हृदय और उदारता के कारण बाबू मोशाय बन गए और इन्हीं में रविंद्रनाथ को मिलते गए अपनी कथाओं के पात्र भी।
1: जुलाई 1905, अंग्रेजी शासन ने भाषा और संस्कृति की दृष्टि से हिंदुओं और मुस्लिमों में भेद उत्पन्न करने के लिए बंग विभाजन किया। बंगीय जनता में तिलमिलाहट पनपी। रविंद्रनाथ ठाकुर ने इस अवसर पर अपने मातृभूमि से प्रेम और सांप्रदायिक एकता बनाए रखने के लिए बंगाल के लोगों का अपने गीतों द्वारा आह्वान किया।
2: আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি, চিরদিন তোমার আকাশ তোমার বাতাস আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি।

और फिर दिल दहलाने वाली नरसंहार की घटना घटी। अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग वाली त्रासद घटना के विरोध में उन्होंने नाइटहुड उपाधि लौटाई। इस संबंध में 30 मई 1919 को उन्होंने वॉइस

0: रॉय को पत्र लिखा।
1: अपने देश के लिए मैं इतना तो अवश्य कर सकता हूं, चाहे उसका नतीजा कुछ भी हो, कि मैं अपने करोड़ों देशवासियों के विरोध को वाणी दे सकूं। समय आ गया है, अब ये उपाधियों के तमगे हमारे अपमान के संदर्भ में लज्जास्पद लगते हैं।
0: रविंद्रनाथ ने नाट्य रचना के गुण विरासत में पाए। उन्होंने अपने नाटकों में बांग्ला यात्रा के लोक तत्वों और संस्कृत नाट्य परंपरा के तत्वों का सामंजस्य किया। इससे उस समय के रंगमंच को एक नया स्वरूप मिला। नाट्य से रविंद्रनाथ ने गीति नाट्यों की ओर रुख किया। उन्होंने संगीत को काव्य और नाटक का महत्वपूर्ण साधन माना है। रविंद्रनाथ ठाकुर एक शिक्षक हैं। वे जीवन और शिक्षा में सामंजस्य स्थापित करना चाहते थे। वे शिक्षा नीति अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जोड़े रखना चाहते थे। साहित्य, संगीत एवं अन्य कलाओं को शिक्षा में स्थान दिलाने का श्रेय रविंद्रनाथ ठाकुर को जाता है। उनका मानना था कि बच्चा अपने परिवेश और पर्यावरण से जुड़कर बेहतर सीख सकता है और समझ सकता है।
2: आमादेर शांति निकेतन, यानी हमारा शांति निकेतन।
3: आमादेर शांति निकेतन, आमादेर
2: शांति। सन 1901 में शांति निकेतन आरंभ हुआ, जिसमें रविंद्रनाथ ने शिक्षा की औपचारिक रटंत विद्या से अलग बच्चों की सृजन शक्ति के विकास के लिए भारत की प्राचीन आश्रम व्यवस्था को अपनाया। एक कवि की पाठशाला में उन्होंने लिखा,
1: बच्चे का अवचेतन संवेदनशील होता है और पेड़ों की तरह वह अपनी खुराक वातावरण से ग्रहण करता है। उसके लिए यह नियमों, रीतियों, पाठ्य पुस्तकों और पाठों से अधिक महत्वपूर्ण है।
2: शिक्षार हेरफेर निबंध में सशक्त निबंधकार रविंद्रनाथ ने मातृभाषा को शिक्षा का माध्यम बनाने पर जोर दिया। सामान्य स्कूलों की तुलना उन्होंने कारखानों से की है। भारतीय औपनिवेशिक शिक्षा व्यवस्था पर रविंद्रनाथ ने एक मार्मिक नीति कथा लिखी, तोते का प्रशिक्षण, जो पाठ्यपुस्तकों को बच्चों में जबरन ठूसने पर एक करारा व्यंग्य है। इस कहानी में तोते को ऐसी भयानक कष्टपूर्ण शिक्षा दी जाती है कि तोता मर जाता है। शांति निकेतन में बच्चों को पेड़ों के नीचे शिक्षा दी जाती थी और आज भी यही पद्धति जारी है। यहां बच्चों के बहुमुखी विकास के लिए अलग अलग प्रयोगशालाएं हैं, जहां सीखने की आजादी है। अब ये विश्व भारती विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। रविंद्रनाथ ने कहा था,
1: विश्व से एकात्म होने का अर्थ अपनी पहचान खो देना नहीं है, बल्कि सीखने सिखाने के लिए एक सौहार्दपूर्ण वातावरण पैदा करना है।
0: उनका मानना था, इस विश्व भारती में सभी देशों के शिक्षा संस्कृति के प्रतिनिधि शामिल हों, जिससे सारा संसार एक घोंसला बन जाए। और ऐसा हुआ भी। उनके प्रयासों से ही देश विदेश के विद्वानों को इस विश्व भारती में आमंत्रित किया जा सका।
2: वे स्त्रियों की शिक्षा के हिमायती थे। उस जमाने में भी उनकी कहानी, उपन्यासों के स्त्री पात्र, कविता लेखन और स्वतंत्र चिंतन के प्रतिरूप हैं। स्त्री शिक्षा निबंध में उन्होंने लिखा था,
1: विद्या यदि मनुष्यत्व प्राप्त करने का उपाय है और विद्या प्राप्त करना यदि मानव मात्र का जन्मजात अधिकार है, तो उसे इस अधिकार से वंचित न किया जाए। जो कुछ भी जानने लायक है वही विद्या है। पुरुष को भी जानना होगा, स्त्री को भी जानना होगा।
0: रविंद्रनाथ ठाकुर ने अनेक विधाओं में लिखा, पर स्वयं को मूलतः कवि ही माना। आमी कवि, मैं कवि हूँ, उन्होंने अपने 70वें जन्मदिन पर लिखा।
1: मैंने एक तपोवन का संधान करना चाहा था, शहर के भयावह घरों में नहीं, आकाश के खुले वितान के नीचे सुबह से शाम तक मैं इन लड़के लड़कियों के खेल का साथी बनना चाहता था। यही मेरा सच्चा कार्य रहा है, मेरी जगह वही है, धरती की गोद, इन पेड़ों, इन जंगलों में, इस धूल, इस तृण दल में मैंने अपना जीवन उंडेला है। जो धरती की आत्मा के निकट हैं, जो उससे ही बने, उसी में ढले हैं, जो अपना अंतिम विराम उसी में पाएंगे, मैं उन सब का मित्र हूं, मैं कवि हूं।
2: स्पेनिश, जर्मन, अंग्रेजी और विभिन्न विदेशी भाषाओं में रविंद्रनाथ की कृतियों का अनुवाद किया गया है। उनकी कविताओं की अंग्रेजी में अनुदित कृतियां हैं गार्डनर, फ्रूट गैदरिंग, द फ्यूजिटिव क्रेसेंट मून, न केवल भारत में अपितु जर्मनी, अमेरिका, इटली आदि अनेक देशों के पाठ्यक्रम में रविंद्र साहित्य शामिल किया गया है।

सुनकर पुकार तुम्हारी, आए नहीं कोई पास तो क्या, चल दो अकेले। जो कायर हैं छुपते हैं ओट लेकर, तुम चलो अकेले। अरे अभागे खोलो मन, तुम बोलो पगले एक अकेले। रेगिस्तानों में कोई साथ छोड़े तो भी क्या है, कांटों के पांव में चुभने से होता क्या है, रक्त सने पथ पर बढ़ लेना अकेले। तूफानी रातों में दीपक लेकर कोई खड़ा नहीं तो भी तुम चलो अकेले। तड़त ज्योति पीड़ा की बनने दो एकाकी मन में, चलते चलो अकेले, चलते चलो अकेले।

0: तो श्रोताओ, अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यही समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत को
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT, ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 9:30 हुए हैं।
4: सुनो ना।
5: हाँ?
4: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
5: तो रोका किसने है? हाँ?
4: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
5: मुझसे।
4: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
5: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
4: पर उससे मेरा क्या फायदा?
5: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
4: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
5: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
4: ओ, 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
3: आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से अब पेश है कार्यक्रम एक ही फिल्म से। आज की फिल्म

सलीम जावेद द्वारा लिखी और शेखर कपूर द्वारा निर्देशित इस फिल्म में मुख्य भूमिकाओं में हैं अनिल कपूर, श्रीदेवी, अमरीश पुरी, अशोक कुमार, सतीश कौशिक और अजीत वाच्छानी। फिल्म के निर्माता हैं बोनी कपूर। इस फिल्म का छायांकन बाबा आजमी का है और इसका संपादन किया है वामन भोसले और गुरुदत्त शिराली ने। इस फिल्म में ट्रेजेडी और कॉमेडी दोनों का संतुलन है। कॉमेडी की बात आती है तो याद आती है फिल्म की ये पैरोडी।

फिल्म मिस्टर इंडिया 80 के दशक की सबसे सफलतम फिल्मों में से थी, जिसका कथानक लीक से हटकर था। प्रोफेसर द्वारा आविष्कृत ऐसी कलाई घड़ी फिल्म के नायक अरुण वर्मा को मिलती है, जिसे पहनने पर वो अदृश्य हो जाता है। अरुण वर्मा इस चमत्कारिक घड़ी का प्रयोग देश हित में करना चाहता है। घड़ी का जादू देखकर वो आश्चर्यचकित हो जाता है और साथ में उसके साथ रहने वाले अनाथ बच्चे भी, जिनकी देखरेख वो करता है।

अब एंट्री होती है फिल्म के विलेन की। देश का दुश्मन मोगैम्बो देश का अहित करने उस लाल घड़ी को हासिल करना चाहता है जिसके लिए वो एड़ी चोटी लगा देता है। श्रोता जानते ही हैं कि फिल्म में मोगैम्बो का संवाद मोगैम्बो खुश हुआ एक आइकॉनिक डायलॉग बन गया था। इधर अरुण की मुलाकात पत्रकार सीमा यानी श्रीदेवी से होती है। दोनों का प्रेम परवान चढ़ता है और साथ साथ फिल्म की कहानी भी आगे बढ़ती है। इस फिल्म में कुल 5 गीत हैं जिन्हें लिखा है जावेद अख्तर ने, संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। ये सभी गीत काफी लोकप्रिय रहे हैं। सुनते हैं किशोर कुमार और अलीशा चिनॉय के सुर में ये गीत।

जी हाँ, 80 के दशक का सबसे रोमांटिक गीत आपने सुना किशोर कुमार और अलीशा चिनॉय के सुर में। श्रोताओं, ये सही है कि किसी भी फिल्म की सफलता के लिए टीम वर्क काम करती है, लेकिन ये बिल्कुल भी अत्युक्ति नहीं होगी कि फिल्म मिस्टर इंडिया की सफलता का, इसकी लोकप्रियता का 75% श्रेय जाता है फिल्म की नायिका श्रीदेवी को। इस फिल्म में उनका चुलबुला और शोखी भरा अंदाज लोगों ने खूब पसंद किया। इसी फिल्म के गीत हवा हवाई के बाद उन्हें मिस हवा हवाई का संबोधन मिलने लगा था। हम सबको याद है इस गीत में श्रीदेवी का शानदार और आकर्षक नृत्य। आइए एक बार फिर उन यादों को ताजा करें इसी गीत के जरिए। सुनते हैं फिल्म का सबसे ज्यादा सुना जाने वाला गीत हवा हवाई।

0: ये था आज का कार्यक्रम एक ही फिल्म से। आज इसमें हमने आपको सुनवाए फिल्म मिस्टर इंडिया के गीत। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। 9:55 होने को हैं। प्रादेशिक समाचार अब हम आकाशवाणी
1: ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत आज प्रदेश के सभी जिलों में सामूहिक विवाह समारोह आयोजित किए जाएंगे। विश्व रेड क्रॉस दिवस पर आज राजधानी रायपुर में राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। और धमतरी जगदलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग के चौड़ीकरण कार्य में स्वीकृत क्षेत्र से बाहर 8,000 से अधिक पेड़ों की कटाई के मामले में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत आज प्रदेश के सभी जिलों में सामूहिक विवाह समारोह आयोजित किए जाएंगे। इस प्रदेशव्यापी आयोजन में 2,300 से अधिक जोड़े विवाह बंधन में बंधेंगे। सभी जोड़े अपने अपने धर्म और रीति रिवाजों के अनुसार विवाह करेंगे। इनमें हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध और विशेष पिछड़ी जनजातियों के जोड़े भी शामिल हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि यह आयोजन सामाजिक समानता, सम्मान और एकता का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए सहारा बनी है। योजना के तहत प्रत्येक नवविवाहित दंपति को 35,000 रूपये की सहायता दी जाती है। महिला और बाल विकास विभाग ने इन समारोह के लिए सभी जिलों में भोजन, पेयजल, स्वास्थ्य सेवाएं और सुरक्षा सहित आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की हैं। विश्व रेडक्रॉस दिवस के अवसर पर आज राजधानी रायपुर में भारतीय रेडक्रॉस सोसायटी छत्तीसगढ़ राज्य शाखा द्वारा राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। यह कार्यक्रम शासकीय मेडिकल कॉलेज रायपुर के अटल बिहारी वाजपेयी ऑडिटोरियम में अब से कुछ देर बाद करीब 10:30 शुरू होगा। कार्यक्रम में वित्त मंत्री ओपी चौधरी मुख्य अतिथि होंगे, जबकि स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल इसकी अध्यक्षता करेंगे। उच्च शिक्षा मंत्री टंकराम वर्मा और राज्यसभा सांसद लक्ष्मी वर्मा विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होंगी। कार्यक्रम में प्रदेश भर से 2,000 से अधिक छात्र छात्राएं, स्वयंसेवक और सामाजिक कार्यकर्ता भाग लेंगे। समूह नृत्य, नाटक, प्रहसन और चित्रकला के माध्यम से रक्तदान, अंगदान, नशा मुक्ति और आपदा प्रबंधन जैसे विषयों पर जागरूकता संदेश दिया जाएगा। वहीं शाम

0: 4 बजे आयोजित पुरस्कार वितरण समारोह में विधानसभा अध्यक्ष डॉ रमन सिंह विजेताओं को सम्मानित करेंगे। आकाशवाणी के 90 वर्ष के स्मरणोत्सव के अवसर पर आज राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आकाशवाणी एक मैराथन का आयोजन करने जा रहा है। इस दौड़ में आकाशवाणी, दूरदर्शन और प्रसार भारती के कर्मचारी और उनके परिवारजन भाग लेंगे। आकाशवाणी की स्थापना वर्ष 1936 में हुई थी और यह आज भी देश के सबसे विश्वसनीय प्रसारण माध्यमों में से एक है। इस दौड़ के माध्यम से आकाशवाणी अपने गौरवशाली इतिहास को याद करने के साथ साथ फिटनेस, एकता और संपर्क के संदेश को भी बढ़ावा देगा। धमतरी जगदलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग 30 के चौड़ीकरण कार्य में बड़ी लापरवाही सामने आई है। वन विभाग की प्रारंभिक जांच में पता चला है कि स्वीकृत अलाइनमेंट से बाहर जाकर 8,000 से अधिक पेड़ों की कटाई की गई। मामले को गंभीरता से लेते हुए विभाग ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी है। वर्ष 2017 में इस परियोजना के लिए बालोद, कांकेर, कोंडागांव और बस्तर जिलों की 402 हेक्टेयर से अधिक वनभूमि के उपयोग की अनुमति दी गई थी। केशकाल वनमंडल में 10,731 पेड़ काटने की मंजूरी मिली थी, जहां समिति ने पाया कि 8,000 से अधिक पेड़ स्वीकृत क्षेत्र से बाहर काटे गए। वन विभाग ने जिम्मेदार तत्कालीन अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई का प्रस्ताव वरिष्ठ कार्यालय को भेज दिया है। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने हायर सेकेंडरी परीक्षा 2025 के उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में लापरवाही बरतने वाले 30 शिक्षकों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। मंडल द्वारा जारी आदेश में संबंधित शिक्षकों को अगले 3 वर्षों के लिए मंडल के विभिन्न कार्यों से ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। मौसम विभाग ने आज 20 से अधिक स्थानों पर बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार अगले 5 दिनों के दौरान प्रदेश में कुछ स्थानों पर तेज हवा चलने, बिजली गिरने और गरज चमक के साथ वर्षा की संभावना है। इधर गुरुवार को प्रदेश के 1-2 स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा दर्ज की गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत आज प्रदेश के सभी जिलों में सामूहिक विवाह समारोह आयोजित किए जाएंगे। विश्व रेड क्रॉस दिवस पर आज राजधानी रायपुर में राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा और धमतरी जगदलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग के चौड़ीकरण कार्य में स्वीकृत क्षेत्र से बाहर 8,000 से अधिक पेड़ों की कटाई के मामले में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन 11:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 10 बजे हैं। पेश है कार्यक्रम गुलशन। आज इसमें सुनिए मेरी रानू की पसंद के गीत।

सबसे पहला गीत केसरी फिल्म से बी प्रॉक के स्वर में। खास बात है गीत के लिरिक्स, जिसमें शानदार गीतकार मनोज मुंतशिर की कलम का जादू है। संगीत दिया है अर्को प्रभो मुखर्जी ने। सुनते हैं ये गीत।

किसी भी गीत के कर्णप्रिय होने में जितना उस गीत की धुन का प्रभाव होता है, उतने ही गीत के शब्द भी अहम होते हैं। बल्कि कुछ गीत तो उस रचना के कारण ही दिल में उतर जाते हैं, जो एक चित्र सा अंकित कर देते हैं दिल के आईने में। और इसमें सबसे पहला नाम आता है कलम के धनी गुलजार साहब का। इनके गीतों की लंबी सूची है जो मुझे पसंद है। बहरहाल, सुनते हैं फिल्म साथिया का गीत साधना सरगम और मुर्तजा के स्वर में।

कुछ गीत उनके फिल्मांकन के कारण याद रह जाते हैं। संवेदनशीलता जिन गीतों में उभर कर आती है, जिन्हें देखते जिन्हें महसूसते मन भर सा जाता है। जी हां, दर्द वो मानवीय पहलू जो भावुक इंसान को अंतस तक छू जाता है। और जब इस तरह के गीत पर्दे पर आते हैं तो लगता है ये हमारे ही भाव हैं, हमारे अपने भाव।

फिल्म सदमा याद है आपको, जिसमें अभिनेत्री श्रीदेवी ने एक अलग चरित्र जिया था। सच कहें तो श्रीदेवी का नैसर्गिक सौंदर्य और उनका सहज अभिनय इतना ज्यादा प्रभावित करता है कि लगता है वे हमारे आसपास का चरित्र ही जी रही हैं। कई चुनौतीपूर्ण अलग अलग भूमिकाएं उन्होंने निभाई हैं जो यादगार बन पड़ी हैं। फिल्म सदमा उनकी शुरुआती फिल्मों में से है जिसमें नायक कमल हासन का अभिनय भी कमाल का था। चलिए उन्हीं बीते दिनों में वापस चलते हैं जहां फिल्में स्वाभाविक जीवन का हिस्सा हुआ करती थीं।

जीवन में कुछ बातें तब असर नहीं करती जब हम उन्हें सीधे कहते हैं, बल्कि तब ज्यादा असरदार होती हैं जब उन्हें अप्रत्यक्ष कहा जाए। जो हमारे अपने होते हैं ना, वे बातों की गहराई को खूब समझते हैं। कुछ गीत ऐसे भी हैं जो भले ही ज्यादा लोकप्रिय ना हुए हों, लेकिन वो कानों में रस खोलते हैं। और जब उन गीतों में लता जी की आवाज का शहद हो, तो उसका आनंद तो परिभाषा से परे होता है ना।

कुछ गीत प्रेम के माधुर्य से लबरेज होते हैं, जिन्हें सुनकर हम अपनी कल्पना की अलग दुनिया बसा लेते हैं। ऐसी दुनिया जहां हम प्रेम को केवल महसूस ही नहीं करते, बल्कि उन्हें बंद आंखों में जी लेते हैं। अपनी खामोशी में मुझे ढूंढते क्यों हो, अपनी धड़कनों से पूछो, मेरा बसेरा वहां भी है।

इस गीत के साथ ही कार्यक्रम गुलशन अब संपन्न होता है। इसमें आज आपने मेरी रानू की पसंद के गीत सुने। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 10:30 हुए हैं। प्रस्तुत है लोक गीतों का कार्यक्रम गुड़दुम। आज इसमें सुनिए बल्लू राम और साथियों के स्वर में हल्बी गीत।

0: आपके सपनों को साकार करने और हर इम्तिहान में आपके साथ चेट्टीनाड सुपर ग्रेड सीमेंट, मजबूत नींव बनाने के लिए एक ही नाम चेट्टीनाड सीमेंट।
1: आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से आप सुन रहे हैं लोक गीतों का कार्यक्रम गुड़दुम। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं हल्बी गीत। कलाकार हैं बल्लू राम और साथी।

0: किसान भाई बहन मन का जे नुआ वार्ड एदाए रोज शनिवार के सांझ बेरा 7:30 ले 8 तक सुना फोन इन किसान वाणी यथा कृषि महकमा चो विशेषज्ञ बल्लो ने खोजाकारी दादा दीदी दे दे आपन मन चो खेती कमाने लिए जुड़लो सपाय समस्या चो समाधान बीज ले धरून हाट बाजार तक हर सवाल चो जवाब सीधा आपन मन के मिरे दे। और हाँ, ये कार्यक्रम चो रिकॉर्डिंग होय से रोजे मंगलवार अड़ौ पहाड़ 3:30 ले 4 तक। तो आपन मन सपाय सुना और आप लोग सवाल सीधा आम के फोन ने सांगा। आमचो फोन नंबर आए 07782226666। फोन इन किसानवाणी आपन मंचो सवाल आपन मंचो कहानी खेती बाड़ी चो जुबानी आकाशवाणी जगदलपुर ने।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700001424।
1: ओ 8700001424। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001424 पर।
3: आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से आप सुन रहे हैं बस्तर के लोकगीतों का कार्यक्रम गुड़दुम। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं बल्लू राम और साथियों के स्वर में हल्बी गीत।

0: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
1: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
0: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
1: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
0: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
1: 8700001-4242।
2: माटी की सौंधी खुशबू के साथ,
3: पवन के ठंडे झोंके के साथ
2: हिलोरे लेगी
3: आकाश की वाणी।
2: आकाशवाणी
4: विज्ञापन के लिए संपर्क करें आकाशवाणी जगदलपुर आकर,
2: या फोन करें 222-150 या 222-400,
3: 222-150 या 222-400।
5: आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से आप सुन रहे हैं लोक गीतों का कार्यक्रम गुड़दुम। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं बल्लू राम और साथियों के गाए हल्बी गीत।

लोकगीतों के कार्यक्रम गुड़दुम में अभी आप सुन रहे थे बल्लूराम और साथियों के गाए हल्बी लोकगीत। मीडियम वेव 396.82 मीटर यानी 756 किलोहर्ट्ज और एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। आप हमारे कार्यक्रम मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR के माध्यम से भी सुन रहे हैं। सुबह के 11 बजे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: किसान भाई बहनों के लिए आकाशवाणी जगदलपुर की नई पहल, अब हर शनिवार को शाम 7:30 बजे से 8 बजे तक सुनिए फोन इन किसान वाणी, जहां कृषि विशेषज्ञ देंगे आपकी खेती से जुड़ी हर समस्या का आसान समाधान। बीज से लेकर बाजार तक हर सवाल का जवाब सीधे आपके लिए। और हाँ, इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी हर मंगलवार दोपहर 3:30 बजे से 4 बजे तक, तो आप भी जुड़िए और अपने सवाल हमें सीधे फोन पर बताइए। हमारा नंबर है 07782222666। फोन इन किसान वाणी, आपकी आवाज, आपकी कहानी, आपके खेतों की जुबानी।
2: और अब पेश है कार्यक्रम एक ही कलाकार।

श्रोताओं, आज हम इस कार्यक्रम में बात करेंगे हिंदी सिनेमा के एक ऐसे संवेदनशील और सशक्त अदाकारा की जिनकी मुस्कान में सादगी है और अभिनय में गहराई। जी हाँ, आज की हमारी कलाकार हैं महान अभिनेत्री दीप्ति नवल। दीप्ति नवल एक ऐसा नाम जो 70 और 80 के दशक के सार्थक सिनेमा की पहचान बन गया। 3 फरवरी 1952 को अमृतसर में जन्मी दीप्ति नवल ने अपने अभिनय के करियर की शुरुआत ऐसे समय में की जब हिंदी सिनेमा में पैरेलल सिनेमा यानी यथार्थवादी फिल्मों का दौर चल रहा था। उन्होंने अपने अभिनय से ये साबित किया कि बिना किसी दिखावे के भी दिलों में जगह बनाई जा सकती है।

दीप्ति नवल की पहली फिल्म श्याम बेनेगल की जुनून थी, जो कि 1978 में बनी थी। दीप्ति नवल ने चश्मे बद्दूर, किसी से न कहना, कथा, अनकही, मिर्च मसाला, साथ साथ जैसे कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया। 1981 में आई फिल्म चश्मे बद्दूर ने दीप्ति नवल को घर घर पहचान दिलाई। दीप्ति नवल और फारूक शेख की जोड़ी ने हिंदी सिनेमा में खास मुकाम हासिल किया।

80 के दशक में फारूक शेख और दीप्ति नवल दोनों की जोड़ी सबसे फेमस जोड़ियों में से एक थी। दीप्ति नवल अपनी सादगी के दम पर अपने प्रशंसकों के दिलों पर राज करते थे। उनकी मासूमियत, उनकी मुस्कान और उनकी सहज अदाकारी ने दर्शकों को दीवाना बना दिया। 1980 में आई फिल्म हम पांच को अगर हम याद करें तो बड़े बड़े नामों के बीच एक मासूम से मुस्कान वाली लड़की भी नजर आती है। दीप्ति नवल मिथुन चक्रवर्ती, संजीव कुमार, शत्रुघ्न सिन्हा और अमजद खान जैसे दिग्गजों की मौजूदगी में भी दीप्ति की सादगी और नेचुरल एक्टिंग लोगों का ध्यान खींचने में कामयाब रही। फिल्म हम पांच ने आम दर्शकों के बीच उनकी एक मुकम्मल पहचान बनाई। सुनते हैं इसी फिल्म का गीत।

आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से आपकी सेवा में प्रसारित किया जा रहा है कार्यक्रम एक ही कलाकार। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं सुप्रसिद्ध अभिनेत्री दीप्ति नवल पर केंद्रित कुछ फिल्मी गाने। दीप्ति नवल फिल्म कथा में एक सरल और समझदार युवती का किरदार निभाया है, तो वहीं मिर्च मसाला जैसी सशक्त फिल्म में उन्होंने महिला सशक्तिकरण की कहानी को जीवंत किया। दीप्ति नवल की खासियत ये रही कि उन्होंने हमेशा ऐसी भूमिकाएं चुनी जो समाज के आम इंसान की कहानी कहते थे। सिर्फ फिल्मों तक ही सीमित नहीं रही दीप्ति नवल, वे एक बेहतरीन कवित्री, लेखिका और चित्रकार भी हैं। उनकी रचनाओं में भी वही संवेदनशीलता झलकती है जो उनके अभिनय में दिखती है। टीवी की दुनिया में भी उन्होंने अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई। थोड़ा सा आसमान और मेड इन हेवन जैसी सीरीज में उनका अभिनय बेहद सराहा गया। दीप्ति नवल कभी भी भीड़ का हिस्सा बनने की कोशिश नहीं की, बल्कि अपनी एक अलग राह बनाई और उसी पर चलकर सफलता हासिल की। अब हम आपको सुनवाते हैं फिल्म किसी से न कहना का ये गीत।

हम जब भी दीप्ति नवल के अभिनय की बात करते हैं तो वो सिर्फ एक अभिनेत्री ही नहीं बल्कि हिंदी सिनेमा में सशक्त महिला किरदारों की मिसाल है। उन्होंने साबित किया कि एक सशक्त महिला कलाकार सिर्फ ग्लैमर से नहीं बल्कि अपने हुनर, सादगी और सोच से लोगों का दिल जीतती हैं।

वर्ष 2011 में 3 दशक बाद टेल मियो खुदा फिल्म में फारूक शेख के साथ दीप्ति नवल नजर आई। 1980 के दशक में दीप्ति नवल का करियर काफी सक्रिय हुआ। 2000 के दशक में उन्होंने बवंडर और फिराक जैसी सामाजिक फिल्मों में वापसी की। सुनते हैं फिल्म कथा का ये गीत।

श्रोताओं, दीप्ति नवल का व्यक्तित्व हमें ये सिखाता है कि सच्चाई और सादगी ही सबसे बड़ी ताकत होती है। वे एक ऐसे कलाकार हैं जिनकी आंखों में भावनाओं की गहराई है, आवाज में अपनापन है और जिनके अभिनय में सच्चाई की चमक है। उनकी यही सच्चाई आज भी हर दिल को छू जाती है।

एक ही कलाकार। अभी आप सुन रहे थे हमारा ये दैनिक कार्यक्रम। आज का हमारा ये कार्यक्रम केंद्रित था मशहूर अभिनेत्री दीप्ति नवल पर। ये कार्यक्रम आपकी सेवा में आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से प्रसारित किया गया। 11:30 हुए हैं। रुसरुसा कार्यक्रम में लीजिए सुनिए लोक गाथा मैनामती रानी का छठवां भाग। गायिका हैं कचराबाई और साथी।

आओ बे आओ बे टूरी निरामयी चंडाली घोड़ा ने बस बे टूरी निरामयी चंडाली ओस ने बोले से बे डल चौ राजा जय सने बोले से

예, 불에.

असने बोले से ये बे यादानी बुरी जाए असने बोले से ये बे यादानी बुरी जाए अले कोना लगे आसेर नानी बेटा के दखे जाओ बे जाओ बे नानी ने बे बोलून बोले तुई कुमा कलस बाई दिया बारो बे ए कुमा कलस बाई दिया बारो बे ए गाँव ने सागर बाई रे प्रजापति गाय गाँव ने सागर बाई रे प्रजापति गाय जात जात एवे जमाए जुल जात जात एवे ने परी

ইতে পাবন্ধুক।

त प्रजापति संगे जमाए जासो बे बाजा मोहरी बे कुड़मा छूटे से बाजा मोहरी बे कुड़मा छूटे

ভেট ইল বললি হরিচ মার এ গুপু না গেলি সে এবে আয়া দানি

হিমায়না মতি রানী কেয়াবি গুণিন ভাবি কে ডাল চ রাজা কে এবে।

দানি বুড়ি যায়। গাগুনা গাগুনা এবে ডাল চাও

তু যাবু আরিয়া মায়না মাতি

मैं तू जो काजे रे बेटा महला जाते बे मैं गोटो गोटो माने बेटा जोड़ा जोड़ा बुआरी मैं माला जाऊ।

0: लोक गाथाओं के कार्यक्रम रूसरूसा में अभी आप सुन रहे थे लोक गाथा मैनामती रानी का छठवां भाग। गायिका थी कचराबाई और साथी। इस लोक गाथा का अगला भाग हम आपको सुनवाएंगे रविवार 10 मई को। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। 11:55 होने को हैं। प्रादेशिक समाचार अब हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले कर रहे हैं।
1: आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत आज प्रदेश के सभी जिलों में सामूहिक विवाह समारोह आयोजित किए जा रहे हैं। हायर सेकेंडरी परीक्षा की उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन में लापरवाही बरतने वाले 30 शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई। और जांजगीर चांपा जिले में धान खरीदी में करीब 125 करोड़ रूपए की गड़बड़ी के मामले में 7 कर्मचारियों के खिलाफ FIR। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत आज प्रदेश के सभी जिलों में सामूहिक विवाह समारोह आयोजित किए जा रहे हैं। इस प्रदेशव्यापी आयोजन में 2,300 से अधिक जोड़े विवाह बंधन में बंधेंगे। सभी जोड़े अपने अपने धर्म और रीति रिवाजों के अनुसार विवाह करेंगे। इनमें हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध और विशेष पिछड़ी जनजातियों के जोड़े भी शामिल हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि ये आयोजन सामाजिक समानता, सम्मान और एकता का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि ये योजना आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए सहारा बनी है। योजना के तहत प्रत्येक नवविवाहित दंपत्ति को 35,000 रूपये की सहायता दी जाती है। महिला और बाल विकास विभाग ने समारोह के लिए सभी जिलों में भोजन, पेयजल, स्वास्थ्य सेवाएं और सुरक्षा सहित आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की हैं। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने हायर सेकेंडरी परीक्षा 2025 की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में लापरवाही बरतने वाले 30 शिक्षकों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। मंडल द्वारा जारी आदेश में संबंधित शिक्षकों को अगले 3 वर्षों के लिए मंडल के विभिन्न कार्यों से ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के दौरान कई छात्रों के अंकों में 20 से 40 तक की बढ़ोतरी सामने आई। इसे गंभीर त्रुटि मानते हुए मंडल ने जांच के बाद संबंधित शिक्षकों पर कार्रवाई की है। मंडल ने संबंधित शिक्षकों की एक वेतन वृद्धि संचयी प्रभाव से रोकने की भी अनुशंसा की है। जांजगीर चांपा जिले में धान खरीदी में गड़बड़ी उजागर हुई है। जिले के 3 धान खरीदी केंद्रों कीरित, कड़ारी और बिर्रा में करीब 4,700 क्विंटल धान का गबन किया गया है, जिसकी कीमत 1,29,00,000 रूपये बताई जाती है। मामले के सामने आने के बाद 3 थानों नवागढ़, बिर्रा और बाराद्वार में 7 कर्मचारियों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। इनमें संस्था प्रबंधक, खरीदी प्रभारी, ऑपरेटर और हमाल शामिल हैं। ये सभी 7 आरोपी फरार बताए जाते हैं। धमतरी जगदलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 30 के चौड़ीकरण कार्य में बड़ी लापरवाही सामने आई है। वन विभाग की प्रारंभिक जांच में पता चला है कि स्वीकृत अलाइनमेंट के बाहर जाकर 8,000 से अधिक पेड़ों की कटाई की गई। मामले को गंभीरता से लेते हुए विभाग ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी है। वर्ष 2017 में इस परियोजना के लिए बालोद, कांकेर, कोंडागांव और बस्तर जिलों की 402 हेक्टेयर से अधिक वन भूमि के उपयोग की अनुमति दी गई थी। केशकाल वनमंडल में 10,731 पेड़ काटने की मंजूरी मिली थी। जांच समिति ने पाया कि 8,000 से अधिक पेड़ स्वीकृत क्षेत्र से

0: भर काटे गए। वन विभाग ने जिम्मेदार तत्कालीन अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई का प्रस्ताव वरिष्ठ कार्यालय को भेज दिया है। विश्व रेडक्रॉस दिवस के अवसर पर आज राजधानी रायपुर सहित शासकीय मेडिकल कॉलेज के अटल बिहारी वाजपेयी ऑडिटोरियम में भारतीय रेडक्रॉस सोसायटी की छत्तीसगढ़ शाखा द्वारा राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। कार्यक्रम की अध्यक्षता स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल कर रहे हैं, जबकि मुख्य अतिथि के रूप में वित्त मंत्री ओपी चौधरी शामिल हो रहे हैं। वहीं उच्च शिक्षा मंत्री टंकराम वर्मा और राज्यसभा सांसद लक्ष्मी वर्मा विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हो रहे हैं। सक्ती जिले के नंदेली गांव के बस स्टैंड के पास कल देर रात दो वाहनों में भिड़ंत होने से कार सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई है। वहीं आमाकोनी गांव के सरपंच ओमकार चंद्रा सहित चार लोग घायल हुए हैं। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जयपुर पुलिस मामले की जांच कर रही है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत आज प्रदेश के सभी जिलों में सामूहिक विवाह समारोह आयोजित किए जा रहे हैं। हायर सेकेंडरी परीक्षा की उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन में लापरवाही बरतने वाले 30 शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई और जांजगीर चांपा जिले में धान खरीदी में करीब 1.25 करोड़ रुपए की गड़बड़ी के मामले में 7 कर्मचारियों के खिलाफ FIR। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन छत्तीसगढ़ी में होगा, जिसे शाम 6:10 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 396.82 मीटर यानी 756 किलोहर्ट्स और FM बैंड 100.1 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। आप हमारे कार्यक्रम मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR के माध्यम से भी सुन रहे हैं। दोपहर के 12 बजे हैं।
2: आपके सपनों को साकार करने और हर इम्तिहान में आपके साथ चेट्टीनाड सुपर ग्रेड सीमेंट, मजबूत नींव बनाने के लिए एक ही नाम चेट्टीनाड सीमेंट।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: जाए निखार।
1: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
2: आपके सपनों को साकार करने और हर इम्तिहान में आपके साथ चेट्टीनाड सुपर ग्रेड सीमेंट, मजबूत नींव बनाने के लिए एक ही नाम, चेट्टीनाड सीमेंट।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: किसान भाई बहन मन का जे नुआ उवाड एदाए रोज शनिवार के सांझ बेरा 7:30 बजे ले 8 बजे तक सुना फोन इन किसान वाणी यथा कृषि महकमा चो विशेषज्ञ बल्लो ने खोजाकारी दादा दीदी दे दे आपन मन चो खेती कमाने लिए जुड़ लो सपाय समस्या चो समाधान बीज ले धरून हाट बाजार तक हर सवाल चो जवाब सीधा आपन मन के मिरे दे। और हाँ, ये कार्यक्रम चो रिकॉर्डिंग होए से रोजे मंगलवार अड़ौ पहाड़ 3:30 बजे ले 4 बजे तक तो आपन मन सपाय सुना और आप लोग सवाल सीधा आम के फोन ने सांगा। आमचो फोन नंबर आए 07782226666। फोन इन किसानवाणी आपन मंचो सवाल आपन मंचो कहानी खेती बाड़ी चो जुबानी आकाशवाणी जगदलपुर ने।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हम आकाशवाणी जगदलपुर से बोल रहे हैं। लीजिए अब सुनिए लोक साहित्य पत्रिका कार्यक्रम मोचो माटी। इस कार्यक्रम के संपादक हैं बलबीर सिंह कच्छ।

0: पूरा देश देश तो रवान्तोर लेरा
1: इंगो
0: राजा नाती हारिंजोर लेरा
1: इंगो
0: से ओना सेलियन तो पांड्री आंगोस दहीन तोर लेरा
1: इंगो
0: राजा ना ही तो गायता आल तो न

0: कहे मूला पुना विचिन दूसरा बुद्धिन कीन तोर ले रा
1: नो
0: मावोर कोई तोर माने यदा माय वाड़िंदा ना ले रा
1: इंदो
0: अपू ना परगान परगान ते वह ना ले गोतो
1: इंदो
0: आयो बारा के वाड़ ले रा
1: इंदो
0: गायता हरा नियाम ले रा
1: इंदो
0: अचो तो अचो तिहारी मारी।

मोचो माटे, अभी आप सुन रहे थे ये लोक साहित्य पत्रिका कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के संपादक थे बलबीर सिंह कच्छ। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। 12:30 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं ग्रामीण महिलाओं का अपना कार्यक्रम घर द्वार।

0: जुहार दीदी मन, जुहार। घर द्वार कार्यक्रम सुन तो सपाए दीदी मन और बहन मन के मैं दसरी करें से जुहार। और दीदी मन रोज दिन आसन नन पीला मन के मुझे बाटले खूबे खूबे मया। तो दीदी मन देखा अम्मी मेहरार मन के देखा कई ठन काम बुता हुए से घरे रोजे दिन बिहान पहली बोले उठून हम करूँ से और बोलो ने दिन भर कहीं ना कहीं नानी नानी बुता मन बल रहस छो करते रहूँ से संगे संगे पीला मन चो देखा रखा संगे संगे घर द्वार चो छुक छुका बना तो ये सब पाए काम तो रह से। तो दीदी मन देखा तुम ही सब पाए जाने सास की हमी मेहरार मन के जो मासिक धर्म हो से जश्न महीना हो से ये सब पाए हम ही जानू से और ये बलनो ने गोटोक प्राकृतिक प्रक्रिया है असन समय ने हमके खिंडी के साफ सफाई बाटे खूब ध्यान दे तो रहे कसन बलन दीदी मन हमी देखू से कि आगे जुगे तो हम जो बहन दीदी मन खाली सुन सूती फटी के काम ने अंतर हो मंतर दीदी मन आजिकाली समय बदल लिया समय संगे संगे हम जो जसन ये सब पाए जसन भाग ने बल बाढ़ती होली से और इसी संगे संगे हम जो ने महावारी समय ने जसन पिंतु का जे हमके जो सेनेटरी पेड मन बले बन ले से। तो दीदी मन देखा असन ये पेड मन के हमके काम ने अंतर है कसन बोलो दीदी मन देखा हमी कपड़ा फटी के तो हम काम ने आनू से मानतर दीदी मन देखा चोले हमी जसन कपड़ा फटी मन खिंडी का नंगत साफ सफाई नहीं रहो ने हमके काय का एक ठन बीमारी बल हो सके। तो एक आज दीदी मन जो जन सेनेटरी जोन पेड है ए थाने बोलो ने हम एक ही हमी काम ने आन लो बोले हमके हमी रोग बीमारी ले हमी बाचुक सकूं। तो दीदी मन देखा हमी जसन हमी और असन समय ने दीदी मन हमके जसन हमी ये पेड मन के बोले हमी काम ने अनु से तो असन समय ने हमके हाथ के बोले नंगत छुक छुका संगा तो रहे और इचो संगे संगे हम चो जसन हम चो खाओ तो जसन होए से साग भाजी एक बोले हमके जसन साग डार होए से पाक फल होए से असन समय ने हमके जुगे खाओ तो रहे और जसन पानी बोले जुगे पीऊ तो रहे असन समय ने। तो दीदी मन देखा हमी जसन कोनी कोनी हम जो बहन दीदी मनात एवन के तो असन जसन महावारी हो से असन समय ने खूबे पेट दुखा बल हो से तो असन ने दीदी मन हाँ और खिंडी के हमके जसन महावारी बल जुगे जाए से तो असन समय ने दीदी मन हमी डॉक्टर ले सलाह धरुन भाती हमी हुन मन ले दवा वखत बल धरुक सकूँ ना ले हुन मन ले सुझाव बोले धरुक सकूँ। तो दीदी मन देखा हमी तो इस अपाय गोट के हम चो घर चो जोन लेकी मनात अभी बेटी मनात इवन उनके हमके खिंड हुन मन के लेख कर तुरा हुन मन के समझा तो रहे और असन जसन ऐसे ने टेरी पेड मना एक एक काम ने अंतो गोट के बल हुन मन के सांग तो रहे। और दीदी मन देखा हम चो जोन घर चो एले पहले बल हम रसो जोन दीदी बहन मनात इवन उनके बल्ले सफाई गोट मन के सांग तो रहे कसन बल्ले ने आज बल्ले हम देखू से कई जन हम चो बहन मन असन समय ने कपड़ा के काम ने आंसो तो ये सब पाए के दीदी मन हमी जानू से तो हमी दूसर के बल हमी सांगू सकूं और इवन के कैक बोलो ने साफ सफाई का बल सांग तो रहे तो हमी कैक ठन इनके बीमारी बल हमी बचा सकूं। तो दीदी मन देखा ये गोट मन तो होली अंदर हम चले गए और नगद गोट मना से अले की बोले सुनो
1: सो बिड़किन बिड़िया राहत तिंदनत उंडाना सामान तलाय दरकता डबल रोटी आरी और छेना पनीर असित के इंजे जीएसटी लगे मयो इदेन संगेन 33 जरूरी दवाई नद मोला वेंट कम की सित तोड़ अदेन के इलाज तले खर्चा वेंट कम लगे माता जीवन बीमा तगवेंट इंजे जीएसटी छूट दोरकिता अदेन के पॉलिसी पोईतनत इंजे सस्ता आंता सुडला कार गाड़ी और 350 सीसी ता होटरो गाड़ी ता पर्रो 28% जीएसटी मत्ता अद कम मास इंजे 18% अत्ता इदेन मतलब इद की इंजे गाड़ी पोटरू गाड़ी असित के सस्ता दोरकीता।
2: आपके सपनों को साकार करने और हर इम्तिहान में आपके साथ चेट्टीनाड सुपर ग्रेड सीमेंट मजबूत नींव बनाने के लिए एक ही नाम चेट्टीनाड सीमेंट।
0: तो दीदी मन एक गुट मन के तो सुन लू। तो दीदी मन देखा तो उन मन का जो रोज दिन हमी असन भेंट वार्ता है कहने आए नाटक आए सब पाए धरण अमरू से तो उसने आजी वाले दीदी तो उन दीदी मन तो उन मन का जी असने भेंट वार्ता भीतरे में हम मयान ले से गोटो को बहिनात लोग गाय के हम चपुरे अमरला सोत और ए बहिनात रेमती कश्यप और ए मन संगे गुट बात कर सोत हितेंद्री जोशी तो वाले ए मन चो गुट बात के अम्मी वाले सुनो
3: गीत बल्लो ने मन के हरिक लागे से और असनी आजी आम चो लगे गीत कुरीन दीदी इली से अले दीदी चो नाव के पूछवा सबले पहल तो दीदी तुमके जुहार
4: जुहार
3: अले तुम चो नाव के सांगा
4: रही मती कसे अपते कामेटा
3: टेका मिटा ले तो दीदी तो बोलो ने ऐसा तुम्ही रेडियो ने कसन का जी आजी अमर ला सहा साले सांगाते
4: भी गीत गात का जान ला से जाने
3: तो बोलो खास टेका मिटा नहीं तुमसे गाँव आया
4: तो, बाबा गाँव गाँव नहीं आए
3: तो काय का गीत गाओ आज दीदी आजी अल का
4: आदिवासी गीत जाने जाने हल्बी गीत
3: आले सुनाम दिया
4: गीत तो आए बोल बोल बोली
3: आले कि गाते गालो ने हरिक लागे दे आले सुनाऊं दिया स्मो के गीत के
4: ये देखारे वाली सपन तेरली का समुद के जो दरला बोली गंगा मुंडार पानी सबू सरी गलाली वाली बैठा की गली कुमार कचरा पोनारा परा का गोच काटालुआरा तोरटा बूटा के झुमरा ढाकली सोई देला सरपटा

वासी सरगी पाना के किल लुकली का मुली आट दीवी बोली जगदलपुरिया मन के कदी बुलोली का चाऊर बुआ भी बोली गाय के गौरव

झुमका झुमाली, बाटा सुना पोली रे झुमका झुमाली, जानू बाटा सुना पोली रे झुमका झुमाली, जुआरा जगते जाय रे झुमका झुमाली, जानू जुआरा जगते जाय रे झुमका झुमाली, नानी झुमका झुमाली, बोला रे मारी रे सोना नुआ गाँव पोलवा बाटे जाइनी होए बोलू तानी सकसन पीला गाँद मालंगी माल सुन गरी धनियावास धनियावास मारी रो सोना मोर टपोलिया टेंड टेंडला बोलू तानी सकसन पीला गाँद मालंगी मान खाले झूल ऊपर से लारे।

0: तजानी सकसन मालंगी मांस पुरधान के बांधला से लार बांधला से लार मारी रोजना बाकती लगे बाजूर मोडाला बोलू तजानी सकसन हिला गांद मालंगी मान दीरा गुड़ा रान के सोपार रान के सोपार मारी रसना धुमा गुड़ा उमलो के रा बोलू तजानी सकसन हिला गांद मालंगी मान चोकर गांच बाजूर गेला रे।
1: हाँ तो दीदी ये तो पक्की गीत रही और ये गीत के किदल दाले गाय सी सोले
0: शीला बेरा लगा
1: शीला बेरा ले नहीं
0: हम क्या गए हलविचिया।
1: हाँ तो गीत बोले इतरो सुंदर लागली कि ये चलो गे बाजा गाजा बोले कम बोलो ने नी होले ने बोले अच्छा लागे से तो आले फिर तुम से गीत के सुने खूब हरिक लागली आले फिर जुहार भेंट करूं तेवे आले जुहार तेवे
0: जुहार।
2: तो दीदी मैंने तो काय सुंदर दीदी हमके गाउन भाती आप लोग जो कला है हुनर आए ले हमके गीत के गाउन सुनाते रहला और ए बहन रहो श्री रायमती कश्यप और ए मन संगे गोट बात करते रहो थितेंद्री जोशी। तो दीदी मन देखा असने तुवन मन बल देखा असने कहीं ना कहीं असने हुनर कला जाना सा जाल तुवन मन बल दीदी मन कहीं ना कहीं असन गीत आए कहनी आए सब पाए के तुवन मन बल गाओ कुन गाउन भाती आप लोग कला के लोक चुपुरी आनुक सका। तो दीदी मन और जसन हम जो बहन मन बल कई झन असन कहीं ना कहीं जसन कमानी धमानी वाट बल जान सो तो ये भितरे बल दीदी मन देखा ये भारतीय समिया है भारतीय समिया ने हम की उगाए बसुर तो नहीं हुए बल्लू ने घरे तो खाओ तो लोग जुगे हो सो तो कमा तो लोग गोटो तो पैसा कौड़ी चुपल डंड हो से तो असन ने दीदी मन देखा हम केवल कहीं ना कहीं असन जसन हम जानू बना तो काजे तो हम ही बना उन भाती दुई पैसा कमाऊ बोले सकू। तो दीदी मन दिखाई कमानी चो गुड बात मन तो होली मन तो संगे संगे गीत गोविंद बोले हम चो जीवना ने खूब जरूरी हो से तो आले एक गीत के सुनो और एक गीत के गाओ सो त्रास्त्री देव और हम चो संगवारी मन।

तो दीदी मैंने तो काय सुंदर गीत रहे और ए गीत के गाउन रहो त्रासरी देव और एमचो संगवारी मन। तो दीदी मन देखा एबी बल्लो ने पीला मन चो स्कूल छुट्टी बल होली बल्लो ने परीक्षा सर लिया छुट्टी होली तो असन समय देखा नानी बड़े पीला मन देखा कोनी कोनी बड़े पीला मन चो एबी छुट्टी बल नहीं होली से मात्र जो नानी पीला मन हन मन चो छुट्टी होली तो हन मन देखा दिन भर खेलतो ने बाय हन रसत। तो दीदी मन हुन हमन मन के खिंड लेक कर तो राय कि पीला मन के खाओ तो पियो तो ने समय ने हुन मन के दे तो राय बल्लो ने पीला मन तो खेल तो काज भूरा लो ना हुन मन तो भात पेच के बल भूख सोत तो हुन मन के समय ने खुआ पिया करा तो राय समय ने और दखा दखू से कि हमें घाम बले खूबे हो से तो असन समय ने बल हुन मन के दिन भर खिंड खिंड पानी आया पे जाए के खुआ तरह तो राय कसन बल्लो ने हम चो बल्लो ने घाम चो कारण ने हम चो देह ने पानी चो कमी हो से तो एक आज दीदी मन पीला मन के जुगे लेक करते रहे हनुमन के समय समय ने पानी खाओ तो का हनुमन के देते रहते रहे बल ए चोल का हनुमन चो देह ने पानी चो कमी नहीं हो सके और ए चोल का हम चो देह पाए बल नंगत रह दे। तो दीदी मन देखा हम चो देह पाए नंगत रह ले हम केवल हरिक लागे से ने और हरिक लागने तो गीत गोविंद बल नंगत लागे से आए कसन तो आले बिरानी बनाओ एक गीत के सुनो और एक गीत के गाओ सोत गेल मनी देवी अरे हम चो संगवारी मान।

तो दीदी मैंने तो काय सुंदर गीत रहे और एक थी गाँव रहो गेलमनी देवी और मिंचो संगवारी मन तो दीदी मन दखा भी समय वाला से तो मैं बोलते रहे गोटोगा और गीत सुन ले कसन रहती बोलते तो वाले गीत बिरानी बनाओ और एक गीत के सुनो और एक गीत के गाँव सोत ममता चंद्राकर ए मिंचो संगवारी मन तो सुनो ये गीत के।

तो दीदी बन नेतू काय सुंदर गीत रहे और एक गीत के गाँव रोहत ममता चंद्राकर और मिचो संगवारी मन। तो दीदी मन देखा नए मचो मोटरा चो सपा जमक तो सर ली और देखा मचो जातो बेरा बोले पुरली। तो नए विदा दियास घर द्वार कार्यक्रम सुनतो सपा दीदी मन और बहन मन के मैं दसरी करे से जुहार।

घर द्वार। अभी आप ग्रामीण महिलाओं का अपना यह कार्यक्रम सुन रहे थे। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर यह आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। दोपहर का 1 बजा है। अब हिंदी में समाचार। हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सोमवार को गुजरात जाएंगे। देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉ राजेंद्र प्रसाद ने 11 मई सन 1951 में पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर का शुभारंभ किया था। प्रधानमंत्री ने आज राष्ट्रीय दैनिक में लिखे लेख में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कुछ महीनों के भीतर सोमनाथ मंदिर से जुड़े दो महत्वपूर्ण आयोजनों में शामिल होना उनके लिए सौभाग्य की बात है। प्रधानमंत्री ने सोमनाथ को भारत की सभ्यतागत शक्ति और मजबूती का प्रतीक बताया। पश्चिम बंगाल में भाजपा विधायक दल की बैठक आज होगी। गृहमंत्री अमित शाह पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों के साथ बैठक करेंगे। श्री शाह कोलकाता पहुंच गए हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: पश्चिम बंगाल में पहली बीजेपी सरकार इस शनिवार 25 बैसाख को ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेगी। पार्टी सूत्र के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, जेपी नड्डा सहित कई वरिष्ठ नेता समारोह में शामिल हो सकते हैं। इससे पहले शुक्रवार को न्यू टाउन स्थित विश्व बांग्ला कन्वेंशन सेंटर में नवनिर्वाचित बीजेपी विधायकों का बैठक होगा। आकाशवाणी समाचार के लिए संदीप दासगुप्ता, कोलकाता।
0: असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार 12 मई को लगातार तीसरी बार शपथ लेगी। प्रदेश पार्टी अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि भाजपा विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाते हुए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO और भारतीय वायुसेना ने कल ओडिशा तट पर सामरिक उन्नत रेंज संवर्धन तारा हथियार का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तारा हथियार की पहली परीक्षण उड़ान के लिए DRDO, वायुसेना, DCPP और उद्योग जगत को बधाई दी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका और यूरोपीय संघ ये सुनिश्चित करने के लिए एकजुट हैं कि ईरान के पास कभी भी परमाणु हथियार न हो। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लायन के साथ सार्थक बातचीत की और पश्चिम एशिया की स्थिति पर चर्चा की। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लायन ने भी सोशल मीडिया पर बातचीत की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया से जुड़े घटनाक्रमों और क्षेत्रीय साझेदारों के साथ समन्वय पर बातचीत की। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने संयुक्त अरब अमीरात के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग राज्य मंत्री और भारत के लिए विशेष दूत रिम अल हाशमी के साथ अबूधाबी में बैठक की। दोनों नेताओं ने भारत संयुक्त अरब अमीरात व्यापक कार्यनीतिक साझेदारी और परस्पर हित के वैश्विक मुद्दों की समीक्षा की। विदेश मंत्रालय के अनुसार दोनों पक्षों ने व्यापार, निवेश, ऊर्जा, रक्षा, वित्त, प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य, शिक्षा, संस्कृति और जनसंपर्क क्षेत्र में हुई प्रगति पर विचार विमर्श किया। श्री मिश्री ने भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के बीच अबूधाबी में हुई त्रिपक्षीय बैठक में भी हिस्सा लिया। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि तीनों देशों ने परस्पर साझेदारी मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। वियतनाम के राष्ट्रपति और कम्युनिस्ट पार्टी महासचिव तो लाम कल रात दो दिन की राजकीय यात्रा पर श्रीलंका पहुंचे। उनके साथ 209 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। ये यात्रा दोनों देशों के राजनयिक संबंधों की 55वीं वर्षगांठ पर श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराग कुमारा दिशा नायके के निमंत्रण पर हो रही है। राष्ट्रपति तो लाम श्रीलंका के नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और कोलंबो में आयोजित श्रीलंका वियतनाम व्यापार, निवेश और पर्यटन फोरम में हिस्सा लेंगे। दोनों पक्षों के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने की भी उम्मीद है। बांग्लादेश में खसरे की स्थिति और गंभीर हो गई है। खसरे के संक्रमण से कल 12 और बच्चों की मौत हो गई। महानिदेशालय ने बताया है कि परीक्षण किट की कमी से यह संकट और गहरा गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव और FM बैंड पर यह आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। दोपहर के 1:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए कृषि समय की बेड़ा खड़ा चुकोट।
3: कास्तकार दादा दीदी मन बिहा काजे आए बल्ले लागे से हरदी, साग काजे आए बल्ले लागे से हरदी, और रोग राई घाव दाव के मरलातो काजे बल्ले लागे से हरदी। असन गुणकारी हरदी के घेनुन आन तो पलटा रूपुन रलो ने घरे बले काम दे दे और बिकुन भाती आमी नगद पैसा बले कमाओ सकूं दे। तो आजी जाना ये हरदी चो किसिम आरु रोप तो मंडा तो वाटकी। हरदी कमानी करतो काजे माटी पलट तो नांगर ने नगद दुहार बेड़ा भूई मरान जे थाने तुम्हें हरदी मंडा तो वाट करला सास हुनके जो तुम दे तो राय। इचे संगे संगे हमी जसन दिसी नांगरा से हुन थाने खर एक अच्छा जोतुन भाती माटी के भुरभुरा बनान देतो राय। गोबर जो नगद सरलू खत के माटी ने मिसाउन कियारी बनातो राय। हरदी मंडा तो काजे नगद छुकछुका आरु ठोसर हरदी मन के बासतो राय। दादा दीदी मन हरदी गठने दुई ठान गाजा फुटलो असन आरु एचो वजन 25 ग्राम होतो रासे। हरदी बिचा मंडा तो पहिल कार्बेंडा जिम नहले ट्राइकोडर्मा नाव चो ओखद ने उपचार करून मंडातो राय। हरदी कमातो काजे नगद किसी मन ने कृष्णा सगुन सुदर्शन स्वर्णा आरु सुगंधा नगद रहे से। हरदी मंडातो काजे बूटा ले बूटा चो दूरिया एक ले डेढ़ फीता संगातो राय। हामी हरदी के बेढ़ा मरान बनवाड़ी चो भूई ने अरु पारी मन ने वाले मंडाउकला सकू। हरदी भूई ले नगद बल्बफू मन के झिकू आए। तो हुनिकाजे गोबर खत नहले कंपोस्ट खत 300 किलो बुनतो मंडातो पहिल माटी ने नगद मिसाउन जोतुन देतो राय। असने 130 किलो यूरिया 313 किलो सिंगल सुपर फास्फेट 180 किलो म्यूरेट ऑफ पोटास देतो राय। हरदी कमानी ने बले लाटा बुटा झपके झपाई हुआ है। एके समया दखुन दखुन निजानी करते रहतो राय। दादा दीदी मन जाकलो बूटा मन ने माटी बले चेगाते जातो राय। हरदी खोड़तो काजे बले निको ख्याल करतो गोठा से। तो जसन हरदी के समया ले आगे नी खोड़तो राय। पाना सुखुन मरलो असन होले जानतो राय कि हरदी पाकुन तैयार होली। असन तो हरदी के पाकतो काजे 9 ले 10 महीना चो समया लागे से। खोड़तो वेरा लेख करतो राय कि कांदा के गेंजू नी हो। कांदा गेंजी होलो ने उनचो भाव बले अच्छा नी जाए और कांदा बले सड़े से। कास्तकार भाई बहन मन बीचा चो भंडारण करतो बुता बले मसागत चो बुता होए से। असने हरदी चो बीचा भंडारण काजे खनुन भारी हरदी के नगद छाए ने सुकाउन माटी आरु कांदा ले लटकलो कचरा के साफ सफाई करतो राय। बीचा कांदा के 3 ग्राम बाविस्टिन नहले इमिडा क्लोप्रिड नाचो ओखत के घोल बनाउन उपचार करून फिर छाए सुखाउन भाती संगातो राय। हरदी बीचा संगातो काजे भूए 3 हाथ ओसार 6 हाथ लम आरु 1.5-2 भीता घड़िया खोदरा खोड़तो राय। खोदरा ने खाली तल ने 4 ले 5 इंच तक बारू डारून देतो राय आरु नगत ओछालो असन बनान देतो राय। हुंचो उपरे हरदी संगाउन भाती ऊपर ले फिर बारू के पाटून बले देतो राय। खोदरा भरलो ने माटी ले पाटून भाती ऊपर ले के गोबर ने सरौन बले देतो राय। असन करून संगालो ने तुम्ही हरदी बीचा के नगत सगाउ सकासे। दादा दीदी मन असन उवाट ने हरदी कमानी करलो ने तुम्ही अधिक उपजन संगे संगे नगद लाभ बले धरुकला सकासे।
2: अभी कृषि समय की बेड़ा खड़ा चुगोट कार्यक्रम का प्रसारण किया गया। ये आकाशवाणी का चक्तरपुर केंद्र है।
4: किसान भाई बहनों के लिए आकाशवाणी चक्तरपुर की नई पहल, अब हर शनिवार को शाम 7:30 बजे से 8 बजे तक सुनिए फोन इन किसान वाणी, जहां कृषि विशेषज्ञ देंगे आपकी खेती से जुड़ी हर समस्या का आसान समाधान। बीज से लेकर बाजार तक हर सवाल का जवाब सीधे आपके लिए। और हाँ, इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी हर मंगलवार दोपहर 3:30 बजे से 4 बजे तक। तो आप भी जुड़िए और अपने सवाल हमें सीधे फोन पर बताइए। हमारा नंबर है 0778222666। फोन इन किसान वाणी, आपकी आवाज आपकी कहानी आपके खेतों की जुबानी।
5: स्वस्थ तन स्वस्थ मन जीवन का है अनमोल धन। कैसे रहें बीमारियों से सुरक्षित, कैसे करवाएं किसी स्वास्थ्यगत समस्या का उपचार, क्या है स्वस्थ रहने का आधार, जानिए बेहतर स्वास्थ्य के लिए विशेषज्ञों की सलाह। सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल और छत्तीसगढ़ के अन्य आकाशवाणी केंद्रों से हर शनिवार सुबह 8:30 बजे डॉक्टर की सलाह।
6: आपके सपनों को साकार करने और हर इम्तिहान में आपके साथ चेट्टीनाड सुपर ग्रेड सीमेंट, मजबूत नींव बनाने के लिए एक ही नाम चेट्टीनाड सीमेंट।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: जीएसटी काउंसिल ने कमर्शियल बिजनेस में टैक्स को और भी सरल बना दिया है। अभी तक होटल के कमरों पर जीएसटी की 4 दरें लगती हैं। 1,000 रुपए से कम कीमत वाले होटल रूम पर 0 जीएसटी है, जबकि 1,000 से 2,499 रुपए तक के होटल के कमरे पर 12% जीएसटी लगता था। 2,500 से लेकर 7,499 रुपए तक के होटल कमरे पर 18% टैक्स लगता है। इससे ज्यादा कीमत का होटल रूम है तो उस पर 28% जीएसटी लगता है। लेकिन अब होटल के कमरों पर सिर्फ 2 ही रेट लगाए जाएंगे। 7,500 से कम कीमत वाला कमरा है तो 5% और ज्यादा है तो 12% जीएसटी देना होगा।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी जगदलपुर से बोल रहे हैं। 1:13:25 हुए हैं। लीजिए पेश है फरमेशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम श्रोता सुमन।

कार्यक्रम का आगाज कुमार सानू और अलका याग्निक के गए इस नगमे के साथ। फिल्म का नाम है कुली नंबर वन। समीर का कलाम और मौसीकार हैं आनंद मिलिंद। और इस गीत को सुनवाने का अनुरोध करते हुए हमें पत्र लिख भेजा है प्रकाश तिरसुनिया, विकास तिरसुनिया, नैतिक, मुकुल, दिव्यांश, धैर्य और आराध्या। आप सब हैं उत्तर बस्तर कांकेर भानुप्रतापुर के श्रोता। मोहम्मद सईद अब्बासी, निखत परवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुहान अब्बासी, अरजान अब्बासी और अबान अब्बासी। आप हैं ऊपरकोट मोहल्ला चौखुटी बुलंदशहर यूपी से। ग्राम रवट्टी से आप हैं सुभाष शर्मा, छाया शर्मा, प्रेम लता उपाध्याय, खुशबू उपाध्याय, खुशी उपाध्याय। ग्राम लोहड़ी महोबा से जयपाल यादव, इंद्रपाल यादव, राघवेंद्र, अरविंद, रिया, रेणु, दिव्यांशी, रोनिका और रागिनी यादव। आप हैं अस्पताल रोड केंद्रीय विश्वविद्यालय सागर मध्य प्रदेश से चंद्रेश गौहर, वंदना गौहर, मयंक और तन्वी गौहर। धाम मोहल्ला पन्ना मध्य प्रदेश से कौशल किशोर मट्टी मट्टू, हर्षित और वैभव मट्टू। आप हैं रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज, रिफाकत, शमरीन, परवीन, मोहम्मद रिहान और माहिरा नूर जसपुर उत्तराखंड से। हमारे ये श्रोता हैं ग्राम बनबघेरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से योगेश सारवा, आशा सारवा, नीरज नीलेश और कुमारी अंजलि सारवा। किकिरमेटा बेलहारी पाटन दुर्ग से संतोष शर्मा, रुक्मणी शर्मा। गुरामी डोंडी लोहारा बालोद से पीयूष नेताम, कोमल नेताम। जुनवानी दुर्ग से सुरित रमेश साहू। डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से आप हैं देवशंकर तामुरिया, अजय देव, राधिका तुषार तामुरिया, डॉली अलकबीर, बेबी पूजा तामुरिया और प्रभा देवी तामुरिया। छोटी बिलिया कजन करजत मुंबई से अहमद भाई फूलवाले, इकबाल अहमद फूलवाले, नूरेश अहमद फूलवाले। आप हैं कापसड़ा नई दिल्ली से आमना नशरीन और लखमीनिया बेगूसराय से इखलाक अहमद फूलवाले। गीदम रोड जगदलपुर से राजू राव, टी सुनील राव, शिवानी राव, कृष्ण तुलसी राव, भाग्य लक्ष्मी राव, कीर्ति राव, मनीषा राव, श्रवण राव, आनंद राव, मानु राव और रोनिका राधिका। हमारे ये श्रोता हैं जालाना जलगांव सोमनाथ से डॉक्टर नामदेव भूतेकर, अभिषेक भूतेकर, गणेश भूतेकर, कार्तिक भूतेकर, अश्विनी भूतेकर। जलगांव से आप हैं वैष्णवी जगदले, हर्षुल सावंगी। औरंगाबाद से वैभव गौरव लोखंडे। भावसिंहपुरा औरंगाबाद से मेघराज युवराज कोलते, रिधोरा देवी, रुद्र कोलकर, वाकुलनी बदनापुर के श्रोता हैं ये। लच्छनपुर से रामजी साहू, जीवन लाल रजक, निम्मी, शिवम, सतीश और मुकेश कुमार साहू। फ्रेंड्स कॉलोनी करनाल से गुरविंदर सिंह पांधा, इंद्रजीत कौर, बेबी मनमीत, मनविंदर सिंह पांधा। बिलासपुर के हमारे यह श्रोता है छन्नूलाल श्रीवास, अनिता पुष्पा श्रीवास, अंजू योगिता श्रीवास, रामायण श्रीवास, रज्जन साहू, हेमंत नंदिनी और नामदेव। देवरी भाटापारा से गन्नू लाल रजक, के आर साहू, अश्विनी वर्मा और गणेश मिस्त्री। सूर्यवाड़ी औरंगाबाद से प्रकाश बोरगांवकर, सुषमा प्रकाश, प्राजक्ता प्रांजलि, सोहम बोरगांवकर और सुभाष सदानंद। चांदनी चौक गंडई पंडरिया से हमारे ये श्रोता हैं पवन कुमार सेन, प्रभा देवी सेन, लक्की विक्की, नानू और रविंद्र सेन। आप हैं खुशी रौनक सेन। चांदूर विश्वा तालुका नांदूरा जिला बुलढाणा महाराष्ट्र से नारायण भाऊ खड़से, रक्षा ताई खड़से, ललिता संजना खड़से, गणेश और कार्तिक खड़से, मालती चौधरी और स्वाति प्रयाग चौधरी। मोटक्का माफी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से आप हैं जगन्नाथ पटेल, कमला पटेल, अंतिम, ज्योति, ललित, मनीषा, शुभम, देवी किशन, भावना कनिका, आदित्य, मानस और मन पटेल। हमारे ये श्रोता हैं हुकुम कर्मरकर, सुनीता कर्मरकर, हार्दिक कर्मरकर, प्राची कर्मरकर, तनु कर्मरकर। बेड़ से दतरेंगी से मनोज कुमार साहू, सूरज कुमार साहू, सागर कुमार साहू। रोहानसी से डगेश्वर राम साहू, नूतन कुमार साहू, गौरव कुमार साहू। ये हैं दिल्ली शहर मोरीगढ़ से कन्हैयालाल, रीता देवी, शिल्पा रानी, आकाश कुमार। पांगरा शिंदे तहसील वसमत हिंगोली महाराष्ट्र, टेलर रामचंद धोंडीवा इंगोले, सिद्धांत इंगोले, टीकू इंगोले, रमाबाई, सुरेंद्र इंगोले, मयूरी, सुरभि, मंजुषा, गौतम इंगोले, नामदेव राव शिंदे पाटिल, आप हैं विलास शिंदे पाटिल और सुनील जबड़े। अशोकनगर वसमत हिंगोली महाराष्ट्र के श्रोता हैं दीपाली, राजू ठोके, पार्वती सखाराम ठोके, रोहित, सोनू, मोनू ठोके। झुमरी तलैया से आप हैं छकुली इंगोले, देव इंगोले, छोटू दादा इंगोले, पेंटर रामचंद इंगोले और महेंद्र चौरसिया। ये हैं ग्राम छिंदडीही पुजारीपारा जिला कोंडागांव से सेतुराम चक्रधारी, मंगतिन चक्रधारी, आशीष कुमार चक्रधारी और अस्तिका चक्रधारी। फगेश्वर मंडावी और संजीत मरकाम आप हैं फरसगांव से। संगीलाल मरकाम, सुनील यादव,
यहीं के श्रोता हैं, हेमराज भारद्वाज और उत्तम यादव भी यहीं से हैं, फरसगांव के ही श्रोता हैं हरीश साहू, पायल साहू, मेघा साहू, भावेश साहू और राजीव साहू, रानीगांव नगरी छत्तीसगढ़ से खिलेश कुमार साहू, चित्ररेखा साहू, शुभम सेजल साहू, ग्राम नागरखोरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से आप हैं छग्गर राम साहू, जावन देवी साहू, प्रेम साहू, पूजा देवी साहू, लल्ला, दुष्यंत साहू, प्रांजल और समीक्षा साहू, लक्ष्मण सिंह कुर्राम, भावना, दीपक और डुग्गू कुराम, आप सब है बड़े नगर कॉलोनी से, गर्राबार बांधा बाजार से गंगाराम साहू, सुलोचना साहू, मानवेंद्र साहू और राकेश साहू। हमारे ये श्रोता हैं बन्ने बुजुर्ग पलेरा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी विश्वकर्मा, सोनाली विश्वकर्मा, सोनम विश्वकर्मा, आशीष विश्वकर्मा। आप हैं ग्राम पीपल नीम चौक अमोड़ा केशकाल छत्तीसगढ़ के श्रोता, मास्टर सुनील यादव, शिवकुमार यादव, बेबी तनिष्का यादव, नौबत यादव और नंदू यादव। चरडोगरी पिपरिया जिला कबीरधाम छत्तीसगढ़ से दुर्गा राम साहू, अजय कुमार साहू, इंद्राणी माया साहू, जयकिशन साहू, योगेश साहू और वासु साहू, यहीं से हेमा साहू और राधिका साहू। भंडार सिवनी जिला कोंडागांव से सुभाष सिंह चक्रधारी, कविता मुस्कान और अनुष्का चक्रधारी, धनोरा जगदलपुर से भी पूनम नायडू, प्रीतम के शिवांशु अमृता और ये हैं अक्षय कुमार और अभिषेक नायडू यहीं से। परुण विश्रामपुरी से आप हैं प्यारी दास मानिकपुरी, शिव कुमारी मानिकपुरी, खिलेश मानिकपुरी और नमिता मानिकपुरी, भाई मुकेश शर्मा, सरिता शर्मा, गौरव शर्मा और सीमा शर्मा, आप सब हैं भिलाई छत्तीसगढ़ के श्रोता। दंतेवाड़ा बचेली से बलराम सेन, इंदू सेन, पोषण सेन, भुवनेश्वर कुमार, लक्ष्मीपुर सूरजपुर से तीजन से मरावी, देवानंद और देवलाल मरावी, रायगढ़ से आप हैं रोहित लक्ष्मी, पिपरिया जिला कबीरधाम से कमलकांत गुप्ता, दीपा गुप्ता, रिमझिम गुप्ता, खेल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, नीटू कोनिका मल्होत्रा, कोयल मल्होत्रा और नानक चंद मल्होत्रा, आप हैं अनूपपुर मध्य प्रदेश से जयमंत्री केवट, अंजलि केवट, रुद्राणी केवट और कृष्णा केवट। आप सब सुनना चाहते हैं कुली नंबर फिल्म का ये गीत।

आइए अब सुनते हैं आनंद बख्शी की रचना, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत, आवाज मोहम्मद रफी की है, फिल्म का नाम है लोफर। इस गीत के लिए फरमाइश आई है चंडीगढ़ से सतीश अनेजा, बिमला अनेजा की। इसी गीत को सुनना चाहते हैं छत्रपति संभाजीनगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और श्रीमती शीतल राजेश। आप हैं खंडवा से अब्दुल गफ्फार डावर, खुश नसीब अब्दुल हक डावर, जिया उल हक डावर और मोहम्मद उमर डावर। सुभाषवाड़ भाटापारा से एमएल यादव, अजय कुमार यादव, अमित अमीन यादव, गिरीश करण यादव और इवान भवेश यादव। हनुमानगढ़ राजस्थान से रज्जाक मोहम्मद, शमीम बेगम, इमरान खान, इरफान खान, आहिल खान और जिशान खान। ये हैं जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलो दास मानिकपुरी, जयदास मानिकपुरी, दिवेश दास मानिकपुरी, धनवंतीन बाई मानिकपुरी और मोतीन बाई मानिकपुरी। आप सब हैं गणेश धाम परसुली ग्राम से और जिला बालोद के श्रोता हैं। लच्छनपुर से रामजी साहू, जीवनलाल रजक, निम्मी शिवम सतीश और मुकेश कुमार साहू। पलारी रोहान से घनश्याम साहू, नूतन साहू। भाटापारा छत्तीसगढ़ से रामकुमार राउत, अमृता राउत, गणेश राउत, कार्तिक राउत और युवराज राउत। मोती गार्डन भाटापारा से मोतीलाल झेरिया, कल्पना झेरिया, बिट्टू कुमार झेरिया, चिंटू झेरिया और यू कुमार झेरिया। डोंगरगांव जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका गजभिये, बेबी अनिष्का और तन्मय गजभिये। बेरडी के हमारे ये श्रोता हैं राजेश सोनी, कंचन सोनी, गायत्री ठोमने, वैष्णवी ठोमने, चंचल ठोमने, अर्जुन गवनेकर और धीरज सव्वासरे। डॉक्टर तिलोक चंद वर्मा, श्रीमती भागवत वर्मा, अभिषेक सीमा वर्मा, डॉक्टर अमित वर्मा, सचिन, डॉक्टर माफ कीजिएगा समर राज आर्यन वर्मा, बीबी आरोही, इशिका वर्मा और अंजलि श्वेता वर्मा। आप सब हैं ग्राम बहरामपुर टेमा खरगोन मध्य प्रदेश के श्रोता। ये हैं सुधीर नूतन, संदीप और सुनीता शर्मा। आप हैं बठेना से बलकरण वर्मा, अंजनी ज्योति वर्मा, रेखा धनेश्वरी वर्मा। मामूलवाड़ी महाराष्ट्र से सोपान तायडे, वसंतराव भोजने, निवृत्ति आडोकर। ये हैं कुरुक्षेत्र से प्रदीप कुमार, रेखा, अंशुमन और बुल्ला। गांधीनगर गुजरात से सुरेश राठौर, मंजुला राठौर, विशाल और निशा। फरसगांव के हमारे ये श्रोता हैं सत्येंद्र मंडावी, सरिता मंडावी, उमेश नाग, कृष्ण नेताम और रंजीत भंडारी। कृष्ण कुमार डाबी, राधा डाबी, विक्रम और अर्चना डाबी, सिंधरी बाड़मेर राजस्थान से। गांधीग्राम गुजरात से ये हैं प्रवीण सोनी, कलावती सोनी। कंडला बंदर से जगदीश चौहरी, पूजा पायल। गांव अली मोहम्मद, जिला सिरसा हरियाणा से सुभाष लूना, ओमवती मेनपाल, अमरजीत लूना और सीताराम कांगड़ा। ग्राम वडसिंगी जलगांव जामोद से महाराष्ट्र के हैं अमोल मानकर, शोभा तैमानकर, दीपाली और श्लोक कुमार। ये हैं हमीरपुर उत्तर प्रदेश से ब्रिजेंद्र कुमार धुरिया, अर्चना धुरिया, अमन धुरिया, अविनाश धुरिया और दीपशिखा धुरिया। कल्याण मुंबई से किशोर हिवराले, सुजाता हिवराले, ऋतिक हिवराले। रामदेव पटेल, सुनीता पटेल, अमित पटेल, पुष्पा पटेल, आकाश पटेल और वाणी पटेल। आप सब हैं बरियारपुर मुंगेर बिहार के श्रोता। अंजलि जाटव, राघवेंद्र, आकांक्षा, ऋषि जाटव। आप सब हैं ग्राम खलीलपुर, जिला जालौन उत्तर प्रदेश के श्रोता। गांव अलगी डांड, जिला कोरबा छत्तीसगढ़ से जोहित यादव, विपिन, आयुष, अतुल, श्रीमती फूलजी यादव। ताजपुर मोरवा से भाई कारी, राय कारी, मीनाकारी, पुंजराज आर्यन, आरती पुंज, आकर्षण पुंज, जयश्री, पिंकी, रिंकी, रिक्की, नीतू, मोहम्मद फारूक और ललन मिश्रा। मोहम्मद रफीक पंवार, मोहम्मद शाकिब पंवार, मोहम्मद हसनैन पंवार। आप हैं खंडवा से ग्राम दीवाल से शंकरलाल गंगराड़े, वनिता गंगराड़े, छोटू, पूजा, रोशनी, अजय और वामिका गंगराड़े। गांव छैगांव खंडवा से अशोक कुमार वाघे, वंदना वाघे, भूपेंद्र वाघे, झवर वाघे, तनुश्री आरोही और कान्हा वाघे। आप हैं बड़वाह से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य आदित्य, शिवानी और मीनूराज श्रीमाली। देवेंद्र तांती, राकेश तांती, प्रकाश तांती, निशा कुमारी और रेशमा प्रीति, दीपाली देवेन। आप हैं ग्राम सुपाही साही से। ये हैं बाबूलाल यादव, श्रीमती मनशा यादव, दुर्गेश यादव, सीमा यादव, अनु यादव। आप सब हैं सारनाथ बनारस के श्रोता।
उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, किशु, तासु अर्णवानंद और सत्यमानंद आप हैं पाकुड़ झारखंड के श्रोता। ग्राम विडोरा, तहसील सेवड़ा, जिला दतिया, मध्य प्रदेश से लोकेन्द्र सिंह गुर्जर, रामवीर गुर्जर, एसपाल गुर्जर, जयपाल गुर्जर और महिपाल गुर्जर। आप हैं ललितपुर ग्राम गौना से कैलाश नारायण नामदेव, दीपक कुमार नामदेव, द्रौपदी देवी नामदेव, राम देवी नामदेव। टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविन्द्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा और स्वीटी छाबड़ा। बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिम्पल देवांगन। आप हैं सब्जी मंडी बुल्ढाणा से शब्बीर हुसैन, शहजाद हुसैन, मुज्जू बाबा और आयजा अनम। आप सबकी पसंद पर आइए सुनते हैं फिल्म लोफर का ये गीत।

पुणे से पंकज वाडोदे, आर्या प्रियंका बेटी वाडोदे और चंद्रप्रभा वाडोदे। आप हैं वरुण जौलका से महेंद्र सरकटे, विजया सरकटे और मिलिंद सरकटे। महामायापारा ग्राम दरचूरा से फिरंता साहू, दुलोरिन साहू, कामेश्वरी कुमारी, प्रीतम कुमार साहू। यहीं से ददुआ साहू, भूरी साहू, रेखा और मोतीलाल साहू। हटौत बाजार लाहौद से कमलनाथ पटेल, राकेश कुमार पटेल, समीर पटेल और राजकुमारी पटेल। अतुल गौतमी धम्मदीना से आप हैं अरुण काले, एडी कांबले। यलगुड़ से कोल्हापुर के हमारे ये श्रोता हैं तुषार कुरने, प्रसिक कांबले, एकता कांबले, मेघना कुरने, उत्कर्ष कांबले, अरुण यलगुड़ का कोल्हापुर के श्रोता। आप हैं राजेश कुमार धनजे, राहुल कुमार धनजे, विशाल कुमार धनजे, शीला धनजे और गायत्री धनजे, खंडवा ग्राम लोहारी से। मानपुर खुर्दी रोड से ये हैं विजय वैद, रानी वैद, महिमा वैद और नीतू वैद। श्रीकृष्ण बाठे, संदीप बाठे, अमूल्य बाठे और वैशाली बाठे, धाड़ी नांदुरा महाराष्ट्र से। सहारनपुर से आशा नारंग और सुरेश नारंग। जमशेदपुर से आप हैं अपूर्व सिंह, अनुपम कुमारी, राकेश कुमार, लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता, सुनीता, पिंकेश, साक्षी, मनन और तानिया इंदौर से हैं। आप हैं ग्राम मोहत से भैया तड़वी, रीना तड़वी, सनी बाबू, रोजू भाई तड़वी, परू मुबारक बारे, विलास, मनोहर ठाकुर और तैमूर बारे। भोगरी तालुका रावेर से अरशद तड़वी, आरिश, अरसलान, यूनुस तड़वी। जिला बुरहानपुर ग्राम मोहत के श्रोता है मुशरफ खां तड़वी, जरीना तड़वी, मुबारक तड़वी, परवेज तड़वी और रोजमीन तड़वी, तैमूर तड़वी। गांव हांडीखेड़ा जिला सिरसा हरियाणा से आप हैं राधेश्याम शर्मा, इंदिरा शर्मा, सार्थक शर्मा, सचिन शर्मा, नंदिनी शर्मा, प्रियंका शर्मा और रोहित शर्मा। छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और झवेंद्र कुमार वर्मा। गणेशपेट पाथरडी महाराष्ट्र से अंबादास शिंदे, संगीता शिंदे, अमोल अमृत और सुवर्णा शिंदे। नितिन पाटिल, नलिनी पाटिल, अजिंक्य पाटिल और आदित्य पाटिल। आप हैं महाराष्ट्र अकोट से। दतिया से सुरेश कुमार केवट, शिशुपाल केवट, छोटू केवट, खुशी, खुशबू, पायल केवट, ऋतिक, अमित, आरुषि केवट। आप हैं ग्राम साहू टोला कन्या जिला बालाघाट मध्य प्रदेश से अखिलेश कुमार यादव, ज्योति यादव, अंकित, श्रद्धा और सौरभ यादव। ये हैं ग्राम परसेठा जिला फतेहपुर यूपी से रोहित सिंह यादव, बेटा यादव, पंकज यादव, अंगद यादव, आयुष यादव, आर्यन यादव और आदर्श यादव। सुरेश जायसवाल, उर्मिला जायसवाल, दीपक जायसवाल और स्वाति जायसवाल। आप हैं जिला गाजीपुर जमानिया से। विरमगाम गुजरात से अजीत भावसार, प्रमिला भावेश, सनी हेतल, कृष्णा, जैमिन भावसार। राजकोट एयरपोर्ट कॉलोनी से जगदीश जोशी, मंजुला जोशी, हितेश, हिमा, रिद्धि सिद्धि, पुलकित और पर्व जोशी। नेपानगर मध्य प्रदेश के हमारे ये श्रोता हैं सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्विनी शाह, मंगलाबेन शाह, राजेंद्र जी शाह और सुषमा कपूर। मित्रनगर बीड शहर महाराष्ट्र, विकास बनसोड़े, रेखा बनसोड़े, अदिति बनसोड़े और वैभव शिंदे। उदयपुर से गोपाल तंबोली, कांता तंबोली, तिलक तंबोली, किरण तंबोली, सक्षम तंबोली और लावण्या तंबोली। जटपुरा पनवाड़ी महोबा से देवीदीन अहिरवार, सुनीता अहिरवार, दीपनेश कपिल, पूजा अहिरवार। आप हैं सावरगांव महाराष्ट्र से रघुनाथ पाटिल नारे, पुष्पाताई नारे और श्रीधर नारे, मिनल नारे। शिवाजीनगर वडाली देशमुख से राजेश खोवरखोड़े, शिवसागर खोवरखेड़े, इंदिराबाई खोवरखेड़े। बुलढाणा से आप हैं दीपाली राम धाड़े, स्वराज राम धाड़े। सनावत से शेख मुसा मोहसिन। आप हैं जिला उमरिया मध्य प्रदेश से संतोष कुमार राव, भारती राव, बेलाबाई सिंह और विकास सिंह। कुमार हेड़ा से सहारनपुर से सैयद मसरूर, नाजिया हसन, आफिया हसन, इब्राहिम और सद्दाम। आप हैं नलेश्वर नगर नरवेल जिला बुलढाणा महाराष्ट्र से पीएस नोहानकर, निर्मला नोहानकर और विशाल नोहानकर। छत्तीसगढ़ हसदा नंबर दो से कमलेश साहू, जितेंद्र साहू और पायल साहू। छत्तीसगढ़ दतरंगी से भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा और रुद्र वर्मा। ये हैं मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गौहाणकर, सरिता गौहाणकर, प्रणीता, सिद्धांत गौहाणकर, अर्जुन गौहाणकर, टुक टुक।
नागपुर आकार हाइट्स बहादुरा से वैशाली शैलेश गवाणकर, सुमित गवाणकर, ध्वनि गवाणकर, परी और एकांश गवाणकर, नोहर राजस्थान से नरेंद्र सुथार, मनीष सुथार और हिमांशु सुथार, आप हैं खापरखेड़ा से तुलसीराम साहू, मुकेश कुमार साहू, हेमंत कुमार साहू, रागिनी साहू, बुलढाणा महाराष्ट्र ग्राम वडगांव डीघे नांदुरा से वासुदेव वोदवडे, माधुरी वोदवडे, आकाश कुमार वोदवडे, संत गाडगेनगर बुलढाणा महाराष्ट्र के ये हैं श्रोता, अनिता गाठोडे, रमेश राव गाठोडे और लोकेश कुमार गाठोडे, बचेली दंतेवाड़ा से गणपत बघेल, आप हैं मुखलाल से भरत राम पटौड़ी और हमारे ये श्रोता हैं जीतू धुरु साल्हेभाटा महासमुंद से, डबराबारा धमतरी से कोमल सेन, ये हैं पिपरिया कबीरधाम छत्तीसगढ़ के श्रोता, दुर्गाराम साहू, अजय कुमार साहू, इंद्राणी साहू, जयकिशन साहू, योगेश साहू, हेमा साहू, राधिका साहू, आप हैं मदनपुर कवर्धा से श्रवण कुमार साहू, योगेश साहू और राहुल साहू, मोहल्ला हलवाईयन शेरकोट जिला बिजनौर से मोहम्मद वक्कार फरीदी, इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजदा रानी और हीना कौसर, गांव नाईवाला जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से वेद मिड्ढा और अलका मिड्ढा, विद्यानगर तेंदुखेड़ा से ओम प्रकाश नेमा, श्रीमती किरण, आकाश नेमा, विकास नेमा, नंदिनी नेमा, ये हैं विदर्भ श्रोता क्लब जलगांव जंक्शन से दिनेश काले, वंदना काले, डॉक्टर सहानुभूति चक्रधर, प्रोफेसर वसुधा वज्रसेन और आदेश कुमार काले, आप सबकी पसंद पर हम आपको सुनवाते हैं अब फिल्म उत्सव का ये गीत। आवाजें हैं लता मंगेशकर और आशा भोसले की, गीतकार वसंत देव और संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से आपके सेवा में प्रसारित किया जा रहा है फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम श्रोता सुमन। कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म जीवा से। गुलजार के शब्द हैं और इस गीत को सुरों में ढाला है गुलजार ने और संगीतबद्ध किया है आर डी बर्मन ने। आवाजें हैं आशा भोसले और अमित कुमार की और इसके लिए हमें पत्र लिख भेजा है। जिला अंबागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से रिजवान खान, आयशा, सबिहा, अनस और रेहान। गांव परसाटोला अंबागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ के ये श्रोता हैं ओम प्रकाश मसिया, सिलोचनी मसिया, खुमेंद्र मसिया और तुषारणी मसिया। आप हैं सुंदरखेड़ राजमाता नगर बुलढाणा महाराष्ट्र से नरेंद्र नरवाड़े, ज्योति नरवाड़े, आकांक्षा नरवाड़े और आकाश नरवाड़े। ग्राम बेलरगांव से मिथिलेश देवांगन, मधु देवांगन, हिमांशु और अंकित देवांगन। आप हैं जामरून तारधापुर से दुर्गादास जोशी, गंगाधर जोशी, गजानन जोशी, संजय जोशी, आशीष जोशी, पृथ्वीराज जोशी, साध्वी जोशी और गणेश हरगांवकर। कोटवा नारायणपुर बलिया बाबा पट्टी से ओम प्रकाश रॉय, उषा रॉय, अमित कुमार रॉय, हैप्पी राय। दुबिहा नेवादा गाजीपुर से प्रतीक रॉय, श्रीमती रोशनी राय, प्रांजल रॉय और सिरपुर कलां गाजीपुर से अवधेश रॉय, श्रीमती प्रीति रॉय और नवनीत राय। भाटापारा से आप हैं दान सिंह रावत, रानू पद्मिनी रावत, शुभम और सौरभ रावत। ये हैं बलवंत कुमार वर्मा, राजूबाई वर्मा, माया वर्मा, शोभा वर्मा, राहुल, ज्योति, अतुल पायल वर्मा, प्रियांश वर्मा और ऋषि वर्मा। प्रमिलागंज आलोड जिला रतलाम मध्य प्रदेश के श्रोता। रामगंज खंडवा से विजय महोबिया, कविता महोबिया, संजय महोबिया, नंदिनी महोबिया, विशाल, विवेक, सोनू, मोनू, डॉली, देवराज महोबिया और वीएस महोबिया, कमला महोबिया खंडवा के श्रोता हैं। ये हैं बेनीपट्टी मधुबनी बिहार से अरविंद कुमार, गुड़िया कुमारी, भव्या कुमारी, निवेश कुमार और नियति कुमारी। राजनगर मधुबनी बिहार से नवीन सिंह, ज्योति सिंह, श्वेता, स्वाति, सुशांत और चुलबुल रानी। शनि मंदिर चौक खंडवा

से दुर्गा प्रसाद सैनी, अनिता सैनी, गौरव राधिका और दीपिका सैनी, सारंगपुरी उमरगांव से चंद्रहास कश्यप, अमरचंद कश्यप, चंद्रिका कश्यप और सत्यभामा कश्यप, डबरापारा सोंगा जिला धमतरी से तोषण कुमार सेन, पिंकी सेन और रीना सेन, ग्राम दुल्हापुर जिला मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल पंकज, ऋतिक काजल, सीमा मानवी, तन्वी लक्ष्य, सोनी और मोहिनी, भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी, अर्चना जोशी, हरमिंदर सिंह चावला, बानी चावला, लोकेश जोशी, पायल जोशी, धनेश तिवारी और सावन नायक, यहीं से अंकिता जोशी और वैदेही जोशी, सहारनपुर उत्तर प्रदेश से राधा नामदेव, देवरी माफ कीजिएगा ममना सरीला, हमीरपुर से रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजू रंजना, वंदना प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा, सालार पहलगाम कश्मीर से हमारे ये श्रोता हैं पीर सादा, मिरासुद्दीन, निजामुद्दीन और कैसरुद्दीन, आर्यनगर कोका भिलाई छत्तीसगढ़ से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष और नंदिनी जंघेल, धमधाग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि और ऋषिका, कासम कॉलोनी सनावद से यूनुस खत्री, शफी खत्री, दृश खत्री, नूर मीणा, काशिफ मीणा, आप हैं लोरमी चचड़ी छत्तीसगढ़ से कमलकांत मरावी, प्रमिला मरावी, नेहा मरावी, पुष्पराज मरावी और ऋषभ मरावी, गांव जैसलाम फलौदी राजस्थान से राजा राम जौहर विश्नोई, महिपाल काना राम चौहान, रायगढ़ के हमारे ये श्रोता है नरेंद्र कुमार तिवारी, महेंद्र कुमार तिवारी, बीबी जोई यामिनी और उमा तिवारी, जलाला वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल, प्रिया दिशानी और निमित आहूजा, छबीलपुर गुन्नौर उत्तर प्रदेश के हमारे ये श्रोता है हरवेश कश्यप, अरिजीत कश्यप, दिवांश कश्यप और गायत्री कश्यप, पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, पराग टेलर, तनुजा देवांगन और ईशांत देवांगन, आप हैं लोरमी गोलबाजार खपरी कला छत्तीसगढ़ से संतोष कुमार सोनी, सुनीता, खिलेश, नेहल, पीहू, छोटी, दानिश, दीक्षा, संजय, पूजा, रामा, पूर्वी और पुलकिता, आप सबकी पसंद पर आइए सुनते हैं ये गीत।

पवित्र पापी। और इस गीत के लिए हमें पत्र लिखा है पलसीकर कॉलोनी इंदौर से धनेश मटाई, राकेश मटाई, उमेश सहजवानी, हनी जिम्मी, अमिता और जियांस मटाई। आप हैं गांव जाखोद राजस्थान से शंभुदयाल खटक, विमला देवी खटक और पूजा खटक। आप हैं अनारकली बाजार जगराव से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गाव्या मल्होत्रा और भाई सुच्चा सिंह पाठक। बनियापारा धमतरी से रामचंद माखीजा, काफिर सविता बेबी स्वाति माखीजा। यह है शीतला नगर दुर्ग से शिवचंद्राकर, भगवान चंद्राकर। हरदेवलाल पारा वार्ड सिमगा से रमेश कुमार यादव, श्रीमती माया यादव, रिंकी, सन्नी और कोमल यादव। सुरेश सारथी, पूर्णिमा सारथी, बेमेतरा से नवागढ़ कटी से नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, सीमा शारदा और दामिनी वर्मा। आप हैं बचकामल मोतीलाल यादव भाटापारा से, डॉक्टर वसंत भृगु, विनय ठाकुर। सोनाडी से सुब्रत चौधरी, बीबी अनिशा और रायपुर से नीलू मैक। गुलबाजार बक्सर से श्रद्धा नंदारी, अभयनंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज प्रमोद, रोहित और मोहित। हरजीत सिंह भाटिया, अंजल भाटिया, नवनीत भाटिया और पप्पी भाटिया। आप है जमशेदपुर से। छत्री तालाब अमरापति से साधना रानी गुप्ता, कविता गुप्ता, नेहा गुप्ता और कोमल गुप्ता। घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया। रायगढ़ से पुरुषोत्तम सिंह, उषा सिंह, प्रियंका, पूजा सिंह, लीलू और रितु सिंह हैं। आप सबकी पसंद पर आइए सुनते हैं पवित्र पापी फिल्म का ये गीत।

किशोर कुमार के गाए पवित्र पापी फिल्म के इस गीत के साथ ही श्रोता सुमन कार्यक्रम से मुझे यानी गायत्री आचार्य को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आपका दिन शुभ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। पश्चिम बंगाल में भाजपा विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए आज कोलकाता में बैठक। डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना ने स्वदेशी ग्लाइड हथियार तारा का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ मंदिर को भारत की दृढ़ता, एकता और सभ्यतागत शक्ति का शाश्वत प्रतीक बताया। अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार न्यायालय ने ट्रंप प्रशासन द्वारा भारत तथा अन्य देशों से आयात पर लगाए गए 10% शुल्क को अवैध घोषित किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, अमेरिका और यूरोपीय संघ ये सुनिश्चित करने के लिए एकजुट हैं कि ईरान के पास परमाणु हथियार न हो। आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला आज शाम दिल्ली में कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल में भाजपा विधायक दल आज अपने नेता का चुनाव करेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक में शामिल होने के लिए केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह कोलकाता पहुंच गए हैं।
1: पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के लगभग डेढ़ दशक के शासन का अंत हो चुका है। कल नवनिर्वाचित सरकार की शपथ ग्रहण के साथ ही बंगाल में राजनीतिक इतिहास में एक नई कड़ी का शुरुआत होगी। कल रविंद्र जयंती के दिन ब्रिगेड पैरेड ग्राउंड में पश्चिम बंगाल की पहली बीजेपी सरकार शपथ लेगी। बीजेपी के विधायक दल का नेता चुनने का प्रक्रिया को संपन्न करने के लिए पार्टी के नियुक्त पर्यवेक्षक और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहले ही कलकत्ता पहुंच चुके हैं। कुछ ही देर में वो नवनिर्वाचित विधायकों के साथ बैठक करेंगे। इसी बैठक में बीजेपी विधायक दल की नए नेता का चयन किया जाएगा। इसके बाद राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। कलकत्ता से अभिरूप भट्टाचार्य, आकाशवाणी के लिए।
0: शपथ ग्रहण समारोह कल कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और एनडीए शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने की उम्मीद है। असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार 12 मई को लगातार तीसरी बार शपथ लेगी। प्रदेश पार्टी अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि भाजपा विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। तमिलनाडु में नई सरकार के गठन में देरी से राजनीतिक स्थिति अनिश्चित बनी हुई है। सरकार बनाने के लिए आवश्यक 118 के बहुमत तक पहुंचने के लिए बातचीत जारी है। डीएमके और ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी ने कल नवनिर्वाचित विधायकों के साथ बैठक की। ऑल अन्ना डीएमके पार्टी के महासचिव ई पलनीसामी को विधायक दल का नेता चुना गया। राज्य की सबसे बड़ी पार्टी तमिलक वेत्री कड़गम को समर्थन देने के मुद्दे पर विदुथलाई चिरू थैगल काची, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक आज होगी। केरलम में नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं चल रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक अपने नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया है कि विधायक दल के नेता का निर्णय राष्ट्रीय नेतृत्व द्वारा केरल में पार्टी पर्यवेक्षकों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर लिया जाएगा। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना ने कल ओडिशा तट पर सामरिक उन्नत रेंज संवर्धन तारा हथियार का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: यह भारत की पहली स्वदेशी ग्लाइड हथियार प्रणाली है जो किसी भी सामान्य हथियार को घातक और सही दिशा में सटीक मार करने वाले हथियार में बदलने में सक्षम है। ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर इस एडवांस रेंज वेपन सिस्टम तारा का सफल परीक्षण किया गया। हैदराबाद स्थित डीआरडीओ की रिसर्च सेंटर इमारत ने डीआरडीओ के अन्य प्रयोगशालाओं के साथ मिलकर इसे डिजाइन और विकसित किया है। तारा प्रणाली में अत्याधुनिक लेकिन कम लागत वाली तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है। भारत की यह उपलब्धि स्वदेशी रक्षा निर्माण क्षमता और अत्याधुनिक सैन्य तकनीक विकसित करने की दिशा में बढ़ती ताकत को दर्शाती है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि के लिए डीआरडीओ, वायुसेना, डीसीपीपी और उद्योग जगत को

0: बधाई दी है। श्री सिंह ने इसे भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सोमवार को गुजरात जाएंगे। देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने 11 मई 1951 में पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर का शुभारंभ किया था। प्रधानमंत्री ने आज एक राष्ट्रीय दैनिक में लिखे लेख में ये जानकारी दी। श्री मोदी ने कहा कि कुछ महीनों के भीतर सोमनाथ मंदिर से जुड़े दो महत्वपूर्ण आयोजनों में शामिल होना उनके लिए सौभाग्य की बात है। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री ने सोमनाथ को भारत की सभ्यतागत शक्ति और मजबूती का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि सोमनाथ मंदिर की यात्रा विध्वंस से सृजन की तरफ बढ़ने का प्रतीक है और ये दिखाती है कि कैसे विश्वास और संस्कृति बार बार हुए आक्रमणों तथा मुश्किलों के बाद भी अस्तित्व में रह सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वाधीनता के बाद मंदिर के पुनर्निर्माण में देश के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की भूमिका का स्मरण किया। श्री मोदी ने कहा कि मंदिर के इतिहास से जुड़े शौर्य और बलिदान को सम्मान करने के लिए अगले 1000 दिनों तक विशेष पूजा आयोजित होंगी। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आकर्षिता सिंह।
0: विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा है कि प्रवासन को लेकर भारत का दृष्टिकोण प्रवासियों की सुरक्षा, देश छोड़ने से लेकर उनकी संभावित वापसी तक व्यापक शासन व्यवस्था और मजबूत अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के मुख्य संचालन सिद्धांतों पर आधारित है। उन्होंने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन के दूसरे अंतर्राष्ट्रीय पलायन समीक्षा मंच को संबोधित करते हुए ये बात कही। श्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा कि भारत प्रवासियों की आवाजाही को सुचारू बनाने के प्रयास कर रहा है।
2: भारत ने 23 देशों के साथ प्रवासियों की आवाजाही के लिए व्यापक द्विपक्षीय समझौते और समझौता ज्ञापन किए हैं तथा निष्पक्ष और नैतिक आवाजाही के लिए कई और अन्य समझौतों पर विचार किया जा रहा है। भारत का लक्ष्य अवैध पलायन, तस्करी और सामाजिक सुरक्षा में मौजूद कमियों जैसी चुनौतियों से निपटते हुए समावेशी, मानवीय और भव के लिए तैयार ढांचे का निर्माण करना है।
0: केंद्रीय नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने कहा है कि भारत विश्व के सबसे तेजी से बढ़ते विमानन बाजार के बाद अब विमान पट्टे पर देने और वित्तीय सहायता के मामले में एक प्रमुख वैश्विक स्थान बन रहा है। श्री नायडू ने ये बात गुजरात के गांधीनगर में गिफ्ट सिटी में भारत विमान लीजिंग और वित्त पोषण के दूसरे चरण में मुख्य भाषण देते हुए कही। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने वैश्विक आर्थिक स्थिरता के स्तंभ के रूप में भारत की बढ़ती भूमिका का जिक्र करते हुए अंतर्राष्ट्रीय समृद्धि में देश के महत्वपूर्ण योगदान का उल्लेख किया। श्री जयशंकर ने सूरीनाम में विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि इस वर्ष वैश्विक विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुमान के अनुसार भारत कुल वैश्विक विकास में 17% का योगदान देता है।
3: इंडिया कंट्रीब्यूट्स।
2: भारत कुल वैश्विक विकास में 17% का योगदान देता है। हम अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के जोखिम को कम करने में मदद कर रहे हैं। हम अधिक अवसर पैदा करने में सहायक हैं। हम आज और अधिक विकल्प तैयार कर रहे हैं। हम आज विभिन्न देशों के लिए ऐसे और अधिक मुक्त व्यापार समझौतों पर बातचीत कर रहे हैं और उन्हें अंतिम रूप दे रहे हैं ताकि वे इनका लाभ उठा सकें।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @HIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका की एक संघीय अदालत ने राष्ट्रपति ट्रंप के 10% के नए टैरिफ को गैर कानूनी बताया है। न्यूयॉर्क में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अदालत की 3 सदस्यीय पीठ ने व्यवस्था दी कि राष्ट्रपति ट्रंप ने व्यापार कानून के तहत अमेरिकी संसद से प्रदत्त शक्तियों का उल्लंघन किया। छोटे व्यवसायियों ने राष्ट्रपति ट्रंप के शुल्क संबंधी फैसले को अदालत में चुनौती दी थी। पिछले वर्ष लगाए गए वैश्विक टैरिफ को अदालत द्वारा स्थगित करने के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने नए शुल्कों की घोषणा की थी। अमरीकी प्रशासन ने इसके बाद व्यापार अधिनियम 1974 की धारा 122 का इस्तेमाल कर 24 जुलाई 2026 तक अस्थायी 10

0: प्रतिशत टैरिफ लागू करने का फैसला किया था। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका और यूरोपीय संघ ये सुनिश्चित करने के लिए एकजुट हैं कि ईरान के पास कभी भी परमाणु हथियार न हो। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लैन के साथ सार्थक बातचीत की और पश्चिम एशिया की स्थिति पर चर्चा की। श्री ट्रंप ने कहा कि दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए कि अपने लोगों की हत्या करने वाले ऐसे शासन को हथियार प्राप्त करने की अनुमति नहीं होनी चाहिए जिससे लाखों लोगों की जान जा सकती हो। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लैन ने भी सोशल मीडिया पर बातचीत की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया से जुड़े घटनाक्रमों और क्षेत्रीय साझेदारों के साथ समन्वय पर बातचीत की। आकाशवाणी ने राष्ट्र के प्रति अपनी विशिष्ट सेवा के 90 वर्ष के उपलक्ष्य में आज राष्ट्रीय राजधानी में मैराथन का आयोजन किया। लगभग 3.5 किलोमीटर की मैराथन की शुरुआत आकाशवाणी भवन से हुई। ये मैराथन कृषि भवन, रेल भवन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से गुजरते हुए आकाशवाणी भवन पर समाप्त हुई। मैराथन पूरा करने वाले सभी प्रतिभागियों को पदक प्रदान किए गए। वहीं पुरुष और महिला दोनों वर्गों में शीर्ष 3 प्रतिभागियों को ट्रॉफी प्रदान की गई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी और आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने इस मैराथन को रवाना किया।
1: आकाशवाणी के व्यापक राष्ट्रव्यापी नेटवर्क में इसी प्रकार के मैराथन और वॉकाथॉन कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है जिससे 90वीं वर्षगांठ के समारोह के दौरान व्यापक जनभागीदारी और जागरूकता सुनिश्चित हो सके। इस अवसर पर प्रसार भारती के सीईओ गौरव द्विवेदी ने कहा कि मैराथन के माध्यम से फिटनेस का संदेश जनता तक पहुँचाया जा रहा है।
2: इस साल 90 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में विभिन्न कार्यक्रम आकाशवाणी में आयोजित किए जा रहे हैं। हमारे पूरे देश में जितने भी स्टेशन हैं, जो देश में फिटनेस की एक मूवमेंट माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर आरंभ हुई, उसका संदेश भी लोगों तक ले जाने के लिए ये उस कड़ी में एक कदम था।
1: आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने बताया कि आयोजन सार्वजनिक प्रसारक के रूप में आकाशवाणी द्वारा देश की सेवा में किए गए योगदान को दर्शाता है।
3: ब्रॉडकास्टर होने के नाते जब इस तरह का कार्यक्रम हम करते हैं तो इसका संदेश दूर दूर तक, सुदूर प्रदेश तक पहुंचता है और ये बहुत बड़ा उदाहरण होगा।
4: देशभर में जो हमारे 232 मुख्य केंद्र हैं उन पर ये आयोजन इस महीने आयोजित होगा।
1: अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के अंतर्गत 6वें युवा संगम का आयोजन कर रहा है। इसका उद्देश्य विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के युवाओं में सांस्कृतिक एकीकरण को बढ़ावा देना तथा लोगों के बीच संपर्क को सशक्त बनाना है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत देश के विभिन्न हिस्सों के युवा प्रतिभागी जीवन, विकास, संस्कृति, विरासत, शिक्षा, पर्यटन, नवाचार और श्रेष्ठ कार्यप्रणालियों के विभिन्न पहलुओं का अनुभव करने के लिए सहयोगी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा कर रहे हैं। आईपीएल क्रिकेट में आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। प्रतियोगिता में कल लखनऊ सुपर जायंट्स ने रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु को 9 रन से हरा दिया। वर्षा से बाधित मैच का फैसला डकवर्थ लुईस नियम के आधार पर हुआ। 213 रन के लक्ष्य के जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु निर्धारित 19 ओवर में 6 विकेट पर 203 रन ही बना सका। मिशेल मार्श को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में 0.7% की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 527 अंक गिरकर 77,318 पर, जबकि निफ्टी 153 अंक की गिरावट के साथ 24,173 पर था। मौसम विभाग ने 10 से 13 मई के बीच देश के उत्तर पश्चिमी भागों के विभिन्न स्थानों पर बिजली चमकने, बादल गरजने और तेज हवाएं चलने का अनुमान व्यक्त किया है। केरला, माहे, दक्षिण आंध्रीय कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुच्चेरी और करैकाल में तेज बारिश की संभावना है। रविवार तक उत्तर पश्चिम भारत में अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल में भाजपा विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए आज कोलकाता में बैठक। डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना ने स्वदेशी ग्लाइड हथियार तारा का सफल उड़ान परीक्षण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ मंदिर को भारत की दृढ़ता, एकता और सभ्यतागत शक्ति का शाश्वत प्रतीक बताया। अमरीकी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार न्यायालय ने ट्रंप प्रशासन द्वारा भारत तथा अन्य देशों से आयात पर लगाए गए 10%

0: शुल्क को अवैध घोषित किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, अमेरिका और यूरोपीय संघ ये सुनिश्चित करने के लिए एकजुट हैं कि ईरान के पास परमाणु हथियार न हो। और आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला आज शाम दिल्ली में कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 396.82 मीटर यानी 756 किलोहर्ट्ज और एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। आप हमारे कार्यक्रम मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR के माध्यम से भी सुन रहे हैं। दोपहर के 2:30 हुए हैं। प्रस्तुत है हल्बी बोली में कार्यक्रम कला और कलाकार।
2: दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा

जुहार दादा दीदी मन, जुहार। कला और कलाकार कार्यक्रम सुन तोर सप्पा कलाकार दादा दीदी मन के मैं दसरी करे से जुहार, और नन नन पीला मन के मच बाटले खुबे खुबे मया। तो दादा दीदी मन देखा, हमी तो कला हुनर के तो सपाय जानू से, और उसने हस्तशिल्प बल्लों ने जो हाथ ले हमी जिनिस मन बनाऊ से उन सपाय हस्तशिल्प हो से। और हस्तशिल्प जो दुनिया बल्लों ने खूबे रंग रंग चो और हाथ ले बन तो जिनिस मन हो से। तो दादा दीदी मन देखा, ये चोले हमी कोनी बले क्षेत्र चो संस्कृति परम्परा और कला के हमी जानू सकूँ से। तो जसन राजस्थान चो हमी देखूँ से कठपुतली होना चा हो से, मध्य प्रदेश चो गोंड कला हो से, उत्तर प्रदेश चो चिकनकारी हो से, छत्तीसगढ़ चो बांस और बेल मेटल कला हो से। तो दादा दीदी मन जसन हस्तशिल्प के लोग मन के हस्त जो हस्तशिल्प हम बोलू से ए थान ले लोग मन के रोजगार बले मेरे से कसन बल्लो ने जो हाथ ले बना तो जिनिस मन हो से ए थाने बल्लो ने लोग मन चो ज्यादा जरूरत हो से। तो असन ने कहा हम तो असन थान मन में हमके लोग मन चो खूबे भर्ती हो से और लोग मन ए थाने काम बले कर सो। तो असन ले कहा हस्तशिल्प ने रोजगार चो अवसर बले खूबे मेरे से। और हम ची संगे संगे ए चोले आप लोग हनुमन जसन कला के जसन हस्तशिल्प रोजगार तो मेरे से बन के, और ए चोले आप लोग कला के उन बचक बोले संगाऊ से जसन मेहरार मन और हम चो जोन बहिन मनात ए मन के बोले आप लोग पाए नहीं उबा हो तो गोटुक समय मेरे से कसन बल्लो ने असन ठान मन में हनुमन जाऊन भाती बल्लो ने काम भूता कर सोत और सीख सोत। तो असन ने हनुमत बोले दुई पैसा कमा सोत और दुई पैसा कमा लो उनका हनुमन के बोले खूबे नंगत लागे से और घर चलाने चलातो ने बल हनुमन सहा हो सो। तो हनुमन चू पाए ने उबा होतर ये बल अवसर हो से। और उसने आजकल हम देखूँ से कि हस्तशिल्प जो जो जिनिस मन बने से उन हम चो देश विदेश ने बल चू खूबे मांग हो से। और जसन कलाकार दादा दीदी मन आप लोग जसन कला के मेला मंडई ने नहाले फिर प्रदर्शनी ने असन ठान ने हनुमन ने उन भाती आप लोग कला के बल्लो ने हनुमन और अधिक बाढ़ती कर सको। हन थान मन मंडाले तो हनुमन लोग मन सपाय दग दे और दखन भाती हनुमन चो कला के चिता दे तो हनुमन चो नाव बले खूबे बढ़े दे। तो दादा दीदी मन दखाई गोट मन तो होली मन तर हम चो लगे और नगद गोट मना से अली के बले सुनो।

0: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
1: किसान भाई बहन मन का जे नुआ उवाट एदाए रोज शनिवार के सांझ बेरा 7:30 ले 8 तक सुना फोन इन किसान वाणी। यथा कृषि महकमा चो विशेषज्ञ बल्लो ने खोजाकारी दादा दीदी दे दे आपन मन चो खेती कमाने लिए जुड़ लो सपाय समस्या चो समाधान। बीज ले धरून हाट बाजार तक हर सवाल चो जवाब सीधा आपन मन के मिरे दे। और हाँ, ये कार्यक्रम जो रिकॉर्डिंग होए से रोजे मंगलवार अड़ौ पहार 3:30 ले 4 तक। तो आपन मन सपाय सुना और आप लोग सवाल सीधा आम के फोन ने सांगा। आम चो फोन नंबर आए 07782226666। फोन इन किसान वाणी, आपन मन चो सवाल, आपन मन चो कहानी, खेती बाड़ी चो जुबानी, आकाशवाणी जगदलपुर ने।
2: इत बदले मत्ता अच्छा मानेड़ा इलाज चुडून सस्ता आता सेंगेन वेटरनरी सर्जिकल जाकी और वेंट सामान किन मोलवेंट कम मत्ता जानवर किन इलाज तगवेंट राहत दरकना उम्मीद मिंदे यू पूना मोलते ग्राहक लोर्क और व्यापारी लोर्क फायदा दरकिता। GST तक कोंडे पूना मोला 22 सितंबर 2025 तीना लागू आयना मिंदे।
3: क्या बात है उमेश, आजकल खूब छाए हो अखबार में नई नई रिपोर्टिंग के साथ।
4: हाँ यार, पत्रकार जो हूँ।
3: तो अब अगली रिपोर्टिंग किस पर कर रहे हो?
4: सुधीर, मुझे एक ऐसी 11 साल की लड़की के बारे में पता चला है जिससे एक परिवार वाले घर का सारा काम करवाते हैं और ऊपर से उस पर ज्यादती करते हैं। उसी पर एक स्टोरी बना रहा हूँ।
3: उमेश, स्टोरी बनाते समय इस बात का ध्यान रखना कि पीड़ित बालिका का नाम, पता, फोटो या स्कूल का पता या ऐसी कोई भी जानकारी सामने न आए जिससे उसकी पहचान होती हो।
4: क्यों?
3: क्योंकि ऐसा करना बाल न्याय तथा बच्चों की देखभाल और उनके संरक्षण संबंधी संवैधानिक अधिनियम 21A का उल्लंघन है। और इस बात का ध्यान हमारे सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को भी रखना है।
5: बाल अधिकार हनन से पीड़ित बच्चों की पहचान उजागर करने वाली जानकारी का प्रकाशन या प्रसारण न करें, क्योंकि इससे पीड़ित बच्चों के सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है।
6: आपके सपनों को साकार करने और हर इम्तिहान में आपके साथ चेट्टीनाड सुपर ग्रेट सीमेंट, मजबूत नींव बनाने के लिए एक ही नाम चेट्टीनाड सीमेंट।
7: GST चो दर के कम करलो ने सोझे मनुख जीव चो इलाज खंडिक सस्ता नहीं होली से, बल्कि जानवर मन चो इलाज बोले सस्ता हो तो भरसा आसे। GST ले वेटनरी सर्जिकल चो सामान सस्ता होली से, नुआ कीमत ले सामान बनातो लोग और घेनतो लोग दोनों के लाभ मिरे दे। ये नुआ GST दर 22 सितंबर 2025 ले लागू होए दे।
8: तो दादा दीदी मन एक गोट मन के तो सुन लास मन तो कलाकार दादा दीदी मन देखा मी तो उन मन का कई समय समय नेसन कई ठन कलाकार दादा दीदी मन संग भेंट कराते रहूं से हुन मन चो कला हुनर चो गोट मन के तो उन मन लगे आनते रहूं से नाले कोनी कोनी कलाकार दादा दीदी मन चो बोले कला हुनर के तो उन मन के सरसरा सांगते रहूं से। तो उसने आजी बोले आजी चो कलाकार भितरे हम चो लगे जो ने भाई जो जो नाते जंगल से है श्याम, ए भाई के देखा अमी सपाय चित्रकला रेखा चित्र मूर्तिकला भित्ति चित्र ए चुकाजे सपाय जानू से तो आले बेरा नहीं करूँ और ए मंचो बारे ने मैं तो उन मन का सरसरा सांगे से। तो दादा दीदी मन देखा ए मंचो जन्म मध्य प्रदेश चो मंडला जिला डिडोरी जिला चो पाटनगढ़ गांव ने प्रधान गोंड परिवार ने होन रहे। ए मन खूबे गरीबी ने जीवला, यही कारण ने ए मन के स्कूल छाड़ू पढ़ ली और खेती बाड़ी ए मन करते रहला। एमन भैंस पोसन भाती हनुमन गोरस के बले गांव गांव बिकते रहला और उसने 16 बरख चो उम्र ने एमन चो बिहार सोनपुर गांव चो नानकू सिया बाई संगे होन रहे और पाछे एमन चो एमन साथी कलाकार बले बनला। अक्टूबर 1981 ने भारत भवन कला संग्रहालय चो प्रतिभा खोजकर्ता मन जंगल ले संपर्क करला और इस समय ने एमन चो भेंट

निर्देशक कलाकार जगदीश स्वामी नाथन ले होले और दोनों चो बीच ने एवं के जीवन भर एक दूसरे चो सहा हो तो काजे उनके बल्लोन गोडवाद मुर होले और स्वामी नाथन एवं के भोपाल एवं पेशावर कलाकार चो रूप ने काम करतो काजे राजी करला। स्वामी नाथन फरवरी 1982 ने भारत भवन चो उद्घाटन प्रदर्शनी ने जंगल चो पेंटिंग के दखाला। एचो पाछे इनमन के झपके भारत भवन ने आर्ट्स विभाग ने इनमन के नौकरी मिलली और एमन अपलो परिवार संगे भोपाल चो प्रोफेसर कॉलोनी ने स्वामीनाथन घर चो पाटकोती रला। तो दादा दीदी मन देखा एमन कितरो अच्छा ये चित्रकारी करत रहो, रेखा चित्र बोलो ने चे बनात रहो, मूर्ति कला बोलो ने बरन बरन चो मूर्ति मन चो डिजाइन करत रहो और असन बनान भाती एमन के कई ठन असन पुरस्कार भरे मिलली से। तो दादा दीदी मन देखा एमन तो आप लोग कला हुनर के करुण भाती आप लोग नाव चो बाढ़ती तो करला और संगे संगे कई ठन इनाम बल्ले पुरस्कार भले उनके मिलली। तो उसने कलाकार दादा दीदी मन देखा तो उन मन लगे बोले उसने कई ठन कला हुनर मना से जे के तू उन बोले बल्लो ने अच्छा ले अच्छा करुण भाती लोग चे पूरे आनंद भाती आप लोग नाव के बोले बाढ़ती करुक सकास और संगे संगे तुम्हें बोले बल्लो ने कई ठन असन पुरस्कार और इनाम बोले पाक सकास। तो दादा दीदी मन देखा ये गोट मन तो होली मन तर संगे संगे गीत गोविंद वाली होतर खूब जरूरी है ऐसे ने। तो वाले ये गीत के सुनो पाछे गीत कुरिया मन चो नाव के सांगे दे।

तो दादा दीदी ने तो काय सुंदर गीत रहे और एक गीत के गाउन रहो मेघनाथ पटनायक करे मंचो संगवारी मन। तो दादा दीदी मन देखा गाँव गीत बोले गाँव तो बोले गोटक कला चाय बोलो ने गीत कुरिया मन बल जसन गाँव सो तो हन मन बोले कोची लगे सीख सो जाऊन भाती ट्रेनिंग धर सो ते भी हन मन गाँव सो। तो उसने दादा दीदी मन अमी देखू से कि हम जो घरे बोले जन पड़तो पीला मन रसोत नहाले को बड़े पीला बोला सो तो हन मन भीतरे बोले असने का एक ठन बोलो ने हुनर रह से कला रह से जे कि हमके चिताऊक लागे से कसम बोलो ने दादा दीदी मन हमी देखू से कि पड़तो पीला मन बोले काय सुंदर बरन बरन जो बोलो ने चित्रकारी कर सोत पेंटिंग कर सोत नहाले गीत गोविंद बल गा सोत और कोनी कोनी पीला मन तो बाजा बल खूब ही सुंदर बजा सोत। तो असन बल्लो ने हमें खिंडी पीला मन के लेख करूँ दादा दीदी मन ते भी जैसे हुन मन कौन बांटने हिंड तो हुन मन चो मन आसे तो हमी हुन मन चो उन्हीं बांटने हिंडा तो नहीं हमी हुन मन चो सहा हो सकूँ। तो दादा दीदी मन हमके खिंडी लेख कर तो रहा है और हमी दख हम चो घर चो पीला मन के तो लेख करूँ से मानतर संगे संगे दादा दीदी मन हम चो जोन घर चो पारा चो जोन घर कठा कठा जैसे घर और लोग मन रसोत नहाल हम चो खिंडी घर ले लापी बल रसोत तो हुन मन लगे बल देखा असन का एक ठन कला हुनर में रहे से लोग मन लगे मंत्र कोनी कोनी तो असन रसो जोन जे चो लगे पैसा कौड़ी से खूबी चिपा हुए से नहाले फिर कोनी कोनी बलो ने लाज शरम हो सोत। तो असन लोग मन के बल दादा दीदी मन हमके खिंडिक बल्लो ने हुन मन के पूरे जाऊन भाती खिंडिक समझा तो रहा है हुन मन के सहा हो तो रहा है हुन मन चो बल्लो ने खिंडिक हिम्मत के बढ़ा तो रहा है ते भी हुन मन बल्ले बल्लो ने आप लोग आश्रम के छानन भाती आगे हुन आप लोग कला हुनर के कर दे और संगे संगे लोग चो पूरे आंतो ने हुन मन बल्ले खिंडिक बल्लो ने पूरे दे और लास्ट श्रम बल्ले नहीं कर दे। तो दादा दीदी मन असन हम ही नगत काम बुता के हमी करूँ असन काम मन के कर लें तो हमके बल हरिक लागे देने और संगे संगे तो हम चो तो नाव हो दे मंत्र संगे संगे हम चो गाँव पारा चो बल नाव हो दे। तो दादा दीदी मन दखाई गोट मन तो होली मंत्र और एक गीत के सुनू था और एक गीत के गा सो लकेश्वर खुदराम और मंचो संगवारी मन। तो सुनू एक गीत के

0: तो दादा दीदी मन देखा गीत तो सुन लू मंत्र गीत के गावतर हो दिलीप कुमार पांडे और हम चो संगवारी मन। तो देखा दादा दीदी मन हम समियानी उसे तो हमके समियाने पर जाऊक लागे से ने। तो उसने मैं बोलते रहे दादा दीदी में फिर हम ही भेंट हुआ के भी के तब तक दादा दीदी में तुमन मन बल देखा आज काली घाम बल हो से पानी बल मारे से तो तब तक आप लोग देह पाएक बोले तुम सब पाए नंग संगावा तो दाए मचो जाते बिरा हो से तो अलग विदा दिया कला और कलाकार कार्यक्रम सुन तो सब पाए कलाकार दादा दीदी मन करें से
1: दादा दादा दादा।

82 मीटर यानी 756 किलोहर्ट्स और FM बैंड 100.1 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। आप हमें मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन रहे हैं। दोपहर के 3 बजे हैं। मीडियम वेव 396.82 मीटर यानी 756 किलोहर्ट्स पर हमारी ये सभा अब संपन्न होती है। FM बैंड 100.1 मेगाहर्ट्स पर विविध भारती के कार्यक्रम जारी रहेंगे। शाम 5 बजे संध्याकालीन कार्यक्रमों के साथ हम आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। अब हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।

मीडियम वेव 396.82 मीटर यानी 756 किलोहर्ट्ज़, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। आप हमें न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी सुन सकते हैं। इस वक्त शाम के 5 बजे हैं, हमारी आज की सांध्यकालीन सभा प्रारंभ होती है। लीजिए सुनिए हमारे केंद्र से आज की और कल की तीनों सभाओं के कार्यक्रमों की जानकारी। शाम 5:10 पर सुनेगा युवा दोस्तों का कार्यक्रम युववाणी। गोंडी लोकगीत आप सुनेंगे शाम 6:35 पर। कलाकार होंगे गोविंद राम और साथी। बस्तर के स्वर शाम 7:21 पर सुनेगा ग्रामीण श्रोताओं का कार्यक्रम आम चौगांव। रात 8 घलर में आप सुनेंगे वेदबती और साथियों के गाए पत्री गीत। पिलामन काजीकोट में आज आप सुनेंगे लाला लाजपत राय के बारे में। रात 8:30 पर प्रस्तुति होगी सुब्रू राम कश्यप की। नंजर में आप सुनेंगे भेंट वार्ता रात 9:15 पर। आज आप सुनेंगे बोहरानी परंपरा पर श्री मंदाराम नाग से बलबीर सिंह कच्छी की बातचीत। रात 9:30

0: खेल पत्रिका में सुनेगा नैना सी धाकड़ से ली गई भेंट वार्ता। आपसे बातचीत करेंगी पूर्णिमा सरोज। फरमाइशी लोकगीतों का फोन इन कार्यक्रम लोकरस आप सुनेंगे रात 10 बजे। प्रस्तुति होगी डमरूराम मंडावी की। संयोजन होगा चंद्र ऋषि ठाकुर का। लीजिए अब सुनिए कल की तीनों सभाओं में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। साहित्य भारती रात 9:30 बजे हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे। डॉक्टर की सलाह सुबह 8:30 बजे और बातों बातों में सुबह 9 बजे। ये दोनों कार्यक्रम हम आकाशवाणी रायपुर से रिले करेंगे। सुबह 6:05 पर होगा भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। चिंतन सुनिएगा सुबह 6:20 पर। आलेख और प्रस्तुति होगी स्वामी आत्मानंद की। श्री रामचरितमानस का गायन आप सुनेंगे सुबह 6:25 पर। गायक होंगे भूपेंद्र सिंह। संगीत निर्देशक होंगे सतीश भाटिया। बेड़ा खड़ा चौगोट होगा सुबह 6:35 पर। सुबह 6:40 पर हुलहुली में आप सुनेंगे राउत गिरलीपाड़। वादक कलाकार होंगे धर्मू और साथी। सुबह 7:05 पर प्रस्तुत करेंगे हमारा दैनिक कार्यक्रम नमस्कार जगदलपुर आकर्षण। काव्य सरिता में सुनेगा सैयद सलीम का कविता पाठ और होगी मधुरिमा। फिल्म संगीत सुबह 9:15 पर। सुबह 9:30 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम एक ही फिल्म से। आज ही चौसगा कार्यक्रम में सुनिएगा बलबीर सिंह कच्छ से ली गई भेंटवार्ता। सुबह 10 बजे भेंट करता होंगे भरत कुमार गंगादित्य। लोकगीतों के कार्यक्रम गुर्दों में आप सुनेंगे केदार यादव और साथियों के गाए छत्तीसगढ़ी गीत सुबह 10:30 बजे। सुबह 11 बजे कार्यक्रम एक ही कलाकार आप सुनेंगे। गैर फिल्मी गीतों गजल का कार्यक्रम गुलदस्ता हम आपके लिए लेकर आएंगे सुबह 11:30 बजे। दोपहर 12 बजे सुनिएगा लोकगीतों का फोन इन कार्यक्रम लोकरस। प्रस्तुति होगी डमरू राम मंडावी की। संयोजक होंगी चंद्र ऋषि ठाकुर। बेड़ा खाड़ा चौगोट का पुनः प्रसारण होगा दोपहर 1:05 पर। दोपहर 1:10 पर सुनिएगा फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम श्रोता सुमन। कला और कलाकार होगा दोपहर 2:30 बजे। दोपहर 3 बजे से FM बैंड 100.1 पर विविध भारती के कार्यक्रम जारी रहेंगे। सांध्यकालीन सभा में सुनेगा देशभक्ति गीत शाम 5:05 पर। युवा दोस्तों का कार्यक्रम युववाणी आप सुनेंगे शाम 5:10 पर। शाम 6:35 पर सुनेगा हल्बी गीत। कलाकार होंगे मधुराम और साथी। बस्तर के स्वर शाम 7 बजे। शाम 7:30 पर सुनेगा फोन इन किसान वाणी। जोनी उजर में आप सुनेंगे भद्रीनाथ गीत रात 8 बजे। कलाकार होंगे नीलू राम और साथी। पिलामन काजे गोट में सुनेगा ऋतु चक्र के बारे में रात 8:30 बजे। प्रस्तुति होगी बंशी राम की। रात 9:15 पर आप सुनेंगे आमचोरान आमचो जीवना में संतु मौर्य से ली गई भेंटवार्ता। भेंट करता होंगे बलबीर सिंह कच्छ। आदिवासी लोकवाद्य धुन के कार्यक्रम पाड़ में सुनेगा तेल चगानी पाड़ और ऊर्जा पाड़। वादक कलाकार होंगे सुनारू और साथी। श्रोता ये थी हमारे केंद्र से आज और कल की तीनों सभाओं में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। शाम के 5:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए समसामयिक विषय पर आधारित कार्यक्रम भारत सरकार आपके द्वार गोंडी बोली में।
1: केंजनोड़ी समसामयिक विषय तक आधारित कार्यक्रम तसंगे नन्ना रमेश कुमार पोड़ियामी केंजनोड़ी नैन मनवा इत कार्यक्रम छत्तीसगढ़ ते दुर्कनाव जड़ी बूटी उत्पाद और बिक्रीतिना सशक्ता मुनता स्व सहायता समूह न मुत्ते न केंद्रित मनता जड़ी बूटी न गढ़ माने मायनत छत्तीसगढ़ ता मिट्टा इतकी खासकर बस्तर ते 160 तिना दिव्य प्रकार ता दुर्लभ जड़ी बूटी दुर्किता इग्गता तोड़ीते अश्वगंधा सर्पगंधा गोचुरा कुटकी और तिकुरता सुनता दवाई मिंदे जोन स्वास्थ्य तलाय लाभदायक आता यू जड़ी बूटी किन किचन और लोना मुन्ने गार्डन ते खिड़की ने बालकनी लोना पुर्रो गमला इलोक और डब्बा ने उसका परना आता पर्यावरण संरक्षण और आजीविका ता नड़मा संतुलन पाड़ना उद्देश्य तिना औषधि पौधना मदर नर्सरी विकसित किएना जिम्मेदारी मुत्ते समूह किन सौंपा के मुनता इदिन ले दुर्लभ जड़ी बूटी ना प्रजाति किन कतुम आयनक टीना बचा किएना आता संगे ही स्थानीय स्तर तक मुत्तेकिन रोजगार ता अवसर वेन दुर्का मुंता आदिनले वनांचल तिना आय मुंताव पलायन तक रोक लगे मत्ता जड़ी बूटी ना संग्रहण किए नव मुत्ते इंजे संग्राहक तिना निर्माता दवाई पाड़ना भूमिका ते नजर वाय मुंता औषधि पादक बोर्ड ताकेट महिला स्वसहायता समूहकिन औषधि प्रसंस्करणता प्रशिक्षण ये मुंता छत्तीसगढ़ ते 1500 तिना दिब्बे सक्रिय वैद्यना ज्ञान तीन सहजम किया और जड़ी बूटी ना विपणना लय छत्तीसगढ़ जनजाति स्थानीय स्वास्थ्य परंपरा और औषधि पादक बोर्ड सक्रिय रूप तिना काम के मुंता इत संस्था अर्बल उत्पादना केती मूल्य संवर्धन और मार्केटिंग ते तकनीकी सहायता और सामुदायिक भागीदारी सुनिश्चित किए मुंता बोर्ड वनांचलता पारंपरिक ज्ञान तीन वैज्ञानिक पद्धति तिना जोड़ा के लय उन्ड स्थानीय वैद्य और जानकार ना चिन्हांकन शुरू किता बिननग असाध्य रोग ना उपचार ता ज्ञान मिंदे बोर्ड ता हुआट वैद्य किन मंच प्रदान किए नद इतके ओड़ा विशेषज्ञता ता लाभम समाज तलय और वेड़ अपुन वेंड आर्थिक रूप तिना सुदृढ़ आया परवेड छत्तीसगढ़ ते पारंपरिक जड़ी बूटी और जनजाति ज्ञान तीन इंजे आधुनिक विज्ञान ता माध्यम तिना पूर्ण पहचान दुर्का मुंता राजता मिट्टा ने मिंचता औषधि खजाना किन वैज्ञानिक आधार तक प्रमाणित किस अविकिन आजीविका ता साधन ता रूप ते विकसित किया मुंता प्रदेश ता छत्तीसगढ़ हर्बल ब्रांड गिलोय कालमेघ बहेड़ा सफेद मुसली जंगली हल्दी गुड़मार अश्वगंधा और सतावरी तासुंता औषधि वनस्पति किन प्रदर्शनी और रिटेल आउटलेट्स ता माध्यम तिना सहरता उपभोक्ता लोरक एवना एविके मुंता 65 तिना दिब्बे लघु वन उपज प्रजाति ना न्यूनतम समर्थन मूल्य तक खरीदी और अविना प्रसंस्करण के मुंता छत्तीसगढ़ ते जड़ी बूटी नालय संवर्धन ओन जरूरी काम अधिना माध्यम तिना राज्यता समृद्ध वन संसाधन ना वैचानिक तरीका तिना संसाधित किस अविना आर्थिक मूल्य तीन पड़सी के मुंता राज्य सरकार छत्तीसगढ़ अर्बल ब्रांड ता तहत युव उत्पाद किन बढ़ावा ये मुंता बिचुट मुत्ते मेटा तिना दौरकताव पहना जोगड़ाम ना चूर्ण अर्क इलोक नीत रूप ते बदलेम किता अचूट उत्पादन तक कीमत और गुणवत्ता नकाय गुना पड़सीता युव मूल्य संवर्धन ता आर्थिक लाभम सीधा अविनग एवदमुंता अदिनले बिचोली लोरा वर्चस्व पूरा तरह तिना मारता ईद पहल छत्तीसगढ़ ता उन प्रमुख अर्बल स्टेट ता रूप ते स्थापित किया ना दिशा ते उन जरूरी डाका मिंदे राज्य सरकार ता ईद समय के दृष्टिकोण ईद माटा ता प्रमाण मिंदे की मुख्यमंत्री विष्णुदेव सायना नेतृत्व ते छत्तीसगढ़ आदिवासी स्थानीय स्वास्थ्य परंपरा और औषधि पादक बोर्ड चुज्जे उन प्रशासकता आयो इतके उन मार्गदर्शकता भूमिका निभा के मुंता छत्तीसगढ़ ता वनांचल ता गोते मिंचतव अमूल्य औषधि संपदा इंजे छोजे स्वास्थ्य ता आधार आयो इतके प्रदेश ता नारी शक्ति ता आर्थिक स्वावलंबन ता पूर्ण अध्याय बने आय मुंता
0: आप सुन रहे थे समसामयिक विषय पर आधारित कार्यक्रम भारत सरकार आपके द्वार गोंडी बोली में। ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है।
2: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
3: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
2: और अब तो आप घर दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
3: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
2: बुकिंग है तो संपर्क करें 870-001-4242 पर
3: 870-001-4242।
0: ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। शाम के 5:10 हुए हैं। आइए सुनते हैं युवा दोस्तों का कार्यक्रम युववाणी।

शुभ संध्या, गुड इवनिंग संगवारी मन। युवाणी कार्यक्रम सुन तो सपाय संगजोरिया आमचे जुवान संगवारी मंचो स्वागत आए। मैं आए आप मंचो कंपेयर दोस्त लकेश बघेल।

0: और मैं अपन मंचो रेडियो संगवारी समारू कश्यप आमी दोनों जन करूं से अपन सपाय जन के जुहार। एना लकेश्वर दादा,
1: हाँ हाँ,
0: दिन समय बोले दखते दखते निकरून जाए छे ने।
1: हाँ,
0: ए दिन मन ने आम छो गांव गांव छो बाजार मंडी बोल रली।
1: हाँ,
0: और ये भी बिया सट्टी बल घर घर में होय छे ने।
1: हाँ, ये देखो होय छे छी काय बिया सट्टी तो होय छे छी और बिया जानु अधिकतर होय छे ने।
0: हाँ काय, ये बिया घर मन ने ना ने बुलुन बुलुन के भी आम छो बेड़ा काड़ा बूता बोले अमरे से जानु कि नहीं बोली ने
1: सते गोड बोली छे ना ने। अले ये दकित्रो गर्मी छो समय और यही समय ने जो ना दक पानी बले से ने और जन बेड़ा बूता बोले इनाम अमरली
0: अमरली
1: ने आम छो कटाय आसे
0: बोलो कटाय ने।
1: अंदा दक दुई एक दिन पानी मारु गए बुतरल बेड़ा बूता काम ने अंबल मिल मन कसन। अच्छा,
0: कोनी कोनी मन खत खत वत।
1: हाँ, खत वत वत देसोत ने
0: चालू करा
1: ने नेसोत। हाँ, ठीक ठीक, यानी बेड़ा नेसोत ना हाले खत के निकरासो
0: निकरासो
1: कोनी कोनी ने। हाँ ना मानते
0: हैं आमी बिया ठिकाने
1: बिया ठिकाने जो भूरलू और उपसम आज कसन बितली पता है बल जानुक नहीं होली ने। अले तक आमी तू ही तो अमरलू ने और काय काज दिन जो ना शुक्रवार चो दिन है ने और दक संगवारी मन काज काय काय बरन बानी चो गोट मना निरु हम ना ने उसने ची जो ना हम ची युवा संगवारी मतलब हम ची जुवान संगवारी मन काज आजिचो जोन विषय धरु नीलू से धीमी जीवन शैली।
0: okay.
1: मतलब बोलो ने कि धीरे धीरे उन जीवन के आगे सरकातोर तो उसने चीज जो ना आजिचो विषय आए और ये विषय चो बारे में जो ना हम आमचो संगवारी मन के सुरताबल करामा और उनचो बारे में जानकारी देवा।
0: हाँ,
1: आले उनचे बारे में जी कामी जो ना संगवारी मन के गोड बात करू। हाँ, अले दख आजी चो कार्यक्रम ने आयसी ने अब धीमी जीवन शैली बल्लो ने जानु खोय से ना कि आमचो जो जीव ना आए है नी ये बेले आमचो पुरखती बेरा कसन रली और एफचो बेरा कसन होली ये चो बारे में जो ना है आमी गोट गोटिया उसे है क्या सर।
0: हाँ ना, ये जीवन चो भागदौड़ के कम करूं ने उन चीज मन के प्राथमिकता देतो रहे जोन काम ले आम के परम आनंद बोलो ने कुबे हरिक लागू
1: है हरिक लागू है। हाँ,
0: ना कि सिर पे व्यस्त रतोर एबे कुनी हो काकी हो पूछ लेने बोलो ने काय करती इतना कुनी नहीं बोलो तुम्हें खाली आंसे
1: खाली
0: नहीं मैं बोले व्यस्त
1: कहीं ना कहीं करें दे बल सोत ने
0: बल सोत कहीं व्यस्त आंसे।
1: हाँ, उसने सीधा आगे चो समय आने आम चो जोन पुरखती लोग रहोत ने उदल ना घड़ी नहीं रहे ना आज चो समय आचो सन इंटरनेट नहीं रहे ने उदल ना काय करो सियान मन की बिया ने पहाड़ यानी बिना घड़ी चो 3 बजे ना 4 बजे उठो है क्या सर। आरु जानू आप लोग काम करते रहो बोलो नांगर ने तो रहा नाल उठतो रहा नाल कहीं काम करते रहो बिना घड़ी कुन बाती उन मन जो ना है करते रहो
0: okay.
1: तो जीवन बल सरल रहे
0: है
1: क्या सर। मतलब काय सुंदर संज बेरा होलो ने भात साग खाओत ने और सो दो 4 बजे उठो फिर आप लोग काम नहीं जाओ ये भी उसन नो आए ये भी असन काम होली से कि 10 बजे तक बल काम करू को ऐसे घून बल घड़ी दो कुन बाती तीर में बल बसलू सा मात्र घड़ी की दो
0: कसन
1: अल घड़ी की दो ना इतरी तो गोटे आवा ना तेवेन बनू सा बोले
0: उधर टाइगर और घड़ी नहीं रहे
1: घड़ी नहीं रहे
0: आपसी आमने सामने गोटियाते
1: रहला
0: स्वाद रहे था
1: स्वाद रहे और जीवन बल सरल रहे है क्या सन।
0: सीधा सरल लोग मन रहला
1: सरल लोग मन रहो और जानो एकदम सूझबूझ ने करून खातो पीतो लोग रहो है क्या सन। उसने चिदक ये भी चुचन जीवना ये चु जीवना जीवन शैली के अगर अपनाऊ दे बोलो नहीं उन समय चो रे समय चो कहीं ना कहीं अजीक जमीन आसमान चो
0: खुबे
1: फरक आसे ने। ये भी दक इंटरनेट होली तो गोट काय हो से कि घड़ी देखो नाम बनो कि नहीं 9 बजे जाते रहे 6 बजे तो रहे।
0: हाँ,
1: ने हाँ। आगे लोग तू सन नहीं बोलते रहो तो आगे लोग ये बोलो कि समय आ चु कहीं मतलब उन नहीं आए हम हाँ। लोग आप लोग काम सही तरीके ले करूं से और उन मन काम जो करो ते सही तरीके ले बोले होए
0: होए हाँ,
1: है क्या
0: धीमी ऐसे जो बोल सी नहीं धीमी जीवन शैली के अपना तोर बोले कई तरीका हो
1: से
0: जो ना बिहान ने तू जसन बोल ली बड़दाई उठतोर है नहीं और बिहान ने उठून सिर्फ सीधा काम नहीं लग तोर का पहले आराम से काय तो किनिक व्यायाम असन करू
1: जसन ने हाँ ये जसन योग बनु
0: योग के ने से हो
1: व्यायाम करू एक चो समय ने के अपना ऊपर क्योंकि उदल दाय समय असन रली समारु भाई कि उदल दाय योग के नहीं करत रहो बोलन उन मन जोन काम करो उतने उन योग बनुन जाए
0: सत्य
1: है जसन। लेकिन ये भी असन होली से कि तू ही चिबल दक नाल मई चिबल जाने छी ने ये भी जसन इंटरनेट इली नहीं तो उदल दाय ले आम चो जीवन शैली ने कई परिवर्तन इली ना
0: हां
1: परिवर्तन तो तू ही बल दुख सी है क्या सर। और संगवारी मन के बल ये सब जान सोची कि हाँ परिवर्तन होली
0: हो
1: ऐसे ची है क्या सर। उन्हीं का तो घाम मेरा पानी है सब पानी मेरा घाम
0: है
1: क्या सर। ये बल जलवायु परिवर्तन मौसम परिवर्तन
0: वातावरण ने कई परिवर्तन दुख मेरे
1: से
0: तो प्रकृति सत्य गोट बोलिस ना ने प्रकृति बोले आमचो आसपास चो वातावरण ने
1: वातावरण
0: और ये वातावरण ने बिहाने पहाड़ ने पैदल हिंडलो ने और नानी नानी उसन खेती बाड़ी बोल करतो रानी ना तो एता का आमचो जीवन शैली ने बोले खूबे सुधारे
1: सुधारे
0: बिहान पार कर लेने एक ठंडा ठंडा भी
1: ठंडा बोलो नीनाम सुबह छो लाखों बीमारी
0: दवा
1: है नी तो ये का है कि सुबह चोवा लाखों बीमारी हो दवा का बोलवा क्योंकि ये कहीं ना कहीं सुबह चोवा जो रहे से नहीं संगवारी मन ये खूब ही स्वस्थ रहे से उनचो बाद जो रहे से उदल नया
0: सीतर
1: काय सुंदर मन के बल लागे काय सुंदर ना बोलू की है कसन रागे चे लोग जो जीवना बोलू सुने रेली तेबेन तुन मन ना आमचो पुरखती लोग 100 साल लेवल ज्यादा जीवला है कसन
0: जीवला
1: लेकिन ये भी अगर हम उसन सोच में बोल लो नहीं कहीं ना कहीं आम के उन तक हम रुक नहीं हो
0: आधा जीवन जीव ये भी का उम्र चो 60 साल
1: 60 साल 65 साल
0: उदल दे रहा 120 साल मान के चलो आधा होली का
1: आधा होली और लेख कर तो बीती गोट ये बोला कि उन समय ने और ये समय फरक तो आसे मानते ये समय ने बोल नहीं हम उन चीज के को रुक सकू कसन बोलो तक हम ये नहीं बनू काम से संगवारी मन की तुम्हें उन्हीं समय ने जहा मानते तुम ये करा कसन बोलो की ये जो जीवन शैली है ये केवल तुम धीरे ले उठा है ना आप लक्ष्य की नहीं भूलका है नी और जो कर तो रहा उनके नहीं भूलक तो रहा है कसन ये भी बोले उन चीज के हम अपना सकू ऐसा ना कि अगर हम ये गोट बनू से ना ये भी बात रखू से तो उन मन धीरे चलू से तो उन बात ना आए केवल उन बात की जो ना हम ही आम चो मंजी
0: मानता
1: मतलब
0: नहीं बुलोक तरह
1: नहीं बुलोक तरह
0: से बिहान पहाड़ बेरा ने फोन या सोशल मीडिया के बिल्कुल उपयोग नहीं करता
1: ये सही बोल और
0: एकदम नंगत गोट बात आए आमने सामने मिलून भेटून
1: भेटून क्योंकि तक उन दिन नाम बल गोट बात बल होते चे रहे ना वास्तविक जीवन और एपचो जीवन
0: एपचो जीवन एपचो जीवन तो माया
1: है था उसने ची अच्छा गोट बोल लू और तक कहा है कि मोबाइल दुनिया होली कुने कहा है कि अभी अंदा है मोबाइल नहीं ज्यादा मतलब घुसो ने और उन्हीं चो बाता बाती के जो ना धरू से
0: धरू से
1: है लेकिन कभी ये नहीं सोचू की मचो दोस्त उतर हुआ मैं जाए दे उन संगोटिया असन नहीं बोलू कहे तो संगवारी मन ये गोट मन के तुमन मन ध्यान क्योंकि ये समस्त बीतिया सीख तो बीतिया और जान तो बीतिया और जागरूक कर तो बीती गोट आए है क्या सर तो ये गोट मन के तुमन मन धरा और ये हम चो कहे तो ये नुआ की हम तुमन मन जीवन के धीरे धीरे नहीं आ बल्कि उन जीवन शैली के धीरे करा मात्र आप लक्ष्य आए जो तुम प्राप्त कर साथ उनके के भाई नहीं भूल का है नी
0: संगवारी मन हम जो बोले काम के करूँ है कि नहीं उन काम के पूरा मन लगाउन करू
1: लगाउन
0: और मन लेकर तो
1: मानसिक संतुलन होली शारीरिक संतुलन बोले अच्छा बनून रहे
0: भात का तो बेरा सबको भात का तो रहे जो देवे तो ना जो भात साग जो स्वाद के तू पाओ से है नहीं गोटक मन कौन बाटे जाए से गोटक मन कौन बाटे जाए से
1: तो जोन बल करता है तो एक चीज करो ने हाँ भात का तरह भात करो जलता मोबाइल चलाते रहो नहीं होए अले दक गोट गोट ने गोट बाड़ू आए ना सोमवारू ने मांतर कार्यक्रम ने दक हमी यही गोट ची नहीं आन लू से और बल कहीं कार्यक्रम ने धरू नहीं लू से उन गोट के बल हम रात और जरूरी है नी तो दखा संगवारी मन आमचू गोट के हम यहाँ विराम देऊ से और जनाए आम चलो गोड़ जहाला आसे जहाला के बोले आम चलोगे तुमके अमराऊ से है ने उन चलो आगे गोट बात करवा ने

0: जाए निखार।
1: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
2: शुक्रवार दिन है शुक्रवार संगवारी मन का जो शीर्षक गीतानु मानते शीर्षक का है उनकी नी सागु पहले उन जो गीत आमी चलावा नहीं उन गीत चो ने शीर्षक का है उन जान तो आमी कोशिश यही करवा की पहले तो आमी उन गीत चो पहले मैं गीत चो जानकारी दे कसन बल्लो ने जो शीर्षक गीत चो पहली गीत आए संगवारी मन 1996 चो विक्षर बंदिस चो गोटोक लोकप्रिय आरु मया मोहनी चो संगी गीत आए आरु 90 चो दशक चो सुपरहिट गीत बले आए ना सो मारू ने आरु ये गीत ने कुमार सानू अलका याग्नी आपलो आवाज दिला से आनंद मिलिन काय सुंदर चो धुन बनाला से है नी संगे संग समीर साहब चो बोला से आरु ये ता जेकी श्राफ और जूही चावला कलाकार चो रूप ने मुख्य भूमिका ने आसोत ने ये गीत 90 चो समय ने बले

सुपर हिट तो रिली छी और आजी बोले ये गीत के कोनी लगे बोले बाजलो नहीं ना कहा सुंदर गौवाद बोले ना और सुनवाद बोले और सुन तो बीता मन के लाभ मन ने सुनवाद और गए गीत के भूलू बोला तो संगवारी मन यही गीत के जो ना तुम मन के सुनाऊ से सुनाता पहले।

0: साकार करने और हर इम्तिहान में आपके साथ चेट्टीनाड सुपर ग्रेड सीमेंट, मजबूत नींव बनाने के लिए एक ही नाम चेट्टीनाड सीमेंट।
1: नलके सर दादा
2: हो ना
1: एदाय कार्यक्रम ने आगे बढ़ू ना ने
2: हाँ
1: हाँ हाँ आज तू चुमंडा बल कुबे बड़े दका दे से काय काय आनली से जाले
2: गीत गोविंद तो होते चिरे दिन आले दक गीत के गीत सुनते रहने सुनते कुछ भाई से क्योंकि दक आमी धरलू से उसने भी
1: हाँ तू चुमंडा में दक
2: तो काय सुनर जी गीत मंदर से ने अने दक कार्यक्रम ने आम चले कि वार्ता बला से या वार्ता बलम रात और खूबे जरूरी है
1: है
2: कसन क्योंकि वार्ता असन बीती आई कि ये भी उनके समझुआ था पहले कि उन वार्ता चो अंदर काय काय गोट
1: बलसो
2: ने ते बिन अंबल जानू और जो आमच संगवारी मन बल जानो है क्या सर। तो सबसे पहली संगवारी मन की वार्ता के जो है तुमन मन चलो गंभराऊ से वार्ता के समझू सीखू जानू है क्या सर। हाँ पहले सुनू
3: आकाशवाणी सुन रहे सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है इंदु सेठिया और मैं तो कपाल ब्लॉक के कुरेंगा में रहती हूँ और आज मैं आप सभी को डिजिटल डिटॉक्स के बारे में बताने जा रही हूँ। दोस्तों आज की व्यस्त जीवन शैली में मोबाइल इंटरनेट और सोशल मीडिया हमारे सबसे करीबी साथी बन चुके हैं लेकिन इन साथी उपकरणों का अत्यधिक उपयोग किया जा रहा है अनजाने में हमारे मन शरीर और रिश्तों पर गहरा असर डालता है। इन प्रभावों से बचने और स्वयं को मानसिक रूप से संतुलित रखने के लिए डिजिटल डिटॉक्स एक महत्वपूर्ण उपाय बनकर उभर रहा है। डिजिटल डिटॉक्स का अर्थ डिजिटल डिटॉक्स का सरल अर्थ है कुछ समय के लिए मोबाइल फोन सोशल मीडिया स्क्रीन और इंटरनेट से दूरी बनाना। यह दूरी हमें सुकून देती है, विचार को स्पष्ट करती है और हमें वास्तविक दुनिया से जुड़ने का अवसर प्रदान करती है। डिजिटल डिटॉक्स कैसे आवश्यक है? मानसिक तनाव में वृद्धि, लगातार नोटिफिकेशन, अनगिनत मैसेज और हर सेकंड बदलती नई नई जानकारियाँ हमारे दिमाग को लगातार सक्रिय अवस्था में रखती है। यह स्थिति तनाव, चिड़चिड़ापन और एकाग्रता में कमी का कारण बनती है। नींद पर असर, स्क्रीन की नीली रोशनी दिमाग को यह संकेत देती है कि अभी दिन है, इसके कारण नींद की गुणवत्ता गिर जाती है और हम सुबह थकान महसूस करते हैं। सोशल मीडिया कंपैरिजन, दूसरों की चमकदार तस्वीर और दिखावटी सफलता कई बार हमें अपनी जीवन शैली से असंतुष्ट कर देती है। डिजिटल डिटॉक्स हमें इन सभी झूठी तुलना के चक्कर में बाहर निकालती है। रिश्तों में दूरी, एक कमरे में बैठे हुए भी अगर परिवार के सभी सदस्य अपने अपने मोबाइल में व्यस्त हो तो यह दूरी का संकेत है। डिजिटल डिटॉक्स इन रिश्तों में वापस लाती है। डिजिटल डिटॉक्स के लाभ, मन शांत होता है, एकाग्रता और रचनात्मकता बढ़ती है, नींद में सुधार होता है, तनाव घटता है, परिवार व मित्रों से संवाद बेहतर होता है, वास्तविक जीवन की खुशियां महसूस होती है। यह छोटा सा प्रयास हमें स्वयं को जुड़ने का अवसर देता है। डिजिटल डिटॉक्स कैसे करें? छोटी शुरुआत करें। एक साथ पूरा दिन मोबाइल बंद करने की बजाय रोज 30 मिनट का मोबाइल फ्री समय तय करें। धीरे धीरे इस समय को बढ़ाएं। सुबह मोबाइल से दूरी, सुबह का पहला घंटा केवल स्वयं के लिए रखें, बिना किसी स्क्रीन के। भोजन के समय मोबाइल रखें, परिवार के साथ बैठकर भोजन करें। यह आदत न केवल स्वास्थ्य के लिए अच्छी है बल्कि रिश्तों को भी मजबूत बनाती है। सोने से पूर्व स्क्रीन फ्री टाइम, सोने से कम एक घंटा पहले मोबाइल, टीवी, लैपटॉप से दूरी बनाएं। यह नींद की गुणवत्ता को काफ़ी बढ़ा देती है। नोटिफिकेशन सीमित करें, अनावश्यक नोटिफिकेशन बंद कर दें, इससे दिमाग पर बोझ कम होता है। सप्ताह में एक डिजिटल उपवास, सप्ताह में एक दिन सिर्फ जरूरी कामों के लिए मोबाइल का उपयोग करें, बाकी समय प्राकृतिक परिवार या अपने शौक में बिताएं। प्रयास करें कि इन आदतों को जीवन शैली में अपनाएं। नकारात्मक प्रभाव, ध्यान की कमी, अटेंशन स्पैन कम होता है, लगातार नोटिफिकेशन और रील्स स्क्रॉल वीडियो देखने से एक चीज लंबे समय तक ध्यान लगाना मुश्किल हो जाता है। तनाव और चिंता, सोशल मीडिया पर तुलना, लाइक्स, फॉलोवर्स की चिंता और लगातार ऑनलाइन रहने का दबाव मानसिक तनाव बढ़ाता है। नींद की समस्या, सोने से पहले मोबाइल रखने से दिमाग एक्टिव रहता है जिससे नींद देर से आती है और नींद की गुणवत्ता खराब होती है। लत लगना, बार बार फोन चेक करने की आदत एक तरह की मानसिक निर्भरता बना देती है जिससे चिड़चिड़ापन बढ़ता है। अकेलापन और डिप्रेशन, वर्चुअल कलेक्शन बढ़ता है जिससे असली रिश्तों में कमजोर हो जाते हैं, जिससे अकेलापन महसूस होता है। व्यसन, फोन या इंटरनेट इस्तेमाल करने की तीव्र इच्छा हो सकती है। सकारात्मक प्रभाव, ज्ञान और सीखने की अवसर, ऑनलाइन पढ़ाई, पॉडकास्ट, वीडियो से सोचने की समझने की क्षमता बढ़ती है। आत्म अभिव्यक्त, लोग अपने विचार, कला और टैलेंट को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर व्यक्त कर पाते हैं। कनेक्टिविटी, दूर बैठे परिवार और दोस्तों से जुड़े रहने की भावनात्मक सपोर्ट मिलता है। समस्या समाधान सक्षमता, डिजिटल टूल्स से नई चीजें सीखने और समय हल करने की आदत बनती है। भावनात्मक स्थिरता, मानसिक में न्यूट्रोमीटर का संतुलन सुधारता है जिससे भावनात्मक स्थिरता आती है। आत्मनियंत्रण और आत्मनियंत्रण में वृद्धि होती है। मानसिक सामाजिक जुड़ाव, वास्तविक जीवन रिश्तों और बातचीत में सुधार आता है जिससे अकेलापन कम होता है। मानसिक स्वास्थ्य में सुधार, कुछ छूट जाने का डर और सोशल मीडिया का डिप्रेशन घटता है। जागरूकता, यह समझने में मदद करता है कि आप तकनीकी का उपयोग कैसे करते हैं और इसे कैसे संतुलित करते हैं। रचनात्मकता में वृद्धि, दिमाग को आराम मिलता है जिससे रचनात्मकता बढ़ती है। डिजिटल डिटॉक्स के लक्षण, लगातार फोन चेक करना, बार बार नोटिफिकेशन और सोशल मीडिया चेक करने की आदत, न देखने पर बेचैनी महसूस होना। एकाग्रता में कमी, किसी एक काम पर ध्यान केंद्रित न कर पाना और हर समय विचलित और व्याकुल रहना। नींद की समस्या, उपकरणों के कारण नींद में खलल पड़ना या रात में देर तक जागना। शारीरिक लक्षण, आंखों पर तनाव, खराब पोश या आंखों में सूखापन महसूस करना, आंखों का लाल होना, आंखों में जलन होना। सोशल मीडिया के कारण उदासी, गुस्सा या चिंता महसूस करना। दूसरों से लगातार अपनी तुलना करना। फोन मिलने पर तनाव व घबराहट होना। अकेलापन महसूस करना, खासकर अकेले होने पर। कुछ छूट जाने का डर, जैसे कभी ऑनलाइन नहीं है तो कुछ जानकारी या घटना छूट जाने का डर होना। निष्कर्ष, डिजिटल उपकरण हमारे जीवन को सुविधाजनक बनाते हैं, लेकिन इन पर अत्यधिक निर्भरता

0: हमारी मानसिक शांति छीन सकती है। डिजिटल डिटॉक्स कोई त्याग नहीं है, बल्कि अपने आप को वापस पाने की प्रक्रिया है। डिजिटल उपकरण जैसे मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, ये सब चीज़ें हमारे कामों में सुविधाजनक के लिए है, लेकिन इसका उपयोग करना और अनावश्यक उपयोग से बचना चाहिए। धन्यवाद।
1: हाँ तो संगवारी मन देखा कितरो नगत नगत गोट जो ना ये वार्ता चु भीतरे रहे ना ने
2: हाँ okay.
1: अरे दक जो वार्ता मतलब आम चले गमरव रहोत ये मन रहोत इंदु सेटिया
2: हाँ
1: कितरो नगत नगत गोट मन के जो ना आम चु मंजी अमरलाल ने
2: हाँ
1: और सिख तो बीती बर ली और आम जो संगवारी मन कुछ चीज एक तो धरला से ही हो सके
2: हाँ okay.
1: कसन ले कसन करते रहे ने
2: हाँ
1: अरे उन चु विषय रहे डिजिटल डिटॉक्स
2: डिटॉक्स
1: ने हाँ।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: यदि आप अब कोई नई कार या बाइक लेने की तैयारी कर रहे हैं तो वो आपको काफी किफायती दामों पर उपलब्ध होगी। जीएसटी परिषद ने छोटी कारों 350 सीसी तक की बाइक और तिपहिया वाहनों पर टैक्स 28% से घटाकर 18% कर दिया है। 22 सितंबर 2025 से लागू होने वाला ये त्योहारी तोहफा एंट्री लेवल गाड़ियों को और भी किफायती बना देगा, जबकि लग्जरी कारें और बड़ी बाइक 40% के नए स्लैब में आ गई हैं, लेकिन फिर भी उन पर कम टैक्स लगेगा।
2: तो दखना समारु वानी वार्ता बले अमरालु ने ले गोटो गीत होलन होती ता काय ना ने क्योंकि शीर्षक गीत ने दिल धरलुस तो दिल चनुर अच्छा अच्छा गीत बनासे है ने तुसने ची शीर्षक गीत जो जो न तीसरा गीत आए उन पिक्चर आए इंग्लिश बाबू देसी मेम ले है नी एक जो ना कुमार सानू और अलका याग्नि आवाज दिला सोत और नी और निखिल भी ने जो ना ये कहा सुंदर धुन दिलो से है नी और योगेश और रानी मलिक एक बोल दिला सोत मतलब एक लिखला से
3: अच्छा
2: सुंदर ने तो गीत के जो ना हम यमरा हूँ और अम्बल सुनू और संगवारी मन को सुनाऊ
3: तो संगवारी मन या सुनू ये गीत।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: हाँ तो देखना ने
1: हाँ
0: गीत गोविंद तो होली सी
1: हाँ
0: और दख हम ची लगे कार्यक्रम भीतरे जो ना ज्ञान ध्यान ची गोड बोले
1: आसे
0: ने
1: हाँ।
0: अरे की हम रात और तो मचो गई ले तो खूब जरूरी है
1: हाँ
0: क्या सर तो नहीं ज्ञान ध्यान ची गोट की हम ची सोमवारी मन लगम रहा हूँ ज्ञान ध्यान ची गोट का है कि सुन लो बीती ज्यादा मतलब दिमाग ने रुआ बोली बात नहीं उन्हीं का जे की समरा हूँ और कोनी कोनी सुन सोच जाली के जो ना लिखुन बोल संग आओ क्योंकि ये जरूरी जरूरी सामान्य ज्ञान बोल ज्ञान ध्यान ची गोट रुआ है ना
1: इतना मछलो गोट ज्ञान ध्यान चो गोट आसे ने सुन आमचो भारत देश चो पहिल स्पेस टेक यूनिकॉर्न कंपनी बल्लो ने गोटो पहिल संस्था बनली से और उन आए स्काई रूट एरो स्पेस
0: स्पेस
1: और गोट आस्था ना मछ लगे हाँ आज चो समय ने जननी बल्लो ने गोटो क जरिया आमचो मंजी आनला से और उन मंत्रालय आए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय हाँ जो जननी चो जरिया ने
0: आनला से अवसर उनके जो ना मिल ली
1: से
0: ने हाँ हाँ और देख संगवारी मन गोटो कौर सामान्य ज्ञान बलून ज्ञान देहन चो गोटा से ये गोटा है आम चो भारत देश चो पहिल मोती पालन क्लस्टर है नी मोती पालन क्लस्टर बनलो बीती राज्य आए झारखंड और एताई ची हजारीबाग जगह ने पहिल मोती पालन क्लस्टर बनली से
1: झारखंड
0: हाँ, हाँ। और संग संग जो ना प्रसार भारती बनलो ने आकाशवाणी बीता है नी जोन के नया बीता अध्यक्ष बनाला से आरु उन आत है नी आरु उन मनात प्रसून जोशी
1: हाँ,
0: है नी
1: हाँ,
0: ये तो रेली संगवारी मन आम चो लगे ज्ञान ध्यान चो गोट हाँ, जोन खूबे जरूरी रेली ने शीर्षक गीत चो शीर्षक ले शुरुआत करू जो गीत गोविंद चो नाम बल सांगू द अगला गीत आमी काय के देऊ से
1: ए मच लोग मच मंडरा ने इतना दखा दे से गोटोक फिल्म 2001 ने
0: हाँ।
1: जे गीत ने अपना हाँ। स्वर दिला से
0: हाँ।
1: उदित नारायण कविता कृष्णमूर्ति
0: हाँ।
1: हाँ। और ये गीत ने गीत जो संगीतकार रात
0: हाँ।
1: आनंद राज आनंद
0: हाँ।
1: और ये जो गीतकार रात देव कोहली
0: हाँ।
1: हाँ। तो संगवारी मन या सुनू ये गीत हाँ।

0: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
1: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
2: हाँ, तो देखना कितरो सुंदर सुंदर गीत मन आमी आमचे संगवारी मन लगम रालु ने।
3: ओके,
2: और वार्ता बल उसने चो रहे और आज चो जने गोड बाद बल काय सुंदर चो रही ना ने। और देख आमी इदल नायले आमी संगवारी मन संग आंसू काय काय गोट मन बल बल्लु। और देख बलते बलते जो नाय नहीं आमी रंग रंग चो गोट मन देऊ दिलु।
3: हाओ
2: है क्या साओ अनाय देख घड़ी की देख लो काम के बल लागे की गोट इत हो जाऊ खो।
3: हाओ जाऊ खो काय हाओ
2: की गोट गोट ने गोट बाडू है।
3: गोट बाडू है हाओ
2: आमचो गुलाय।
3: हां तू चो मन राख बल गुलाय
2: संगवारी मन काज बलाय। तो संगवारी मन अंदाय देख आमचो जातो समय होय से आमके दिया से तुमन मन विदा है नी। ऐसे संगे ये वाणी कार्यक्रम सुन तो संगवारी मन अंदाय देखा काय बोलू आता ना मैं ये बोलते चिर की आमचो गोट गोट बाचली सुन के तु सुरता नहीं करा ली ने। उन गोट है कि फास्ट फूड खा लो ने इंसान फास्ट हो नो है क्या सन। फास्ट फूड खा लो ने इंसान फास्ट हो नो है और स्मार्टफोन चला लो इंसान स्मार्ट हो नो है क्या सन। मानतर लूज मोशन हो लो इंसान लूज
3: हुआ।
2: संगवारी मन गर्मी शुरू होली से खातोर प्यूतोर के विशेष ध्यान दिया है क्या सन। ये पानी धुरुन जातो रहा है नहाले कहीं कहीं उन जाता रहा है। तो उसने चिदक गोट मन अमरालू अंदाय दिया आम के तुमन मन विदा। ऐसे संगे युवाणी कार्यक्रम सुन तो सपाय संगजोरिया जुआन संगवारी मन के मैं जातो पहिल लकेश बघेल
3: और मैं समर कुश
2: हम दोनों करूं से जुहार।

0: अभी आप सुन रहे थे युवा दोस्तों का कार्यक्रम युववाणी। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। शाम के 6 बजने वाले हैं। कुछ ही देर में समाचार हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री होंगे। कोलकाता में आज उन्हें भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। श्री अधिकारी राज्य के पहले भाजपा मुख्यमंत्री बनेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में पार्टी विधायक दल की बैठक में श्री अधिकारी को नेता चुना गया। श्री शाह ने बताया कि बैठक में श्री अधिकारी के निर्विरोध चुना गया।
2: लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूँ।
1: नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह कल कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगा। तमिलनाडु में सबसे बड़ी पार्टी तमिलगा वित्री कड़गम टीवीके को नई सरकार के गठन के लिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने समर्थन दे दिया है। 5 विधायकों के साथ कांग्रेस पहले ही समर्थन दे चुकी है। 2 विधायकों वाली वीसीके पार्टी बाद में अपना निर्णय घोषित करेगी। केरलम में नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक नेता की घोषणा कर सकती है। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार लगातार तीसरी बार मंगलवार को शपथ लेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। पार्टी विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। निर्वाचन आयोग ने हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनाव और उपचुनावों के लिए सूचकांक कार्ड और सांख्यिकी रिपोर्ट ईसीआई नेट ऐप पर जारी की है। सूचकांक कार्ड में उम्मीदवार

0: मतदाताओं, डाले गए वोटों, गिने गए वोटों, पार्टीवार और उम्मीदवारवार वोटों सहित विभिन्न डेटा दिया गया है। इसे चुनाव नतीजों की घोषणा के 72 घंटे के रिकॉर्ड समय में उपलब्ध करा दिया गया। सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को आयोजित इस पर्व में शामिल होंगे। राज्य मंत्रिमंडल मंत्री जीतू भाई वाघानी ने बताया कि पर्व के अंतर्गत सोमनाथ में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और परंपराओं को प्रदर्शित करने वाले कार्यक्रम आयोजित होंगे। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में भूमि संसाधन विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तीसरे चरण की समीक्षा करते हुए श्री चौहान ने कहा कि आधुनिकीकरण के प्रयासों से भूमि संबंधी सेवाओं को पारदर्शी, कुशल और परेशानी मुक्त बनाया जाएगा। इससे नागरिकों और राजस्व अधिकारियों की सुविधा सुनिश्चित की जाएगी। सरकार ने कहा है कि देश भर में घरेलू एलपीजी की सुचारू आपूर्ति जारी है और किसी भी वितरक पर आपूर्ति में कमी की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि घरेलू उपभोक्ताओं को गैस की कमी का सामना न करना पड़े और कीमतें स्थिर बनी रहें। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कल संयुक्त अरब अमीरात का आधिकारिक दौरा किया। राष्ट्रीय महिला आयोग ने जघन्य दुष्कर्म के मामलों में त्वरित सुनवाई, कड़ी निगरानी और पैरोल पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। आयोग ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ जघन्य अपराधों में शामिल दोषियों के लिए वर्तमान पैरोल व्यवस्था पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। आयोग के अध्यक्ष विजय राहटकर ने कहा कि आयोग शीघ्र ही केंद्र सरकार को सिफारिशें सौंपेगा। भारत और सिंगापुर ने रणनीतिक साझेदार के रूप में आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए द्विपक्षीय सहयोग के महत्व पर बल दिया है। आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय अपराध से निपटने के लिए गठित संयुक्त कार्य समूह की 5वीं बैठक कल नई दिल्ली में सम्पन्न हुई। संयुक्त कार्य समूह ने सीमा पार आतंकवाद सहित आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा करते हुए उसे कतई बर्दाश्त न करने की नीति दोहराई। मुंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 941 अंक बढ़कर 77,959 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 298 अंक की बढ़त के साथ 24,331 पर दर्ज हुआ। चीन के शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में सिमरनजीत कौर महिला रिकव व्यक्तिगत स्पर्धा के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। कल भारतीय महिला रिकव टीम ने फाइनल में प्रवेश किया। दिल्ली में आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। दिल्ली अंक तालिका में 7वें और कोलकाता 8वें नंबर पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। शाम के 6:05 हुए हैं।
2: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
3: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
2: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
3: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
2: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
3: 8700001-4242।

0: आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। शाम के 6:10 होने वाले हैं। कुछ ही देर में छत्तीसगढ़ी समाचार हम आकाशवाणी रायपुर से रिले करेंगे।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन के संग रामेश्वरी बघेल के जय जोहार। अब सुनाओ आज के प्रमुख समाचार। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत आज प्रदेश में 2300 ले ज्यादा जोड़ा मन के होइस बिहाव। देशभर के संग छत्तीसगढ़ में काली 9 मई के राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन। ये दौरान कोर्ट में लंबित मामला मन के होही निपटारा। और प्रदेश में काली 1-2 जगह गरज चमक के संग हवा गरेर और गाज गिरे के चेतावनी। अब समाचार विस्तार ले। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत आज प्रदेश के सबो जिला में सामूहिक विवाह के आयोजन करेगी। ये प्रदेशव्यापी आयोजन में 2300 ले ज्यादा जोड़ा मन उनकर अपन अपन धर्म रीति रिवाज ले बिहाव होइस। एमा हिंदू मुस्लिम ईसाई बौद्ध और विशेष पिछड़ा जनजाति के जोड़ा घलो शामिल रहीन। वे मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत शक्ति जिला में 70 और गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला में 72 जोड़ा के बिहाव कराएगी। बता दें कि गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला के कार्यक्रम में विशेष रूप ले 4 बैगा आदिवासी परिवार के 2 जोड़ा आकर्षण के केंद्र रहीन। महिला और बाल विकास विभाग के अधिकारी अमित सिन्हा बतइन कि विभाग है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान ला बढ़ावा दे के संग जिला ला बाल विवाह मुक्त बनाए के दिशा में सरलग कार्य करत है। आकाशवाणी है राष्ट्र के प्रति अपन विशेष सेवा के 90 बच्चर पूरे के मौका में आज राष्ट्रीय राजधानी में मैराथन के आयोजन करीस। करीबन 3.5 किलोमीटर मैराथन के शुरुआत आकाशवाणी भवन ले होइस। ये मैराथन कृषि भवन रेल भवन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ले गुजरात आकाशवाणी भवन में सिराइस। मैराथन पूरा करैया सबो प्रतिभागी मल्ला पदक प्रदान करेगीस। उन्हें पुरुष और महिला दोनों वर्ग में ऊपर के 3 प्रतिभागी मल्ला ट्रॉफी प्रदान करेगीस। बता दें कि प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी और आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन है ये मैराथन ला रवाना करी। ये मौका में आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन है बताइन कि ये आयोजन सार्वजनिक प्रसारक के रूप में आकाशवाणी के देश के सेवा में करेगे योगदान ला दर्शाते। देशभर के संग छत्तीसगढ़ में काली 9 मई के राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन होही। इस दौरान कोर्ट में लंबित मामला मन के आपसी सहमति ले निपटारा करे जाही। उन्हें 21 ले 23 अगस्त के बीच सर्वोच्च न्यायालय परिसर में घलो विशेष लोक अदालत में लंबित मामला मन के सुनवाई होही। पक्षकार मन ला अपन लंबित मामला ला विशेष लोक अदालत में शामिल करे बर जानकारी सर्वोच्च न्यायालय के वेबसाइट में 21 मई तक गूगल फॉर्म में देना होही। ज्यादा जानकारी बर बार रूम के वन स्टॉप सेंटर या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायपुर ले संपर्क करे जा सकत हे। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड हा अपन अधिकारी कर्मचारी मन के महंगाई भत्ता में केंद्र सरकार जैसन 2% बढ़ोतरी के ऐलान करे हे। मुख्य अभियंता के आदेश ले अब कर्मचारी मल्ला 60% डीए दे जाही। ये बढ़ोतरी 1 जनवरी 2026 ले प्रभावी माने जाही। उन्हें मई के वेतन ले कर्मचारी मल्ला नवा दर ले भुगतान करे जाही। जांजगीर चांपा जिला में धान खरीदी में बड़े गड़बड़ी उजागर हुए है। जिला के 3 धान खरीदी केंद्र किरीत कड़ारी और बिर्रा में करीबन 4700 कुंटल धान गबन करेगी जेखर कीमत 1,29,00,000 रूपये बताया जावत है। मामला अगुवाए के बाद नवागढ़ बिर्रा और बाराद्वार थाना में 7 जन कर्मचारी मन के खिलाफ केस दर्ज करे गए है। एमा संस्था प्रबंधक खरीदी प्रभारी ऑपरेटर और हमाल घलो शामिल है। ये सबो आरोपी मन मामला अगुवाए के बाद फरार बताया जावत है। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल हायर सेकेंडरी स्कूल परीक्षा 2025 के उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन में लापरवाही बरतैया 30 जन शिक्षक मन के खिलाफ बड़े कार्यवाही करे है। मंडल के आदेश में एखर ले जुड़े शिक्षक मन ला अवैया 3 बच्चर बर आने आने कारज ले ब्लैकलिस्ट कर देगी से। जानकारी ले उत्तर पुस्तिका के पुनर्मूल्यांकन के बेरा कतकोन छात्र मन के अंक ला 20 ले 40 तक बढ़ाए गए रही से जिला गंभीर लापरवाही मानत मंडल है जांच के बाद शिक्षक मन ऊपर कार्यवाही करीस। मंडल है लापरवाह शिक्षक मन के एक वेतन वृद्धि संचय प्रभावी ले रोके की घलो अनुशंसा करे है। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन आप मन आकाशवाणी रायपुर ले सुनत हो।
2: छत्तीसगढ़ के खबर लेहे आपके वास्ता और खबर के विश्वसनीयता लेहे हमर वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के संगे संग हमर समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के संग अपन मोबाइल में घलो सुन सकत हो। आकाशवाणी समाचार फेसबुक ट्विटर और यूट्यूब में घलो हावय। हमर फेसबुक पेज हरे छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमर यूट्यूब चैनल हरे छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के संगे संग आपके मोबाइल के माध्यम ले हम आप तक पहुँचा थन। छत्तीसगढ़ के हर खबर पर सुनत रहो आकाशवाणी समाचार।
1: अब आगू बारथन बांचे समाचार गोती। कोरबा जिला के बांगो थाना इलाका में चोटिया गांव के तीर राष्ट्रीय राजमार्ग 130 में सड़क हादसा हो गए, जेमा SECL गेवरा के पूर्व महाप्रबंधक अरुण कुमार त्यागी के निधन हो गई। जानकारी ले अरुण कुमार त्यागी के हाल ही में डायरेक्टर टेक्निकल के पद में पदोन्नति हो रही से उमन इही नवा जिम्मेदारी ल संभाले बर कार ले सिंगरौली जावत रहीन हे। इही बेरा चोटिया गांव के तीर उखर कार ह एक ठन आने गाड़ी ले टकरा गईस। वे जांजगीर चांपा जिला के बलौदा इलाका में घलो हरदी बाजार रद्दा में कोयला भरे ट्रक पलट गए। एक चपेट में आयले फटफटी सवार दू जन के मौका में ही मौत हो गए। इस घटना के बाद ट्रक चलैया मौका ले फरार बताए जावत थे। ओती शक्ति जिला के नंदनी गांव में बस स्टैंड के तीर दू ठन गाड़ी टकरा गई। हादसा में कार सवार एक मनखे के मौत हो गई। ये हादसा में आमाकोनी गांव के सरपंच के संग चार लोगन घायल हो गई। धमतरी जगदलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 30 के चौड़ीकरण कार्य में बड़का लापरवाही आगू आए है। वन विभाग के शुरुआती जांच में पता चले है कि स्वीकृत अलाइनमेंट के ले बाहर जाके 8,000 ले ज्यादा पेड़ काटे गए है। मामला की गंभीरता ले लेवत विभाग दोषी मन के खिलाफ कड़ा कार्यवाही की प्रक्रिया शुरू कर दे है। बछर 2017 में ये परियोजना पर बालोद कांकेर कोंडागांव और बस्तर जिला के 402 हेक्टेयर ले ज्यादा वन भूमि के उपयोग की अनुमति दे गई रही से। केसकाल वन मंडल में 10,731 पेड़ काटे की मंजूरी मिले रही, जेमा जांच समिति पाईस की 8,000 ले ज्यादा पेड़ स्वीकृत क्षेत्र ले बाहर काटे गए हैं।

वन विभाग ह जिम्मेदार मन ला तत्कालीन अधिकारी कर्मचारी मन के खिलाफ कार्यवाही के प्रस्ताव वरिष्ठ कार्यालय ला भेज दे गे हे। जसपुर जिला में कुनकुरी तपकरा लवाकेरा रद्दा के श्री नदी में बड़का पुलिया और पहुंच मार्ग निर्माण पर राज्य सरकार करीबन 9,45,00,000 रूपये के स्वीकृति दे हे। ये पुलिया छत्तीसगढ़ झारखंड और ओडिशा ला जोड़िया रद्दा में बनाए जाही। पुलिया बने ले तीन राज्य के बीच अवई जवई ज्यादा सुरक्षित और सरल हो जाही। हाल बेरा संकरा पुलिया होए के सेती बरसात के दिन में परेशानी होत रहीस, एखर सेती लंबा बेरा ले क्षेत्रवासी मन पुलिया के मांग करत रहीन। वन मंत्री केदार कश्यप आज नवा रायपुर में छत्तीसगढ़ वनोपज संरक्षण वाणी और आईवीआरएस आधारित सूचना और संवाद तंत्र के शुभारंभ करीन। संग्राहक मल्ला जानकारी ले बर टोल फ्री नंबर 9811125813 मा मिस कॉल करना होही। मिस कॉल के बाद 911 ले शुरू हुआ नंबर ले उपयोगकर्ता मल्ला कॉल बैक आही। फोन उठावत ही संग्राहक मन अपन स्थानीय बोली हल्बी और गोंडी में घलो जानकारी सुन सकी। अब जानव मौसम के हाल। प्रदेश में काली एक दू जगह गरज चमक के संग हवा गरेर और गाज गिरे के चेतावनी दे गए है। मौसम विभाग के अनुसार एक ठन द्रोणिका दक्षिण पश्चिम उत्तर प्रदेश ले अंदरूनी ओडिशा और छत्तीसगढ़ ले होवत गुजरही। एकर प्रभाव ले प्रदेश में काली कुछ एक जगह गरज चमक के संग छीटा पड़े के संभावना है। महासमुंद पुलिस एंटी नार्कोटिक टास्क फोर्स और कोमा खान पुलिस संयुक्त रूप ले कार्यवाही करत एक ठन एम्बुलेंस ले 75 किलो गांजा जब्त करे है। आरोपी मन ओडिशा ले गांजा लेके महाराष्ट्र जावत रहीन। ये मामला में महाराष्ट्र के 5 जन तस्कर मल्ला गिरफ्तार करे गए है और उखर तीर ले गाड़ी और 5 ठन मोबाइल जब्त करे गीस। कर्मचारी राज्य बीमा निगम डहर ले काली राजधानी रायपुर के ईएसआईसी अस्पताल रामाभाठा में निशुल्क जांच शिविर के आयोजन करेगी, जहां 40 बच्चर ले ज्यादा उम्र के बीमा होए अब्बड़ जन श्रमिक मन स्वास्थ्य जांच कराइन। और आखिर में प्रमुख समाचार एक घाव फिर। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत आज प्रदेश में 2300 ले ज्यादा जोड़ा मन के होइस बिहाव। देशभर के संग काली छत्तीसगढ़ में 9 मई के राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन, ये दौरान कोर्ट में लंबित मामला मन के हो ही निपटारा। और प्रदेश में काली एक दू जगह गरज चमक के संग हवा गरेर और गाज गिरे के चेतावनी। एकरे संग छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन इहे सिरावत है। जय जोहार।

0: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। आदौ मुख्य वार्ताः। वरिष्ठः भाजपा नेता सुवेन्दु अधिकारी भाजपा विधायक दलस्य नेता निर्वाचितः। सः पश्चिमबंग प्रदेशस्य प्रथमः भाजपेति दलस्य मुख्यमंत्री भवितुं सज्जः अस्ति। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना सोमनाथ मन्दिरं भारतस्य दृढतायाः, एकतायाः, सभ्यतायाः च बलस्य कालातीतं प्रतीकत्वेन वर्णितम्। डीआरडीओ तथा भारतीय वायुसेनया स्वदेशीयस्य तारा ग्लाइड शस्त्रस्य प्रथमोड्डयन परीक्षणं सफलतया पूरितम्। अपि च भारतस्य सिमरनजीत कौर इत्येषा सांघाई नगरे आर्चरी वर्ल्ड कप स्टेज 2 मध्ये महिलानां रिकर्व उपांत्य चक्रीय द्वन्द्वे प्रविष्टवती। अथ वार्ताः विस्तरेण। पश्चिम बंग प्रदेशे भाजपेति दलस्य वरिष्ठः नेता सुवेन्दु अधिकारी अद्य पश्चिम बंग प्रदेशे भाजपा विधायक दलस्य नेतृत्वेन निर्वाचितः, येन तस्य राज्यस्य प्रथमः भाजपा मुख्यमंत्री भवितुं मार्गः प्रशस्तः अभवत्। विधायक दलस्य सभायाम् अधिकारिणः नाम प्रस्तावितमासीत्, तथा च केन्द्रीय गृहमन्त्रिणा अमितशाहेन नवनिर्वाचितानां भाजपा विधायकानां दलस्य वरिष्ठ नेतृणां च उपस्थितौ औपचारिकरूपेण घोषितम्।
1: लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूँ।
0: नव भाजपा सर्वकारस्य शपथ ग्रहण समारोहः श्वः कोलकाता नगरस्य ब्रिगेड परेड ग्राउण्ड इत्यत्र भविष्यति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी मई मासस्य 11 दिनांके गुजरात राज्यस्थितस्य सोमनाथ मन्दिरस्य दर्शनं करिष्यति। 1950-1990 वर्षे भारतस्य प्रथम राष्ट्रपतिना डॉ राजेन्द्र प्रसादेन नवीकृतस्य मन्दिरस्य उद्घाटनं कृतमासीत्। तस्याः ऐतिहासिक घटनायाः 75 वर्ष पूर्तेः स्मरणार्थम् एषा यात्रा आयोज्यते। अद्य प्रधानमन्त्रिणा स्वस्य राष्ट्रिय दैनिके लेखे एषा सूचना प्रदत्ता। स्वस्य लेखे सः उक्तवान् यत् गत केषुचित् मासेषु सोमनाथ सम्बद्धेषु महत्वपूर्णेषु कार्यक्रमेषु भागग्रहणं तस्य कृते महान् सौभाग्यस्य विषयः अस्ति। अस्य वर्षस्य आरम्भे प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सोमनाथ स्वाभिमान पर्व इत्यस्मिन् कार्यक्रमे अपि सहभागित्वं कृतवान्। अयं कार्यक्रमः मन्दिरस्य उपरि जातस्य प्रथम आक्रमणस्य सहस्रवर्षपूर्त्यवसरे आयोजितः आसीत्। प्रधानमन्त्रिणा सोमनाथः भारतस्य सभ्यतायाः, शक्तेः, राष्ट्रिय एकतायाः, संघर्षशीलतायाश्च प्रतीकत्वेन वर्णितम्। डीआरडीओ तथा भारतीय वायुसेना इत्येताभ्यां ह्यः ओडिशा तटस्य समीपे टैक्टिकल एडवांस रेंज ऑगमेंटेशन तारा इति शस्त्रस्य प्रथमं साफल्यं उड्डयन परीक्षणं सम्पादितम्। रक्षामंत्री राजनाथ सिंहः अस्य सफलोड्डयन परीक्षणस्य कृते डीआरडीओ, भारतीय वायुसेना, डीसीपीपी तथा सम्बद्ध उद्योगान् अभिनन्दितवान्। सः एतत् भारतस्य स्वदेशीय रक्षा क्षमता संवर्धनस्य दिशि महत्वपूर्णं पदाक्षेपम् इति वर्णितवान्। तारा भारतस्य प्रथमा स्वदेशीया ग्लाइड शस्त्र प्रणाली इति अस्ति, या अमार्ग निर्देशित विस्फोटकान् सूक्ष्म मार्ग निर्देशित शस्त्रेषु परिवर्तयति। अन्याभिः डीआरडीओ प्रयोगशालाभिः सह सहयोगेन हैदराबाद स्थितेन अनुसंधान केन्द्रेण अस्य परिकल्पना तथा विकासः कृतः। एषा स्वदेशीया ग्लाइड शस्त्र प्रणाली स्वप्रकारे प्रथमास्ति, यस्याम् अत्याधुनिकाः अल्पव्ययुक्ताः प्रौद्योगिकयः उपयोजिताः सन्ति। एतत् न्यून व्ययुतस्य शस्त्रस्य अग्निशक्तिं तथा लक्ष्यभेदन यथार्थतां वर्धयित्वा भूलक्ष्यान् प्रभाविरीत्या निष्प्रभावी करोति। प्रियाः श्रोतारः संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकरः वैश्विक आर्थिक स्थिरतायाः स्तंभरूपेण भारतस्य वर्धमान भूमिकायाः विषये अवधानं प्रदत्तवान् तथा च अन्ताराष्ट्रिय समृद्ध्यै राष्ट्रस्य महत्वपूर्णं योगदानं अवधानं प्रदत्तवान्। सुरीनाम देशे सुरीनामी समाजस्य विभिन्नानां वर्गाणां प्रतिनिधिवर्गाणां सम्बोधनावधौ मन्त्रिणा इदमुक्तम्। सः भारतस्य प्रभावस्य परिणामम् अधोरेखितुम् अद्यतनीयां दत्तांशान् सूचयन् उक्तवान् यत् अस्मिन् वर्षे वैश्विक वृद्धेः आईएमएफ इत्यस्य अपेक्षानुसारं भारतस्य योगदानं सम्पूर्णे वैश्विक वृद्धेः 17% यावत् अस्ति।
2: भारत कुल वैश्विक विकास में 17% का योगदान देता है। हम अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के जोखिम को कम करने में मदद कर रहे हैं। हम अधिक अवसर पैदा करने में सहायक हैं। हम आज और अधिक विकल्प तैयार कर रहे हैं। हम आज विभिन्न देशों के लिए ऐसे और अधिक मुक्त व्यापार समझौतों पर बातचीत कर रहे हैं और उन्हें अंतिम रूप दे रहे हैं ताकि वे इनका लाभ उठा सकें।
0: विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंहः अवदत् यत् प्रवास विषये भारतस्य दृष्टिकोणः प्रवासिनां संरक्षणस्य मूल प्रचालन सिद्धान्तैः प्रवासस्य जीवन चक्रस्य सर्वसमावेशक शासनेन सुदृढ अन्ताराष्ट्रिय सहयोगेन च मार्गदर्शितः अस्ति। श्रीमन्त्री न्यूयॉर्क नगरे संयुक्त राष्ट्र संघस्य भारतस्य स्थायी अभियाने द्वितीयान्तराष्ट्रिय प्रवास समीक्षा मंचे प्रतिनिधिदलस्य प्रमुखान् सम्बोधयनासीत्।
2: भारत ने 23 देशों के साथ प्रवासियों की आवाजाही के लिए व्यापक द्विपक्षीय समझौते और समझौता ज्ञापन किए हैं तथा निष्पक्ष और नैतिक आवाजाही के लिए कई और अन्य समझौतों पर विचार किया जा रहा है। भारत का लक्ष्य अवैध पलायन, तस्करी और सामाजिक सुरक्षा में मौजूद कमियों जैसी चुनौतियों से निपटते हुए समावेशी, मानवीय और भविष्य के लिए तैयार ढांचे का निर्माण करना है।
0: प्रशासनेन उक्तं यत् सम्पूर्णे देशे गृह एलपीजी इत्यस्य आपूर्तिः सुकरः अस्ति। कस्मिन्नपि वितरण संस्थायां शुष्कतायाः सूचना नास्ति। नवदिल्ल्याम् अन्तर मन्त्रालयीयं वार्तालापं सम्बोधयन्ति पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मन्त्रालयस्य सचिवः सुजाता शर्मा इत्येषा उक्तवती यत् प्रशासनस्य प्रयासः अस्ति यत् देशीय ग्राहकेभ्यः गैस इत्यस्य अभावः न भवेत् तथा च पश्चिम एशियायाः विकसित स्थितौ मूल्यानि स्थिराणि एव भवेयुः।
3: भारत सरकार ने ये कोशिश की अभी तक कि कोई प्राइस इंक्रीज ना हो और इसके लिए एक्साइज ड्यूटी भी कम की। इसके अलावा और भी बहुत सारे कदम लिए जैसे कि रिफाइनरीज के अंदर एलपीजी प्रोडक्शन को इंक्रीज करना, पीएनजी कनेक्शंस को प्रमोट करना, हमारे फर्टिलाइजर प्लांट्स को भी धीरे धीरे बढ़ाया गया और अब लगभग 98% तक उनकी सप्लाई इंश्योर की गई है।
0: आकाशवाण्या स्वीय 90वें वार्षिकोत्सवस्यावसरे अद्य राष्ट्रिय राजधान्यां मैराथन इत्यस्य आयोजनं कृतम्। प्रायः 3.5 किलोमीटर मितं मैराथन इत्येतत् आकाशवाणी भवनात् आरभ्य कृषिभवने, रेलभवने, आरबीआई भवने च भूत्वा पुनः आकाशवाण्याम् एव समाप्तम्। आकाशवाण्याः दूरदर्शनस्य प्रसारभारत्याः च कर्मचारिणः स्वीय परिवारस्य सदस्यैः च सह अस्यां मैराथन धावन प्रतियोगितायां भागं ग्रहीतवन्तः। सर्वे प्रतिभागिनः धावन समापन पदकं प्राप्तवन्तः। पुरुष महिला विभागयोः शीर्षत्रयेभ्यः धावकेभ्यः पारितोषकानि प्रदत्तानि। अस्माकं संवाददात्रानुसारं प्रसारभारत्याः सीईओ गौरव द्विवेदी, आकाशवाण्याः महानिर्देशकः राजीव कुमार जैनः च स्पर्धायै हरितध्वजं प्रदर्शितवन्तौ। भारतस्य सिमरनजीत कौर इत्येषा अद्य सांघाई नगरे आयोजितस्य आर्चरी वर्ल्ड कप स्टेज 2 इत्यस्मिन् महिलानां रिकर्व व्यक्तिगत स्पर्धायाः उपान्त्यचक्रीय द्वन्द्वे प्रविष्टवती इति वार्ताः।
4: ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। शाम के 6:30 हुए हैं।
5: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
6: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
5: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
6: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
5: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
6: 8700001-4242।

आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। शाम के 6:35 हुए हैं। लीजिए सुनिए गोंडी लोकगीत। कलाकार हैं गोविंद राम और साथी।

Hinu na tabi sarotole da angobe mendan senawa.

मुकरी गोछा जोड़ गे के तोले दा मंजरा ले गुरिया भाई रे।

सरू पागो का इसलिए तो लेता नियो लोगों

0: अभी आप सुन रहे थे गोविंद राम और साथियों का गाया गोंडी लोकगीत। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। शाम के 6:45 होने वाले हैं। विज्ञापनों के बाद प्रादेशिक
1: केंद्र है। अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
2: क्या बात है उमेश, आजकल खूब छाए हो अखबार में नई नई रिपोर्टिंग के साथ।
3: हाँ यार, पत्रकार जो हूँ।
2: तो अब अगली रिपोर्टिंग किस पर कर रहे हो?
3: सुधीर, मुझे एक ऐसी 11 साल की लड़की के बारे में पता चला है जिससे एक परिवार वाले घर का सारा काम करवाते हैं और ऊपर से उस पर ज्यादती करते हैं। उसी पर एक स्टोरी बना रहा हूँ।
2: उमेश, स्टोरी बनाते समय इस बात का ध्यान रखना कि पीड़ित बालिका का नाम, पता, फोटो या स्कूल का पता या ऐसी कोई भी जानकारी सामने ना आए जिससे उसकी पहचान होती हो।
3: क्यों?
2: क्योंकि ऐसा करना बाल न्याय तथा बच्चों की देखभाल और उनके संरक्षण संबंधी संवैधानिक अधिनियम 21A का उल्लंघन है। और इस बात का ध्यान हमारे सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को भी रखना है।
4: बाल अधिकार हनन से पीड़ित बच्चों की पहचान उजागर करने वाली जानकारी का प्रकाशन या प्रसारण न करें, क्योंकि इससे पीड़ित बच्चों के सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है।
5: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
6: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
5: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
6: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
5: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
6: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
4: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए। विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
7: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
6: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
7: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
6: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
7: आकाशवाणी से।
4: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
6: भाई साहब, आपके यहाँ कपड़ों पे 25% छूट अभी भी चल रही है ना?
7: हाँ हाँ जरूर, आपको किसने बताया?
6: मेरे रेडियो ने, वरना मैं तो इस डिस्काउंट से वंचित रह जाता।
4: विज्ञापन बुक करवाने आकाशवाणी आइए।
0: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत आज प्रदेश के सभी जिलों में सामूहिक विवाह समारोह आयोजित किए गए। हायर सेकेंडरी परीक्षा की उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन में लापरवाही बरतने वाले 30 शिक्षकों के खिलाफ की गई कार्रवाई। देशभर सहित छत्तीसगढ़ में कल 9 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। और प्रदेश में कल एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ अंधड़ चलने तथा आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत आज प्रदेश के सभी जिलों में सामूहिक विवाह समारोह आयोजित किए गए। इस प्रदेशव्यापी आयोजन में 2,300 से अधिक जोड़े विवाह बंधन में बंधे। सभी जोड़ों का अपने अपने धर्म और रीति रिवाजों के अनुसार विवाह हुआ। इनमें हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध और विशेष पिछड़ी जनजातियों के जोड़े भी शामिल हैं। योजना के तहत प्रत्येक नवविवाहित दंपत्ति को 35,000 रूपये की सहायता दी जाती है। वहीं मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत सक्ती जिले में 70 और गौरेला गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में 72 जोड़ों का सामूहिक विवाह संपन्न कराया गया। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के कार्यक्रम में विशेष रूप से 4 बैगा आदिवासी परिवारों के जोड़े आकर्षण का केंद्र रहे। महिला और बाल विकास विभाग के अधिकारी अमित सिन्हा ने बताया कि विभाग बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को बढ़ावा देने के साथ ही जिले को बाल विवाह मुक्त बनाने की दिशा में लगातार कार्य कर रहा है।
8: सभी जिलों में आज के दिन सामूहिक विवाह का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना अंतर्गत गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में भी सामूहिक विवाह का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कुल 72 जोड़े ने अपना पंजीयन कराया है। इन 72 जोड़ों में से 2 जोड़े जो हैं वो बैगा समुदाय से हैं, और हमारे लिए अत्यंत हर्ष का विषय है कि बाल विवाह पे रोक लगाने के साथ साथ हम बच्चियों के विवाह पर भी जो शासन की योजना है उनका लाभ उनको पूरी तरीके से दिला रहे हैं।
0: राज्य सरकार ने बीते 6 मई को भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के कार्यभार में फेरबदल का आदेश जारी किया था। इसमें संशोधन करते हुए वर्ष 2016 बैच की आईएएस अधिकारी रुक्तिमा यादव को कोरिया जिले का कलेक्टर नियुक्त किया गया है। इससे पहले जारी आदेश में रुक्तिमा यादव को उच्च शिक्षा के आयुक्त के पद पर पदस्थ किया गया था। वहीं आईएएस अधिकारी पुष्पा साहू को माध्यमिक शिक्षा मंडल के सचिव के पद पर नियुक्त किया गया है। इसी तरह आईएएस अधिकारी रीता यादव को उच्च शिक्षा के आयुक्त के पद पर पदस्थ किया गया है। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने हायर सेकेंडरी परीक्षा 2025 की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में लापरवाही बरतने वाले 30 शिक्षकों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। मंडल द्वारा जारी आदेश में संबंधित शिक्षकों को अगले 3 वर्षों के लिए मंडल के विभिन्न कार्यों से ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के दौरान कई छात्रों के अंकों में 20 से 40 तक की बढ़ोतरी सामने आई। इसे गंभीर त्रुटि मानते हुए मंडल ने जांच के बाद संबंधित शिक्षकों पर कार्रवाई की है। मंडल ने संबंधित शिक्षकों की एक वेतन वृद्धि संचयी प्रभाव से रोकने की भी अनुशंसा की है। अंतर्राष्ट्रीय रेडक्रॉस दिवस के अवसर पर आज लोकभवन में भारतीय रेडक्रॉस सोसायटी छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष राज्यपाल रमन डेका से भारतीय रेडक्रॉस सोसायटी छत्तीसगढ़ शाखा के चेयरमैन तोमन साहू और अन्य पदाधिकारियों ने सौजन्य भेंट की। इस दौरान पदाधिकारियों ने राज्यपाल को रेडक्रॉस का बैज पहनाकर अंतर्राष्ट्रीय रेडक्रॉस दिवस की शुभकामनाएं दी। देशभर सहित छत्तीसगढ़ में कल 9 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान न्यायालय में लंबित मामलों का आपसी सहमति से निराकरण किया जाएगा। वहीं 21 से 23 अगस्त के बीच सर्वोच्च न्यायालय परिसर में विशेष लोक अदालत के माध्यम से भी लंबित मामलों पर सुनवाई की जाएगी। पक्षकारों को अपने लंबित मामलों को विशेष लोक अदालत में शामिल करने के लिए जानकारी सर्वोच्च न्यायालय की वेबसाइट पर 31 मई तक गूगल फॉर्म में देना होगा। अधिक जानकारी के लिए बार रूम के वन स्टॉप या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायपुर से संपर्क किया जा सकता है। आकाशवाणी ने राष्ट्र के प्रति अपनी विशिष्ट सेवा के 90 वर्ष के उपलक्ष्य में आज राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मैराथन का आयोजन किया। प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी और आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने इस मैराथन को रवाना किया। इस अवसर पर प्रसार भारती के सीईओ गौरव द्विवेदी ने कहा कि मैराथन के माध्यम से फिटनेस का संदेश जनता तक पहुंचाया जा रहा है।
9: इस साल 90 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में विभिन्न कार्यक्रम आकाशवाणी में आयोजित किए जा रहे हैं। हमारे पूरे देश में जितने भी स्टेशन्स हैं, जो देश में फिटनेस की एक मूवमेंट माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर आरंभ हुई, उसका संदेश भी लोगों तक ले जाने के लिए ये उस कड़ी में एक कदम था।
0: आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने बताया कि ये आयोजन सार्वजनिक प्रसारक के रूप में आकाशवाणी द्वारा देश की सेवा में किए गए योगदान को दर्शाता है।
10: ब्रॉडकास्टर होने के नाते जब इस तरह का कार्यक्रम हम करते हैं तो इसका संदेश दूर दूर तक सुदूर प्रदेश तक पहुंचता है और ये एक बहुत बड़ा उदाहरण होगा।
11: देश भर में जो हमारे 232 मुख्य केंद्र हैं उन पर ये आयोजन इस महीने आयोजित होगा।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। धमतरी जगदलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 30 के चौड़ीकरण कार्य में बड़ी लापरवाही सामने आई है। वन विभाग की प्रारंभिक जांच में पता चला है कि स्वीकृत अलाइनमेंट के बाहर जाकर 8,000 से अधिक पेड़ों की कटाई की गई। मामले को गंभीरता से लेते हुए विभाग ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी है। वर्ष 2017 में इस परियोजना के लिए बालोद, कांकेर, कोंडागांव और बस्तर जिलों की 402 हेक्टेयर से अधिक वन भूमि के उपयोग की अनुमति दी गई थी। केशकाल वन मंडल में 10,731 पेड़ काटने की मंजूरी मिली थी। जांच समिति ने पाया कि 8,000 से अधिक पेड़ स्वीकृत क्षेत्र से बाहर काटे गए। वन विभाग ने जिम्मेदार तत्कालीन अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई का प्रस्ताव वरिष्ठ कार्यालय को भेज दिया है। कोरबा जिले में बीती रात राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 130 पर बांगो थाना क्षेत्र के चोटिया के पास हुए सड़क हादसे में एसईसीएल गेवरा क्षेत्र के पूर्व महाप्रबंधक अरुण कुमार त्यागी का निधन हो गया। मिली जानकारी के अनुसार अरुण कुमार त्यागी को हाल ही में डायरेक्टर टेक्निकल के महत्वपूर्ण पद पर पदोन्नत किया गया था। वो अपनी इस नई जिम्मेदारी को संभालने के लिए कार द्वारा गेवरा से सिंगरौली जा रहे थे। इसी दौरान चोटिया के पास उनकी कार अनियंत्रित होकर आगे चल रहे एक पार्सल वाहन से टकरा गई। इस दुर्घटना में श्री त्यागी गंभीर रूप से घायल हो गए। बाद में उपचार के दौरान उन्होंने अस्पताल में दम तोड़ दिया। वहीं जांजगीर चांपा जिले के बलौदा के हरदी बाजार रोड में आज कोयले से भरे ट्रेलर के पलटने से मोटरसाइकिल सवार पुरुष और महिला इसकी चपेट में आ गए। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद वाहन चालक फरार बताया जा रहा है। वहीं सकती जिले के नंदेली गांव के बस स्टैंड के पास कल देर रात दो वाहनों में भिड़ंत होने से कार सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई है। इस हादसे में अमाकोनी गांव के सरपंच ओमकार चंद्रा सहित चार लोग घायल हुए हैं। जांजगीर चांपा जिले में तीन धान खरीदी केंद्रों कीरित, कराड़ी और बिर्रा में करीब 4,700 क्विंटल धान का गबन किया गया है, जिसकी कीमत 1,29,00,000 रुपए बताई जाती है। मामले के सामने आने के बाद तीन थानों नवागढ़, बिर्रा और बाराद्वार में सात कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। इनमें संस्था प्रबंधक, खरीदी प्रभारी, ऑपरेटर और हमाल शामिल हैं। सभी आरोपी फरार बताए जाते हैं। वन मंत्री केदार कश्यप ने आज नवा रायपुर में छत्तीसगढ़ वनोपज संरक्षण वाणी और आईवीआरएस आधारित सूचना और संवाद तंत्र का शुभारंभ किया। वनोपज संग्राहकों को जानकारी प्राप्त करने के लिए टोल फ्री नंबर 9811125813 पर एक मिस्ड कॉल करना होगा। मिस्ड कॉल के बाद 911 से शुरू होने वाले नंबर से उपयोगकर्ता को कॉल बैक आएगा। कॉल रिसीव करते ही संग्राहक अपनी स्थानीय बोली जैसे हल्बी और गोंडी में महत्वपूर्ण जानकारियां सुन सकेंगे। जानकारी सुनने के साथ ही उपयोगकर्ता अपनी राय, अनुभव और सुझाव भी रिकॉर्ड कर सकेंगे। महासमुंद पुलिस, एंटी नारकोटिक टास्क फोर्स और कोमाखान पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए आज एक एम्बुलेंस से 77 किलो गांजा जब्त किया है। ये गांजा ओडिशा से महाराष्ट्र ले जाया जा रहा था। इस मामले में महाराष्ट्र के 5 अंतर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने गांजा परिवहन में प्रयुक्त एम्बुलेंस, पायलटिंग कार और 5 मोबाइल फोन समेत कुल 50,45,000 रूपये की संपत्ति जब्त की है। और अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश में कल एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ अंधड़ चलने तथा आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में कल कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम

0: समर कैम्प का आयोजन किया जा रहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत आज प्रदेश के सभी जिलों में सामूहिक विवाह का समारोह आयोजित किए गए। हायर सेकेंडरी परीक्षा की उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन में लापरवाही बरतने वाले 30 शिक्षकों के खिलाफ की गई कार्रवाई। देशभर सहित छत्तीसगढ़ में कल 9 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा और प्रदेश में कल एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ अंधड़ चलने तथा आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन हिंदी में कल सुबह 9:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है।
2: आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है।

0: सुनो ना,
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है? हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे।
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
0: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
2: ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। शाम के 7 बजे हैं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम बस्तर के स्वर।

0: राम राम ना चल की दादा राम ए,
1: राम अमर लिस मंग तो भाई आले राम राम ना राम राम ये ची संगे संगे बस्तर के स्वर कार्यक्रम सुनतो सप्पाई गांव कारी दादा दीदी भाई बहन सियान सजन मन के मैं चाल की
0: और मैं मंग तू
1: आमी दोनों करू से
0: राम राम राम, राम। उनके संग संग पीला मन के बल नहीं भूलकू ना
1: पीला मन के प्रकाशन भूल को खोजता ने
0: रेडियो कटा कटा बस लो पीला मन के बल कुबे कुबे मया और
1: चुमा बोले दक मंग तो भाई आम तो समय वाले ने आमचो गांव कारी दादी दीदी मन का जे ज्ञान दियान चो गोट गीत गोविंद धरु ने उसे ची मंत्र ना गोटोक गोट में बोले से कि आमचो जो न पहचान बोले ने आमचो फिदा वड़ा आमचो रहन सहन आमचो खान पान ले जानू खो इसने है बोले ने जो आमचो संस्कृति आमचो जो फिंदा वड़ा है
0: आमचो वेशभूषा कसन आहे नाही
1: बोलतो गोटी होय की जो आमचो पारंपरिक फिंदावडा आहे ने एवे तो भारतीचो युग आहे भारतीचो युग ने तो बरन बरन चो फिंदावडा असे बरन बरन चो खातो जिनिस मन जातो जिनिस मन बोललो असं असे
0: असे काय म्हणतो
1: मांतर आमचो सबले माईमूर जिनिस होय से आमचो फिंदावडा जो आमचो पारंपरिक राहे से जसं आमचो गाव वाडचो लोक मन फिनसोत ने आगे जुगे चो सियान मन सियानी मन दक एवे बोले पाटा फिंदुन बाती बोल सो
0: है पाटा आए लुंगी आए ने
1: हाँ लुंगी आए लेंगटा आए ने बोले ने अपलान अपलान जो न सामाजिक बंधना से परंपरा से ने तो ये जो नापलो वेशभूषा आए ने आगे तक आमची गांव वाड चो मेरार मन पहड़ी फिंदोत सूता फिंदोत है खाड़ू फिंदोत
0: और ये पिंदलो बीती के दकुन बाती लोग

0: जानत कि ये आदमी उन समाज चुआ बोलू
1: समाज चुआ उन समाज चुप पारंपरिक बल्ले ने आप लोग पुरखती पेरा चो फीता वड़ा आप लोग शोभा आए बोलून बाती ने
0: आप लोग बाप दादा मन कसन पिंदो तो उन्नी साहब ने अभी बोल कोनी कोनी त्योहार वार ने बोल पिंसो
1: पिंसो जी ने मंत्र अभी तक की ने भी हम बोल लो कि पहड़िया आए सूता आए उनचो जगह तक आजकल पहर पटी ली ने खाड़ू चो छाड़ून बाती चूड़ी ली
0: चूड़ी ली
1: ने बोल तो ये धीरे धीरे भारतीय युग ने बदलते जा रहे
0: बदलते
1: मंत्र आमचो जो पहचान है बोले जानतो हो से जोन बोले आमचो रुसुम कुटुम रीति नीति ने आसे हुन फिंदा वड़ा आसे हुनके फिंदू रले नहीं ये जोन फिंदा वड़ा चुआ ये असन बीती हुन फलना लोग मन फिंदू आत असन बीती हुन फलना लोग मन कितलो अच्छा दका दे ऐसे बोलुआत ने अरे भी दक की आगे जुगे तो लोग मन आप लो हाथे हाथे बनाते रोत फटी लता आए सोनार घर ने उन बाती आप लो जोन बोले खालो खिड़वा खिलवा मनाते रोत ने मंत्र ये भी दक की धीरे धीरे भूल कुन बाती सब दका दे तो जीनिस बीती मन ने जुगे भारती कर ला और धीरे धीरे कोनी कई लोग मन भुलकते जाए
0: नहीं, नहीं। आगे चलो बोले काय बारी पिंदो ने खान ने
1: चीप माला
0: बारी नहीं। बारी बोले अबे आजकल दका नहीं दे नाले मनुक मन बोल पिंदो
1: बारी पिंदो खिलवा पिंदो ने चीप माला हासा पाई माला ने ऐसा पाए फिनते रोत मात्र ये भी दका बरन बरन चो माला मन बले ऐसे अर्धक की ये जो नाम चो आगे जुगे चो जो हर समाज चो जैसन बंजारा मन चो कौड़ी गुतलो फटी लता हो ऐसे जो क्या मैं देव देव लोग के बल फिंदा हूँ से
0: ने देव दामिन बल काम ऐसे उन मन चो और आम चो आदिवासी लोग मन चो बल वेशभूषा अलग ही रहे से
1: अलग ही रहे से उन मन के लापी दूर ले चिता खोए से के नहीं ये मन चो परंपरा ये मन चो संस्कृति ने असन फिंदा वड़ा है बोलून बाती तो ये जो आप लोग फिंदा वड़ा परंपरा संस्कृति ने आप लोग पहचान बनाए से एक भुलक तोर नो आए
0: आप लोग वेशभूषा के बचाव रहो ने कहा आम चो आगे पीढ़ी काज बोले
1: काम है ये ने ते पे आम चो संस्कृति आम चो परंपरा बाचुन बाती रहे दे तो ये तो रली आम चो पारंपरिक फिंदा वड़ा वेशभूषा के बचान संगा तो गोट संगे संगे और गोट मना से अलग गोट मन के सुना
2: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
3: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट 64 सालों की बुनियाद के साथ चेटिनाड सीमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
4: जीएसटी से जुड़ी नई खबर ने आम लोगों और निवेशकों दोनों को राहत दी है। सबसे बड़ी राहत खाने पीने के सामान पर दी गई है। ब्रेड रोटी और छेना पनीर पर अब कोई जीएसटी नहीं लगेगा। इसके अलावा 33 जरूरी दवाइयों के दाम कम कर दिए गए हैं, जिससे इलाज का खर्च भी घटेगा। लाइफ इंश्योरेंस पर भी पूरी तरह जीएसटी छूट दी गई है, जिससे पॉलिसी खरीदना अब और सस्ता हो जाएगा। छोटी कारों और 350 सीसी तक की बाइक पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। इसका मतलब है कि गाड़ी या बाइक खरीदने का सपना अब पहले से सस्ता हो सकता है।

0: निखार। इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
1: हाँ तो मंग तू भाई देखना एक गोट मन बोलते होली ने
2: होली
1: मंतर मैं बोलते रहले पना तो पीला मन के सुरता कर रही
2: पीला मन का जी कहानी काड़ा बोलो लो नो थी
1: हाँ तो उस नीचे गोटो कहानी धरुन बाती आम चला कमर ला से दामोदर भाई और कहानी चो नाव सांग ले बोलते हाथ से कसन बोल ले कहानी चो नाव है गोटो खोड़े दूठान
2: वाले
1: तो वाले कहानी के आम चो दादा दीदी मन पीला मन सपाई के सुनाओ
3: मचो कहानी चो नाव है गोटक कोड़िया डुटान बायले। एक समय काय बोली उन कोड़िया जो डुटान बायले रहते रहते उन गांव ने उन थानो बड़े सौकार रलो कोड़िया तो से नहीं रहते रहते खूब साल बीतली।

0: तब तक उनचो दुई ठन बायले ये कोड़िया का जो कसन रवा बोलन बाती गोटक वार्ड बनाला कि ये कोड़िया के हमी कसन कर मरव तेबे आमी राजपाट कर मनाले खोड़िया संगे कसन जिंदगी जीवा असन करूं बाती दोनों भाईले सोचला एक दिन काय करला कि एक मोरा बोबो रांधला और कोड़िया के ख्वात काजे दिला। कोड़िया सोचलो कि असन कसन ने मौके के भी ना लो असन बोबो रांध नित्रो दिला तो काय हिसाब होए दे असन बोलन कोड़िया सोचलो सोचलो और बोललो कि ये बोबो केकला नहीं खाए। तो एक टन कुतरी पालू रहे खोड़िया ये कुतरी देऊन दखें दे कुतरी अगर काई नहीं मिल जा तो अच्छा बोबो है। तब तक एक बोबो कुतरी देऊन दिलो दे तो कुतरी खा दिली डंडिक रोन कुतरी मरुन गेली। अब कोड़िया नाराज होलो बोललो कि ये तारलन मच काई जिंदगी नहीं बीते ये मन कुछ नहीं करूँ बोल मौके मरोगत असन सोच लो और काय कर लो पूरा बोबो के आप लोग तुआल ने मोडरा बांध लो और उन तानले उन गांवले निकरुन गेलो। जाते जाते एक ठन असन उनके बीज बन जंगल मिरली असन जंगल रहे कि उन जाते जाते असन उनके डर संभाली कि मैं बीज बन रान ने हम्बर ले चढ़ी चुचुन नहीं कावरा चुकाव नहीं चट्टी उंडी चु बाट नहीं शुक्लो रुख ठाए करे बुड़गाबेंद्र हाय करे असन रोड ने गेलो। तब जाते जाते परेशान होलो गोटोक राज अंबरते रहलो अरुण ताने खूब लोग मन रुक ऊपर छेगुन रोत तो उन मन बोलला के खोड़िया कहाँ जैसे बोलते कोची गोट के नहीं सुने तब तो बोबो मंडराग बोन रहे। तो उन थाने गोटोक बया हाथी रहे उन राजा जानू उन लग चो रेत के संग रोत कि ये हाथी के तुम्हें कस नहीं करूँ बोले मारून दिया तुम के इधर उतरो दन दौलत दें दे असन विचार करूँ उन मन के संग रहे। तब तक उन मन हाथी डर का रुक मन छे गुण रोत तब तक खोड़िया नीसु ने कोची गोट के जाते जाते हाथी पाट कुतले हम्बर ली हम्बर तो के कोड़िया टेंडरेज टेंडरेज पराते पराते बोबो मोटरा पुसकुन गेली पुसक तो के हाथी कोड़िया काय करवा था उन तो बोबो में मिरली उन बोबो के हाथी खा दिली खातो के डंडी करून हाथी उन्हीं मरून गेली। कोड़िया डरकाज गेलो और नदी किनारे लुकुन रहे और ये बट बट दखे से ये कोनी राजा चो हाथी हुए दे ये मरून गेली दे मौके जेल हुआ है। असने होते ते गोटोक हांडी कावड़ बिता हुन बाटले एते रहे दखलो अचानक हाथी मरलो के उन सुनून रहे कि ये हाथी के मारलो ने राजा खूब पैसा दिवाए बोलमन और निकरा और कावड़ बैंगा ने पूरा मारते रहे मारतो के दखुन बाती ये रुक ने चगलो बिता नीला तुई कसन ने के मारसी नाई मैबे पूरे दख ले रे के मार ले बोल तो कोड़िया उन तान धीरे मुंडी निकरा रो दख लो हाँ ऐसे कुछ पैसा मिरुआ बोल असन बोल तक लोग बोलला कि कोड़िया दखुन रो ये तो कोड़िया बोबो मुंडरा के खादली आम्मी तो दर लग दखुन रहूँ असन बोल तो कोड़िया हरी कोलो नहीं ना तू के कौन देवरल बोबो नहीं आम तान भाई मन देवरल न का गाँव ले निकरो नीलो बीता है बोल लो उसन बोल तो सब लोग हरी कोला उन आंडी कावड़ बिता के मट फटोन दिला ये तुचो नकली बीते असली है तो एक राजा लगे नीला तो राजा के सांग तो के राजा हरी कोलो तु इतने बड़े विज्ञानिक आदमी आस तू इतने बड़े हाथी को मार ली बोल मत खूब दम दौलत उन कोड़िया के दिला देतो के देतो कोड़िया खूब हरी कोलो राजा बोले हरी कोलो बढ़िया आदमी मेरे लो बोलन तो उन चुकाजे दम दौलत घर कुड़िया बनाऊ दिलो बनाऊ देतो के उन चुकाजे फिर राजा उनके बिया दान करून दिलो तब तक रलो उसनी राजा के एक बार फिर समस्या आवली कि उन गांव ने पानी चंका लो ली तो रेत बारी बोलला कि राजा रो उन बाती पानी नहीं है बोल तो के राजा परेशान हो लो कसन कर ले होए दे बोल तो के कोड़िया लग के गेलो ने होए दे बोलते कोड़िया बुलाओ करला कोड़िया सांग तो के बोल लो दकवा बोल लो लेकिन कोड़िया लगे तो उसन ज्ञान नहीं रहे लेकिन एक दिन कोड़िया रात भर विचार कर लो और बड़े दाएँ ବାହାର ଗେଲ ହୁନ୍ତାନେ କଡ଼ା ଲାଠାରେ ଖୁବ୍ ସାରା ତୁନ୍ କଡ଼ା ଲାଠାନ୍ ବାହାର ପଛୁରେ ତପ୍ ତ କୁନ୍ ବାଟଲେ କୁନ୍ଦି କତରତେ ଏତେରେ କତରା କତରାରେ ପିଲା ଜିଲ୍ଲା ମାନ କାଲି ଗୁଡ଼ୁର ଗାଡ଼ରେ ଏପରାନ୍ଦି ହେନେ ଟିପସ ଟାପସ ଆଏ ନ ରାନ୍ଧି କେ ଜେଲା ରାଙ୍ଗା ଆଏ ଅସନ୍ ବୋଲି କୁନ୍ଦି ଭିଡ଼େ ତେବେ କୁନ୍ଦି ହେଇଛୁ ଗୋଟ ବୋଲ ବାଦ ପରେ ରାଜା ଲାଗି ହିଲ ଆର୍ ବୋଲ ନାଇଁ ରାଜା ମହାରାଜ କାଲିକେ ଗୁଡ଼ୁର ଗାଡ଼ରେ ପରାନ୍ ଦିନକେ ଟିପସ ଟାପସ ଆଏ ନ ରାନ୍ଧି କେ ଜେଲା ରାଙ୍ଗା ପାନି ହେଉ ଆଏ ଠିକ୍ ଆଏ କୋଡ଼ିଆ ଦେବତା ବୋଲ ଆର୍ ରାଜା ଚରିକି ନେଇ ରହିଲେ କୋଡ଼ିଆକେ ଚିନ୍ତାରେ ଲେକିନ୍ ଦୁସରା ଦିନ ଜସନ୍ ସାଙ୍ଗରେ ଲୁସିନି ହୋଲି ପାନି ଏକଦମ ଭରପୁର ରାଜନେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପାନି ଛୁ ହୋଲି ତ ରାଜା ଖୁବ୍ ବରି କଲ ଆର୍ ଫେର୍ ଉନ୍କେ ଦଣ୍ଡଲ ଦିଲ କୋଡ଼ିଆ ତପ୍ ତକ୍ ତ ଏକଦମ ଥାନେ ଅଲସ ଲଲ ତ ଏକ ବାର ଫିର୍ ରାଜାକେ ପରେଶାନୀ ହେଲି କି ହୁନ୍ ତାନେ ରାଜା ଛୁ ୟୁଥ କାଜେ ସାଙ୍ଗଲା କି ଆଜ କହି ରାଜେ ଛ ଲୋକ ଚଲ ଏଥା ଲଢ଼େଇ ହୁଏ ବୋଲ ତକେ ରାଜାକେ ଚିନ୍ତା ଧରିଲି କି ଇଥିଲୋ ରାଜ ଲେହୁଆ ତ ମାଇଁ କସନ୍ କରୁନ୍ ଲଡ଼େ ଏଇ କୋଡ଼ିଆ କାଗ ଦେଇଁ ଦେ ତେବେ କୋଡ଼ିଆ କୁଜ ଗୁନ୍ ସାଙ୍ଗେ ଦେ ତପ୍ ଫିର୍ କୋଡ଼ିଆକେ ସାଙ୍ଗଲା ରାଜା ମନ୍ କି କସନ୍ କରଲେ ହୁଏ ଦେ ୟୁଦ୍ଧ ନେହେସ କୋଡ଼ିଆ ତୁଇ ଖୁବ୍ ଉପାୟ ଜାନୁଆସ ତୁଇ ଦୁଆଇ ଜାନୁଆସ କସିନି ବୋଲି ତୁଇ ଅକଲ ସାଙ୍ଗ ତେବେ ମାଇଁ ଇଥିଲୋ ରାଜ୍ୟକୁ ମାଇଁ ଜିତୁକ ସକେ ଠିକ୍ ଆଏ ମହାରାଜ ମାଇଁ କାଲି ସାଙ୍ଗେ ଦେ ବୋଲ ଆର୍ ଫେରିଲ କୋଡ଼ିଆ ତ ରାତ ଭର ଏ ମନ ଚିନ୍ତାନ୍ ରହତ ତ କସନ୍ କରଲେ ନେ ହଏ ଦେ ରାଜାକେ ମୁଇଁ କସନ୍ କରୁଁ ସାଙ୍ଗେ ଦେଖିଥିଲେ ବଡ଼େ ରାଜା ଚ ରାଜାକେ କସନ୍ ଜିତୁଆଇ କି ନାଇଁ ଅସନ୍ ବିଚାର କରଲ ଲେକିନ୍ ରାତ ଭର ଏ ୱାଟ କରଲା ତୁନ ଡକରା ଡକରି ଆଉ କସନ୍ କରଲେ ନେ ହଏ ଦେ ରାତି ତ ତା ଜିତର ୟୁଦ୍ଧ ଲୋକ ଉଞ୍ଚ ଘର କୋଡ଼ିଆ ଚ ଘର ଚ ପୁରେ ହେମନ୍ ବସୁନ୍ ଦିଲା ଜିତର ଲଢ଼େଇ ଲୋକ ବସ୍ତକେ ଫେର୍ ବାହାରି ନିକରୁ ଦେଖେ ସେ କୋଡ଼ିଆ ଆବ ତ ମୁସ୍କିଲ ହେଲି ଏ ତ ରାଜା କାଲି ମାରୁଚିଆତ ଆମକେ କାଇ କରୁ କି ନିଆ ଅସନ୍ କରୁ ଡକରି ଦୁନ ବିଡ଼ୁଆର ଦିହରେ ନିକରୁ ବାତି ଯାଉଁ ବନ ବାତି ଆଚ୍ଛା ସୋଲ ଦାଏଁ ଦୁନ ନିକରଲା ଆର୍ ଯାତେ ରଥ ଡକରିକେ ବୋଲ ଜବ ତକ୍ ଅଗର କୋନି ଜାଗଲା ଯାହେଲେ ବାଜା ମହରି ଏତା ସଙ୍ଗାଲା ସେ ମୁଇଁ ମହରିକ ପୁକେଇ ଦେ ତୁଇ ଯେନ୍ ବାଜାକ ବଜାଉ ଅସନ୍ ବୋଲ କୋଡ଼ିଆ ବୋଲ ଉତ୍ତରଗର ରାତକେ ଉନ୍ମନ୍ ନିଦ ନେ ରଥ ତପ୍ ତକ୍ ଚୋ ବାଇଲେ ବି ଥିବେ ଗୋଟେ ନଙ୍ଗରା କୁନ୍ଦନ ଦେସ୍ତା ଡୁଙ୍ଗ କରିଥିଲି ଉତ୍ତରି ଦାଏ ସବ ଲୋକ ଉଠିଲା ଉଠତକେ ଧରଲକାଏ ମରି ପୁକୁକ୍ ମରିଆଲ କୋଡ଼ିଆ ଫୁକ୍ତକେ ଜୋରଦାର ବାଜା ବଜା ଫରିଆଲି ଚୋ ଡୋକରି ତପ୍ ତକ ବୋଲା କି ୟୁଦ୍ଧ ଲୋକ ଇଲା ସେ ବୋଲୁ ବାତି ସବୁ ଆପନି ଆପନି ମାରାମାରି ହେଲା ତଲୱାର ନେ ଜସନ୍ ବୋଲେ କୁନ୍ଦ କାନ୍ଦ ହୋଲି ଜସନ୍ ବୋଲି ହୋଲି ସବ ମରୁନ୍ ଗେଲା ଜିତର ୟୁଦ୍ଧ ନେ ରହିଲା ଉନ୍ମନ୍ ତ ବଡ଼େ ଦାଏ ଫେର ରାଜା ବୋଲ କି କୋଡ଼ିଆ କେ ବୁଲାନ ଯାଉ ଆରେ ମହାରାଜ କୋଡ଼ିଆ ତ ଜିତର ୟୁଦ୍ଧ ନେଇଲ ଲୋକକେ ସବକେ ମାରଲ ଆରେ କୋଡ଼ିଆ ତ ମରଚଲ ଦାଦା ଦିମାଗ ବିତାଏ ବୋଲ ରାଜା ଆର୍ ଉନ୍କେ ଦନ୍ ଦୌଲତ ପୁରା ସପନ ଦିଲ ରାଜ ବୋଲେ ଆମକେ ସପନ ଦିଲ ତ ଏଇ ରହେ କି କୋଡ଼ିଆକେ ଅକଲ ଏ ଦିଲା କି ଡୁଟାନ ବାଏଲେ ରହଲନେ ଏ ପରେଶାନୀ ହୁଏ ଉଞ୍ଚ କିସ୍ମତ ରେ ଲିଗୁନେ ଉନ୍ ଜିତଲ ଅଗର କିସ୍ମତ ନି ରହେ ତ ନି ଜିତ ଡୁଟାନ ବାଏଲେ ହାନ ଲଗୁନେ ଏ ପରେଶାନୀ ବୋଲି ମାତ କିସ୍ମତ ରେ ଲିଗନ୍ କୋଡ଼ିଆ ଆଦମୀ ଜିତଲ ଆରୁ ତା ରାଜ କରୁନ୍ ବାତି ରହଲ ଏ ହେ କୋଡ଼ିଆ ଚ କାହାନୀ ଇତଲି ବୋଲୁ ବାତି ମାଏ ଆପଲୋ କାହାନୀ କେ ତା ବିରାମ ଦେସେ ମୋ ନାମ ଦାମୋଦର ସିଂ ବଘେଲ ମଙ୍ଗନାର
1: ହଁ ତ ମଙ୍ଗତୁ ଭାଇ ଦେଖି କାଏ ରାଶିଆ କହନି ରହିନି ଗୋଟେ ଖୋଡ଼ିଆ ଡୁଠାନ ବାଇଲେ କହନି ନାଁ ରହିନି ଇତଲୋ ଅଚ୍ଛା କହନି କେ ସାଙ୍ଗତେ ରୋତ ଦାମୋଦର ଭାଇ ନେ ମାତ୍ର ନା ଦେଖ କହନି ତ ହୋଲି ନେ କହନି ଦେଖ କାଇଁ ବୋଲେ କହନି ହଉ ନାଲେ କବିତା ହଉ ବୋଲ କାଇଁ ନା କାଇଁ ଶିଖୁ କଲାଇ ମିହିରେ ସେ ସୋଜେ ଶୁଣୁ ହରିକ ଲାଗ ତ କାଇ ନାଇଁ ହୁଁ ଶିଖ ବୋଲି ରୁଗାଏ ହୁଁ କହନି କବିତା ମନ ନେ ତ ଆମକେ କହନି କବିତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହନି ଶୁଣିଲୁ ମାତ୍ର ତାହେଲେ କାଇ ଶିଖ ମିଲି ହୁଁକେ ବୋଲେ ଆମ ଅଚ୍ଛା ବିତି ଗୋଟ ମନକେ ଆପଲ ଜୀବନା ନେ ଆନ୍ତରାଏ
2: ଆନ୍ତରାଏ ନେ ଆଲୁ ଉଞ୍ଚେ ସଙ୍ଗ ଆମ ଚୁଲ ଗାଓର ଗୋଟକ ବୋଲ ଗୋଟ ଆସେ ଆଲି ଗୋଟ କେ ବୋଲ ଶୁଣୁ ହୋ
1: ଆଲେ ଦେ
3: ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଇତକେ ଖୁଦ କିନତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା ଔର ଜୀବନ ବୀମା କୋଣ୍ଡଲ ଏକଟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା ଔର ଜୀବନ ବୀମା ପଲିସି କିନ ଶସ୍ତା କି ସିତ୍ତୋଡ GST କାଉନସିଲ ତୋରୁ ବୀମା ନଗ ଲାଗେ ମାୟାନ 18% ଟେକ୍ସ କିନ ଘଟା କିସ ଶୂନ୍ୟ କି ସିତ୍ତୋଡ ଅଦେନ କେ ଇଞ୍ଜେ ଜୀବନ ବୀମା ପୈତନ ଇଞ୍ଜେ ସିରୋ ବୀମା ତା ପ୍ରିମିୟମ ପଇସାଙ୍ଗେ ଇଏ ନା ଦାତା आके टैक्स लगे मायो इत स्वास्थ्य बीमा पैता नोर एक्का बढ़िया फायदा आता भारत के LIC किन 99 इनकम टैक्स से छूट दौर की मिंदे अगा निंजे GST हटे मत्तां बीमा पैत के फायदा आता।
4: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सहकर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
5: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट 64 सालों की बुनियाद के साथ चेटिनाड सीमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
6: GST परिषद आपलो 56वां बसका ने देह पाए लागून सुविधा अरु सामान के सस्ता करून देश जो खूबे लोग मन के सहायता कर ली से। डायबिटीज बीमारी चो राजधानी बल तो भारत के ए बीमारी चो बीमार लोग मन का जे रोज दिन चो जरूरत बन लो ग्लूकोमीटर और स्ट्रिप सुपरे GST चो दर ने कम कर तो रोली से। असने ब्रेस्ट कैंसर बलो ने छाती चो कैंसर बीमारी संगे अस्थमा चो इलाज ने काम एतो बीती उपाय थर्मामीटर और डायग्नोस्टिक किट्स उपरे बलेबल टैक्स चो दर के कम कर तो रोली से।
2: तो हाँ, चल चल की दादा।
1: हाँ मंगतू भाई,
2: ये गोट मन के तो सुन लू नहीं।
1: हाँ, और की गोट बात ने बोला हमको कहीं सीखुक मेरू है जानुक मेरू है। और हम चो जो गाँव कारी दादा दी मन रेडियो सुनते रुआत उन मन के कहे कसन गोट बात मन के बोले आमे अमराऊ से कि उन मन जानो तार आप लोग जीवन ने काम ने आनोत बोलून बात
2: कहीं बोले सीखु रहो ने उनके काम है।
1: और हम चो जहन बस्तर के सर कार्यक्रम आए हम चो गाँव कार्यक्रम आए किसानवाड़ी कार्यक्रम आए हम गाँव कारी दादा दीदी मन का जे कई कसन कार्यक्रम मन घर द्वार आए हम चो मेहरा सुनतो लोग मन का जे ने सब कार्यक्रम मन धरू ने उसे यार ज्ञान ध्यान जो बारती चो और देह पाए दखा रखा पीला झीला दखा रखा खेती कमानी सब चो गोट मन के आमी धरून बाती अमरो से।
2: तो आम चो रोज दिन तो आमी धरून बाती तेरू हमने मानता आम चो जा तो समय बल तो होई छे ने
1: आले ते बे मोडरागढ़ रख सकलू और विदा मांगू। तो जा तो पूरे बस्तर के सोर कार्यक्रम सुन तो सब पाए दादा दीदी मन के मैं चाल की
2: और मैं मंगतू
1: आमी दोनों करूं से
2: राम राम, राम।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बस्तर के स्वर, आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। शाम के 7:21 हुए हैं। लीजिए सुनिए ग्रामीण श्रोताओं का कार्यक्रम आमचो गांव।

0: रीति रिवाज उनचो नियम कानून को मानुक पड़े से
1: पड़े से अदक सत्य गोटा है कि आमचो जोन घर आए ने घर गोटो परिवार
0: आ परिवार ने
1: परिवार ले फिर कुटुंब बन ली
0: कुटुंब बन ली
1: कुटुंब ले फिर समाज बन ली
0: समाज बन ली
1: समाज ले फिर गोटो गांव बस ली
0: ने
1: मंतर तक कि ये जोन आमचो समाज बलू से आमचो जोन जोन बले समाज चो आमने आमचो बस्तर ने तो कई कसन समाज चो लोग मना से आसो तो उन सब चो अलग अलग रीति रुसूम आए मंतर खिनिक मिलो जुलो सुनाए जा ना मंतर
0: अलग आसे
1: खिनी खिनी का आप लोग नीति बुंदी अलग खिनी का और टाइप चो आसे ने जन बिया पर पन सफाई हल्दी चे गाय सोत ने नाच सोत गाव सोत बोल लो आसे मतलब खिनी नीति रीति और आए ने जैसन को नी बाट दुकू हम आमी जैसन शहर गांव बाट दुकू हम आम चो लगे तो छिनपोल का जुमोड बनाए सो ने मतलब खिनी दूसर समाज लगे कोनी कोनी शहर गांव समाज मन दकू से उन फुल पांचो मोड बनाए
0: सो पांचो मोड बनाए सो और आजकल मीरे दुकान ने
1: दुकान ने हां
0: बीती पिनसो
1: पिनसो दक हर समाज चो कहीं ना कहीं गोटोक रीति नीति आसे हुन मन आप लो हुन रीति नीति ले आप लो शिक्षा बल दे सो और इबे चो जो आमचो गांवकारी लेका मना धीरे धीरे हुन नीति रीति के भूलक सो
0: भूलक सो
1: दक आमचो जैसे बाजार बनाए सो गांव चो देवधामी के पूछ सो घर चो देवधामी के पूछ सो ने पूजा पाठ कर सो मान कर सो आय उसनी ची गांव गांव ने जगार मंडाई सो सुमरना काजे ने बोल तो जो नी हम चो पारंपरिक जत्रा बाजार मंडी मन होय से नहीं गे बोले गोटो शिक्षा दे से कि आम चो जोन पीतर आम चो जोन ईष्ट आम चो जोन गांव पारा चो देवी धामी आय उनके सुमरना करतोर ने और कहीं बोले जैसे बिया होली नाले फिर नहानी होली नाले फिर कोची घरे जन्म आए दुख आए है मरण आए ये सब जो गोट ने नहीं कहीं ना कहीं हम के सिक्तु बीती बोले होता है रहे से मीरे से कि हम जो रीति रिसुम कसन रली कसन कर तो रहा है ये मन के नहीं हम जो लोग मन के बोले जान तो रहा है उनके काय का जसन कर सोत है जसन ये भी जाए
0: उन रीति रीति के जानू रुआ थे भी तो हम ही करूँ नहीं सियान मन जो गोट के बोले जानू आते भी हम के सांग दे उन बीती का हम करूँ
1: जसन हम जो बाटे तियार बाहर खाए सोत ने जसन अमूस आए दियारी आए नोआ खानी आए बोल लो ने मंत्र तक अमूस आए ने अमूस का अमूस बल बनाऊ से आए अमूस ने बल तक पशु जनावर आम चो फसल का जी कई जड़ी बूटी खुआउ से हुन बोले गोटो काम चो अच्छा काम का जी आए हुतल बोले हमको शिक्षा मिले से कि लोग बाग के जान तो रहा है कि आमी अमूस काय काज बनाऊ से आमी दियारी काय काज बनाऊ से आमी नोआ काय काज खाऊ से ने और संगे संगे दक कि एबे सपाई अक्ति दिने दक ने कि सपाई आम चो किसान भाई मन बीच निकराला तक उन बीच के काय काय निकराला हुन गोट के बोले जान तो रहा ने
0: हुन तो आए छे आओ बीच निकराला उन उन बीती बल गोट है और आम चो जोन बोले आए नीति नियम के अब उन सामाजिक बीता मन सांग सोत की असन असन करतो रहा और ये दिन करतो बीती आए बोलन बाती बैठक बोले होई से गांव मन ने और उन बैठक ने सांग सोत और ये दिन है अमूस है कि नवा है कि नाले बाजार है ये बीती गोट के पर
1: सांग सोत और तक की जोन बोले आम काम करूं से आम चो जोन समाज ले आम चो रीति रुसुम ले उताले बोले आम के सिकुक मीरे से आम के जान तो रहा है कि उनके आम काय काज करूं से ये ले आम के काय लाभ मीरे से ये गोट के बल जान तो रहा है ये नहीं कि सोचे हाँ काय तो हम के नवा खा तो रहा है दियरी खा तो रहा है हाँ बस घरे लोग भाग के हाक दिलू खोवालू पियालू कुकड़ा वकड़ा बोल लो हंसनी नहीं
0: नहीं
1: हुन चो काय माना से हुन तियार बाहर ले हम के काय मीरे से कसन काजे बनाऊ से ये गोट मन के बोले जान तो रहा है
0: हुन तो आए छे ने हुन हम चो लग तो और बोले आसे ने ये गोट मन हाले ये गोट के सुनो
1: हाले देव ये गोट के बोल सुना दे
2: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
3: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट 64 सालों की बुनियाद के साथ चेटिनाड सीमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
4: जीएसटी काउंसिल ने अपनी 56वीं बैठक में हेल्थ केयर की चीजों को सस्ता कर देश की बड़ी आबादी को राहत दी है। डायबिटीज कैपिटल कहे जाने वाले भारत के शुगर मरीजों के लिए रोजाना की जरूरत बन चुके ग्लूकोमीटर

0: और स्ट्रिप्स पर जीएसटी की दरों को घटा दिया गया है। नजर के चश्मों को भी सस्ता किया गया है। इतना ही नहीं बल्कि ब्रेस्ट कैंसर सहित अस्थमा के एडवांस इलाज में काम आने वाली कई दवाओं, थर्मामीटर और डायग्नोस्टिक किट्स पर भी टैक्स की दर कम की गई है।
1: हाँ तो मंतु भाई, देख एक गोट बोलतो होली ना, मंत्र दक के आमी एबे आमचो रीति रसूम चो गोट के गोठिया उरू ने जोन बोले तियार बाहर हो नारे कहीं बोले रसूम हो ने बिया बरपन हो कहीं बोले हो ने मतलब जैसा ना आमी बिया करूं से ने बिया घरे तो है से बाजा मोहरी बाजे तेल हरदी जेगा उसी सपाई लो घरी कुदीम ने रस उच्ची मंत्र दक बिया कर तो मेरा बोले नहीं कई रसूम हो से मांडो गाड़ तोल धरून बाती फिर पुजारी घरे जातोर फिर मांडो आंतोर फिर तेल चेगातोर फिर रैला माटी का जातोर ने अर्धक हर समय ने हर जोन बले आसे जसन मांडो गाड़ तो बेराचो तेल चेगा तो बेराचो मऊड़ फिंदा तो बेराचो रैला माटी आंतो बेराचो सपाए चो गोटोक आमचो जोन बाजा मोहरिया भाई मनात नहीं उन मोहरी फुकसो बाजा बजाय सो तो सपाई बेरा चो असनीची अलग अलग पाड़ रहे से मन बजाय सो तो असनीची पाड़ के धरुन बाती आम चले गमर लासे पाकलू राम और मुझे संगवारी मन तो वाले ये मन काय काय पाड़ के बजाय सो ताले की बोले सुना देते

0: हाँ तो मंगतू भाई
1: हाँ
0: देख, ये पाकलुआ और पाकलू राम और उनमें जो संगवारी मन ये जो पाड़ बजाते रहो बिया घरे तेल पाड़ और मोड़ बांध पाड़ के बजाते रहो ने हम पनाई ची गोठिया रहो कि हम चूर बिया रुसुम ने बोले कई
1: किसम छो
0: आप चूर जो रीति रुसुम रहे से ने तो उन हिसाब ने मन पाड़ के बजाते रहो ने मंत्र तक पाड़ तो सुना लू हम दादी दी मन के मतलब संगे संगे और गोटा से अले गोट के बोले सुना दे।
2: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
3: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट 64 सालों की बुनियाद के साथ चेटिनाड सीमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
4: इंजे निम्मा बेद्दे पूना कार गाड़ी पोटरू गाड़ी आसना दाल समती नितके अदमिकिन सुडुन कम मोला ते दोरकिता जीएसटी परिषद सुडला कार गाड़ी 350 सीसी ता फटपटी पोटरू गाड़ी और मूंड चक्का ना गाड़ी तले टैक्स 28% तीन कम किस इंजे 18% की सित्ता 22 सितंबर 2025 तीना लागू आयना इत पंडुम ता वेला ता इनाम एंट्री लेवल गाड़ी किन और वेंट किफायती बना की ता अगान लग्जरी कार गाड़ी और बिड़िया पटरू गाड़ी 40% तक पूना स्लेप ते वत्ता मती अवे न गौचुर कम टैक्स लगे माता।
0: हाँ तो मंग तो भाई देखना है गोट मंग बोलते होली ने मंत्र तक आमचो रीति रुसुम के तो हम पना गोठिया लुची रसनी ची दक आमचो रीति रुसुम ने गीत गोविंद बोले रहे से
1: गीत गोविंद सुन लो ना अच्छा नहीं लागे
0: नहीं नहीं लागे से तो असनी ची गोटक गीत गोविंद बोलने ने गोटक नाट गीत के आज धरो नहीं लो से आमी ने ये नाट गीत के गाऊ रोत नंदोराम भारती आर हूं मंचो संगवारी तो वाले ये मंचो गाओ लो नाट गीत के बोले आमचो दादी दीमन के सुनाऊं।

0: हां तो मग तू भाई
1: हाँ
0: दक्की नाटगीत के गाऊर वत नंदोराम भारती आरुन मंचो
1: संगवारी मन
0: और दक्की नाटगीत बल्ले आगे आमचो दुख सुख आए बल्ले ने दुख घरे तो बजा होते ची रहे ने
1: होते ची रहे थे
0: चाय पानी घर जा तो नाट हो नाले पे राती बेरा
1: राती बेरा
0: हो ने और बाजार मंडी इन बोले नाट रहे ने और आजकल तक बाजार मंडी है बोले हरा जीता बोले नाट बोले हो इसे
1: नाट बोले हो इसे का और आगे नाटे ची तो मनोरंजन तो साधन रहे
0: साधन रहे ने ये भी तो टीवी और काय काय सिल्मा मन होली ने ये गीत तो रेली मतलब मैं बोलते रेली गोटो गीत और सुना ले होती बोलून
1: भाई
0: तो ये गीत के गावला से बसंती और हनुमान चो संगवारी मन तो वाले गीत के बोले सुनाओ।

अभी आप सुन रहे थे ग्रामीण श्रोताओं का कार्यक्रम आम चौगांव। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। रात के 8 बजे हैं। घलर में लीजिए सुनिए भत्री लोकगीत। कलाकार हैं वेदवती और साथी।

0: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
1: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
2: घलर में आप सुन रहे हैं बेदबती और साथियों के गाए भत्री गीत।

0: लोकगीतों के कार्यक्रम घलर में आप सुन रहे थे भत्री लोकगीत, कलाकार थे वेदवती और साथी। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है, रात्रि के 8:30 बजे हैं। पिलामन काजेगुट में लीजिए सुनिए लाला लाजपत राय के बारे में। प्रस्तुति है सुब्लू राम कश्यप की, पर पहले ये संदेश।
1: मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सहकर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
2: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ चेटिनाड सीमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।

আছেই সপায় সুনা পিলা মানকে খুবে খুবে মায়া আউর চুমা পিলা মান ভারত দেশ অঙ্গ্রেজ মঞ্চু হাতে গুলাম রেলি এ গোটকে জানুয়া ভারত দেশ নে সবলে আগে পূর্ত গালি সমুদ বাটলে বাট খোজলা এ বাট চু পতা শুনুন ইংল্যান্ড লে অঙ্গ্রেজ মন জাহাজ নে সন 1608 ने भारत देश ने अमरला भारत देश ने व्यापार कर तुकाजे ईस्ट इंडिया नाव चू कंपनी बनाला ए कंपनी ने बड़े बड़े अंग्रेज साहेब मन रला भारत देश ने सपाई बाटी पूरला और शहर मन ने चौकी बनाते गेला दिल्ली मुंबई मेरठ कलकत्ता असन चौकी मन ने कंपनी चो गोटो गोटो अंग्रेज साहब मन रला अंग्रेज साहेब मन कंपनी खाजे सिपाही भर्ती करला भारत देश चो जुआन लेका मन के सिपाही पद ने देवन भाती कंपनी सिपाही मन के आपलो हिसाब ने काम कराते रहे भारत ने कंपनी काचा बीती फसल चो व्यापार करते रहे ये खाचा बीती फसल आय आसाम ले चाय पत्ती बंगाल ले जूट महाराष्ट्र ले डांडा कपास मद्रास ले धान तिल मूंगफली ये फसल के ब्रिटेन पटाते रहोत कंपनी के दूसर फसल ले कम फायदा होते रहे और ये बीती ले खूबे फायदा होते रहे भारत देश जो किसान मन के असन फसल कमानी कर तो काजे जबरन कंपनी करते रहे अंग्रेज मन भारत चो जीवना के बले टूटाला और नानी नानी कारखाना के बले नसाऊ दिला भारत चो कच्चा बीती जीनिस के अंग्रेज मन इंग्लैंड नेउन बाती भिक्तो बीती बनाऊन और भारत ने आनून आगर मोल ने भिकते रहोत और बारी चो देश चो पैसा ले भारत चो लोग के खुबे तकलीफ होते रहे अंग्रेज मन असन करून कुबे भारत देश लोग मन के दंड कसट करते रहोत अंग्रेज मन भारत ने जमींदारी रैतावारी और मालवारी असन उवाट मन बनाला किसान की आपलो जमीन चो हक के नंगाला जमीन चो हिसाब ने पट्टी दरते गेला जमींदार मन किसान के आगर धान पैसा मांगला भारत देश चो लोग मन की खुबे दुख दंड देते रहोत और मार पेटा बले करते रहोत ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत देश चो नंगत बुद्धि बीता मनुक ये चो नावाय मंगल पांडे सिपाही चो काम करते रहे असन दखते दखते मन ने विचार कर लो ये खुबे अत्याचार कर सोत और आप लो संगवारी मन के समझा लो ये कंपनी सरकार आमचो लोग मन के आमचो हाथ ले मारुक तियारे से राजा के राजा संगे लड़ाई से हिंदू के मुसलमान संगे असन उवाट करून कंपनी राज करे से मंगल पांडे बल्लो कंपनी सरकार के समझावा नी समझ लेने कंपनी सरकार के लड़वा देश चो मान सम्मान के बचावा आपलो इज्जत के बचावा सन 1857 ने अंग्रेज मन के लड़ूक मुरियाला मंगल पांडे अंग्रेज ऑफिसर की गोली मार लो मंगल पांडे ऑफिसर के मारतो के अंग्रेज सरकार फांसी दिल्ली 8 अप्रैल सन 1857 ने मंगल पांडे के देश चलो ग्रीस और अंग्रेज सरकार छावनी के आईग ने ढसाला और खुबे दिन झगड़ा ओली भारत देश चो आजादी खाजे आपलो जीव के बले सोपला ए संगवारी मंचो नावाय भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद राजगुरु रानी लक्ष्मीबाई पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल गंगाधर तिलक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सरदार वल्लभ भाई पटेल दादा नौरीज गणेश शंकर मिश्रा लाल बहादुर शास्त्री अशफाक उल्ला खान भारत देश जो आजादी खाजे सपाए पूरे एवं देश काजे सेवा करला अई मंचो असन भारत देश काजे सेवा करला सोत एचो नावाय लाला लाजपत राय
यमन चू सेवा गोट के जानवा यमन असनी देश चू रहेत की बचातो काजी कुबी सेवा करला ये दादा चू नाव है लाला राजपत राय। लाला राजपत राय चू जन्म हुली पंजाब चू मेगा जिला ने सन 28 जनवरी 1865 ने बामन घरे कुबे भरक चू पाची हरियाणा चू रोहतक और इसार शहर ने वकालत करलो। भारत देश चू राष्ट्रीय कांग्रेस गरम दल चू मुख्य नेता रलो संगे बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र संगे ये तीन मूर्ति के लाल बाल पाल चू नाव ने भारत देश चू लोग जानला। लाला लाजपत राय चू बाप चू नावाय राधा कृष्ण अग्रवाल और माय चू नावाय गुलाब देवी अग्रवाल। लाला लाजपत राय चू नारा आय इनकलाब जिंदाबाद बल्ले ने क्रांति अमर रही। भारत देश अंग्रेज मन चू हाते नी रहो और देश सपाय लोग अंग्रेज मन के मार तो काजी तैयार रहोत और भारत देश चू मान सम्मान की बचाओत। लाला लाजपत राय जैन 28 जनवरी 1865 17 नवंबर 1928 ने भारत चू गोटक जहलपल सेवा करी रलो असन सेवा।

करतो की पंजाब धरून 1899 1900 ले धरून 19 राजनीतिक गुरु मान लो। लाला लाजपत राय लाहौर शहर ने 30 अक्टूबर 1928 के झगड़ा होली। लाला लाजपत राय अंग्रेज मन की खूबे रीस ओलो ऊंचो संगवारी मन के खूबे मारला। लाला लाजपत राय की छाती ने ठेंगा पावली ठेंगा पातो के लाला लाजपत राय मुरछाउन पड़लो। लाला लाजपत राय मारतो बेरा अस्पताल ने 18 दिन तक लाला लाजपत राय चुजीव फुटुक फुटुक करते रहे। लाला लाजपत राय जो 17 नवंबर 1928 के जीव गेली और बल सपाए देश लोग रीस होला। चंद्रशेखर आजाद भगत सिंह राजगुरु सुखदेव और उन मंचु संगवारी मन लाला लाजपत राय चु बदला धरतु काजी विचार करला और 17 दिसंबर 1928 ने अंग्रेज पुलिस ऑफिसर सांडर्स की गोली मारला। फिलहाल देशो सेवाकारी मंच गोट बात की सुनला सदाएं गोटो गीता से आले गीत की बोले सुनू।

तू पिलामन असन आमचो देश के बचातो काजे आमचो वीरस पुरुष भाई मन कितरो लड़ला कितरो लोग की सुरता करूं से और उनमन की 15 अगस्त 26 जनवरी काजे मंचो नाव धरूं से यार उन मंचो फोटो के पूजा पाठ करूं से असन बीस पुरुष मन के नाव धर तो रहा है पूजा पाठ कर तो रहा है और बारी आमचो देश के बचा तो असन सोच विचार करूं आम की देश सेवा कर तो रहा है।

0: पीलामन काजे गोठ में आप सुन रहे थे लाला लाजपत राय के बारे में, प्रस्तुति थी सुब्लू राम कश्यप की। ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है, रात के 8:45 होने वाले हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी कल सुबह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेंगे। तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय को कांग्रेस, आईयूएमएल, वीसीके और वामपंथी दलों का समर्थन मिला, कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में बढ़ते मादक पदार्थों के खतरे पर चिंता व्यक्त की। राज्य की नीति में मूलभूत बदलाव लाने और प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार करने को कहा। भारत और सिंगापुर आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए सूचना साझा करने में तेजी लाने पर सहमत। और चीन में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में सिमरनजीत कौर रिकर्व स्पर्धा के सेमीफाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी कल सुबह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेंगे। कोलकाता में आज उन्हें भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। श्री अधिकारी राज्य के पहले भाजपा मुख्यमंत्री बनेंगे। गृहमंत्री अमित शाह की उपस्थिति में पार्टी विधायक दल की बैठक में श्री अधिकारी को चुना गया और श्री अधिकारी को निर्विरोध विधायक दल का नेता चुना गया।
2: लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूँ।
1: श्री शाह ने कहा कि पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत ऐतिहासिक है।
2: 100 साल की वैचारिक यात्रा के बाद गंगोत्री से गंगा सागर तक हर जगह पर आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। हम सब के लिए बहुत आनंद का। 1950 से जो विचार की यात्रा को लेकर हम निकले और जिसके नेतृत्व में निकले श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व, उनकी ही जन्मभूमि में आज 2026 में श्यामा प्रसाद जी की ही पार्टी की सरकार बन रही है।
1: शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि उनकी सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदर्शों पर राज्य का विकास करेगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: संकेत मिल गया था कि भवानीपुर में पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को चुनाव में शिकस्त देने वाले शुभेंदु अधिकारी बंगाल की अगले मुख्यमंत्री की दौड़ में सबसे बड़े उम्मीदवार है। आखिरकार वही आजकल सच साबित हुए। परिषदीय दल के नेता चुने जाने के बाद शुभेंदु अधिकारी बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के साथ लेकर लोक भवन गए। उनके साथ दिलीप घोष, ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी सहित दल के कई केंद्रीय और राज्य नेता मौजूद थे। वहाँ राज्यपाल आरएन रवि के पास शुभेंदु ने सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया। संवैधानिक परंपरा के पालन करते हुए बहुमत का दावा पेश किया गया और इसके साथ ही कल ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आयोजित शपथ

0: समारोह में शामिल होने के लिए राज्यपाल को औपचारिक निमंत्रण भी दिया गया है। कड़ी सुरक्षा के बीच दिन रात एक करके वहाँ तैयारी के काम चल रहा है। आकाशवाणी के लिए कलकत्ता से अभिरूप भट्टाचार्य।
1: तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय को कांग्रेस आईयूएमएल वीसीके और वामपंथी दलों का समर्थन मिल गया है। वे कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। 51 वर्षीय जोसेफ विजय ने आज तीसरी बार राज्यपाल विश्वनाथ अर्लेकर से भेंट कर सरकार बनाने का दावा पेश किया। एक रिपोर्ट।
2: दो दिनों तक चली बैठकों के बाद तमिल वेत्री कड़गम टीवी के पार्टी को कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, विदुथलाई चिरुथिगल काची वीसीके और आईयूएमएल से समर्थन पत्र प्राप्त हो गए हैं। पार्टी ने सरकार बनाने के लिए आवश्यक 118 विधायकों का समर्थन हासिल कर लिया है, जिससे उसे स्पष्ट बहुमत मिल गया है। अभिनेता से राजनेता बने सी जोसेफ विजय अब राज्य के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। उनका शपथ ग्रहण समारोह जल्द ही चेन्नई में आयोजित होने की संभावना है। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: केरलम में नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में निर्णय राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार लगातार तीसरी बार मंगलवार को शपथ लेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। पार्टी विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। निर्वाचन आयोग ने हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनावों और उपचुनावों के लिए सूचकांक कार्ड और सांख्यिकीय रिपोर्ट ईसीआई नेट ऐप पर जारी की है। सूचकांक कार्ड में उम्मीदवारों, मतदाताओं, डाले गए वोटों, गिने गए वोटों, पार्टीवार और उम्मीदवारवार वोटों सहित विभिन्न डेटा दिए गए। इसे चुनाव नतीजों की घोषणा के 72 घंटे के रिकॉर्ड समय में उपलब्ध कराया गया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में बढ़ते मादक पदार्थों के खतरे पर चिंता व्यक्त की है। राज्य की नीति में मूलभूत बदलाव लाने और प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार करने को कहा है। न्यायालय ने कहा कि इससे होने वाली मानवीय क्षति चिंताजनक है। न्यायालय की पीठ ने हाल ही में मादक पदार्थों की लत के कारण एक महिला के पांचों बेटों को खोने की घटना का संज्ञान लिया। पीठ ने कहा कि मादक पदार्थों के खतरे से निपटने के लिए केंद्र सरकार का हस्तक्षेप आवश्यक हो गया है। मुख्य न्यायाधीश ने राज्य और केंद्र की एजेंसियों से मादक पदार्थों के खतरे को जड़ से खत्म करने को कहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA द्वारा जांच किए जा रहे 10 से 15 लंबित मामलों की सुनवाई के लिए कम से कम एक विशेष अदालत गठित की जाए। न्यायालय ने कहा कि विशेष न्यायालयों का गठन एक महीने के भीतर किया जाना चाहिए। मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए शीर्ष न्यायालय ने निर्देश दिया कि कोई अन्य मामले विशेष न्यायालय को नहीं सौंपे जाएंगे और सुनवाई प्रतिदिन के आधार पर की जाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि देश का सशक्तिकरण और सुरक्षा केवल सीमाओं की रक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज, पर्यावरण और नागरिकों की सुरक्षा से भी जुड़ी है। नई दिल्ली में तिरंगा पर्वतीय बचाव दल के 10 वर्ष होने पर एक कार्यक्रम में रक्षा मंत्री ने दल के कार्यों और उपलब्धियों का उल्लेख किया।
2: तिरंगा माउंटेन रेस्क्यू के लोग वो हैं जिनकी उपस्थिति हमारी सेनाओं को संबल प्रदान करती है। आपने सैनिकों के मनोबल को बढ़ाया है। आपने हिमालयी क्षेत्र में रहने वाले समुदायों को यह एहसास कराया है कि वे अकेले नहीं हैं। TMR जैसे संस्थानों का कार्य केवल रेस्क्यू तक सीमित नहीं है। आप इनडायरेक्टली बॉर्डर स्टेबिलिटी, कम्युनिटी कॉन्फिडेंस और नेशनल रेजिलियंस को भी मजबूत कर रहे हैं।
1: रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO तथा वायुसेना ने ओडिशा तट पर सामरिक उन्नत रेंज संवर्धन तारा हथियार का पहला सफल परीक्षण किया है। यह अत्याधुनिक कम लागत वाली प्रणालियों का उपयोग करने वाला पहला ग्लाइड हथियार है। एक रिपोर्ट।
3: यह भारत की पहली स्वदेशी ग्लाइड हथियार प्रणाली है जो किसी भी सामान्य हथियार को घातक और सही दिशा में सटीक मार करने वाले हथियार में बदलने में सक्षम है। ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर इस एडवांस रेंज वेपन सिस्टम तारा का सफल परीक्षण किया गया। हैदराबाद स्थित DRDO की रिसर्च सेंटर इमारत ने DRDO के अन्य प्रयोगशालाओं के साथ मिलकर इसे डिजाइन और विकसित किया है। तारा प्रणाली में अत्याधुनिक लेकिन कम लागत वाली तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है। भारत की यह उपलब्धि स्वदेशी रक्षा निर्माण क्षमता और अत्याधुनिक सैन्य तकनीक विकसित करने की दिशा में बढ़ती ताकत को दर्शाती है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि को भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण पड़ाव बताया। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में भूमि संसाधन विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तीसरे चरण की समीक्षा करते हुए श्री चौहान ने कहा कि आधुनिकीकरण के प्रयासों से भूमि संबंधी सेवाओं को पारदर्शी, कुशल और परेशानी मुक्त बनाया जाएगा। इससे नागरिकों और राजस्व अधिकारियों की सुविधा सुनिश्चित की जाएगी। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने बताया है कि पिछले वर्ष अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया विमान हादसे की अंतिम जांच रिपोर्ट एक महीने में जारी होने की संभावना है। गुजरात में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो पूरी तरह से पारदर्शी तरीके से जांच कर रहा है।
4: एक साल पूरा होने वाला है और वो इन्वेस्टिगेशन अभी बहुत ही सक्षम से चालू है। जब भी ये इन्वेस्टिगेशन होता है और खास करके इंटरनेशनल वाला फ्लाइट है, इसको कोई भी क्वेश्चन कर सकता है। जो रिपोर्ट आता है इट विल बी अप फॉर स्क्रूटनी, कोई भी देश कर सकता है, कोई भी इंस्टीट्यूशन देश का कर सकता है। तो हमें बहुत ही सीरियसनेस के साथ, फेयरनेस के साथ, ट्रांसपेरेंट नेचर के साथ हमें इन्वेस्टिगेशन करना है।
1: सरकार ने कहा है कि देश भर में घरेलू LPG की सुचारू आपूर्ति जारी है और किसी भी वितरक पर आपूर्ति में कमी की कोई रिपोर्ट नहीं है। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि घरेलू उपभोक्ताओं को गैस की कमी का सामना न करना पड़े और कीमतें स्थिर बनी रहें।
5: पिछले दो दिन में भी तो हमने लगभग 97 लाख घरों को LPG सिलेंडर पहुंचाए और इसके अगेंस्ट जो बुकिंग थी लगभग 87,66,000 थी। जो हमारी कमर्शियल सप्लाई है अभी भी वो 70% पर है, लेकिन पिछले दो दिन में 15,400 टन से अधिक कमर्शियल LPG की सेल हुई है। पिछले दो दिन में 1,11,000 से अधिक 5 किलो के सिलेंडर्स की सेल हुई।
1: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कल संयुक्त अरब अमीरात का आधिकारिक दौरा किया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। भारत और सिंगापुर ने रणनीतिक साझेदार के रूप में आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए द्विपक्षीय सहयोग के महत्व पर बल दिया। आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय अपराध से निपटने के लिए गठित संयुक्त कार्य समूह की पांचवी बैठक कल नई दिल्ली में संपन्न हुई। संयुक्त कार्य समूह ने सीमा पार आतंकवाद सहित आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा करते हुए उसे कतई बर्दाश्त न करने की नीति दोहराई। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और ट्रिनिडाड टोबैगो के संबंध इतिहास, मानवीय संपर्क और साझा आकांक्षाओं का अनूठा संगम है। ट्रिनिडाड टोबैगो के अखबार में एक लेख में विदेश मंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और पिछले पांच वर्षों में यह लगभग दोगुना होकर अब $35 करोड़ तक पहुंच गया है। सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को आयोजित इस पर्व में शामिल होंगे। एक रिपोर्ट।
6: वर्षा इस आयोजन के प्रमुख आकर्षण रहेंगे। आध्यात्मिक अनुष्ठानों के पश्चात प्रधानमंत्री प्रभास पाटन के सद्भावना मैदान में एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। बार बार हुए विनाशकारी हमलों के बावजूद सोमनाथ मंदिर आज भी स्वाभिमान और साहस के प्रतीक के रूप में अडिग खड़ा है। गौरतलब है कि 75 वर्ष पहले 11 मई को ही भारत के पहले राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने इस पुनर्निर्मित मंदिर का उद्घाटन किया था। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: गृह मंत्री अमित शाह रविवार को बाढ़ और लू से निपटने की तैयारियों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता नई दिल्ली में करेंगे। बैठक में बाढ़ के पूर्वानुमान और प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसके साथ आपदाओं, विशेष रूप से बाढ़ और लू की चुनौतियों से निपटने की तैयारियों पर भी चर्चा होगी। राष्ट्रीय महिला आयोग ने जघन्य दुष्कर्म के मामलों में त्वरित सुनवाई, कड़ी निगरानी और पैरोल पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। आयोग ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ जघन्य अपराधों में शामिल दोषियों के लिए वर्तमान पैरोल व्यवस्था पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकार ने कहा कि आयोग शीघ्र ही केंद्र सरकार को सिफारिशें सौंपेगा। इनमें दुष्कर्म, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अन्य गंभीर अपराधों के मामले में दोषी व्यक्तियों के लिए पैरोल पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग की जाएगी। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं।

कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक दिल्ली कैपिटल्स ने 18 ओवर में 5 विकेट पर 126 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी कल सुबह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेंगे। तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय को कांग्रेस, वीसीके, आईयूएमएल और वामपंथी दलों का समर्थन मिला, कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में बढ़ते मादक पदार्थों के खतरे पर चिंता व्यक्त की। राज्य की नीति में मूलभूत बदलाव लाने और प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार करने को कहा। भारत और सिंगापुर आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए सूचना साझा करने में तेजी पर सहमत। और चीन में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में सिमरनजीत कौर रिकर्व स्पर्धा के सेमीफाइनल में। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: and shared aspirations. He stressed that in this increasingly turbulent and unpredictable world, these ties must use their deep complementarities to evolve into a pillar of strength and stability for both countries. He said this in an op-ed in the Trinidad and Tobago Daily Express newspaper. Raksha Mantri Rajnath Singh has said the national security goes beyond border protection and includes the safety of society, environment and citizens. Addressing an event marking 10 years of Tiranga Mountain Rescue with the Indian Army in New Delhi, he said a strong India ensures secure borders, confident communities and protecting of lives during disasters. He added that Tiranga Mountain Rescue has become a key support system for the armed forces and local communities in the Himalayas. Health Ministry has activated precautionary surveillance measures amid low global risk assessment of the hantavirus cases. Sources said the Health Ministry is closely monitoring the evolving situation relating to reported cases of hantavirus infection on board the cruise ship MV Hondius. This is being done in coordination with the National Center for Disease Control, Integrated Disease Surveillance Program, World Health Organization and other international health authorities. Sources stated that as per preliminary information shared through the WHO under the International Health Regulation Framework, a total of 8 probable cases of hantavirus infection have been reported on board the vessel, of which 5 cases have been laboratory confirmed. 3 deaths have also been reported. WHO was notified of the incident in the first week of this month. In view of the evolving situation, the Public Health Emergency Operations Center under NCDC convened a high-level review meeting involving senior officials to assess the situation and review preparedness measures. Government has said domestic LPG supply across the country is smooth and no dryout have been reported at any distributorship. Addressing an interministerial briefing in New Delhi, Secretary in the Ministry of Petroleum and Natural Gas Sujata Sharma said that government's effort has been to ensure that domestic consumers do not face any shortage of gas and that prices remain stable amid the evolving situation in West Asia. Director of the Ministry of Port, Shipping and Waterways, Opesh Kumar Sharma, said that the government continues to engage with every stakeholder to ensure the welfare of all Indian seafarers and uninterrupted maritime operations.
1: All Indian seafarers in the region are safe and there is no incident involving Indian flag vessel reported in the past 48 hours. The ministry, through the Directorate General of Shipping, has facilitated the safe repatriation of more than 3,019 Indian seafarers so far, including 20 in the last 48 hours from various locations across the Gulf region. Port operations across India remain normal and no congestion has been reported.
0: Spokesperson of the Ministry of External Affairs, Randhir Jaiswal, said that the government continues its outreach to countries in the Gulf. He informed that as part of that, Foreign Secretary Vikram Misri paid an official visit to UAE yesterday. The Defence Research and Development Organisation, DRDO, and the Indian Air Force, IAF, have successfully conducted the maiden flight trial of the Tactical Advanced Range Augmentation Tara weapon off the coast of Odisha yesterday. Raksha Mantri Rajnath Singh has congratulated DRDO, IAF, DCPP and the industry for the maiden-flight trial. He described it as a significant development in advancing India's indigenous defence capabilities. Tara is India's first indigenous glide weapon system that converts unguided warheads into precision-guided weapons. India's Simranjeet Kaur advanced to the semi-final of the women's recurve individual event at the Archery World Cup Stage 2 in Shanghai today. Simranjeet defeated her Chinese Taipei counterpart Fong Yu Zhu 6-0 in straight sets in the quarterfinal to move within one win of her maiden World Cup medal. Simranjeet will now face world number one Kang She-young of South Korea in the semifinals. Indian women's recurve team has already assured the country's first medal in the tournament with a stunning win over record 10-time Olympic champion South Korea in the semifinal yesterday. In football, India scripted history by qualifying for the quarterfinals of the AFC Under-17 Women's Asia Cup for the first time with a commanding 4-0 victory against Lebanon in the final Group B fixture at Suzhou in China today. For India, Preetika Burman in the 7th and 85th, Alva Devi Senjam in 36th and Joya in 72nd minute scored goals. Reaching the semi-final of this tournament would guarantee India's spot in the 2026 FIFA Under-17 Women's World Cup. And in IPL cricket, Delhi Capitals have set a target of 143 runs for Kolkata Knight Riders at Arun Jaitley Stadium in Delhi. put into bat, Delhi Capitals scored 142 runs, losing 8 wickets in the stipulated 20 overs. Earlier, Kolkata Knight Riders won the toss and opted to bowl. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Suvendu Adhikari to be the first BJP Chief Minister of West Bengal, swearing in tomorrow morning at Kolkata's Brigade Parade Ground. TVK Chief C. Joseph Vijay gets support from Congress, VCK, IUML and left parties to take oath as Tamil Nadu Chief Minister tomorrow. Supreme Court expresses concern over rising drug menace in Punjab, calls for fundamental shift in state's policy and nab major traffickers. India and Singapore agree to enhance information sharing in countering terrorism. And in archery, Simranjeet Kaur advances to semi-final of the women's recurve event at World Cup Stage 2 in Shanghai. For details of this story and more, log on to our website, newsonair.gov.in and News on AIR app. And that's all in the news at 9. Good night.
2: मीडियम वेव 396.82 मीटर यानी 756 किलोहर्ट्ज, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। आप हमें न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी सुन सकते हैं। इस वक्त रात्रि के 9:15 हुए हैं। नंजर में लीजिए सुनिए बोहरानी परंपरा पर श्री मंदराम नाग से ली गई भेंट वार्ता। भेंट करता है बलबीर सिंह कच्छ।
3: करी भाई बहन मन देखा आमचो बस्तर ने कितले रीति रुसुम मन आसे और ये सपाय आमचो जीवना संगे जुड़ली से कई तियार बाहर बोला से कई नीति रीति बोले आसे जेके साल भर आमचो बोले ने गांव कारी भाई बहन मन बनाए सोत आर हरी कुदिम ने रह से तो असनी गोटक रुसुम आए बोहरानी चो परंपरा। ये बोहरानी परंपरा कसन बीती आए यही परंपरा के जानतु काजे मैं गोट बात करने से श्री मंधर राम नाग संगे। तो मंधर राम नाग सबले पहले तो जुआर।
4: हाँ जय जुआर बाबू जय जुआर।
3: हाँ
4: मैं गांव कुरुस पाल चो आए।
3: हाँ
4: मैं आगे गुरुजी बल रले।
3: अच्छा
4: और मैं पढ़ाई बोले समाज शास्त्र में एम ए बल कर ले।
3: अच्छा हाँ हाँ
4: ये समाज ले एक जुड़ लो बीती एक बोहरानी आए।
3: हाँ
4: गांव चो गोलिया मन चो एक बोहरानी आए। बोहरानी जो है हम चो पुरखती ले हम चो परंपरा ले जुड़ ली से हम चो मूल संस्कृति ले जुड़ ली से।
3: हाँ
4: ये बोहरानी बना तो बीती जो है हम जो नियम वाला से गांव गोली चो हर गांव ने बना हुआ तो ये जो है भादम जोन बोल लेने नोआ खा तो पहले।
3: हाँ
4: ये वोट बना तो रूस वहां से बोहरानी।
3: हाँ
4: तो गांव जो सियान सजन मन जो है जूत राय बटक करत राय गुड़ी ने और भादम जोन ने काय करता है बोल ले सारी बड़ी पाड़ता है। सारी बड़ी पाड़न बाती आम के तय करता है एक दिन के तो दिन जो है मंगलवार दिन ना आले गांव सुबह ताई जब ना शनिवार दिन है ये दो दिन है बोरान जिसका तो त्योहार सनाए बोले एक बना तो रुसुम होली से।
3: अच्छा।
4: ये जो काज काय करता है आम जो घर घर ने जूटा बाड़न जो साल भर ने पड़ा रुआ और टाकरा टुकना जुटा बीती दावा गाय बैला चो दावा कचरा पकालो सज डोरी गेटा डोरी असन बीती उनचो गाय बैला बांध हुआ तुन डोरी तो संगे संगे लाल करिया रंग जो झंडी बनात रहा है और मोंदे छाली चो डोली बनान होम किटका नड़ेल केरा कदली लाली गुर घीव करिया बरहा पीला कुकड़ी चिया चौकी चित्री करिया जोंदरी सात मणि बरन माली और कुकड़ी गार जेके नीमी बल बोला है कुलो गार गर्भनी गार और मानसल का और ये तो संगे संगे उन तर्पणी मोडोंगा तर्पण लाल मोडोंगा बनान वाती जो है आमी गांव चो जीतल बोले कतवाल पटेल पुजारी और गांव जो प्रमुख लोग आमचो माता गुड़ी ने ये कि बनात राय और शनिवार नाल मंगलवार दिन पनाह सांगले समय उन हिसाब में और एक संग संग मौसम माटी बल बनात राय फूल बल बनात राय ये सब जमक बनान बाती आमचो गांव चो बेर पड़ती वाटे बेर पड़ती वाटे हम जो माता गुड़ी बनान बाती है कि मुंडे बेरा उन बात है कि जोड़ा तोड़ा बनान कुकड़ी चिमड़ी सबके धरुन बाती ये उन बाटे सन के जो है नकामेतरा और हम जो गांव निकोटो तीन गांव जो देवा से उनके लगड़ा गुड़ी बनाए हुए थे उन लगड़ा गुड़ी चो सिरा चो उन गुड़ी ने उन बाती है कि ये मन के पूजा काट लोग बोल उनके बनान बाती आउन बात है कि उल्टा पाँ एक बात उल्टुन दफ्तर नो आए आप लोग गांव पारन फिर वो उल्टा पाँ ये तरह उल्टुन दफ्तर नो आए ये गोटक बोरानी बना तो प्रथा जो है ये हम चु गांव गोली में बोली थी
3: तो ये जो न परंपरा है बोले ने ये काय काजे बनातोर वैसे कसन सम्या ने
4: हाँ अच्छा ये परंपरा जो है हम चो गांव गोली जो है ये पीढ़ी दर पीढ़ी पुरखा पार्टी बेराले बाबू ये चलती ली से तो ये के काय काज बल्ले बनात रहा है कि साल भर चो गोटो के त्योहार शुरू पाई ये बोरानी ये त्योहार ये के काय काज बनात रहा है बल्ले ने गांव चो जीतलो बोले गाय बैलान जो खुरा चपका लगे से छेरी मेंढी की खुरा चपका लगे से पीला जिला के जुड़ दाबक जर मुंड और कई प्रकार की उल्टी खोखली जो बीमारी सीमारी बन जो है ऐसे नहीं नवा खाउन मल बीमार सीमार पड़ुआ ये चले बात तो काजे ये के जो है बोरानी जो है निकरा तो विद्यागत ले होली से बोरानी बन लेन का है कि आम से जितलो बोले गांव जो बीमारी सीमारी जो रोग दाबक जो आसे उनके बोरान रहती थी ये को प्रताप होली से बोर आत्मित बोरानी तो ये चुप कर लेन का है कि हम जो जितल बोले हम जो सांगले उन जुड़ दावों का है पीला जिला के ये बीमार सीमार पड़तो और खांसी खोखली आए ये सब की गुजात बीती ये निहोली से
3: बोले ने गोटो खिसाब ने दख लेने का है कि स्वच्छता चो प्रतीक है कसन बोले ने जितलो बोले गांव ने
4: हाँ,
3: खराब चीज रहे से बोलू बे उनके ओंडा करुन बाती आम उनके बोह राखने उसे दूसरे बांटने
4: हाँ, ये बोलू बे आमी ये बोरानी जो माध्यम ने
3: हाँ,
4: जो स्वच्छता
3: हाँ,
4: माने ये बारन का जे आम के स्वच्छता चो प्रतीक है बड़ाऊ से और ये टाकरा टुकड़ा बोला हम उनको ओंडियाओं से
3: ओंडियाओं से
4: जितले बोले आए जो गांव ने ये आमी काय बुलवा तो उनके ये गंगा चीज ने लाटा बूटा चिकल ये काय काय उनको ओंडिया मत की नहीं हम साफ सफाई कर लेने और एक पकान दिले कि ना चला गए इसका सर तो उसमें जो है ये स्वच्छता जो बोले प्रतीक है बोरानी मैंने बोर आत रहा है जैसे पानी नाम बोर आंदे होते नहीं नदी नाला ने वो आते नहीं ऐसे उतनी देवता में एक वो आते नहीं से फिर उन जाले हम बोर आने उन संद निष्कान दे उनसे उन पर उन पाटने हुआ है उसने नेते नेते उन आगे तक जहां तक पीढ़ी आगे बने जुग चो जो बनली से जहां ले हम उन एक गांव ले उन गांव उन गांव ले उन गांव ये रोग राय के नेते भी थी एक स्वच्छता का प्रतीक है ये कि हम बढ़ाते जाते हैं आगे
3: बल्ले ने दक ये स्वच्छता प्रतीक ऐसा ना है जैसे कि आमी गांव पूरा साफ सफाई होली सब लोग साफ सफाई होली बल्ले ने गे तुरते फैलावा तैयार है ऐसे उन हिसाब ने बल्ले ने जोड़ से साफ सफाई हिसाब ने है कि नहीं
4: उतलन फिर आमी ये सब करूँ बात पर नवा खाता भी तो है गोट तो नोआ दुख के पकान बाती माने दुख के पकान सुख ने नोआ
3: खावा
4: अच्छा विचार आई आई नहीं तो देव धामिक बोले तो पूजा पाठ करूँ ये फिर नोआ खानी बलाम पूजा पाठ करते रहे ये गांव ने अमी देव धामी का मनान बाती तो हम की कहा जो दुख डंडो बाबू नहीं होए नहीं होए
3: बोले
4: तो असन जो है हम देव धामी हम के जुग ले हम के सहारा होते है तो हम का जामी ये मन के अमी नी पूछू पूछते रहा है बिल्कुल एक बनात रहा है मैं गांव या भाई बहन मन पर सागे से एक ही के भी नहीं बोल पोत गांव ने पुजारी कागज बना ला ये सब चीज मन बना
3: हाँ, हाँ।
4: ये सब पुजारी बनान मुखिया बनान
3: हाँ।
4: ये देवी देवता के मान सम्मान ने
3: हाँ।
4: उन विदा कर रहे नाम कागज डांट दे डाटा
3: हाँ।
4: बहरी नहीं हुए
3: बोले न आगे चो जो पुरका पार्टी चो सियान मन बोले साफ सफाई चो जो उनचो महत्व आए ये चो काय दास ये सफाई के जानून बाती ये जो रुसुम आए जो रीति आए की मुर करला होती असन लागे
4: हाँ सियान मन जो है ये के विचार करला गांव चो और कसन ने आमी ये दुगन आगे तो आम च लगे सूजी गोली दो आयदार इस बल्का ही नहीं रहे
3: हाँ।
4: आम लग सिरा गुनिया रो देव धामी रहे और तो आम यही एक माध्यम रहे आम जे लगे
3: हाँ।
4: कि तो बोले आम लग जर आए मुंड आए खुश खोखली आए जूड़ आए दावक आए जसन बोले आए
3: हाँ।
4: तो पहले जो है आमी काय करूं गांव में जाऊं बाती घुड़ी में जाऊं पुजारी धरूं आप लोग घर गुड़ी बला से घर गुड़ी मल जाऊं बस पूजा अर्चना करूं सेवा जुआर करूं ये कर लेन सब होते रहे बाबू आगे चो तो ये होते रहे तो आमी धीरे धीरे क्या भूल कुन जातर हूँ एक चो जो पीढ़ी आसो एक चो पीढ़ी तो बिल्कुल भूलकला माए बाप के सक लुक नहीं सक देव के कहाँ सक उसन करतर न आए तो एक भूलक लेने आमी भूलक लेने जो पीला जिला मन बोले एक चो जो पीढ़ी आसे मन भूल कुन जा दे ये आगे पुरखती जो त्योहार है बाहर आए ये सब लुप्त तो हो दे
3: हाँ।
4: हाथ से जाए दे एक जगह तो काजी का आया है आम की पीलावन बोले सिखात रहा है घर जो तीज त्योहार के बोले बना तो रहा है जतन की अमूस आए नवा खानी आए बोरानी आए और कई प्रकार जो गांव जो त्योहार आते है ये के आम के भी भूलक सर न आए और एक जो है हम जो पुरखती जो चीज आए उनके हम के दखात रहे देखे हम बनात रहे और सिखात रहे अब चोले का लेकिन जिला जिला बन के
3: तो द गोड़ बात ले हम ये जान सकूं कि आगे बोले का है कि जो सियान सजन मन रला बोलू गांव चो बोले घर द्वार सब साफ सफाई रहे का है कि बीमारी समारी बोले ए उकलाए नहीं सके आए कि नहीं ऊंची प्रति के बहरानी के बोले हम मान उकला सकू आए कि नहीं गांव ने अच्छा साफ सुथरा रहो सब देव धामी गुड़ी जोन बलिया है उन साफ सुथरा रोन बाती बोले ने उस माय नीति आए उनके हमें बनाओ ते भी आमचो जोन गांव पारा आरु आमचो देह पाए बोले
4: नंगत रहे दे
3: आए कि नहीं
4: मैं आगे बस सांगे से आमचो फिर मैं गांव कार्या दादा दीदी मन के हाथ जोड़न प्रार्थना करें से ये बोरानी त्योहार जो है यही मौका है ये भादम महीना ने बनात बीती आई ये के भादम महीना ने बिल्कुल बनात रहा है और ये जो देवदामी के जो नाराजी ओला से मन की मनात रहा है पूजात रहा है हम के काई नहीं हुए और ये गोटो कोरोना संकट ने जो हम चो जो ये भी जो बात तो बीती गोटोली से काय काय के पालन करत रहा है काय काय के हम जो ध्यान देत रहा है ये सब चीज की बोले हम के धरुण बाती ये बोले हम जो गांव चो साफ सफाई और जागरूक बीती ये हम जो गोट बोले ये आए मैं इतली बोलन बाती सब बस्तर जिला चाम छत्तीसगढ़ चो जितलो बोला हम चो भाई बंधु बहन मनासो बड़े ब्राह्मण चो आया बाबा जितलो आसो सबके मैं करें से जय जुवार सेवा जुवार
3: हाँ बोलन का है कि कहीं ची बोले बोले बीमारी से मारी हो ये चो घुचा तो का जे सबले पहल पूरी ऐसे बोले ने साफ सफाई ये भी बोले बोल सोत की मतलब का है कि हम साफ सफाई के खूबी ध्यान दिया स्वच्छता के खूबी ध्यान दिया तो उसने आम चो ये बोहरानी चो परंपरा तो आले मंदर रामनाथ तुम्हें इतलो अच्छा बोले ने बोहरानी चो परंपरा के सांगलास सफाई सुनला होती सब जानून बाती मान दे समझ दे आले खूबे खूबे जुआर
4: जय जुआर सेवा जुआर
2: नंजर में आप सुन रहे थे बोहरानी परंपरा पर श्री मंदर राम नाग से बलबीर सिंह कच्छ की बातचीत आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है
5: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता
6: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स ग्रेड सीमेंट 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
3: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
4: आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। रात के 9:30 हुए हैं। खेल पत्रिका में आइए सुनते हैं नैना सिंह धाकर से पूर्णिमा सरोज की बातचीत।
5: सफाई लोग के मैं मैनामती करें से जुहार। खेल पत्रिका ने तुमन मन सफाई लोग चो स्वागत आसे और आज ही चो दिने हम चो युवा पीढ़ी खेल ने खूबे आगे बढ़ते जाए से। जितरो आगे बढ़ते जाए से बलो ने हुनमन देश विदेश ने बले हुनमन नाम कमाए सो। तो देखा भाई बहन मन, इतरो अच्छा जोन खेल कूद हम जो देश ने बले आगे बढ़ते जाए से और सफाए गांव गावली जो लोग मन बले था भाग धरे सो। तो असनी हम जो बस्तर जो बले जो नाव है हुन देश ने और विदेश ने बले होली से और असनी खेल का जे हम जो लगे बस्तर जो बेटी नैना धाकड़ नाम बल्लो खन हमके असन लगे से कि हम खूबे गर्व महसूस करूँ से कि हुन आप लो शक्ति आप लो साहस ले पूरा जोन एवरेस्ट मन के हुन जीत हासिल कर ली से। तो असन शख्सियत के हमें यथा खूबे खूबे स्वागत करूँ से। आज ही आमचो लगे गोड बात कर तो काजे आमचो महिला शक्ति आमचो बस्तर चो बेटी छत्तीसगढ़ चो शान भारत चो शान बले हमें बलुक सकूँ हुन आमचो संगे आसे। तो खूबे खूबे स्वागत है नैना जी तुम जो ये खेल पत्रिका कार्यक्रम ने।
6: सपाई के जोहार और धन्यवाद।
5: तो जैसन तुम जो नाव धरते कन खूबे साहस असन महसूस होए से ताकत इली असन लागे से। तो तुमन इतरो सुंदर काम मन के केवले मूर करला
6: 2010 ले स्टार्ट होली से और 2010 ले एब तक कंटिन्यू आसे।
5: अच्छा
6: लगातार यही फील्ड ने करे से।
5: जैसन की तुमके ये सब जैसन ये साहस जो काम के तो आमी आज ही देखूं से मानतर ये जो मूर कसन तुम कि मूर करुक चाहला कि कसन ये जो शुरुआत होली कि कोनी सांगला कि कहाँ ले ये जान पड़ ली कि कहे जे कि तुमन मन तो एकदम टाकरा गुड़ा नाव चो गाँव आया हम चो बस्तर चो होता चो आस और हुन थाने कहीं सुविधा बोले नहीं आए कि कोनी सांग दे कि नहीं सांग दे। तो असन स्थिति ने तुमन कसन करुक मुरियाला।
6: मैं स्कूल टाइम ले असन रहे कि खेल बीती काम ने मोचो मन खूब रुझाऊ रहे। हुन खेल तो काज में असन रहे बही असन खेल तो काज में असन होले कि मैं नेशनल चैंपियन रह ले हुन जूडो कराटे ने और साथ में मोचो पढ़तो भी थी कामबल आसे चेवे। असन होली कि मैं देखते रहे कि मैं सातवीं पढ़ते रहे और आजू बाजू चो लोग बाग मन असन बलत मुझे आया के कि तुझो बेटी काय करे से हुन बाट काय करे से हुन बाहर जाए से काय खेले से बिन बाप चो ले की आए काई हो ले कसन होए दे असन बलू ने। तो मैं असन बल ले कि ये सब कसन सोच विचारा से हम चो गाँव ने। तो ये चो काज मैं अपन माँ ले बल्ले कि कसन आया असन नी होए मुझे साथ दे मैं तो करें दे देश काज करें दे मैं असन बल्ले मुझे आया बल्ले से नहीं नहीं नहीं सब लोग बोल रहे हैं कैसे करेगी क्या करेगी असन बल्ले। तो मैं बल्ले कि नहीं नहीं माँ आप सपोर्ट तो करो मैं तो करूँगी असन बलून मैं ये काम के धर ले मुझे विचार रहे कि हुन आसपास जो लेकी मन के दख ले सातवीं आठवीं पढ़तो मतलब हुन मन काज खूब पढ़तो हुए से जसन की डिग्री धरून भाती
5: बल्ले ने सातवीं आठवीं पढ़ ला बल्ले खूबे
6: होली असन ने। तो मैं असन बल्ले की नहीं नहीं नहीं एमन काज कुछ तो करतो रहे उन नानी नानी लेकी मन जो बिहा हो ते दखते मतलब मन एकदम टूटन जाए से नहीं उन 13-14 चो लेकी उन एक बच्चा चो माए हो से असन दख ले मैं की ये कंडीशन का आया है ये सब आचार विचार का आया है। तो उनके मुचो मन ले मैं साथ ही पढ़ते रहे मन विचार है कि

0: काय कर ले मैं असन करें दे कि ए मन चो विचार के दूर करुण भाती
1: है।
0: कुछ अच्छा दें दे। तो मैं ए वाट उन बाट नहीं दखे, मोचू काम ने मैं दखे और मैं असन बल्ले मुझ आया ले कि माँ आप मेरे को सपोर्ट करो, है ना, मेरे को सिर्फ पढ़ना है और पढ़ने के साथ खेलना है, खेल के साथ मैं ऐसा करना चाहती हूँ कि समाज की चार बेटियां ने उन आगे बढ़े दे बलून भाती, मैं असन विचार कर ले। तो मुचाया काय बल्ले से, हाँ ठीक है तू करके देख, साथ में देते हैं साथ, क्या करेगी। तो मैं सत बल्ले से कि साथ ही पढ़ते रहे और घर ले एक रुपया नहीं धर ले। और मुझे मन ले विचार आए से कि अब मैं कैसी भी कंडीशन में पढ़े दे और हुन पढ़ते पढ़ते मैं एक खेल विधि काम करें दे। अब करुण करुण असन होली मुझे मन ने कि बाकी लेकी मन के दख ले कि नहीं नहीं एमन तो स्कूल नहीं हुए, एमन जो पहले से ब्याह हुए से उम्र नहीं होली से, तो ये विचार मुझे मन ने खेद कर ली। बेटीच मन का चिकाय असन हुए से कि आगे बढ़ुक नहीं दिया। तो मैं सियान सदन के पूछ ले पचार ले उनका आए बड़े विता मन काय बोले तू जो दिमाग ज्यादा चले से तू बल तो लेके आस। तो ये विचार मुके मन ले ठेस पहुंचा ली। उन मन के मैं कहीं जवाब नहीं दे और मुझे मन ले मैं ये ठान ले कि असन मैं करें दे कि बस्तर काज कि बस्तर चो लेकी मन काज कि आज बस्तर चो जो भी समाज युवा पीढ़ी आसे हुन असन काम करे कि हमर क्षेत्र चो नाम बल होए, हम जो राज्य बल नाम होए और हमारे देश चो बल नाम होए। ये चुका मैं असन धर ले कि बस मौके असन कर तो रहा है कि मैं भिड़न गेले काई ना काई होए दे। और हुन बल नी बल की काय कहते ईश्वर जो आसे हम जो साथ असन होली कि मैं बस मेहनत कर ले,
1: बस परिणाम होनी
0: सो हाँ होनी, मैं फल के नी चिंता करे मैं बस मेहनत कर ले। एबे नी बल तो मोचो हुन काम ने मैं इतलो आगे बढ़ ले कि मन असन बले कि ठीक है एक गेम के छाण ले, दुई गेम के छाण ले, तीन गेम के छाण ले, असन छाड़ून छाड़ून में रहे। लेकिन मुझे मन लिए विचार रहे कि मैं कुछ ऐसा करूंगी कि हमारे राज्य की जो बच्चियां हैं वो आगे जाएगी बस। तो हुन देश राज तो पाछे रहे सोच विचार, लेकिन क्षेत्र जो हम आजू बाजू जो लोग रहे उन लेकिन मन काज में सोचून सोचून असन रहे कि ये मन के कहीं ना कहीं मिल तो रहे। और हुनी विचार ले मैं कर ले अपन काम के, आज नहीं बल ले मैं जो भी आए जसन भी आए मुके नहीं पता, लेकिन मोचो आज जो सफलता है वो उन लेकी मन काज खुशी है कि आज वो लेकी मन कॉलेज जाए सोसा और अपने काज नी बल्ले अपन मन पसंद जो कपड़ा पहन सत, नी बल्ले अपन मन पसंद काज पढ़त, नौकरी जॉब जो है सब सफाई करत। तो उनके देखो मुके ये भी आसन लागे से कि हाँ काई तुम्हें कर ले।
1: देख आज बोलो ने आज ही जो दिन ने नैना धाकड़ बोलो ने गोटक माउंटेन गर्ल ने मंतर मैं बोले से कि ये नैना धाकड़ माउंटेन गर्ल इतरो ऊपरे ऊंचाई के छूला और फिर हुंचो पाछे फिर हमचो जो बस्तर का जे इतरो बोले बोलो ने उदाहरण प्रस्तुत कर ला सत। तो नैना के मैं ये पूछू चाहे से कि माउंटेन गर्ल बन तो काजे जो मूर ले कसन मूर होली बोल।
0: ये मैं एबे सांगले कि मैं खूब सारा गेम खेले खेल ले
1: जैसन
0: अलग रहे मैं काय खेले हॉकी स्टार्टिंग इथा ले जाए घर ले हुन सूट बूट डाल ने दुई ठन चोटी, लेकिन हुन ग्राउंड ने तो सूट कहाँ चले दे दौड़ तो कास तो हुन शॉर्ट ने चड्डा चड्डा टी शर्ट तो हुन चड्डा टी शर्ट लोग मन के आंखी में तरस खाए। हुन आए मुझे आया के सांगे कि तुम्हारी बेटी तो उठा असन पिंदुन असन करे से लेका मन संग खेले से। तो असन करते करते मुझे मन लिए हुए कि क्या करूं ऐसा कि मेरे को कुछ अलग करना मिले। हो नहीं हो मैं 2010 ने पढ़ते पढ़ते कॉलेज ने कॉलेज एवं रहे फर्स्ट ईयर रहे और मैं जाऊं हूँ टाटा स्टील था रहे उठा मैं बल्ले कि नहीं मेरे को कुछ पार्ट टाइम जॉब दे दो ताकि मैं थोड़ा अपना पढ़ाई का भी खर्चा उठा लूँ और घर की परिस्थिति की स्थिति ऐसी अच्छी नहीं है कि मैं उसको वो कर सकूं। तो उठा मैं जाऊं रहे तो हुन मन मौके नहीं बल्ले रहे उठा जो डायरेक्टर रहे और काय बल्ले रॉकी मॉर्टिन सर है ने उन पटेल सर है शंकर पटेल सर है स्पोर्ट कोटा
1: चो नाम मन के सोचता कर ला।
0: हां ये भी मुझे ये भी काय नहीं खूब खूब दिन होली तो मुझे दिमाग लेवल थोड़े ऊपर नीचे होए से, लेकिन पर हुन मन असन बल्ला कि देख बेटा अभी तुम पढ़ रहे हो और पढ़ते पढ़ते नौकरी करोगे तो थोड़ा सा अलग हो जाएगा, ठीक है हम सोचते हैं। तो हुन मन मौके दखा एक दिन दुई दिन तीन महीना चार महीना असन करत करत दखला और दखुन भाती फिर असन होली कि नहीं लड़की में कुछ तो है कुछ तो है मेहनत करने का झिझक। अब मैं बल जाऊं जाऊं इंटरव्यू ले लेते तो मेरा नौकरी लगा देते सर, कुछ तो कमा लेती मैं दिमाग ने असन, ताकि घर चो काम बल होती मोचो बल होती और हूँ काम चो काम होती तो असन मोचो बुद्धि रहे। लेकिन काय होली कि हूँ एक डेढ़ महीना बाद एक ठन फोन इला मुके और असन बल तो काज की एक ठन बात करे से बोल हूँ डायरेक्टर सर। तो मैं बोल दे हाँ जी सर बोलिए। तो हुन बले से कि नहीं एक ठन काम है, अगर आपको एक महीना घर से अलग जाना दूर रहना होगा तो आप कर लोगे घर पे मान जाएंगे। मैं बोले सर काम अगर अच्छा है बुरा है उससे मेरे को मतलब नहीं है, काम ऐसा रहे कि मेरा इज्जत रह जाए मेरा ईमान रह जाए। तो हुन बले से नहीं नहीं बहुत अच्छा काम है अगर आप बोलोगे तो हम बात करेंगे। तो हुन कॉल एव रहे हुन टाटा स्टील जमशेदपुर चो।
1: अच्छा।
0: हुन हम चो भारत चो पहली महिला है मिस बछेंद्री पॉल मैडम।
1: हाँ, हाँ, हाँ,
0: हुन चो फोन एव रहे इथा कि बस्तर चो एक जन ले की असन दे कि हम कोई बाहर अभियान काज जातो काज हुन पहाड़ो काज।
1: हुन बले तो माउंट एवरेस्ट सबले पहिल महिला।
0: तो हुन असन होली ते मोचो मन असन होली कि नहीं नहीं मैं तो मना लूंगी अपनी मम्मी को। लेकिन घर ने असन दशा रहे कि मोचो आया मोचो बिना रहे नहीं एक दिन भर मोचो भाई मन नहीं रहता। तो हुनके मैं बोले कि कुछ नहीं होगा मम्मी मैं पहले गई थी ना 10 दिन के लिए वैसे कैंप अटेंड करके आऊंगी। तो मैं चाय बोले से हाँ ठीक है 10 दिन के लिए है तो ठीक है। असन बोलू भाती मैं गेले उठा टाटा नगर उठा ले हम गेलू नी बल्ले इंटरनेशनल भूटान भूटान चो 12 पास रहे। तो हम पूरा राज्य ले अलग अलग राज्य ले 12 महिला मन रहा उन अभियान के करतो काज हमके नी हाउ बल्ले 30 दिन लागली। हुन 30 दिन से अभियान में सबले नानी मैं रहे और बाकी मन सब 40 साल 35 साल है ना अच्छा अच्छा एक्सपीरियंस मन और मैं काई नहीं मैं हुन लग काई नहीं। लेकिन मोचो विचार मोचो गट्स मोचो इच्छा शक्ति हुन दखुन हुन मन इतलो खुश होत कि आसन बोला ये लड़की में ना कुछ तो है ये लड़की में कुछ तो है। अब होए दे कसन नहीं बस्तर चो माटी आए नहीं बस्तर चो पानी और हवा आए तो हुन तो होए दे तो आसन बोला तो एक असन मोड़ रहे कि हमके नहीं हुन एक महीना जो हुन ले हमके कम कर तो रहे कि नहीं सबमिट नहीं हो पाएगा मौसम खराब है नीचे जाना है। तो मुझे मन बले कि हे भगवान इतलो दूर मेहनत करूँ हुन लास्ट मुकाम ने कसन पीछे नहीं नहीं नहीं बल्ले मैं फिर हुन सोच विचार करूँ पूछे से कि नैना कसन कर तो रहा है तुझे मन ने काय बल्ले से हुन बछेंद्री पाल मैडम बल्ले से। मैं बल्ले मैडम अब इतलो दूर तो हम लोग आ ही गए हैं अब 1 लाख लास्ट है चाहे जो हो जाए ये महिला शक्ति है तो आगे बढ़ेगी और हुनी गट्स बांधून हम नी बल्ले हुन लहसुन चो सूप के प्यून उबालून भाती हुन लहसुन चो सूप के प्यून हम हुन रात के 8-9 बजे चलून स्टार्ट करला उन चलते चलते नी बल्ले सुबह के 2:30 बजे सुबह रात आधी रात सब पहुंच लू। हाँ पहुंचून तक तो जितलो एक्सीडेंट मतलब रहे नहीं हुन मतलब के भी जिंदगी में भूल तो लाइक नो है क्योंकि महिला महिला चो टीम है 10 ठन कांड है उन बर्फ ने है ना वहाँ छत बोल तो नहीं आए है ना पानी बोल तो नहीं आए ना चांद बोल तो नहीं आए ना सूरज बोल तो नहीं आए ना रोशनी बोल तो नहीं आए ना नेटवर्क नहीं आए। हुन असन बोलू ना उठा गेलू जाऊन हम 4 बजे हम नीचे उतरलू नहीं बल्ले फॉरेन चो पुरुष मन चो टीम रहे हुन मन हम चो हुन फुट प्रिंट रहे नहीं उठा चढ़ून चढ़ून हम चो लग इला हुन मन एवं भाती बलसत कि मानना पड़ेगा आप लोगों को कि भारत की जो महिलाएं हैं वो बहुत शक्तिशाली हैं। तो उठा ले एक जो जुनून रहे मुचो हुन एकदम उड़ान भर ली कि हम जो पुरुष थे वो लोग नहीं कर पा रहे हैं और हम महिलाएं कर लिए तो हमारे लिए तो बहुत गर्व की बात है। तो ये ऐसा था कि वो जो समय था वो हमारे लिए बहुत मोरेबल था। तो 2010 से मुझे एक चीज मिला कि बछेंद्री पाल मैम के साथ एक अभियान में मैं शामिल हुई टाटा स्टील के थ्रू और वो जो कर रही हूँ आज यहाँ स्टार्टिंग से अभी तक वहीं से चल रही
1: है। ये तो खूब अच्छा गोट के मेहनत तुम्हें मुर कर लगी बोलो ने कोनी बोले लोग हो जो लगी इच्छा शक्तिया से उनके खिनिक सहा हो तो जरूरी है कहा ना कहा ले उन मन के मार्ग मिरे से रास्ता मिरे से बाट मिरे से और फिर हुन बाट के धरुन फिर आगे जा तो कोशिश कर लो ने हुन ऊंचाई की हमी हम रुक सकू ने। तो देखा नैना धाकड़ इतरो अच्छा अच्छा गोट मन के तुम्हें सांगा से मानतर तुम जो जीवना चो कितरो अच्छा और बुरा अनुभव बले रहे ने तो जितरो बले तुम पढ़ाई लिखाई तो करला खेल कूद बले मन ने बले खूबे आगे रहो ये मैं सुन ले से और सफाई बाटे मैं बोले तुम जो जानकारी के खोजक मोरियाले तुम जो नाव के सुन पाछे फिर हूँ तब मुके ये देखा पड़ ली कि तुम पढ़ून लिखून संगे संगे खेल संगे संगे जसन की कई ठन मुसीबत बोले तुम जो लगे हे रहे तो उन मुसीबत मन के जसन माउंटेन ने चेक तो काजे कई खार तो असन होली कि नैना धाकड़ो।

0: উতা মাউন্টেনে চেকতে চেকতে মরি হলি আসন বলে খবর মিরু রে তো আসন তিজ মন কে তুই কসন সামনা করলিস
1: দেখ আসন আই নেই হুন দৃঢ় শক্তি বহুত জরুরি আছে আর মই তোমালে সে কি হুন সপায় লোক যো হম চো বস্তর চো আজ যো হম ভারত চো আজ হুন সপায় চো আশীর্বাদ মুচু লাগাসে তো হুন চো আগে মে কাকে নি মানে তো সপায় লোক চো আশীর্বাদ মুচু লাগাসে এ চো কাজ মে সব কে আভার বলে সে তো হুন হমেশা রহে সে কাই বলে সে কি জিন্দগি রহেগি তো পতা নেই ক্যা কর লেঙ্গে লেকিন লোগো কা আশীর্বাদ রহেগা তো বহুত কুছ কর লেঙ্গে তো এ মুচু বিচার আয় কি হুন সব চো আশীর্বাদ কেবে বল কাচো সঙ্গ মিলে সে তো সবসে পহলে আশীর্বাদ ধরে সে কিউকি আশীর্বাদ ই থা নি তু থা কাম হয়ে সে
0: কাহা না হলে কাহে কাম হয়ে সে
1: তো আসন কিতলো মুসিবত ইলা আর হুন মুসিবত লে মে মন লে বস আসন রহে জো ভি হোগা ও প্রভু কি ইচ্ছা হোগি মেরা কাম মেহনত করনা হ্যায়
0: বিলকুল
1: বস
0: তো আজি আম চো ছত্তিশগড় চো বস্তর চো নাম হলি সে তুমচো কারণ নে কি মহিলা শক্তি কায় কাম কে করুক নি সকে দে বলতে বলে নে হুন সাহস চো দুসর নাম নয়না ধা কাড়া তো আসন সাহস কে তুমি উঁচাই কে ধরলা হুন চো গাজে কয়েক ঠান সম্মান মান সম্মান তুমন মন কে মিরলি সে তো হুন মান সম্মান পাওয়াতো কে কসন লাগলি আর সবলে বড়ে সম্মান তুমচো কাজে কায় মিরলি
1: দেখা আসা নাই কি হুন নি হও বললে মে সিজিপিএসসি চলে সে হামচো ছত্তিশগড় নে আর কিতলো সারি এক্সাম হয়েছে তো উথা মুচে নাম চলে সে তো লোক বাগ আসন বলে সে হুন নয়না সিং ধাকর চো নাম হয়েছে নেই হামচো পাঁচ নম্বর বনলি হামচো দুই নম্বর বনলি তো মে কেবে নি বলে কি মুচো নাম এসে তো মে বহুত প্রাউড ফিল করে সে মুচো প্রাউড মোমেন্ট তো ওই আয় কি হুন লেকিমন কাজ জো মে বিচার ধরু রে হুন সাকসেস হলি তো হুন মুচো বিচার রে হুন সাকসেস হলি আর এ জো সম্মান মান সম্মান চো বাত আয় হুন খুবই সারা মান সম্মান মুচো মুচো লাগাসে আর লোক মন চো প্যার মুকে মিললি তো হুন চো কাজ মে ধন্যবাদ করে সে লেকিন জো রহে হুন 2022 নে মুচো নভেম্বর নে জো রাষ্ট্রপতি মহামহিম দ্রৌপদী মুর্মু দ্বারা মুকে মিরলি হুন সম্মান মুচ কাজ খুব গর্চ রহে কায় কাজ জব মে যাউ রে উথা হিমালয় নে তো লোক মন খুব সারা হুন এক নিউজ সমাচার চলাউ রে হম এচো কাজ খুব করলু আর হম লোক নে ইসকো বড়ায়া হম লোগো নে ইয়ে কিয়া হম লোগো নে বেফিজুল চো কাম আসন বলতো বলতো বললে হুন মত চো খবর বলি থা খবর লে ছপলি কি নেই নেই ও তো মর গই হ্যায় উসকা ডেড বডি খিঁচ কে লা রে হ্যায় ঘসিট কে লা রে হ্যায় আসন বলুন ভাতি অফওয়া ফেলু রে হুন সপাই মন কে বল ধন্যবাদ করে সে মে কি হুন মন আসন বলুন আর মুচো নাম প্রচার করুন দে সে তো আর আচ্ছা আসে লেকিন ইয়ে রাষ্ট্রপতি ভবন নে মুচো বড়তো কাজ রিজন জো রহে অ্যাওয়ার্ড চো জসন মোকে অ্যাওয়ার্ড মিললি খুব ভাগ্যশালী বাত আয় কিউকি এ অ্যাওয়ার্ড কাজ নেই হুন কিত্রো সাল লে লোক বাগ বসু রহে সে লেকিন মুচো কাম আসন রহে কি মে এক সাথ মতলব বিশ্ব কি দো উঁচি চোটি হ্যায় মাউন্ট এভারেস্ট আর মাউন্ট লোহস সে মতলব পহলি হাইয়েস্ট চোটি আর চৌথি হাইয়েস্ট চোটি কো মেনে এক সাথ ফতেহ কিয়া 10 দিন কে কম সময় মে আর ভারত কি পহলি মহিলা কা খিতাব লিয়া তো ইয়ে মেরে পাস বহুত আচ্ছা অবসর থা আর সাথ মে জো মতলব লাগাতার মে হর মাউন্টেন্স পে যা রই থি তো উসকে কারণ সে মুঝে ই অ্যাওয়ার্ড মুঝে দিয়া গিয়া লেকিন ইস অ্যাওয়ার্ড কে লিয়ে মে বহুত ভাগ্যশালী থি লোক মেরে অ্যাওয়ার্ডস কো দেখ রহে থে মে বস ওয়াহ সুননে গই থি কিউকি জব মে আই তো লোগো নে ইয়ে বোলা আরে বস্তর কি বেটি আর বস্তর কি এভারেস্টার তো বস্তর কি এভারেস্টার আর ভারত কি এভারেস্টার মে বহুত ফর্ক হ্যায় শব্দো কা ভি বহুত জ্যাদা হ্যায় তো থোড়া মুঝে মন মে খেদ থা কি মে বস্তর কি হুঁ মে মানা লেকিন ও ভারত কি বেটি বন চুকি হ্যায় ফির ভি আপ উসকো বস্তর পে হি রখে হো তো মেরে মন মে ইয়ে বিচার আতা থা কি ক্যুঁ তো জব ওয়াহাঁ সে জব অ্যানাউন্স হুয়া কি ভারত কি পহলি মহিলা পর্বতারোহী জিসনে বিশ্ব কি দো উঁচি চোটি ফতেহ কিয়া হ্যায় মাউন্ট এভারেস্ট আর মাউন্ট লোহস নয়না সিং ধাকড় বস ইয়ে সুননে কে লিয়ে মে ওয়াহাঁ বৈঠি থি তো ও মেরা প্রাউড মোমেন্ট থা আর অ্যাওয়ার্ড তো বহুত বড়া অ্যাওয়ার্ড হ্যায় হামারে বস্তর ছত্তিশগড় রাজ্য কে লিয়ে কিউকি ইয়ে পহলা অ্যাওয়ার্ড হ্যায় ছত্তিশগড় রাজ্য কা তো বহুত বড়া অ্যাওয়ার্ড হ্যায় জিসসে কি সবকো ইস অ্যাওয়ার্ড কে লিয়ে মতলব ইতনি খুশি থি কি মতলব বস্তর কি বেটি কো মিলা বস্তর কি বেটি কো নহীঁ মিলা সব ইয়ে সোচ রহে থে কি ও হমে মিলা তো ইয়ে জো খুশি থা ইয়ে সবকে লিয়ে থা ইয়ে জো খুশি কা জো ক্ষণ থা মতলব তিন সাল মে ইয়ে ক্ষণ কো জি হু তো ইয়ে ইতনা বড়া ও পল থা
0: হম অভি ভি এসা লাগতা হ্যায় উস ক্ষণ কো জি রহে হ্যায় আর আপকি জো উঁচাইয়াঁ আর সাহস কি বাতেঁ সুনকর সবকি রুহ কাঁপ জাতি হ্যায় কি মহিলা হোকর ইতনি বড়ি বড়ি চোটিও পে আপনে ফতেহ হাসিল কি হ্যায় আর ফির আসনি জিত্র বলে তুমচো বিজয় হোলি সে উঁচো কাজ বস্তর চো ভারত চো সফায় চো শুভকামনা বলে রে মন্তর দেখা নয়না আসা নাই কি আমি তো পড়ুন লিখুন যাও সে আর মহিলা শক্তি চো গোটক উদাহরণ তুমি প্রস্তুত করলাস তো ये महिला मन के जसन की तुमके दखुन भाती तो हुन मन साहस जो काम करो मूर कर सो मानतर हुन मन के और बढ़ा तो काजे तुम जो बाटले कहीं संदेश असन हो सके युवा महिला शक्ति हो नाले कहीं बोले महिला शक्ति के हमी काय संदेश दे सकू।
1: देखा मुझे तो एक ही निर्णय आए मुझे छत्तीसगढ़ जो सपाई बहन बस्तर जो सपाई बहन भाई मन का एक संदेश आए कभी खुद को कम मत आकिए कभी खुद को कम मत आकिए हमारी मिट्टी में बहुत ताकत है अपनी प्रतिभा को पहचाने और सामाजिक रूढ़ियों को तोड़कर अपने सपनों के लिए उड़ान भरे क्योंकि ये युवा जो संदेश है मैं उन युवाओं के लिए देना चाहती हूँ कि जो कहते हैं ना कि मेरे पास ये नहीं है मेरे पास वो नहीं है मेरे पास इसकी कमी है मेरे पास उसकी कमी है सबसे बड़ी कमी हमारे अंदर है कि हम उन चीजों को फेस नहीं करते सामना नहीं करते। तो युवाओं के लिए मैं यही कहना चाहूंगी सफलता का कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं होता
0: मेहनत करना पड़ेगा
1: कोई भी शॉर्टकट रास्ता नहीं है सफलता का इसके लिए आपको कठिन परिश्रम करना पड़ेगा उसके लिए निरंतर और खुद पर अटूट विश्वास रखना पड़ेगा। याद रखिएगा हर ऊंची चोटी की शुरुआत एक छोटे कदम से ही होती है। तो ये मेरा निर्णय है कि एक हिमालय ही फतेह करना है ये जरूरी नहीं एक अपने कोई भी निर्णय को लेना है तो उसके लिए खुद पे विश्वास होना बहुत जरूरी है क्योंकि आपको लोग तोड़ेंगे दस बातें बोलेंगे और आपको पीछे हटने के लिए वो पूरा भरसक कोशिश करेंगे कि आप हटें लेकिन आप अपने अंदर का एक दृढ़ निश्चय रखें कि प्रभु पर अपना पूरा समर्पण दे दीजिए कि वो बैठे हैं ना ईश्वर है तो कुछ भी नहीं है हमें किसी चीज का डर नहीं है और वो ईश्वर हमारे माँ बाप भी हैं तो ये हमारे लिए वो बखूबी निर्भय करता है कि अगर हम उनका विश्वास जीतते हैं तो हम कोई भी काम करते हैं तो हमें वो सफलता हासिल होगी।
0: तो नैना जी जसन की तुम्ही इतरो अच्छा अच्छा गोट के सांगला कि आया बाबा जो सपोर्ट तो तुमन मन के खूबे मिल ली मंतर असन जसन एवरेस्ट जो चोटी ने चेक तो काजे सबले पहल तुमन मन सांगलास कि बचेंद्री पाल संगे भेंट हो रहे तो और बले आगे कोनी तुमन मन के जोन मदद करला ये बात चेक तो काजे तो हुन मन के सुरता करुण भाती हुन मन चो अनुभव के बले हम चो पूरे सांगा।
1: देखा सबसे पहले मैं तो ये एवरेस्ट काज में बले से हम जो पूर्व आईएएस रहे रजत बंसल सर मैं उनके सह दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगी सर का अगर वो मुझे कहीं से भी सुन रहे होंगे तो मैं सच कहती हूँ कि वो इंसान ने मुझे एक बार में पहचाना कि कहते हैं ना कि आईएएस अफसर का जो नजर होता है वो एक ढांचा दिखा देता है कि आप क्या हो ना क्योंकि उन्होंने पूरी किताब से खेला था और मैं सिर्फ मेहनत से खेली थी। तो एक होता है ना कि बस मैं गई हूँ चैम्बर पे और देखे बोले कि ये है छत्तीसगढ़ की पहली एवरेस्टर इसको देख लो चैम्बर में ऐसा बोले फर्स्ट टाइम मिलने पे तो मैं शॉक्ड हो गई कि अरे ऐसे कैसे बोल सकते हैं सर। तो होता है ना कि एक जो नजर होता है और वो उनकी जो जुबान थी मैंने उसे डन करके दिखाया कि हाँ सर मैं आप जो बोलोगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ मुझे एवरेस्ट करना है। तो सबसे बड़ा जो आश्रय है एवरेस्ट का तो मैं वो रजत सर को देना चाहूंगी। अच्छा। अगर वो शायद ये बात नहीं बोली होती या मेरा सहयोग नहीं किया होते तो शायद मैं इसके पीछे टाइम और लगता क्योंकि पहले से भी मेहनत कर रही थी और इसके पहले जितने भी लोग थे जैसे हमारे विवेकानंद सर थे आईजी सर थे जो पूर्व आईजी सर थे हमारे उन्होंने मेरे को 2018 में 18-19 में बहुत मेहनत किया उन्होंने भी मेरे लिए और उनके साथ हमारे संग्राम भैया थे अनिल लुक्कड़ भैया थे शकील रिजवी सर थे और ऐसे नाम लूँ तो मतलब अनगिनत लोग हैं जैसे अनएक्सप्लोर बस्तर के जीत सर हैं पर इन लोग ने मतलब छोटे छोटे मुकाम के लिए मेरे को सपोर्ट किया अंजार भाईजान है सच कहूँ मतलब जितने भी लोग हैं उनमें छोटे छोटे चीज़ों के लिए मेहनत किया है। कहते हैं ना कि एक बड़ा मुकाम हासिल करने के लिए अगर किसी ने सुई भी दिया है ना तो वो भी बहुत कीमती होता है। तो ये मेरे लिए वही था कि किसी ने सुई दिया किसी ने धागा दिया किसी ने कुछ फटा कपड़ा दिया कि सिलने के तरीका कैसे है तो ये चीज मुझे सिखाने का मौका दिया उन सबका मैं जिंदगी भर शुक्रिया अदा करती हूँ क्योंकि वो लोग नहीं होते तो शायद मैं अपना मुकाम नहीं हासिल करती। उन्होंने छोटी छोटी चीजों को देख मेरे पास ऐसा हुआ कि एक बड़ा रास्ता बनाया और उस रास्ते पे मैंने अपना एम सेलेक्ट किया। साथ ही हमारे जो एनएमडीसी के दास सर थे प्रशांत दास सर थे तो उन्होंने जो फंडिंग का मतलब रजत सर और इन्होंने मिलके जो फंडिंग का जो मेरे को स्पॉन्सरशिप दिलवाया था तो इनका बहुत बड़ा रोल था बहुत बड़ा रोल था। और हमारे बीच अभी नहीं रहे डिकाते सर स्पोर्ट्स वाले उनका भी बहुत मतलब था कि वो एक कागजदी सहयोग बहुत था। तो मैं कहती हूँ कई लोग खींचते हैं कई लोग बनाते हैं लेकिन अगर हम अटूट रहें अपने कार्य के लिए तो कहीं ना कहीं वो मंजिल हमें मिल ही जाता है बस अटूटता जरूरी है। तो इतने सारे लोग थे कि मैं नाम लेते थक जाऊंगी सभी लोग हैं सभी हैं कुछ ना कुछ रूप से मुझे सहयोग किया ही है। और सबसे अच्छा चीज बताती हूँ मैं आपको कि बस्तर के शिक्षा भाग का जो संघ था उन्होंने मेरे को सबसे पहले सपोर्ट किया था। जब मैंने एवरेस्ट का सिर्फ प्लानिंग किया था तो उन्होंने मेरे को सपोर्ट किया था कि उन्होंने अपने सैलरी का किसी ने 2000, किसी ने 5000, किसी ने 500 करके मेरे को दिया था, नहीं हो बोल के 10 या 20 हजार रुपए मैंने वहां से कलेक्ट किया था। तो मेरे दिमाग में ये था कि क्राउड फंडिंग के थ्रू अगर मैं जाती हूँ तो बस्तर के हर वो युवाओं को वो क्षण मिलेगा, वो पल मिलेगा कि हम किसी के दुख को समझे, किसी के मुसीबत को समझे, किसी के लक्ष्य को समझे तो हम सहयोग दें। क्या होता है ना कि गवर्नमेंट सर्विस में है तो हमको ये पता है कि हम अपने परिवार को पालेंगे, तो वो परिवार को ना पाल के अगर आजू बाजू भी नजर देखे ना तो हमको अगर 10 रुपए किसी को देंगे तो हमारा कम नहीं होगा, ईश्वर देने वाला है ना, और वो अगर मुकाम हासिल करते तो वो जो सबसे बड़ी संतुष्टि है वो कहीं नहीं मिलेगी। तो ऐसे करके हमारे सोनार पाल के हैं शर्मा सर, राकेश शर्मा सर करके, तो एकदम मेरे बड़े भाई जैसे हैं। उन्होंने बिल्कुल जी जान लगा दिया था मुझे ये करने के लिए कि नाना जो भी होगा हम करेंगे, लेकिन उनका वो वही सहयोग रहा, बाकी तो फिर यही सब कुछ जगदलपुर से जितना जो सहयोग बना वो सब यहीं से रहा।
0: नैना जी तुम मन जो इतरो अच्छा अच्छा गोट के तो हमें गोठियाओं से और इतरो बड़े बड़े काम तुम मन कर ला सा, तो मैं बोले से केबे केबे कहीं असन गोट बल्या से जो तुमके खूबे परेशान करे से या दुख पहुँचाए से असन कहीं गोट ये मुकाम इतरो हासिल कर तो पहल बोलो ने रास्ता ने कहीं कठिनाई जेके तुम सुरता करुण भाती एकदम मतलब तुमके परेशान करुण देस असन कोई गोट हासे जाले उनके बोले सांगुन देस।
1: सबसे बड़े गोट महिला हो तो बड़ी गोट आए कि महिला मन के कहाँ है बलनी हुन जो दृष्टि पड़े से नहीं लोग मंचो हुन बेकार हो से हुन अच्छा नहीं आए। तो मैं असन सोचे कि भगवान मेरे को क्यों लड़की बना दिया, कि हर चीज में मुझे क्यों रोका जाता है, क्यों मुझे लड़की बना दिया। तो मुझे मन में ये खेद रहे कि सच में मेरी मम्मी को ना मेरे को लड़का पैदा करना था, वो मेरे को लड़की पैदा करके गलत कर दी, तो मुझे मन में ये खेद रहे। लेकिन जब मैं अपन दृढ़ इच्छा के साथ ले तब मुझे मन में ये रहे कि बस कि बेटी है तो दुनिया है, बेटी है तो संसार है, बेटी है तो पूरा यूनिवर्सल है। तो ये बेटी का जो निर्णय था मुझे बाद में समझ में आया, तो ये मन का जो खेद था, मैं हमेशा ये सोचती थी कुछ भी मुसीबत आ जाए तो मन में ये रहता था कि हाँ मैं लड़की होके बहुत प्राउड मोमेंट करती हूँ, अच्छा हुआ कि मैं लड़का नहीं हुआ। तो ये था मेरे
0: सुंदर गोठ के तो तुम्हें सांगला सुनैना और ऐसा लागे से कि गोठियाते चरंग तुम चो संगे मादर का है कि हम जो कार्यक्रम जो समय बल्ले होते रहे से और मैं लेकिन गोटक गोठा और पूछे से तुमके कि तुम्हें हम जो महिला शक्ति चो जो गोटक उदाहरण बनन भाती तो भीतर अच्छा गोठ के सफाई चो पूरे आने साहस और फिर जोन बोले दुख तकलीफ मेहनत मसागत कर लो ने हो से हूं तो आए मंतर इतरो अच्छा ऊंचाई करुण भाती बोले बोलो ने लोग मन चो जोन आशीर्वाद आए हूं तो आशी ची आप जो अपन मन लगे और तुम जो जोन अंतिम जोन वाक्य रह दे कि हमी जितरो मेहनत मसागत कर लू हूं चो फल मिलो ची आए ये गोट के तुम आप लो शब्द ने हम चो सफाई सुनिया भाई बहन मन लगे हमारा
1: असन है ना कि मैं कभी बलासन नहीं सोच ले कि मेहनत करुण भाती का ही फल मिले से, मैं असन जाने कि काम करना है बस, उन काम ने असन दही हो रहे आज जो भी मुझे लगा से हुन मुझे मेहनत चुआसे हुन सपाई चो आशीर्वाद आसे ते में इतलो दूर इतलो ऊपर इतलो नाम जो भी आसे सपाई चुआसे मुझे नहीं। मैं कभी हुन घमंड ने नहीं रहे, मैं हमेशा बताए से कि जीना है तो ऐसे जियो ग्राउंड टू अर्थ रहो, मतलब कितनी भी ऊंचाई में चढ़ लो पर पैर जमीन पे रखो, तो ये जो जमीन पे रखने वाला पैर जिसको समझ में आ जाएगा ना वो कभी अपने आप को ये नहीं समझेगा कि मैं भगवान हूँ, वो ये समझेगा कि मैं तो मानव से भी तुच्छ कण हूँ, बस वो कण को हमें समझना है, ये सबसे बड़ा बात है।
0: बहुत बड़े बात तो मन मन सांगलास कि आम के आप लोग भूई ले जुड़ी रहते रहे
1: जी।
0: हाँ तो नहीं ना इतरो अच्छा अच्छा गोट मन के तुम चो हरिक चो उदास चो और मेहनत चो परिश्रम चो सफाई गोट के तुम्हें सांगला तो केबे केबे तुमन मन बलो ने हम चो बस्तर चो बेटी चिया मानता राजी भारत चो प्रतिनिधित्व करे सा तो केबे केबे ऐसा नहीं लागे कि हम चो गांव चो कहीं संस्कृति हम चो गीत गोविंद कहीं पसंद आसे तुमके जाले हुनके वाले सांगुन दिया।
1: सबसे पहले मुझे जो मन चरे नहीं हुन यही चरे कि मैं दिमाग ले रहे कि मुझे सांस्कृतिक चीज केबे हम चो ले नहीं जाए तो हुन पैर चुकड़ा आए ने कान चवाली आए है हाथ चुमूड़ी आए मतलब मुझे लग आसे तो हुन लोग मन देखुन ये कैसे पहनी है ये कैसे पहनी है ये कहाँ पहनते हैं लेकिन हम जो बस्तर चो साना है तो सांस्कृतिक जो आसे हम जो कल्चर जितलो बल हम जो जीवन आसे ये तो हुन जसन की लोक भाषा चो गीत आए हैं, फोक गीत आए हुन गातो काज है नाचतो काज, मैं तो आगे
0: ये तो ओके हम बोलने सुनिया सब पाए लोग के खूब हरिक चो गोठाए मातर को नी गीत तुम के पसंद आसे जाले दुई लाइन गाउन भाती बोले
1: हुन मैं कॉलेज ने दे

0: नी, तुमचं गावचो इंडा बोला आमके नी भायर दादा, तुमचं गावचो इंडा बोला आमके नी भायर दादा, सजानी बला काय रजानी।
1: बहुत सुंदर। तो ये जो ना तुमचे आमचे संस्कृतीचे जुडाव आरो साहसचे काम, ये सफाय आमचे राज्य आमचे देशचे प्रतिनिधित्व करतो का जे बिलकुल तयार असे, आरो भविष्य ने बले तुमचे नाव धरलो बलो ने साहसचे नाव धरलो असन होय दे। आज ही आम्ही नैना संगे इतर अच्छा गोट के गोठियालु कि हुंचो जो इच्छा शक्ति है कहीं भले काम के करतो काजे, सबले पहले आप लोग भरसा संगातो राय, इच्छा शक्ति के मजबूत करतो राय, और ये बल्लर बल्ले आसे कि जो उड़ान है हुन पंख ले नहीं होए, हौसला मन ने होए से बलुन भाती, उड़ान पंखों से नहीं हौसलों से होती है, बस मन में आत्मविश्वास रतुर खूबे जरूरी है। तो इतरो सुंदर गोठ काजे अमी नैना धाकड़ के खूबे खूबे धन्यवाद देऊ से, आरु खेल पत्रिका ने इतरो अच्छा गोठ काजे अमी तुमन मन के फेर एक हार आभार देऊ से, आरु तुम जो भविष्य खूबे उज्ज्वल रहो असन शुभकामना बल करूँ से, आरु यही संगे खेल पत्रिका आजीचो आमी समाप्त करूँ से। सब फाय खेल पत्रिका सुनिया भाई बहन मन के, मैं मैना मती करें से जुहार
2: जोहर।
3: खेल पत्रिका में अभी आप सुन रहे थे नैना सिंह धाकड़ से पूर्णिमा सरोज की बातचीत। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है, प्रस्तुत है फरमाइशी लोकगीतों का फोन इन कार्यक्रम लोकरस, प्रस्तुति है डमरूराम मंडावी की, संयोजक है चंद्र ऋषि ठाकुर।
4: फोन इन लोकरस कार्यक्रम सुनतो सपाय दादा दीदी मन के जुहार, आले सुनून दकू पहिल फोन कौन करे से।
5: हेलो कौन इन लोकरस
6: दादा जुहार ना,
5: जुहार दादा जुहार, कौन बोलती दादा?
6: भागेश्वर मंडाई बोलू से ना, फरस गाँव जिला कोंडा गाँव ले।
5: काय काय काम होता दादा आजकल?
6: आजकल तो दादा बिहाव भी सरली थे ना, बिहाव होता चलते रहे, आजकल तो पानी मारे थे दादा।
5: हाँ हाँ पानी मारे थे, बेटा खड़ा के नागर जो पुखमुरी
6: अल्लाह अभी तो ना जुन ना दादा।
5: अच्छा कुछ गीत के मन कर ली सांगू तक
6: लखे सर खुज नाम तो हल्दी बीती सुना
5: दादा। हाँ दादा तुझे मन कर लो गीत के, हम रहा खुबे खुबे जुआर पे
6: जुआर ना सेवा जुआर ना
5: सेवा जुआर।

0: हेलो पोनी लोकराज।
1: हेलो
0: दादा जुआर।
1: नमस्कार सर।
0: कौन बोलता दादा?
1: नारायण साहू सागरा सोमनी राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बोला हूँ सर।
0: क्या काम होता दादा?
1: मैं सुरक्षा कर्मी हूँ, कंपनी में सुरक्षा गार्ड हूँ सर।
0: अच्छा सुरक्षा गार्ड।
1: हाँ।
0: और नारायण दादा और कहीं बुता?
1: हाँ अभी गर्मी बारिश बदरहा कर रहा है, अब बारिश के दिन आने वाला है, अब गर्मी खूब भी बढ़ रहा है सर।
0: हाँ।
1: आपके यहाँ तो ठंडा पड़ा हुई, आपके वनांचल क्षेत्र पर थे।
0: तो घरे सब नंगत नंगत दादा?
1: हाँ गीत सुना दो, जर्गे मंजनिया के घाम आमतरी डोला उतार दो, ममता चंद्रा करके सुना दो सर।
0: हाँ हाँ अरे ठीक है दादा, तुम चुमन कर लो गीत के हमरा उन्हें। इसको भी जुहार।
1: हाँ जय जोहार सर।

0: भाई साहब, आपके यहाँ कपड़ों पे 25% छूट अभी भी चल रही है ना?
1: हाँ हाँ जरूर, आपको किसने बताया?
0: मेरे रेडियो ने, वरना मैं तो इस डिस्काउंट से वंचित रह जाता।
2: विज्ञापन बुक करवाने आकाशवाणी आइए

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हेलो मॉर्निंग लोकर।
2: हेलो
1: दादा जुआर।
2: जुआर ने
1: संगा दादा कौन बोलता?
2: मैं मुन्ना लाल पटले बोला था, डोंगरिया मलाथन जिला बालाघाट मध्य प्रदेश। हाँ भैया।
1: तो और काय का काम होता दादा हूँ बाटे?
2: बस खेती बाड़ी चला था अभी। का है पत्ता सीजन है भैया, तेंदू पत्ता थोड़ा थनगा।
1: और सब घरे नगद दादा?
2: हाँ सब बढ़िया।
1: और काम बुता कहीं दादा? तेंदू पत्ता
2: चला शादी भी है घर चले थे अभी।
1: तुम जो मन कर लो गीत सांगू देगा दादा? कुछ गीत के मन कर ला
2: केदार यादव की गीत सुना दो।
1: दादा तुम जो मन कर लो गीत के सुना है इस पर खूबे जुआ।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: आपके सपनों को साकार करने और हर इम्तिहान में आप

0: के साथ चेट्टीनाड सुपर ग्रेट सीमेंट, मजबूत नींव बनाने के लिए एक ही नाम चेट्टीनाड सीमेंट।
1: हेलो कौन इन लोग रहे?
2: हेलो कौन इन?
1: दादा जुआर ना?
2: जुआर
1: कौन बोलती दादा?
2: मैं लालू राम खोया।
1: कौन गांव ले दादा? कौन गांव?
2: बड़े सोंगा धंधर का।
1: कौन जिला पड़े दादा?
2: कोंडागांव जिला पड़े।
1: हाँ लालू राम खोया दादा, काय कहता महीना
2: काय शुरुआत आजकल बिया हम रहे थे।
1: अच्छा बिया है मुंचले से, और सब घरे ना कितना दादा?
2: सब
1: अरे तुम चो मन कर लो गीत संग दादा, कुछ गीत सुनवा
2: बिया
1: गीत सुना दी मैं कहीं मैं डमरू मंडा भी बोले दादा, तुम जो मन कर लो गीत के सुना है खूबे खूबे जुआर

ニコネラプー。

0: आपके सपनों को साकार करने और हर इम्तिहान में आपके साथ। चेट्टीनाड सुपर ग्रेट सीमेंट, मजबूत नींव बनाने के लिए एक ही नाम, चेट्टीनाड सीमेंट।
1: हेलो, कौन इन लोग रहा?
2: हाँ, कौन इन लोग रहा? जुहार दादा।
1: दादा जुहार, कौन बोलते हैं दादा?
2: ये मैं अनिल मंडावी बोले दादा, पटेल पारा माजी बोरंड जिला कोंडा गाँव ले। हाँ हाँ,
1: और सब नंगत नंगत दादा?
2: हाँ दादा, सब तो अच्छा से, सब नंगत नंगत है।
1: तो
2: आजकल अचानक से मौसम का चेंज हो रही से।
1: हाँ, मौसम चेंज हो रही दादा, पानी काम वैसे ने।
2: हाँ, ये जोंदर अंदर जो नुकसान आ जाता, मतलब आजकल जोंदर अंदर फसल हो रही से चुका है।
1: पीला मन के बोल के दादा, ये गांव ने बोलो तो रोक देते रहना, और पानी बोले बेच पानी बीजुक देते रहना है। तो और सब करे नगद का दादा?
2: हाँ दादा, सब नगद नगद से गोटो गीत सुंदर ले दादा।
1: हाँ ले सांगू दादा, तुम जो मन कर लो गीत चुना।
2: एक गोटो के पीला मना तो बीते आते दादा, लोरी की ता हल्दी बीते।
1: हाँ,
2: फूल फूटे फूटो ने बिकसे बिकसो ने बाती जड़ आसन बीते आसन ते आसन से बोल दादा। हाँ,
1: फूल फूटे फूटो ने बिकसे ने।
2: हाँ,
1: ठीक है दादा, तुम जो मन कर लो गीत के सुनाओ ने इससे भाई।
2: हाँ तो जुआर दादा।
1: हाँ जुआर।
3: ए आया मुके झुमा नहीं लागे से, गोटो गीत गाइस ने
4: गाय से दोंदो।

0: किसान भाई बहन मन का जे नुआ उवाड एदाए रोज शनिवार के सांझ बेरा 7:30 बजे ले 8 बजे तक सुना फोन इन किसान वाणी यथा कृषि महकमा चो विशेषज्ञ बल्लो ने खोजाकारी दादा दीदी दे दे आपन मन चो खेती कमाने लिए जुड़लो सपाय समस्या चो समाधान बीज ले धरून हाट बाजार तक हर सवाल चो जवाब सीधा आपन मन के मिरे दे। और हाँ, ये कार्यक्रम चो रिकॉर्डिंग होय से रोजे मंगलवार अड़ौ पहार 3:30 बजे ले 4 बजे तक तो आपन मन सपाय सुना और आप लोग सवाल सीधा आम के फोन ने सांगा। आमचो फोन नंबर आए 07782222666। फोन इन किसानवाणी आपन मंचो सवाल आपन मंचो कहानी खेती बाड़ी चो जुबानी आकाशवाणी जगदलपुर ने।
1: हेलो, फोन इन लोकराज।
2: हाँ, राम राम भैया।
1: दादा जुआर, कौन बोलती दादा?
2: बलराम सेन, दंतेवाड़ा बचली से।
1: बलराम सेन,
2: तुम तो नाम दादा?
1: मचना डमरू मंडावी दादा।
2: हाँ दादा, जो आना
1: जोर जोर बलराम सेन दादा। हाँ दादा, दंतेवाड़ा बोल रहा दादा ने।
2: हाँ बचेली।
1: हाँ, क्या बोता दादा?
2: मोर सैलून दुकान है बचेली में।
1: अच्छा, सैलून दुकान से।
2: हाँ, बाल काट में।
1: हाँ, नंगत बोता है दादा।
2: हाँ
1: तो दादा, सब घरे नंगत नंगत का?
2: हाँ, सब बने बने हवन।
1: अरे तुम जो मन कर लो गीत के संग दादा
2: कोनी वाली हल्दी गीत।
1: हाँ ठीक है फिर दादा, तुम जो मन कर लो गीत के हम रहा खुबे खुबे जुआ
2: दादा जो आना।
1: हाँ

0: हेलो फोन इन लोग रहा।
1: हेलो, गल्लई टिगरी पारा छत्तीसगढ़ से जागेश्वर देवांगन बोल रहा हूँ।
0: हाँ देवांगन दादा
1: जी,
0: तो क्या क्या काम होता दादा?
1: जब मैं किसी कार्य करता हूँ भैया।
0: अच्छा, ये काय फसल आता दादा?
1: अभी वो मूंग उड़द की दब लगा है।
0: अच्छा अच्छा, फसल सब अच्छा है दादा?
1: हाँ अच्छा है। लेना मैं कल परसों दो दिन यहाँ लगातार।
0: अच्छा अच्छा, और सब नंगत नंगत दादा? आल तुम जो मन कर लो इतने संगा दादा।
1: उधर हम काम के बजा दो, जो भी जो विदुषी ममता चंद्रा करे।
0: हाँ हाँ, अल तुम जो मन कर लो गीत के हमारा उससे दादा खूबे खूबे जुआ रहे। हाँ जुआर।

0: हेलो, फोन इन लोग रहा है।
1: हेलो
0: जुआरना
1: राम कुशल पटेल मेघा पारा लोरमी से।
0: पटेल दादा काय काय बुताना?
1: गर्मी के मौसम चल रहा है इधर तो अभी।
0: और बुता पाए ना दादा?
1: हाँ बुता खाली है अभी तो गर्मी में।
0: और सब घरे नगद नगद दादा?
1: हाँ
0: हाले तुम जो मन कर लो गीत के संगा दादा।
1: ममता चंदा का कोई भी गीत।
0: हाल ठीक है दादा, तुम जो मन कर लो गीत के सुनाओ। देश को भी जुआ रहे।
1: धन्यवाद धन्यवाद।

0: दादा दीदी मन फोन इन लोकरस चोरी काटिंग रोजे लखीनवार दिन 3 बजे ले 3:30 बजे तक हो से तुम्ही भले आप लो मन कर लो गीत के सुन तो काजे फोन करू सकास हम चो फोन नंबर आए 222-666 और गोटक नंबर आए 222-160 फोन कर दो पहिल जगदलपुर चो एसटीडी कोड नंबर लगाऊ लाय नी भूलगा एसटीडी कोड नंबर आए 077782 अदाय मचो जातो समय बोले होली फोन इन लोकरस कार्यक्रम सुन तो सपाय दादा दीदी मन के जुहार
1: आप सुन रहे थे फरमाइशी लोक गीतों का फोन इन कार्यक्रम लोकरस प्रस्तुति थी डमरूराम मंडावी की संयोजक थी चंद्र ऋषि ठाकुर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है
2: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी
3: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से
2: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार क्योंकि आकाशवाणी

0: भारतीय जनता पार्टी के पहले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी कल सुबह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेंगे। कोलकाता में आज उन्हें भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। श्री अधिकारी राज्य के पहले भाजपा मुख्यमंत्री बनेंगे। गृहमंत्री अमित शाह की उपस्थिति में पार्टी विधायक दल की बैठक में श्री अधिकारी को निर्विरोध चुना गया।
1: लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूं।
0: श्री शाह ने कहा कि पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत ऐतिहासिक है।
1: 100 साल की वैचारिक यात्रा के बाद गंगोत्री से गंगा सागर तक हर जगह पर आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। हम सब के लिए बहुत आनंद है। 1950 से जो विचार की यात्रा को लेकर हम निकले और जिसके नेतृत्व में निकले श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व, उनकी ही जन्मभूमि में आज 2026 में श्यामा प्रसाद जी की ही पार्टी की सरकार बन रही है।
0: शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि उनकी सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदर्श पर राज्य का विकास करेगी। उधर तमिलनाडु में एनडीए गठबंधन के सहयोगी एएमएम के प्रमुख टीटीवी दिनाकरन ने राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अलेरकर से मुलाकात की और एआईएडीएम के महासचिव एडापाडी के पलानीस्वामी को सरकार बनाने के लिए अपना आधिकारिक समर्थन पत्र सौंपा। दिनाकरन ने राज्यपाल को सौंपे पत्र में स्पष्ट किया कि उनकी पार्टी मन्नारगुड़ी से नवनिर्वाचित एकमात्र विधायक एस कामराज के समर्थन के साथ पलानीस्वामी के दावे का समर्थन करती है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि समाचार चैनलों ने यह खबर फैला दी थी कि उनकी पार्टी टीवीके का समर्थन कर रही है। उन्होंने राज्यपाल से मामले की गहन जांच करने की शिकायत की है। उन्होंने कहा कि राज्यपाल ने उन्हें आगे की कार्रवाई का आश्वासन दिया है। केरलम में नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व फैसला लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि होंगे। पार्टी विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। निर्वाचन आयोग ने हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनावों और उपचुनावों के लिए सूचकांक कार्ड और सांख्यिकी रिपोर्ट ईसीआई नेट ऐप पर जारी की है। सूचकांक कार्ड में उम्मीदवारों, मतदाताओं, डाले गए वोटों, गिने गए वोटों, पार्टीवार और उम्मीदवारवार वोटों सहित विभिन्न डेटा दिए गए हैं। इसे चुनाव नतीजों की घोषणा के 72 घंटों के रिकॉर्ड समय में उपलब्ध करा दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में बढ़ते मादक पदार्थों के खतरों पर चिंता व्यक्त की है। राज्य की नीति में मूलभूत बदलाव लाने और प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार करने को कहा गया है। न्यायालय ने कहा कि इससे होने वाली मानवीय क्षति चिंताजनक है। न्यायालय की पीठ ने हाल ही में मादक पदार्थों की लत के कारण एक महिला के 5 बेटों को खोने की घटना का संज्ञान लिया था। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए द्वारा जांच किए जा रहे 10 से 15 लंबित मामलों की सुनवाई के लिए कम से कम एक विशेष अदालत गठित की जाए। न्यायालय ने कहा कि विशेष न्यायालय का गठन 1 महीने के भीतर किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय महिला आयोग ने जघन्य दुष्कर्म के मामलों में त्वरित सुनवाई, कड़ी निगरानी और पैरोल पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। आयोग ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ जघन्य अपराधों में शामिल दोषियों के लिए वर्तमान पेरोल व्यवस्था पर गंभीर चिंता व्यक्त की। आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर ने कहा कि आयोग शीघ्र ही केंद्र सरकार को सिफारिशें सौंपेगा। सरकार ने कहा है कि देश में घरेलू एलपीजी की सुचारू आपूर्ति जारी है और किसी भी वितरक पर आपूर्ति में कमी की कोई रिपोर्ट नहीं है। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की सचिव सुगाता शर्मा ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि घरेलू उपभोक्ताओं को गैस की कमी का सामना न करना पड़े और कीमतें स्थिर बनी रहें। भारत की महिला फुटबॉल टीम एएफसी अंडर 17 एशिया कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। भारत ने 2025 के बाद इस टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत दर्ज की। चीन के शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में रिकर्व तीरंदाज सिमरनजीत कौर और कंपाउंड तीरंदाज साहिल जाधव व्यक्तिगत स्पर्धा के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba.